ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, आज दिन रविवार है। शक संवत 1948 के श्रावण मास की 11वीं तिथि, तदनुसार 2 अगस्त सन 2026। इस समय सुबह के 5:57 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रातःकालीन सभा प्रारंभ होती है।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, सुबह के 6 बजने को है। अब आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।

बड़ी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देशभर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। माई भारत वॉलंटियर्स, यूथ क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन के प्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम में वर्चुअल रूप से हिस्सा लेंगे। इस अभियान के अंतर्गत प्रत्येक रविवार को नशा उन्मूलन के लिए जागरूकता संबंधी गतिविधियां चलाई

0: जाएंगी। इनमें खेलकूद, वॉकथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक कार्यक्रम शामिल होंगे। इसका उद्देश्य युवाओं को नशे की लत से दूर रहने के लिए प्रेरित करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। हम सभी अपने आसपास देख रहे हैं, आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किस्त के रूप में 1,09,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्य को पूंजीगत तौर विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सैदोव बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमेरिकी हमले जारी रहेंगे। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगास, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुषों की 60 किलोग्राम भारवर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेडवेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, इस समय सुबह के 6:05 हो रहे हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं संवित स्वर में ये देशगान।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति हरिओम शरण की आवाज में।

भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना आप आकाशवाणी के आगरा केंद्र से सुन रहे हैं। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं अंतिम प्रस्तुति हेमंती शुक्ला की आवाज में।

0: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे हेमंती शुक्ला, जगजीत सिंह, हरिओम शरण और साथियों की आवाज़ों में कुछ भक्ति रचनाएं। इसी के साथ ही भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम चिंतन का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर के विचार।
1: सभी धर्मों का आधार प्रेम है, ये शब्द हैं गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर के। हमारा देश सचमुच अपनी परंपराओं में महानतम रहा है। अनेकता में एकता की भावना सदैव से हमारे राष्ट्र की विशेषता रही है, पर आज अपने छोटे छोटे निजी स्वार्थों में फंसकर हम अनेकता में एकता की इस भावना को सांप्रदायिक, जातिगत एवं राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से आहत कर रहे हैं। धर्म के नाम पर

संप्रदायों में बटते जा रहे हैं। ऐसी विषम परिस्थितियों में टैगोर के विचारों में निहित सर्वधर्म समन्वय की भावना एवं प्रेम के मूल मंत्र को हमें अपनाना होगा। हर धर्म में मानव मात्र से प्रेम को सर्वोपरि बताया गया है। फिर धर्म के नाम पर आपस में द्वेष और शत्रुता का भाव क्यों, जबकि धर्म के मूल तत्व प्रेम को अपनाकर ही हम आपस की खाई को पाट सकते हैं। यही वो दिशा है जो मानव भविष्य को सुखमय बना सकती है। आज हम सत्य की सार्वभौमिकता की उपेक्षा कर रहे हैं, जबकि सत्य की व्यापकता को अनदेखा नहीं किया जा सकता। और जीवन का शाश्वत सत्य यही है कि हम मानव मात्र से प्रेम करें, मनुष्य मनुष्य के बीच विद्यमान सारे भेदों को मिटाकर वसुधैव कुटुंबकम की भावना को अपनाएं। गरीबी आज की सबसे बड़ी समस्या है, ये सभी मानते हैं, पर इतनी बड़ी नहीं कि जिसका समाधान असंभव हो। हम आप यदि अपनी जरूरतों को कम कर पाएं तो यकीनन कुछ हिस्सा दूसरों के लिए जरूर बचा पाएंगे। रविंद्रनाथ जी इस बारे में कहा करते थे, क्या हम में से प्रत्येक व्यक्ति अपने देश के नाम पर एक पैसा या एक मुट्ठी चावल का दान नहीं कर सकता? ये प्रश्न हर किसी को अपने भीतर झांकने के लिए विवश कर देता है। हम अपने देश से कितना प्रेम करते हैं? क्या हमारा प्रेम विचारों या भावनाओं की अभिव्यक्ति तक ही सीमित है? क्या हम कुछ रचनात्मक ढंग से भी कुछ कार्य कर रहे हैं? और यदि कुछ प्रतिशत भी कर पाते हैं तो देश की उन्नति को कोई नहीं रोक सकता। हमारा थोड़ा सा योगदान अमूल्य है। जब एक एक बूंद से समुद्र बन सकता है, तब एक एक व्यक्ति के योगदान से भला कोई राष्ट्र खड़ा क्यों नहीं हो सकता? रविंद्रनाथ जी ने अपने राष्ट्र के प्रति श्रद्धा व्यक्त करते हुए एक बार कहा था, मैं ऐसे देश को प्रणाम करता हूं जहां के मानव दिमागी रूप से स्वतंत्र हों, जिनके हृदय खुले हों, जहां भय के लिए कोई स्थान न हो। उनका ये संदेश आज भी हमें बताता है कि आजादी की चंद सांसें गुलामी के पूर्ण जीवन से कहीं बेहतर हैं, कहीं अमूल्य हैं। हमें हर हाल में अपने देश की स्वतंत्रता को बनाए रखना है और इस स्वतंत्रता की बलिवेदी पर चाहे हमें अपना सर्वस्व ही क्यों ना न्यौछावर करना पड़े। जिनके इरादे नेक हों और मंजिल पवित्र हो, उनके जीवन में भय और अविश्वास का कोई स्थान नहीं होता। उनके मार्ग में कोई बाधा ठहर नहीं सकती, बशर्ते हम में संघर्ष से लड़ने की ताकत हो। टैगोर जी के शब्द चिर स्मरणीय हैं कि जब तुम्हारी आवाज कोई न सुने, जब सब संघर्ष से डरकर अपना मुंह मोड़ लें, तुम्हारा साथ छोड़ दें, तब भी तुम अकेले चलो, एकला चलो, एकला चलो, एकला चलो रे।

अभी आप सुन रहे थे रविंद्रनाथ टैगोर के विचार। इसी के साथ ही कार्यक्रम चिंतन अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं कार्यक्रम विवरण। अब से थोड़ी ही देर में यानी 6:35 पर श्रोता सुनेंगे श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार होंगे भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह। संगीतकार होंगे सतीश भाटिया। खेती की बातें कार्यक्रम में 6:45 पर आप सुनेंगे गाय के गोबर एवं मूत्र का महत्व विषय पर डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता।

वार्ता विषय होगा गले के रोग और उनका उपचार। आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन सकेंगे सुबह 7:31 पर। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि प्रसारित किया जाएगा 8:45 पर। 9:25 पर आप सुन सकेंगे पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम लोक संगीत में 9:45 पर सुनेगा फूलचंद गोस्वामी और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता आप सुन सकेंगे सुबह 10:00। 10:30 पर शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुनेगा पंडित सी आर व्यास का राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन और राग मिश्र कौशिया में ठुमरी गायन। प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आप सुन सकेंगे हमारे दिल्ली केंद्र से सुबह 11:00। दोपहर 12:00 कार्यक्रम लोकमंजरी में सुनेगा नौटंकी गोबर्धन लीला। कार्यक्रम नई तराने सुना जा सकेगा दोपहर 12:30 पर। 1:15 पर कार्यक्रम बाल मंडल में नन्हे मुन्ने श्रोता सुनेंगे मित्रता अनमोल रिश्ता पर चर्चा, साथ ही रोचक जानकारी दी जाएगी इंद्रधनुष के साथ रंग पर। गीत संगीत के अलावा नन्हे श्रोता सुनेंगे कहानी चालाक बंदर।

सुगम संगीत के कार्यक्रम में दोपहर 1:45 पर सुनेगा तलत महमूद की गाई चंद गजलें। दोपहर 2:30 पर सुनेगा रूपक श्रावणी यात्रा आगरा के शिवालयों की। आलेख एवं प्रस्तुति होगी डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण की। लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन सुना जा सकेगा दिन में 3 बजे। सांध्यकालीन सभा में शाम 5:10 पर आप सुन सकेंगे भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। युवाणी कार्यक्रम में 5:30 पर युवा साथी सुनेंगे बिम्सटेक पर चर्चा, आज का सवाल, खेल दुनिया, मूवी मैगजीन और गीत संगीत के अलावा सुनवाई जाएगी ऋषभ शर्मा की वार्ता। विषय होगा आत्मनिर्भरता और विज्ञान का समन्वय, थे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। शाम 6:00 ग्राम्य लोक कार्यक्रम में ग्रामीण अंचल के श्रोता सुनेंगे पीएम सूर्य घर योजना पर चर्चा, साथ ही सुनवाई जाएगी अमर सिंह गुजर की वार्ता। विषय होगा वर्षा जल का संचयन। लोकगीतों के अलावा बताया जाएगा मंडी भाव और दी जाएगी मौसम की जानकारी। मजदूर मंडल कार्यक्रम में 6:30 पर श्रमिक श्रोता सुनेंगे मित्रता एक अनमोल रिश्ता पर चर्चा, साथ ही सुनवाई जाएगी जानलेवा है तंबाकू सेवन विषय पर बनवारी लाल कुशवाहा की वार्ता। गीत संगीत के अलावा सुनेगा आज का प्रश्न, ज्ञान सागर और सेहत टिप्स। इसी के साथ ही कार्यक्रम विवरण अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं इस समय सुबह के 6:35 हो रहे हैं। आइए सुनते हैं श्री रामचरित मानस गान। गायक कलाकार हैं भूपेंद्र सिंह और मिताली पी सिंह। संगीत है सतीश भाटिया का।

राजा जनक के यज्ञ में शिव जी के धनुष का टूटना सुनकर वहां भृगुकुल रूपी कमल के सूर्य परशुराम का आगमन हुआ, जिन्हें देखकर उपस्थित राजाओं के समुदाय में हलचल मच गई। फिर सब कुछ देख जानते हुए भी अनजान की तरह परशुराम ने जनक जी से पूछा, ये भारी भीड़ कैसी है? सीता स्वयंवर का समाचार सुन मुनि ने जो दूसरी ओर देखा तो शिव जी के धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े दिखाई दिए। ये दृश्य देख परशुराम का क्रोध चरम सीमा पर पहुंच गया। रे जड़ जनक, बता धनुष किसने तोड़ा? उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट कर रख दूंगा। सभा में आतंक छा गया, किसी को उत्तर देते ना बना। ये देख श्री राम ने निवेदन किया, हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरितमानस गान। गायक कलाकार थे भूपेंद्र सिंह और मिताली बी सिंह। संगीत था सतीश भाटिया का। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, अब समय है कार्यक्रम खेती की बातें का। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं।

0: गाय के गोबर एवं मूत्र का महत्व विषय पर डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता।
1: पंचगव्य आयुर्वेद चिकित्सा में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, जिसका तात्पर्य गाय से प्राप्त पांच द्रव्यों का मिश्रण है, जैसे गाय का दूध, दही, घी, मूत्र एवं गोबर। ऐसा माना जाता है कि मात्र गाय के गोबर एवं मूत्र के सेवन से शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक विकार भी दूर होते हैं तथा आयु, बलव एवं ओज में वृद्धि होती है। इसके नियमित सेवन से शरीर में व्याप्त मंद विष समाप्त हो जाते हैं। विभिन्न प्रकार के व्यसनों एवं पर्यावरण प्रदूषणों से प्रभावित शरीर पर यह अद्भुत चमत्कार प्रभावकारी है। बिगड़े स्वास्थ्य एवं रोग प्रतिरोधी क्षमता को यह ठीक करता है। तंबाकू, मंदिरा आदि के सेवन से शरीर को जो क्षति होती है, उसे भी गाय के गोबर एवं मूत्र से ठीक किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पशुपालक भाई गाय के गोबर एवं मूत्र का इस प्रकार लाभ उठा सकते हैं। गौमय गोबर के रस को कहते हैं। गाय के गोबर को बारीक सूती कपड़े से छानकर गौमय रस प्राप्त किया जा सकता है। यह कसैला एवं कड़वा होता है एवं कफ जन्य रोगों में प्रभावशाली है। इसे अनेक त्वचा रोगों में प्रयोग किया जाता है। इसे मुहासे दूर करने तथा चेहरे पर कांति बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जाता है। गौमय रस एवं गौमूत्र को मिलाकर बनाया गया मालिश तेल वात व्याधि में उपयोगी है, जिसे जोड़ों के दर्द, गर्दन दर्द, सियाटिका, स्पॉन्डिलाइसिस आदि रोगों में प्रभावकारी पाया गया है। यह तेल शरीर की मांसपेशियों को पुष्ट करता है। गौमय रस के साथ गेरू तथा मुल्तानी मिट्टी व नीम के पत्तों को मिलाकर नहाने का साबुन बनाया जाता है, जो विभिन्न प्रकार के त्वचा रोगों तथा खाज, खुजली, दाद, बालों की रूसी आदि में लाभकारी है। इसे त्वचा की झुर्रियां दूर करने तथा चेहरे को कांतिमय बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इससे बना दंत मंजन दांतों में कीड़ा नहीं लगने देता तथा पायरिया की शिकायत ठीक करता है। यह मंजन मुख की दुर्गंध दूर करता है तथा छालों में आराम देता है। नेडप कंपोस्ट। इस विधि के लिए पशुपालक भाई समतल सतह पर ईंटों का ढांचा, जिसका आकार 3.5 मीटर लंबा, 2 मीटर चौड़ा तथा 1 मीटर ऊंचा हो, इस प्रकार से ईंटों का ढांचा बनाया जाता है। इसे सीमेंट या चूने से इस प्रकार जोड़ा जाता है कि ढांचे में वायु संचार हेतु पर्याप्त छेद हों। ईंट की पहली तथा अंतिम दो पंक्तियों में किसी प्रकार का कोई छेद नहीं होता है। ढांचा तैयार होने पर इसकी सतह व अंदर की दीवारों पर गाय के गोबर एवं मिट्टी के मिश्रण से लीपा जाता है। इस विधि द्वारा कंपोस्ट तैयार करने हेतु फसलों के डंठल, छाल, जड़, गाय के गोबर, पानी एवं मिट्टी की आवश्यकता पड़ती है। ढांचे को भरने हेतु अधोसतह पर लगभग 200 किलो कचरे की तह लगाकर तथा दूसरी सतह पर 150 किलो गाय का गोबर डालकर पानी का छिड़काव करने के पश्चात यह प्रक्रिया ढांचा के भरने तक दोहराई जाती है। ढांचे के ऊपरी हिस्से को इस प्रकार बनाया जाता है कि वह झोपड़ी नुमा हो, जिससे किसी भी प्रकार का पानी ढांचे के ऊपर टिक ना सके। कंपोस्ट की गुणवत्ता बढ़ाने हेतु एक हल्की तह रॉ फॉस्फेट या सिंगल सुपर फॉस्फेट की बिछाई जाती है तथा बांस की सहायता से इसमें छेद करके इसमें 500 ग्राम PSB, 500 ग्राम एजोटोबैक्टर, 500 ग्राम राइजोबियम कल्चर को 23 लीटर पानी में घोलकर इन छेदों में डाला जाता है। इस विधि के द्वारा 90 से 110 दिन में कंपोस्ट बनकर तैयार हो जाता है, जिसकी साधारण खाद की अपेक्षा 25 गुना गुणवत्ता अधिक होती है। CPP काऊ पेट पिट। इस विधि के अंतर्गत 3 फीट लंबा, 2 फीट चौड़ा तथा 1.5 फीट गहरा जमीन में गड्ढा बनाया जाता है, जिसमें गाय के ताजे गोबर अधिकतम 24 घंटे पुराना लगभग 60 किलो लिया जाता है। इसके साथ ही मुर्गी के 250 ग्राम अंडे के छिलके, बेसाल्ट या वेंटोनाइट 250 ग्राम, जूट या

हैबिटेट का बोरा तथा बायोडायनेमिक प्रिपरेशंस 502 से 507 तक 1-1 ग्राम ली जाती हैं। इस विधि से 3 माह में ही गैर रासायनिक खाद तैयार हो जाती है। इस खाद को 500 ग्राम प्रति एकड़ की दर से प्रयोग किया जाता है, जिसका प्रयोग मिट्टी में बुवाई से पहले फसलों पर, बागानों में बीज शोधन एवं नर्सरी विकास में किया जाता है। गौमूत्र, गौमूत्र तीखा व कड़वा होता है जो क्षारयुक्त है। गौमूत्र में कार्बोलिक एसिड होने से उसकी स्वच्छता और पवित्रता बढ़ती है। इसमें फॉस्फेट, पोटाश, लवण, नाइट्रोजन, यूरिक एसिड, हार्मोन, साइटोकाइंस व जीवाणु एवं विषाणु नाशक तत्व पाए जाते हैं। यह लघु अग्निदीपक, मेघकारक, पित्तकारक तथा कफ एवं वातनाशक है। यह भूख बढ़ाता है।

0: हार्मोन, साइटोकाइंस व जीवाणु एवं विषाणु नाशक तत्व पाए जाते हैं। यह लघु अग्निदीपक, मेघकारक, पित्तकारक तथा कफ एवं वातनाशक है। यह भूख बढ़ाता है। यह शूल, उदर रोग तथा कब्ज को दूर करता है। इसका उपयोग प्राकृतिक चिकित्सा में पंचकर्म क्रियाएं यथा व्रण, धावरणार्थ, स्वेदनार्थ, विरेचनार्थ तथा निरुवस्थि में एवं विभिन्न प्रकार के लेपों में होता है। आयुर्वेद में कई प्रकार की औषधियां गौमूत्र से ही बनाई जाती हैं। गौमूत्र के द्वारा कई प्रकार के चूर्ण जैसे कफनाशक चूर्ण, वातनाशक चूर्ण एवं मोटापा नाशक चूर्ण आदि कई प्रकार के चूर्ण बनाए जाते हैं। इसके अतिरिक्त आयुर्वेद जन औषधियों का शोधन गौमूत्र में ही किया जाता है तथा कुछ औषधियों का सेवन गौमूत्र के साथ करने की सलाह भी दी जाती है। गैर रासायनिक कीटनाशक निर्माण। इसके अंतर्गत पशुपालक भाई लगभग 10 से 12 किलो गाय का मूत्र एक घड़े में भर लें तथा उसमें 4 से 6 किलो नीम की पत्ती डाल दें तथा उसमें एक तांबे का छोटा सा टुकड़ा डाल दें तथा इस घड़े को 3 माह के लिए 1 फीट जमीन के अंदर गाड़ दें। 3 माह के पश्चात घड़े को निकालकर उसे इतनी देर तक गर्म करें कि उसमें उपलब्ध पानी की मात्रा या गौमूत्र की मात्रा 1/3 रह जाए। शेष मात्रा को 100 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से मिलाकर फसलों पर छिड़काव किया जाता है। इस छिड़काव से काफ़ी बेहतरीन नतीजे प्राप्त हुए हैं तथा फसल पर किसी भी कीटनाशक के छिड़काव की आवश्यकता नहीं पड़ती है।
1: अभी आप सुन रहे थे गाय के गोबर एवं मूत्र का महत्व विषय पर डॉक्टर एस के सिंह की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम खेती की बातें अब यहीं संपन्न होता है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स एवं न्यूज ऑन एयर मोबाइल ऐप पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, सुबह के 6:55 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण। कृपया प्रतीक्षा कीजिए।

0: सांस्कृतिक युवकेन्द्रस्य विवेकस्मारकस्य उद्घाटनानन्तरम् एतद् अवदत्। प्रधानमन्त्री अवदत् यत् स्वामी विवेकानन्दस्य विचाराः युवकानां सशक्तिकरणं राष्ट्रनिर्माणं च प्रोत्साहयन्ति। उज्बेकिस्तानस्य विदेशमन्त्री सईदोव बख्तियार ओदिलोविच इत्येषः अद्यारभ्य अस्य मासस्य पञ्चदिनाङ्कपर्यन्तं भारतस्य आधिकारिकयात्रायां भविष्यति। विदेशमन्त्रालयानुसारं स्वयात्रावधौ असौ राष्ट्रपति पदासीनया द्रौपदी मुर्मू वर्यया सह शिष्टाचारोपसङ्गमार्थं मेलिष्यति। सहैव विदेशमन्त्रिणा डॉक्टर एस जयशंकरेण सह अपि वार्तालापं करिष्यति। सह नवदिल्ल्याम् आयोजिते वाणिज्य मञ्चे अपि भागं ग्रहीष्यति। केन्द्रप्रशासनेन करविभागान्तर्गतम् अतिरिक्त अंशभागत्वेन राज्यसर्वकारेभ्यः 19,99,00,000,000,000 रूप्यकाणि वितरितानि। वित्तमन्त्रालयेन एकस्मिन् वक्तव्ये प्रोक्तं यत् अस्य अतिरिक्तांशभागस्य उद्देश्यं राज्येभ्यः द्रव्यगतविकासव्ययं वर्धयितुम् अवसरं प्रदानम् इत्यस्ति। मन्त्रालयपक्षतः निस्सारितस्य राज्यक्रमस्य विवरणानुसारं उत्तरप्रदेशः सर्वाधिकम् 18,200,000,000,000 रूप्यकाणि अलभत। तदनन्तरं बिहारराज्यं 45,800,000,000 रूप्यकाणि अथ च मध्यप्रदेशराज्यं 10,800,000,000 रूप्यकाणि प्राप्नोत्। पश्चिमबंगालराज्यं 66,800,000,000 रूप्यकाणि महाराष्ट्रराज्यं च 22,700,000,000 रूप्यकाणि अलभत। ग्लास्गो नगरे प्रवर्तमानासु राष्ट्रमंडल क्रीडासु भारतम् 41 पदकैः सह पदकतालिकायां चतुर्थस्थानम् अधिगतवत्। भारतस्य पदकतालिकायाम् अधुना 13 स्वर्णपदकानि 17 रजतपदकानि 9 कांस्यपदकानि च सन्ति। भारतस्य नूतनपदकं 5,000 मीटरमितायां धावनस्पर्धायां गुलवीरसिंहेन प्राप्तं कांस्यपदकम् अस्ति। मुष्टामुष्टिस्पर्धासु भारतेन उत्कृष्टं प्रदर्शनं कृतं, यत्र 7 स्वर्णपदकानि तथा 3 रजतपदकानि प्राप्तानि। पैरा एथलेटिक्स इत्येतस्मिन्नपि भारतेन ऐतिहासिकी उपलब्धिः सम्प्राप्ता। पुरुषाणां शॉट्पुट एफ 57 इत्येतस्यां स्पर्धायां सोमन राणा स्वर्णपदकं, शुभम जुयालः च रजतपदकं प्राप्तवान्। भारतर्तु विज्ञान विभागेन अद्य कर्नाटक, केरल, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उपहिमालयीय पश्चिम बंगाल, सिक्किमेषु अतिवृष्ट्यै नारंगवर्णीया संचेतना प्रसारिता। तथैव दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य प्रदेश, ओडिशा, अंडमान निकोबार द्वीप समूहेषु अपि अतिवृष्टिः व्यक्तीकृता इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले इस अभियान में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। एक रिपोर्ट।
2: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: केंद्र सरकार ने राज्य को कर हस्तांतरण की अतिरिक्त किश्त के रूप में 1,00,000

0: 9,019 करोड़ रुपए जारी किए हैं। ये राशि 10 अगस्त को होने वाले नियमित मासिक हस्तांतरण के अतिरिक्त है। वित्त मंत्रालय ने बताया कि इस अतिरिक्त किस्त का उद्देश्य राज्यों को पूंजीगत और विकास कार्यों पर खर्च बढ़ाने के लिए अधिक धन उपलब्ध कराना है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की समीक्षा की है। कल बैठक के दौरान परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया गया। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सदो बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। उनका दिल्ली में एक बिजनेस फोरम में शामिल होने का भी कार्यक्रम है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। पेरू में एक पर्यटक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से 13 लोगों की मौत हो गई। विमान में सवार पर्यटक प्रसिद्ध नाजका लाइंस को देखने के लिए हवाई यात्रा कर रहे थे। ये प्राचीन भू आकृतियां हैं जिन्हें पेरू के मूल निवासियों ने सदियों पहले रेगिस्तान में बनाया था। ये विमान पेरू की एयरलाइन एरोडियाना द्वारा संचालित किया जा रहा था और इसने पास के शहर इका से उड़ान भरी थी। फिलहाल हादसे के कारणों की जाँच की जा रही है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदकों सहित कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारतीय मुक्केबाज जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, प्रिया घंगांस, अरुंधति चौधरी, सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने अपने अपने फाइनल मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करते हुए स्वर्ण पदक जीते। हालांकि भारत की लवलीना बोरगोहन को रजत पदक से संतोष करना पड़ा। भारतीय मुक्केबाज सचिन सिवाच ने भी पुरुष 60 किलोग्राम भार वर्ग के फाइनल में नामीबिया के टाइग्रेन मॉर्निंग ड्वेलो को हराकर स्वर्ण पदक जीता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बेहतरीन प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि खिलाड़ियों की प्रतिबद्धता और निरंतरता उनकी सफलता से स्पष्ट हो रही है। मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरला, माहे, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, राजस्थान, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, गुजरात, कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, उड़ीसा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेप बाय शगुन चोपड़ा। Prime Minister Narendra Modi will launch the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the program. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 partner spiritual organizations will also join the program virtually. Under the program, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. Prime Minister Narendra Modi has credited Indian youth for achieving progress in the area of science, technology and sports and called upon them to contribute in the areas of cleanliness drive, conservation of water and natural resources and gift Indian artifacts. He was speaking after inaugurating the Swami Vivekanand Cultural Youth Center Vivek Smarak in Mysuru yesterday. The Prime Minister emphasized that Swami Vivekanand's vision was to mentor our youth and empower them to work for nation building.
2: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं के

0: शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
1: The Union Government has released 1,09,019 crore rupees to state governments as an additional installment of tax devolution over and above the regular monthly transfer scheduled for August 10. In a statement, the Finance Ministry said the additional installment is intended to give states more room to speed up capital and development spending. The states include Uttar Pradesh, which received the largest share at 19,208 crore rupees, followed by Bihar, Madhya Pradesh, West Bengal, Maharashtra, Sikkim, Goa and Nagaland. Union Minister for Health and Family Welfare Jagat Prakash Nadda has reviewed the preparedness for the National Eligibility Cum Entrance Test for Postgraduate NEET PG 2026 to ensure the smooth, secure, transparent and technology-enabled conduct of the examination. The exam is scheduled to be held on 38th of this month. During the meeting, the minister assessed the preparedness of the National Board of Examinations in Medical Sciences, technology partners and other stakeholders involved in conducting the examination. Telangana police have rescued 6,307 children in a month-long special drive called Operation Muskan 12, aimed at ending child labour and child trafficking across the state. The operation ran from July 1st to 31st. Women's Safety Wing Director Charu Sinha said it was led by her department, working together with the Women and Child Welfare Department, Labour Department, Health Department, Child Welfare Committees, District Child Protection Units and voluntary organisations. United States President Donald Trump has threatened to intensify military action against Iran, warning that American strikes will continue until Tehran halts attacks on shipping and returns to negotiations. The U.S. State Department has issued a fresh security advisory urging Americans in the West Asia to consider leaving the region or be prepared to depart if the conflict worsens. The renewed tensions also spilled into Gaza and Lebanon, with Israel carrying out fresh strikes despite Hamas announcing it was prepared to disarm under a U.S.-backed ceasefire framework. Meanwhile, Iran has warned that it is ready to strike key Israeli infrastructure and American energy facilities across the West Asia if it comes under attack. India climbed to fourth place in the Commonwealth Games medal standings in Glasgow with a total of 39 medals, including 13 gold, 17 silver and 9 bronze. The latest came from 5,000-meter race where India's Gulveer Singh bagged bronze. And that is the end of this news bulletin.
2: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 7:10 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा। कार्यक्रम में आइए सुनते हैं गले के रोग और उनका उपचार विषय पर डॉक्टर सत्यमित्र की वार्ता।
3: गले के रोगों के विषय में चर्चा करने से पूर्व यह जानना आवश्यक है कि हमारा गला कैसा होता है। गले की बनावट देखते हुए हम इसे तीन भागों में बांटते हैं, ऊपरी, निचला और बीच का। ऊपरी भाग वह है जो नासिका गुहा के पीछे स्थित होता है। दोनों नासिका गुहाएं अंतःनासा छिद्रों से इस भाग में खुलती हैं। इसी भाग में कर्ण कंठ नली भी खुलती है, जिसका संबंध कान से होता है। इसके नीचे बीच का भाग होता है जो मुंह खोलने पर सामने दिखाई देता है। इसमें ऊपर से लटकता हुआ काग दिखाई देता है। दोनों तरफ दो गड्ढे होते हैं जिनमें टॉन्सिल अगर बढ़े हुए हों तो दिखाई देते हैं। तीसरा भाग नीचे का होता है, जहां से श्वास प्रणाली और भोजन प्रणाली अलग अलग शुरू होती हैं। श्वास प्रणाली के सबसे ऊपर का भाग स्वर यंत्र कहलाता है, जहां से आवाज निकलती है। गले के रोगों में

0: सबसे सामान्य गला खराब होना या सोर थ्रोट और टॉन्सिल की बीमारियां हैं। गले की खराश या सोर थ्रोट प्रायः वायरस जनित और कभी-कभी जीवाणु जनित या एलर्जी के कारण भी होता है। इससे परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। गले में स्थित टॉन्सिल मुख व गले के विकारों में अग्रिम रक्षा पंक्ति माने जाते हैं, जो इन विकारों में बढ़कर फूल जाते हैं या सूज जाते हैं और तुरंत इलाज की सूचना देते हैं। टॉन्सिल का बढ़ना, सूजना या पक जाना एक सामान्य बीमारी तो है, परंतु उतना ही सरल है उसका नियंत्रण भी। शिशु जन्म से लेकर किशोरावस्था तक इसकी सुरक्षा बहुत आवश्यक है और सरल भी है। छोटे शिशुओं को दूध पिलाते समय सिर धड़ से कुछ ऊंचाई पर रखें, उसके ऊपर उन्हें थोड़ा पानी अवश्य पिला दें। बड़े शिशुओं को दूध पिलाने के बाद कुल्ला या गरारे अवश्य कराएं। बड़े बच्चे स्वयं यह ध्यान रखें कि दूध आदि पीने के बाद, मिठाई आदि खाने के बाद कुल्ला करके मुंह साफ कर लें। आशय यह है कि मुंह में खाद्य पदार्थ के कण पड़े न रह जाएं। यदि ये कण पड़े रहेंगे तो जीवाणु सक्रिय होंगे और उन्हें भोजन मिलेगा, फलतः गला खराब होगा, खराश, टॉन्सिलाइटिस आदि होगा। बार बार टॉन्सिल की बीमारी होने से ये आकार में बढ़ते जाते हैं और कभी कभी इनका आकार इतना बड़ा हो जाता है कि खाना निगलने और सांस लेने में कष्ट होने लगता है। इस अवस्था में टॉन्सिलों को निकालने का ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज बचता है। गले में काग के पीछे एक और रचना पाई जाती है, जो शिशु के विकास के साथ किशोरावस्था आते आते स्वतः समाप्त हो जाती है। इन्हें अंदरूनी टॉन्सिल या एडिनोइड कहते हैं। गले व नाक के विकारों में ये भी बढ़ जाते हैं या सूज जाते हैं, जिससे नाक से गले का मार्ग अवरुद्ध हो सकता है और सांस लेने में परेशानी होती है तथा शिशु मुंह खोलकर सांस लेता है। लगातार एडिनोइड या टॉन्सिल का कष्ट रहे और शिशु मुंह खोलकर सांस ले तो आगे के दांत और होठ आगे की ओर उभर आते हैं, चेहरा बुरा लगता है। मुंह और गले की नियमित सफाई और बार बार मुंह झुठाने की आदत छोड़ने से और तुरंत विकार का उपचार करने से बचा जा सकता है। आवाज बैठना या गला बैठना स्वर यंत्र वाले भाग का कष्ट है, जिसे उपचार द्वारा शीघ्र ठीक किया जा सकता है। गर्म पानी में नमक डालकर गरारे करना गले के विकारों में लाभप्रद होता है। नाक द्वारा भाप लेना भी गला पड़ जाने पर या आवाज बैठने में हितकर होता है। जल नेति एक योग क्रिया है जो गले व नाक की अनेक बीमारियों को हमसे दूर रख सकती है।
1: अभी आप सुन रहे थे गले के रोग और उनका उपचार विषय पर डॉक्टर सत्यमित्र की वार्ता। इसी के साथ ही कार्यक्रम स्वास्थ्य चर्चा यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब सुनते हैं संवेद स्वर में ये देश गान।

0: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। श्रोताओं, इस समय सुबह के 7:18 होने को हैं। थोड़ी ही देर में आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।
1: प्रदूषण पर प्रतिबंध लगाएं, पर्यावरण को हम सब बचाएं। स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है प्रदूषण, इसका परिणाम होता है भीषण। प्रदूषण के हैं कई कारण, धुआं, कचरा इत्यादि उदाहरण। देश को प्रदूषण मुक्त बनाएं, मन में ये संकल्प बनाएं।
2: तब तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा 3 आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा। सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन 3 आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो। सुभाष चंद्र बोस।
2: असली शिक्षा एक इंसान की गरिमा को बढ़ाती है, उसके स्वाभिमान में वृद्धि करती है। यदि हर इंसान द्वारा शिक्षा के वास्तविक अर्थ को समझ लिया जाता और उसे मानव गतिविधि के प्रत्येक क्षेत्र में आगे बढ़ाया जाता तो यह दुनिया रहने के लिए कहीं अच्छी जगह होती। APJ अब्दुल कलाम।
1: बढ़ते हुए या धुएं से है सब परेशान, शुद्ध वायु दुर्लभ, खतरे में है मनुष्य की जान। कूड़ा और प्लास्टिक जो लोग जलाएं, प्रदूषण के कारण बन जाएं, सांस लेने में तकलीफ आए, आरोग्य को हानि पहुंचाएं।
3: आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार।

नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। कल से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र। मंगलवार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 के लिए कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मेरठ में 12 अगस्त और मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कल 7 मुक्केबाजों सहित 8 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने समुदायों में सकारात्मक

0: सामाजिक परिवर्तन के दूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। एक रिपोर्ट।
1: नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के शुभारंभ के साथ ही मादक पदार्थों के सेवन के विरुद्ध 100 सप्ताह तक चलने वाले राष्ट्रव्यापी जन भागीदारी अभियान की शुरुआत होगी। इस अभियान के तहत नशा मुक्त समाज के निर्माण में जागरूकता बढ़ाने और जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। इन गतिविधियों में खेलों का आयोजन, वाकाथन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, चर्चा मंच, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक भागीदारी कार्यक्रम होंगे। इस कार्यक्रम में देश भर के 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे। समाचार कक्ष से रितेश।
0: प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र कल से शुरू होगा। सत्र के दौरान मंगलवार को प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी। सत्र संचालन को लेकर आज दोपहर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में सर्वदलीय बैठक होगी। इस बैठक से पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कार्य मंत्रणा समिति की बैठक बुलाई है। मॉनसून सत्र 6 अगस्त तक चलने की उम्मीद है। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कल सिद्धार्थनगर के कपिलवस्तु स्थित सिद्धार्थ विश्वविद्यालय में बुद्धा थीम पार्क का लोकार्पण किया। उन्होंने कपिलवस्तु बुद्ध स्तूप में लाइट एंड साउंड शो का भी शुभारंभ किया। श्री पुरी ने कहा कि यह थीम पार्क भगवान बुद्ध की शांति, करुणा और मानव कल्याण के कालजयी संदेश को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का एक सशक्त माध्यम बनेगा। कार्यक्रम में स्थानीय सांसद जगदम्बिका पाल ने केंद्रीय मंत्री का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत में श्री पुरी ने केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा कल स्वीकृत की गई पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की राष्ट्रीय अपतटीय अन्वेषण योजना को क्रांतिकारी बताया।
2: एक्सप्लोरेशन और प्रोडक्शन सेक्टर के लिए मंत्रिमंडल ने 84,000 करोड़ का एक योजना अप्रूव की है। इसके तहत 4 साल में डेटा कलेक्शन, डीप वाटर ड्रिलिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में होगा। इस योजना के साथ आने वाले समय में हम 1,00,000 करोड़ को प्रतिवर्ष बचा पाएंगे।
0: तेल विपणन कंपनियों ने कल 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक एलपीजी सिलेंडर की कीमतें लगभग 200 रुपए कम कर दी हैं। इस फैसले से रेस्टोरेंट, ढाबे, होटल और खाने पीने के कारोबार से जुड़े लोगों को राहत मिलेगी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत रूफ टॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना में उत्तर प्रदेश ने देश के शीर्ष 100 जनपदों की सूची में अपने 17 जनपदों को शामिल कराया है। सूची में लखनऊ ने पहला स्थान हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
3: यूपी मेगा डायरेक्टर रविंद्र सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 का विज्ञापन जारी कर दिया है। पीईटी 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन कल से शुरू होंगे और 1 सितंबर तक किए जा सकेंगे। आयोग के दायरे में आने वाली समूह ग की सभी भर्तियों के लिए पीईटी अनिवार्य होगी। पीईटी का स्कोर 3 वर्ष यानी वर्ष 2028 तक मान्य रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे YouTube चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। सावन माह में राज्य के सभी शिव मंदिरों में दर्शन पूजन और जलाभिषेक के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। इस बीच सावन के पहले सोमवार पर कल प्रदेश भर के प्रमुख शिवालयों में उमड़ने वाली कांवड़ यात्रियों की अत्यधिक संख्या को देखते हुए सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। प्रदेश के कई जिलों में आज से लेकर कल तक कई मार्गों पर वाहनों के आवागमन पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया गया है। कांवड़ यात्रा को देखते हुए मेरठ में कल से 12 अगस्त तक कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक के विद्यालय बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। मुजफ्फरनगर में भी 10 अगस्त तक सभी विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। कांवड़ यात्रा से संबंधित

0: संबंधित जिलों में स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट मोड पर है। अयोध्या में श्रीराम जन्मभूमि मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा मामले को लेकर संसद परिसर में नाटक करने पर लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, सांसद पप्पू यादव और अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद के खिलाफ वाराणसी में कल मुकदमा दर्ज किया गया। काशी जोन के पुलिस उपायुक्त गौरव बंसवाल ने बताया कि संतों की तहरीर पर सनातन धर्म का अपमान करने के आरोप में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कल अयोध्या में श्रीराम लला का दर्शन पूजन किया। दर्शन के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने श्रीराम जन्मभूमि मंदिर चढ़ावा मामले पर कहा कि इस पूरे प्रकरण की जांच एसआईटी कर रही है। उन्होंने कहा कि जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त कार्यवाही की जाएगी।
1: जो तथ्य सामने आए हैं उन तथ्यों के आधार के ऊपर जो लोग प्रथम दृष्टया दोषी पाए गए थे उनको सजा हुई वो जेल में, बाकी जो एसआईटी की रिपोर्ट आएगी, एसआईटी की रिपोर्ट माननीय मंत्री जी स्वयं उसके हम सब लोग चिंतित हैं, उसकी जो भी रिपोर्ट आएगी जो उसमें दोषी हुए उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।
0: नीति आयोग के उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार लाहिड़ी ने कल वाराणसी में विंध्य आर्थिक क्षेत्र के 7 जनपदों के सुनियोजित विकास की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को वर्ष 2030 के लक्ष्यों की समयबद्ध प्राप्ति के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विकास योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए और इसके लिए तकनीक आधारित निगरानी तथा डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को और मजबूत बनाया जाए। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में कल भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन कर पदक तालिका में देश को चौथे स्थान पर पहुंचा दिया है। भारत के 8 खिलाड़ियों ने कल स्वर्ण पदक जीते। मुक्केबाजी प्रतियोगिता में जैस्मिन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, साक्षी चौधरी, अरुंधति चौधरी, प्रिया खड़गस, सचिन सिवाच, अंकुश पंघाल और पैरा एथलीट सोमन राणा ने गोला फेंक स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर देश के कुल स्वर्ण पदकों की संख्या 13 पर पहुंचा दी। मौसम विभाग ने प्रदेश में आज से अगले 4 दिनों तक मानसूनी सक्रियता में वृद्धि का अनुमान जताया है। विभाग ने 5 अगस्त तक राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने का अनुमान है। इस बीच प्रदेश में कई नदियों के जलस्तर में वृद्धि हुई है। बदायूं और फर्रुखाबाद में गंगा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का करेंगे शुभारंभ। 100 सप्ताह तक चलेगा राष्ट्रव्यापी अभियान। कल से शुरू होगा प्रदेश विधानमंडल का मॉनसून सत्र। मंगलवार को अनुपूरक बजट प्रस्तुत करेगी प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 के लिए कल से शुरू होंगे ऑनलाइन आवेदन। कांवड़ यात्रा को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा और यातायात प्रबंधन के व्यापक इंतजाम। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत मेरठ में 12 अगस्त और मुजफ्फरनगर में 10 अगस्त तक बंद रहेंगे विद्यालय। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में भारतीय खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन। कल 7 मुक्केबाजों सहित 8 खिलाड़ियों ने जीते स्वर्ण पदक। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला समाचार अब से थोड़ी देर बाद सुबह 8 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।

0: तक लड़ना मत छोड़ो जब तक अपनी तय की हुई जगह तक न पहुंच जाओ। यही अद्वितीय तुम हो। जिंदगी में एक लक्ष्य रखो, लगातार ज्ञान प्राप्त करो, कड़ी मेहनत करो और महान जीवन को प्राप्त करने के लिए दृढ़ रहो। APJ अब्दुल कलाम। असंतुष्ट व्यक्ति के लिए सभी कर्तव्य नीरस होते हैं। उसे तो कभी भी किसी वस्तु से संतोष नहीं होता, फलस्वरूप उसका जीवन असफल होना स्वाभाविक है। स्वामी विवेकानंद।
1: एक सैनिक के रूप में आपको हमेशा तीन आदर्शों को संजोना और उन पर जीना होगा, सच्चाई, कर्तव्य और बलिदान। जो सिपाही हमेशा अपने देश के प्रति वफादार रहता है, जो हमेशा अपना जीवन बलिदान करने को तैयार रहता है, वो अजेय है। अगर तुम भी अजेय बनना चाहते हो तो इन तीनों आदर्शों को अपने हृदय में समाहित कर लो।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, सुबह के 7:31 हो चुके हैं। प्रस्तुत है आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास। श्रोताओं, कार्यक्रम में सबसे पहले कुछ खोए हुए व्यक्तियों की सूचना सुन लीजिए। थाना कमलानगर आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम राजकुमार पुत्र मान सिंह है। ये विगत 1 जून 2026 से लापता है। राजकुमार मकान नंबर 32/165 सी लाल मस्जिद बल्केश्वर कमलानगर कमिश्नरेट आगरा के रहने वाले हैं। राजकुमार की आयु 30 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा पतला है। ये काले रंग की जीन्स पैंट हल्के आसमानी रंग की शर्ट पहने हुए हैं। राजकुमार के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना कमलानगर जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। थाना रकाबगंज आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार खोए हुए व्यक्ति का नाम राजू पुत्र बाबूलाल है। ये विगत 25 दिसंबर 2025 से लापता हैं। ये ईदगाह कटखर थाना रकाबगंज आगरा के रहने वाले हैं। राजू की आयु 50 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट 2 इंच, रंग गेहुआ और चेहरा गोल है। ये लोअर टी शर्ट व काले रंग की चप्पल पहने हुए हैं। राजू के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना रकाबगंज जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। थाना बरहन आगरा से प्राप्त सूचना के अनुसार आरती देवी पुत्री वीरेंद्र सिंह विगत 31 मार्च 2026 से लापता हैं। ये ग्राम नगला पचौरी थाना बरहन आगरा की रहने वाली हैं। आरती देवी की आयु 34 वर्ष, ऊंचाई 5 फुट, रंग गेहुआ और चेहरा सामान्य है। ये पीले रंग की साड़ी पहने हुए हैं। आरती देवी के बारे में कोई भी सूचना मिलने पर कृपया थाना बरहन जनपद आगरा के पते पर सूचित करें। खोए हुए व्यक्तियों की सूचना समाप्त हुई।

आसपास की गतिविधियों पर आधारित सूचना परक कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। श्रोताओं, श्रावण मास शुरू हो चुका है और इस समय पूरी ताज नगरी भोलेनाथ की भक्ति में डूबी हुई है। सावन के पवित्र माह में ताज नगरी के प्रमुख शिवालय भक्तिमय माहौल से सराबोर हो गए हैं। राजेश्वर महादेव, कैलाश महादेव, बल्केश्वर महादेव, पृथ्वीनाथ महादेव और मनकामेश्वर महादेव मंदिरों में विशेष साज सज्जा की जा रही है। मंदिर परिसरों को रंग बिरंगी रोशनी, फूलों और आकर्षक सजावट से संवारा गया है। श्रद्धालुओं की बढ़ती भीड़ को देखते हुए सुरक्षा बैरिकेडिंग, पेयजल, सफाई, पार्किंग और यातायात की विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। सावन के सोमवार और कांवड़ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना को देखते हुए मंदिर समितियां और प्रशासन

तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। राजेश्वर मेले का शुभारंभ आज है। सावन के पहले सोमवार पर राजेश्वर महादेव मंदिर में लगने वाले ऐतिहासिक मेले का शुभारंभ रविवार को यानी आज से होगा। इससे पहले वह भगवान शिव का जलाभिषेक और विशेष पूजन किया जाएगा। इसके बाद धर्मध्वजा फहराकर और फीता काटकर मेले का विधिवत शुभारंभ होगा। मंदिर समिति और प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा तथा सुरक्षा के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। श्रोताओं, राजेश्वर मंदिर अपनी अनूठी मान्यता के कारण पूरे ब्रज क्षेत्र में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि मंदिर में स्थापित शिवलिंग दिन में 3 बार रंग बदलता है। प्रातःकाल यह सफेद, दोपहर में गुलाबी और संध्या आरती के समय सांवले यानी हल्के नीले रंग का दिखाई देता है। इस अद्भुत दृश्य के दर्शन के लिए सावन में दूर दूर से लाखों श्रद्धालु मंदिर पहुंचते हैं। इस मेले में झूले, खिलौनों की दुकानें, मिठाइयों, हस्तशिल्प व घरेलू सामान के स्टॉल लगे हैं। विभिन्न सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की ओर से कांवड़ियों और श्रद्धालुओं के लिए भंडारे, फलाहार व शुद्ध पेयजल की व्यवस्था की गई है। सावन के पहले सोमवार पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस व प्रशासन ने सुरक्षा, यातायात व भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर भी व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। श्रावण मास कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में लगने वाले मेलों की तैयारियों को लेकर नगर निगम ने व्यवस्थाएं तेज कर दी हैं। शनिवार को नगर आयुक्त ने अधिकारियों के साथ परिक्रमा मार्ग, बलकेश्वर मंदिर, यमुना घाटों और कैलाश मंदिर का निरीक्षण किया। नगर आयुक्त ने परिक्रमा मार्ग पर विशेष सफाई अभियान चलाने, पर्याप्त प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने और विभिन्न वन विभाग के समन्वय से सड़क किनारे पेड़ों की छटाई कराने को कहा है। यमुना घाटों पर उन्होंने पर्याप्त बैरिकेडिंग, फिसलन वाले स्थानों पर सुरक्षा उपाय, नियमित सफाई और बेहतर प्रकाश व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बलकेश्वर और कैलाश मंदिर में मंदिर प्रबंधन समिति एवं पुजारियों से बातचीत करके आवश्यकताओं की जानकारी ली। श्रोताओं, सूचनाओं का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये गीत।

श्रोताओ, कार्यक्रम आसपास आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए एक बार फिर चलते हैं आज की मुख्य सूचनाओं की ओर। 7 केंद्रों पर कल से आरआरबी की परीक्षा। रेलवे भर्ती बोर्ड आरआरबी की लेवल 1 भर्ती परीक्षा को लेकर आगरा मंडल ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। परीक्षा 3 से 25 अगस्त तक विभिन्न चरणों में आयोजित होंगी।

शहर में इसके लिए 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं, जहां परीक्षा कराने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। निगरानी के लिए 13 रेलवे अधिकारियों को समन्वयक के रूप में तैनात किया गया है। प्रत्येक केंद्र पर रेलवे अधिकारी परीक्षा की पूरी प्रक्रिया पर नजर रखेंगे। परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए रेलवे सुरक्षा बल के जवान तैनात रहेंगे। इसके अलावा अभ्यर्थियों की जांच, सहायता और परीक्षा संचालन के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। रेलवे अधिकारियों और कर्मचारियों को परीक्षा संबंधी सभी नियमों और आपात स्थिति से निपटने का प्रशिक्षण भी दिया जा चुका है। परीक्षा के दौरान यातायात और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस का भी सहयोग रहेगा। रेलवे प्रशासन ने अभी अभ्यर्थियों से कहा कि वे अपने ई कॉल लेटर में दिए गए सभी निर्देशों का पालन करें, समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें।

पीईटी के लिए कल से 1 सितंबर तक करें आवेदन। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग समूह ग के नए पदों पर भर्ती के लिए प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 आयोजित कराने जा रहा है। इसके लिए 3 अगस्त से 1 सितंबर तक आवेदन लिए जाएंगे। इसमें किसी तरह का संशोधन 8 सितंबर तक किया जा सकेगा। आयोग ने भविष्य में होने वाली भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों के लिए आधार प्रमाणीकरण अनिवार्य कर दिया है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर के बाद ही पीईटी 2026 के लिए आवेदन किया जा सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थी सुनिश्चित कर लें कि ओटीएस उनका त्रुटि रहित हो। अभ्यर्थी ओटीआर में संशोधन करना चाहते हैं तो उन्हें पीईटी 2026 के आवेदन से पहले गलतियों को सही करना होगा। पीईटी 2026 पंजीकरण संख्या प्राप्त होने के बाद ओटीआर व पीईटी आवेदन में संशोधन नहीं होगा।

नीट पीजी केंद्र घर के पास होगा, कई विकल्प मिलेंगे। नीट पीजी को लेकर केंद्र सरकार ने कई बदलाव किए हैं। परीक्षा केंद्र के विकल्पों को बढ़ाया जाएगा और अभ्यर्थियों को उनके घर के पास केंद्र आवंटित किया जाएगा। इसके साथ ही अभ्यर्थियों को अपने परीक्षा शहरों तक यात्रा की योजना बनाने के लिए अधिक समय मिलेगा। परीक्षा में प्रति प्रश्न अधिक समय आवंटित किया जाएगा। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने शनिवार को नीट पीजी की तैयारियों की समीक्षा की। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार नई व्यवस्था के तहत अभ्यर्थी केंद्र के लिए 3 राज्यों की प्राथमिकता देंगे, जिसमें उनके पत्राचार का राज्य अनिवार्य रूप से पहली प्राथमिकता होगा। 30 अगस्त को होने वाली इस परीक्षा से लगभग 3 सप्ताह पहले आवंटित परीक्षा शहर की जानकारी दे दी जाएगी। NBEMS ने 180 प्रश्नों

यूक्रेन में खानपान पर 35% तक महंगाई संभव। खानपान की शिकायतों के मद्देनजर रेल मंत्रालय जल्द ही नई कैटरिंग पॉलिसी लागू कर सकता है। इससे यात्रियों को शुद्ध, ताजा और गुणवत्ता परक खाना मिलेगा, लेकिन खाने की थाली 30-35% तक महंगी हो सकती है। IRCTC की ओर से कैटरिंग दरों में बढ़ोतरी को लेकर रेलवे बोर्ड को पत्र लिखा है। इसमें कच्चे माल, LPG, परिवहन और मैन पावर की लागत में भारी उछाल का हवाला देकर दाम बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। सूत्रों के अनुसार बोर्ड ने इस पर अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। इसके साथ ही कैटरिंग में परिवर्तन करने के लिए नई नीति का मसौदा भी तैयार कर लिया गया है। एक अधिकारी ने बताया कि नई नीति के लागू होने से ट्रेन और स्टेशन पर भोजन पानी महंगा होगा। वर्तमान में जो भोजन 80-90 रुपए में मिलता है, उसकी कीमत बढ़कर 110-120 हो जाएगी। 15 रुपए में मिलने वाली चाय कॉफी की दर बढ़ाकर 20 की जा रही है, जबकि नाश्ते की दरों में भी आनुपातिक बढ़ोतरी होगी। सूत्रों का कहना है कि ट्रेन से पेंट्री कारों को रेलवे चरणबद्ध तरीके से पूरी तरह खत्म करना चाहता है। रेलवे का तर्क है कि पेंट्री कारों में इलेक्ट्रिक कुकिंग उपकरण के इस्तेमाल से आग लगने का खतरा हमेशा बना रहता है। यात्रियों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए ट्रेन पूरी तरह से ई कैटरिंग और चुनिंदा रेलवे स्टेशनों पर स्थापित क्लस्टर बेस किचन पर निर्भर होंगी।

डाक अदालत 18 अगस्त को लगेगी। डाक सेवाओं से संबंधित शिकायतों के निस्तारण को डाक अदालत का आयोजन 18 अगस्त को होगा। डाक अदालत प्रातः 11:30 पर मंडलीय कार्यालय परिसर में स्थित प्रवर अधीक्षक के कार्यालय में होगी। अध्यक्षता प्रवर अधीक्षक द्वारा की जाएगी। डाक सेवाओं से संबंधित परिवादी अपने ऐसे परिवादों को जो पूर्व में संबंधित आगरा मंडल के किसी भी कार्यालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए हों लेकिन उनका निस्तारण न हुआ हो, ऐसे परिवाद 18 अगस्त को प्रवर अधीक्षक कार्यालय को प्रेषित कर सकते हैं। श्रोताओं, ये थी आज की मुख्य सूचनाएं और आइए अब आनंद लेते हैं इस गीत का।

श्रोताओ, इसी के साथ ही कार्यक्रम आसपास अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओ, सुबह के 8 बजने को हैं। कुछ ही क्षणों में आप सुनेंगे दिल्ली केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं जागृति शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील की। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की धमकी दी। ईरान की भी अमेरिका और इसराइल के प्रमुख ऊर्जा ठिकानों पर जवाबी कार्रवाई की चेतावनी। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। भारत के कुल पदकों की संख्या 39। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान की शुरुआत करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नशे की लत के खिलाफ 100 सप्ताह तक चलने वाले

0: इस अभियान में देश भर में 10,000 से अधिक स्थानों से युवा भाग लेंगे।
1: इस अभियान में माई भारत के स्वयंसेवक, राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक, युवा क्लब, स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, गैर सरकारी संगठन, उद्योग संगठनों के युवा प्रकोष्ठ और 125 से अधिक सहयोगी आध्यात्मिक संगठन भी वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। देश भर में प्रत्येक रविवार को साप्ताहिक गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा, जिनका उद्देश्य नशा मुक्त समाज के निर्माण के प्रति जागरूकता फैलाना और जन भागीदारी को बढ़ावा देना है। इन गतिविधियों में खेल प्रतियोगिताएं, वॉकाथॉन, ध्यान सत्र, सांस्कृतिक कार्यक्रम, जन जागरूकता अभियान, नुक्कड़ नाटक, परिचर्चाएं, कला प्रतियोगिताएं और सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रम शामिल होंगे। इस पहल का उद्देश्य युवाओं को नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करना और उन्हें अपने अपने समुदायों में सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन का अग्रदूत बनने के लिए प्रोत्साहित करना है। सौम्या के साथ सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत के युवाओं ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और खेल सहित कई क्षेत्रों में देश को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। श्री मोदी ने कहा कि आज भारत के युवा विश्व के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप इकोसिस्टम आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया अभियान का नेतृत्व कर रहे हैं। कर्नाटक के मैसूरू में कल स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक युवा केंद्र विवेक स्मारक का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
2: अभी कुछ दिन पहले ही हमने देखा है, भारत के युवाओं ने अंतरिक्ष में कमाल कर दिया है। पहली बार युवाओं का बनाया हुआ एक प्राइवेट कंपनी का रॉकेट अंतरिक्ष तक पहुंचा है। आज कोई भी सेक्टर हो, भारत का युवा अपना दम खम दिखा रहा है। आज छोटे से छोटे व्यवसाय में लगा युवा भारत की डिजिटल इकोनॉमी को आगे बढ़ा रहा है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वामी विवेकानंद का सपना युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए तैयार करना था। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 12 वर्षों में सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़े बदलाव किए हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने राष्ट्रीय स्नातकोत्तर पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट पीजी 2026 की तैयारियों की कल समीक्षा की है। ये परीक्षा इस महीने की 30 तारीख को आयोजित की जाएगी। एक रिपोर्ट।
3: बैठक के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने परीक्षा के सुचारू, सुरक्षित, पारदर्शी और उन्नत प्रौद्योगिकी के माध्यम से संचालन सुनिश्चित किए जाने पर व्यापक विचार विमर्श किया। श्री नड्डा ने राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड NBEMS प्रौद्योगिकी भागीदारों और परीक्षा संचालन में शामिल अन्य हितधारकों की तैयारियों का आकलन किया। उन्हें परीक्षा व्यवस्था, उम्मीदवारों की सुविधा के उपाय, सुरक्षा ढांचा और नीट पीजी 2026 के लिए शुरू किए गए प्रौद्योगिकी आधारित उपायों के बारे में जानकारी दी गई। श्री नड्डा ने बात पर जोर दिया कि निष्पक्ष, पारदर्शी और उम्मीदवार हितैषी परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए, साथ ही सत्यनिष्ठा और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखा जाना चाहिए। श्री नड्डा ने उम्मीदवारों से कहा कि वे अफवाहों से दूर रहें और केवल NBEMS तथा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें। समाचार कक्ष से मैं चंद्रशेखर शर्मा।
0: तेलंगाना पुलिस ने एक माह के विशेष अभियान में बाल श्रम और मानव तस्करी से 6,000 से अधिक बच्चों को बचाया है। ऑपरेशन मुस्कान अभियान के अंतर्गत बाल मजदूरी के चंगुल से 6,307 बच्चों को बचाया गया। राज्य में बाल श्रम और बाल तस्करी को समाप्त करने के उद्देश्य से 1 जुलाई से 31 जुलाई तक विशेष अभियान चलाया गया। महिला सुरक्षा प्रभाग की निदेशक चारू सिन्हा ने बताया कि ये अभियान उनके विभाग के नेतृत्व में महिला और बाल कल्याण विभाग, श्रम विभाग, स्वास्थ्य विभाग, बाल कल्याण समितियों, जिला बाल संरक्षण इकाइयों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से चलाया गया। अभियान के दौरान पुलिस ने 1,705 मामले दर्ज किए और 1,710 लोगों को गिरफ्तार किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट्स बॉडीगार्ड सोल्जर्स थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर मिजोरम के राज्यपाल जनरल वीके सिंह भी उपस्थित थे। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की सोच से प्रेरित सोल्जर्स थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIR News Hindi को फॉलो कर सकते हैं।
2: एक प्रकार से
4: पीएम जय।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। गुजरात में मौसम विभाग ने आज 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि सौराष्ट्र क्षेत्र में कई स्थानों पर जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई है।
2: दक्षिण और मध्य गुजरात को सराबोर करने के बाद बारिश का रुख अब सौराष्ट्र की तरफ हो गया है, जिससे कई जिलों में भारी जलभराव हुआ है। मोरबी तालुका में पिछले 24 घंटों में सबसे अधिक बारिश दर्ज की गई। बारिश के चलते राज्य के 20 जलाशय छलक गए हैं, जबकि 30 बांधों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। राज्य की जीवन रेखा नर्मदा बांध लगभग 75% भर चुका है। राज्य में अब तक मौसम की औसत 64% बारिश दर्ज हो चुकी है। तेज हवाओं को देखते हुए मछुआरों को अगले 2 दिन तक समुद्र में न जाने की सलाह दी है। साथ ही राज्य के सभी बंदरगाहों पर 3 नंबर का चेतावनी सिग्नल लगाया गया है। अपर्णा खुंड, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: इस बीच ओडिशा में बाढ़ की स्थिति में धीरे धीरे सुधार हो रहा है, लेकिन महानदी बेसिन में नदियों का जलस्तर बढ़ने से निचले इलाकों में खतरा अभी भी बना हुआ है। मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने राहत और पुनर्वास कार्यों की निगरानी के लिए 4 मंत्रियों को तैनात किया है। उधर केरलम में तेज बारिश से कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने आज तिरुवनंतपुरम और कोल्लम को छोड़कर राज्य के 12 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। खराब मौसम और समुद्र में तेज लहरों को देखते हुए मछली पकड़ने पर रोक लगा दी गई है। जम्मू कश्मीर में मौसम विभाग ने कुछ स्थानों पर तेज बारिश, बादल फटने और अचानक बाढ़ की संभावना को देखते हुए सतर्क रहने की सलाह दी है। आज प्रदेश के कुछ हिस्सों में बौछारें पड़ सकती हैं। उज्बेकिस्तान के विदेश मंत्री सईदोब बख्तियार ओदिलोविच आज से 5 अगस्त तक भारत के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के अनुसार वे राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर से मुलाकात करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई तेज करने की चेतावनी दी है। उन्होंने कहा है कि जब तक ईरान समुद्री जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और बातचीत के लिए तैयार नहीं होता, तब तक अमरीकी हमले जारी रहेंगे। इस बीच अमरीकी विदेश विभाग ने पश्चिम एशिया में रह रहे अपने नागरिकों को क्षेत्र छोड़ने या स्थिति बिगड़ने पर वहां से निकलने के लिए तैयार रहने की सलाह दी है। ईरान के सरकारी मीडिया के अनुसार एक वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा है कि ईरान ने संभावित सैन्य कार्रवाई की स्थिति में इजराइल के महत्वपूर्ण ठिकानों और क्षेत्र में मौजूद अमरीकी ऊर्जा परिसंपत्तियों पर हमला करने की योजना तैयार कर ली है। और अब राष्ट्रमंडल खेलों से जुड़ी जानकारी के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: ग्लासगो में जारी राष्ट्रमंडल खेलों के 10वें दिन 4 अलग अलग स्पर्धाओं में 16 पदक जीतकर भारत पदक तालिका में चौथे स्थान पर पहुंच गया है। भारत ने 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य सहित कुल 39 पदक अपने नाम किए हैं। भारत के खाते में सबसे अधिक 10 पदक मुक्केबाजी से आए हैं। भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के पैरा शॉटपुट और पुरुषों के ट्रिपल जंप में 2-2 मेडल जीते, जबकि जूडो और एथलेटिक्स में 1-1 मेडल अपने नाम किया। भारतीय मुक्केबाजों ने राष्ट्रमंडल खेलों में ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 स्वर्ण पदक जीते। ये इन खेलों के किसी एक संस्करण में किसी भी देश द्वारा जीते गए सर्वाधिक स्वर्ण पदक हैं। भारत को पैरा एथलेटिक्स में भी सफलता मिली, जहां पुरुषों की F57 शॉटपुट स्पर्धा में भारत के खिलाड़ियों ने पहला और दूसरा स्थान हासिल किया। सोमन राणा ने स्वर्ण जबकि शुभम जुयाल ने रजत पदक जीता। एथलेटिक्स टीम ने 3 और पदक अपने नाम किए। पुरुषों के ट्रिपल जंप में प्रवीण चित्रवेल ने रजत और सेल्वा प्रभु थिरुमारन ने कांस्य पदक जीता, जबकि लंबी दूरी के धावक गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीता। जूडो खिलाड़ी उन्नति शर्मा ने भी महिलाओं के 63 किलो भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया।
1: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लासगो राष्ट्र

0: मंडल खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को बधाई दी है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद जागृति। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के स्वर्णिम दिन को सभी अखबारों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान की सुर्खी है, भारत पर सोने की बारिश। दैनिक भास्कर लिखता है, पहली बार एक दिन में 8 स्वर्ण 5 सिल्वर समेत कुल 15 मेडल रिकॉर्ड। शीर्षक से पत्र ने बताया है कि इस बार 13 में से 8 गोल्ड महिलाएं लाईं। जनसत्ता की खबर है, कुलगाम आतंकवादी हमले में घायल दूसरे प्रवासी मजदूर ने भी तोड़ा दम। नाम पूछकर दोनों मजदूरों को नजदीक से गोली मारी गई थी। दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय पृष्ठ पर अराजकता को उचित ठहराने की कोशिश का विश्लेषण किया है। पत्र लिखता है, कॉकरोच जनता पार्टी मांग कर रही है कि उसके प्रदर्शन में जिन्होंने हिंसा की उन्हें भी माफी दी जाए। ऐसा करने से गलत परिपाटी बनेगी और इसका लाभ अराजक तत्व उठाएंगे। दैनिक ट्रिब्यून की सुर्खी है, नए पेपर लीक रोधी विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी, राज्यों में बनेंगे फास्ट ट्रैक कोर्ट। कॉलेजियम की पारदर्शिता पर जस्टिस भुइया ने उठाए सवाल, लिखता है अमर उजाला। उन्होंने कहा, किसी जज को क्यों चुना, नहीं बताना बाकी के लिए अन्याय। नवभारत टाइम्स ने ऑनलाइन खरीदारी पर टिप्स देते हुए सतर्क किया है, पार्सल का खाली डिब्बा भी करा सकता है खाता खाली। साइबर ठग इससे आपके बैंक अकाउंट में सेंधमारी कर रहे हैं, डिब्बा फेंकने से पहले उसे छोटे छोटे टुकड़े करके फेंकें। राजस्थान पत्रिका की संडे स्पेशल स्टोरी एआई की क्रिएटिविटी पर केंद्रित है। पत्र ने लिखा है, कोई बन रहा रचनाकार तो कोई एआई से संगीत तैयार कर गायन के शौक पूरे कर रहा।
0: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करेंगे। केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 परीक्षा की तैयारियों की समीक्षा की, परीक्षार्थियों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। तेलंगाना पुलिस ने बाल श्रम और मानव तस्करी के खिलाफ एक माह के विशेष अभियान में 6000 से अधिक बच्चों को बचाया। गुजरात, ओडिशा और केरलम में बाढ़ की स्थिति गंभीर, गुजरात के 6 जिलों में मूसलाधार बारिश का रेड अलर्ट। और ग्लासगो में राष्ट्रमंडल खेलों में भारत चौथे स्थान पर, मुक्केबाजों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक ही दिन में 7 स्वर्ण पदक जीते। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंस मॉर्निंग न्यूज। Good morning, I am Shagun Chopra. The headlines. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across 6 districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to 4th position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And now the news in detail. Prime Minister Narendra Modi will launch the nationwide campaign Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today through video conferencing. The launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse. More from our correspondent.
3: Youth across the country from over 10,000 locations will participate in the Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan. My Bharat volunteers, My Bharat National Service Scheme volunteers, youth clubs, schools, colleges, universities, NGOs, youth wings of industry associations and more than 125 spiritual organizations will also join the program virtually. Under the campaign, weekly activities will be organized every Sunday across the country to promote awareness and encourage public participation in building a drug-free society. The activities will include sports events, walkathons, meditation sessions, cultural programs, awareness campaigns, Nukkad Natak, discussion

0: Maran took bronze, while long distance runner Gulveer Singh earned his second medal of the games by clinching bronze in the men's 5000 meter final. Judoka Unnati Sharma also added to the glory by bagging bronze medal in the women's 63 kg event. Rupesh Rathor for Akashwani News.
1: Ahmedabad will officially receive the Commonwealth Games flag and the host button during the closing ceremony at the 2026 Commonwealth Games in Glasgow. President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi have congratulated all the athletes for their outstanding performance in the Commonwealth Games. And now for a look at today's newspapers, it's over to Saira Mujtaba.
2: Thank you, Shagun. Modi credits youth with driving India's all-round progress, headlines Hindustan Times. The Pioneer quotes the Prime Minister saying, "Youth must power India's rise," also called on to support nation building to service, education and discipline. The Times of India reports, monsoon hope as World Meteorological Organization sees an El Nino counter, adding the risk of overall monsoon rainfall being below normal continues to loom over India due to a strengthening El Nino. Manhunt in Valley as terror attack claims too. TRP link being probed, leads the Indian Express. Railway line through Key Tiger Corridor gets in-principle approval with a rider, informs the Indian Express. And finally, the Financial Express writes, Indian holidays taking the trail less travelled, trekking. Hiking fast turning into mainstream travel, what was once a niche pursuit for seasoned mountaineers, is fast becoming a mainstream travel segment. And with that, it's back to you, Shagun.
1: Thank you, Saira. And now before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi to launch nationwide campaign Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today. Union Minister Jagat Prakash Nadda reviews preparedness for NEET PG 2026 examination, urges aspirants not to fall prey to rumours. Telangana police rescues over 6,000 children in a month-long drive aimed at ending child labour and trafficking. Flood situation continues to be grim in Gujarat, Odisha and Keralam. Weather Department issues red alert for heavy to very heavy rainfall across six districts in Gujarat today. US President Donald Trump threatens to intensify military action against Iran. Tehran warns of retaliation on key American and Israeli energy infrastructures. India climbs to fourth position in Commonwealth Games in Glasgow. Boxers shine with record 7 gold in single day, taking medals tally to 39. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
3: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं शमीम अहमद। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात के 6 जिलों में तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई में शिद्दत इख्तियार करने की धमकी दी है। ईरान ने अहम अमरीकी और इसराइली तवानाई के बुनियादी ढांचों पर जवाबी हमले से खबरदार किया है। और ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में भारत चौथे मकाम पर आ गया है। एक ही दिन में मुक्केबाजों ने रिकॉर्ड सोने के 7 तमगे जीते हैं, जिससे तमगों की तादाद बढ़कर 39 हो गई है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। इसके साथ ही मनुष्यात के इस्तेमाल के खिलाफ 100 हफ्तों पर मुश्तमिल मुल्क गिर जन भागीदारी मुहिम शुरू हो जाएगी। इस प्रोग्राम में मुल्क भर के 10,000 से ज्यादा मकामात से नौजवान हिस्सा लेंगे। इसके अलावा माई भारत के रजाकार, नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकार, नौजवानों के क्लब, स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, गैर सरकारी तंजीमें, सनती अंजुमनों के नौजवानों के शोबे और 125 से ज्यादा शराकत दार रूहानी तंजीमें भी वर्चुअल तौर पर इस प्रोग्राम में शामिल होंगी। इस मुहिम के तहत मुल्क भर में हर इतवार को मुख्तलिफ सरगर्मियों का इनेकाद किया जाएगा ताकि अवाम में मनशियात

0: के नुकसानात से मुतालिक आगही पैदा की जा सके और मनशियात से पाक मुआशरा बनाने के लिए अवामी शिरकत को फरोग दिया जा सके। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि नौजवानों की सलाहियत सिर्फ इसी सूरत में एक मुतहर्रिक क़ुव्वत बनती है जब उन्हें सही मौके और सही सिमत मिल जाए ताकि वो पूरे एतमाद के साथ बड़े ख्वाब देख सकें और उनकी ताबीर तलाश कर सकें। कर्नाटक के मैसूरू में स्वामी विवेकानंद कल्चरल यूथ सेंटर विवेक स्मारक के इफ्तिताह के बाद उन्होंने खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने इस बात को उजागर किया कि आज भारत में नौजवान दुनिया के तीसरे सबसे बड़े स्टार्टअप निज़ाम आत्मनिर्भर भारत मिशन और मेक इन इंडिया स्कीम को आगे लेकर चल रहे हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत के नौजवानों की सलाहियतों ने भारत को दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मोबाइल फोन मार्केट में तब्दील कर दिया है और सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में नीज इख्तिराआत में और प्राइवेट सेक्टर खलाई मिशन में नई नई कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि खेलो इंडिया, यूनिवर्सिटी गेम्स और यूथ गेम्स ने नौजवानों को अपनी सलाहियतों का मुजाहरा करने और दुनिया भर में तमगे जीतने का एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है।
1: स्वामी विवेकानंद जी युवाओं की शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का मजबूत आधार मानते थे। उन्होंने स्वयं ये देखा था कि कैसे दुनिया के देश अपने युवाओं को शिक्षित बना रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से तब भारत गुलाम था। भारत के युवा भी गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उस दौर से लेकर अब तक भारत के युवा ने एक लंबी यात्रा तय की है। भारत का जो युवा कभी जंजीरों में था, आज वो युवा दुनिया के विकास को गति दे रहा है। आज भारत की अर्थव्यवस्था सबसे तेजी से आगे बढ़ रही है। किसकी वजह से? भारत के युवाओं के सामर्थ्य से।
0: सेहत और खानदानी बहबूद के मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस फॉर पोस्ट ग्रेजुएट नीट पीजी 2026 की तैयारियों का जायजा लिया ताकि इम्तिहानात को बिला रुकावट पूरी तरह महफूज, शफाफ और टेक्नोलॉजी पर मबनी सूरत में मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाया जा सके। ये इम्तिहान इस माह की 30 तारीख को मुनक़िद किया जाएगा। पेश है एक रिपोर्ट।
2: मीटिंग के दौरान वजीर मौसूफ ने मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड, टेक्नोलॉजी से मुतालिक पार्टनरों और इम्तिहान मुनक़िद किए जाने में शामिल दीगर तरफ़ैन के साथ तैयारियों का जायज़ा लिया। इम्तिहान से मुतालिक लॉजिस्टिक्स, उम्मीदवारों के लिए सहूलत के इकदामात, सिक्योरिटी के निज़ाम और नीट पीजी 2026 के लिए मुतारिफ कराई गई टेक्नोलॉजी पर मबनी मुदाखलतों के मुतालिक वजीर मौसूफ को तफसीलात बताई गईं। जनाब नड्डा ने जोर देकर कहा कि एक मुनसिफाना, शफाफ और उम्मीदवार दोस्त इम्तिहान मुनक़िद किए जाने को यकीनी बनाने की गरज से तमाम कोशिशें की जानी चाहिए। साथ ही सालमियत और सलामती के आला तरीन मेयार को भी बरकरार रखना चाहिए। वजीर मौसूफ ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि ये भी कहा कि वो अफवाहों पर ध्यान ना दें और मेडिकल साइंसेज में इम्तिहानात के कौमी बोर्ड और वजारत सेहत और ख़ानदानी बहबूद की जानिब से जारी बाज़ाब्ता ऐलानात पर ही एतबार करें। उन्होंने ये भी कहा कि फाइनल सवालनामा एक इंतहाई महफूज, इनक्रिप्टेड और पाबंदी वक्त पर मबनी एक अमल के जरिए इम्तिहान शुरू होने से थोड़ी देर पहले ही मुंतखब किया जाएगा और इसके साथ कई सतहों पर मबनी तकनीकी और कार्रवाई जाती तहफ़ुज़ात का ख्याल रखा जाएगा ताकि इम्तिहान के शुरू होने के तयशुदा वक्त तक उसकी राजदारी को यकीनी बनाया जा सके। जनाब नड्डा ने तमाम मुतालिका एजेंसियों को करीबी तालमेल बरकरार रखने की हिदायत दी ताकि इस बात को यकीनी बनाया जा सके कि हर उम्मीदवार बिला रुकावट, महफूज और दुश्वारियों से कतई पाक इम्तिहान के अमल का तजुर्बा करे। दिल्ली से प्रिया की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरनामे के लिए मैं फहीम अहमद।
0: सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन के आंगन में मुनक़िद एक तकरीब के मौके पर PBG सॉलिडरेथन को झंडी दिखाकर रवाना किया। मिजोरम के गवर्नर जनरल VK सिंह, जो इस मुहिम के सरपरस्त हैं, भी इस मौके पर मौजूद थे। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि सॉलिडरेथन शहरियों और मुसल्ला अफवाज के दरमियान रिश्तों को मुस्तहकम करने का एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जिसे फौजियों के लिए दौड़, फौजियों के साथ दौड़ के तसव्वुर से रहनुमाई मिली है। हकीकी हीरो भारत के मुसल्लह अफवाज کو تعاون کے موضوع پر مرکوز، یہ تقریب فوجیوں کے اخلاص، ہمت اور قربانی کے تئیں خراج عقیدت تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ شہریوں کو ان کے ساتھ سرگرم شراکت داری کے ذریعے

0: यकजहती का मौका भी फराहम करती है। तेलंगाना पुलिस ने रियासत भर में बच्चा मजदूरी और बच्चों की ट्रैफिकिंग के खात्मे के मकसद से शुरू किए गए एक महीने तक चलने वाले ऑपरेशन मुस्कान 12 के तहत 6,307 बच्चों को बचा लिया है। ये कार्रवाई पिछले माह की पहली तारीख से 31 तारीख तक जारी रही। इस कार्रवाई की क्यादत ख्वातीन के सेफ्टी विंग ने की, जिसके लिए उसने ख्वातीन और बच्चों की बहबूद के महकमे, लेबर महकमे, सेहत के महकमे, बच्चों की बहबूद की कमेटियों, बच्चों के तहफ्फुज के जिला यूनिटों और रजाकार तंजीमों के साथ मिलकर काम किया। 124 सब डिवीजन टीमों के तकरीबन 620 पुलिस एहलकारों ने इसमें हिस्सा लिया। कवानीन और तरीक़ेकार के मुतालिक तरबियत हासिल करने के बाद टीमों ने उन मकामात पर छापे मारे जहां बच्चा मजदूरी आम है। इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड्स, मंदिर, ईंट के भट्टे, मकैनिकों की दुकानें, तामीरी मकामात और चाय खाने शामिल हैं। बचाए गए बच्चों में से 5,737 को उनके अहले खाना के पास भेज दिया गया, जबकि 570 को बच्चों की देखभाल के मरकजों में भेजा गया है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। गुजरात में महकमा मौसमियात ने आज 6 जिलों के तमाम इलाकों में बहुत तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में मोरबी, सुरेंद्रनगर, राजकोट और अहमदाबाद शामिल हैं। बारिश का यह सिलसिला अब सौराष्ट्र की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिससे कई इलाकों में बड़े पैमाने पर पानी भर गया है। पेश है हमारे नुमाइंदे की एक रिपोर्ट।
1: गुजरात में बहुत तेज बारिश का सिलसिला जारी है और अब मानसून कल से सौराष्ट्र की जानिब मुंतकिल हो गया है, जिससे कई जिलों में बारिश का पानी भर गया है। मोरवी में सबसे ज्यादा 8.5 इंच बारिश रिकॉर्ड की गई, जिससे नशेबी इलाकों में बहुत ज्यादा पानी भर गया है और मामूल की जिंदगी बुरी तरह मुतासिर है। इंतहाई तेज बारिश की वजह से 20 आबी जखायर अपनी सतह से ऊपर बह रहे हैं। तेज हवाओं के पेश नजर माहीगीरों को मशवरा दिया जाता है कि वो अगले 2 दिन तक समंदर में ना जाएं और पूरे गुजरात की तमाम बड़ी बंदरगाहों पर मकामी एहतियाती सिग्नल नंबर 3 जारी किया गया है। अहमदाबाद से अपर्णा खोंड की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मोहम्मद अम्मार।
0: उड़ीसा में सैलाब की सूरत हाल में बतदरीज बेहतरी के आसार जाहिर हुए हैं, तहम हुक्काम बदस्तूर हाई अलर्ट पर हैं, क्योंकि दरियाओं में पानी की बुलंद सतह अब भी महानदी के नशेबी इलाकों के लिए खतरा बनी हुई है। रियासती हुकूमत नशेबी अजला कटक, पूरी, जगत सिंहपुर, केंद्रपाड़ा और खोरदा के हालात पर मुसलसल नजर रखे हुए है, जहां सैलाब का पानी अभी मुकम्मल तौर पर नहीं उतरा है। केरला में शदीद बारिश ने बड़े पैमाने पर तबाही मचाई है, जिसके बाइस मामूल की जिंदगी मुतासिर है और कई इलाकों में बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचा है। भारतीय मौसमियात के महकमे ने मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में आइंदा 7 दिनों के दौरान वक्फे और गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशगोई की है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इन दिनों जारी जुनूब मगरबी मानसून के दौरान सैलाब की सूरत हाल से मुतासरा रियासतों को तआवुन देने की गरज से कुदरती आफत की सूरत में बंदोबस्त के रियासती फंड SDRF के मरकज के हिस्से से 2,117.85 करोड़ रुपये पेशगी जारी किए जाने की मंजूरी दी है। 7 मुतासरा रियासतों में से हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और नागालैंड को माली बरस 2026-27 के लिए SDRF की पहली किस्त पहले ही मौसूल हो चुकी है। दीगर रियासतों में अरुणाचल प्रदेश, आसाम, गुजरात और महाराष्ट्र शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई मजीद तेज करने की धमकी दी है और कहा है कि जब तक ईरान बहरी जहाजों पर हमले बंद नहीं करता और मुजाकरात की मेज पर वापस नहीं आता, अमरीकी हमले जारी रहेंगे। अमरीकी महकमा खारजा ने एक ताज़ा सिक्योरिटी जारी करते हुए मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी शहरियों से कहा है कि अगर कशीदगी में इजाफा हो तो वह खित्ते को छोड़ने पर गौर करें या फौरी रवानगी के लिए तैयार रहें। बढ़ती हुई कशीदगी के असरात अब गजा और लिबनान तक भी पहुंच गए हैं, जहां हमास की जानिब से अमरीकी हिमायत याफ्ता जंगबंदी के फ्रेमवर्क के तहत हथियार डालने की आमादगी जाहिर करने के बावजूद इसराइल ने नए हमले किए हैं। दूसरी जानिब ईरान ने खबरदार किया है कि अगर उस पर हमला किया गया तो वह इसराइल के अहम बुनियादी ढांचे और मगरबी एशिया में मौजूद अमरीकी तवानाई तंजीबात को निशाना बनाने के लिए तैयार है। भारत ग्लासगो में जारी दौलत मुश्तरका खेलों में तमगों की फहरिस्त में 4th मकाम पर पहुंच गया है। उसने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगों समेत कुल 39 तमगे जीते हैं। भारत के लिए ताजा तरीन तमगा गुलवीर सिंह ने हासिल किया है। उन्होंने 5,000 मीटर की दौड़ में कांसे का तमगा जीता। मुक्केबाजी में भारत ने सोने के 7 और चांदी के 3 तमगे जीतकर शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया। मुक्केबाजों में प्रीति पवार, जैस्मिन लंबोरिया, साक्षी चौधरी, प्रिया घंघास, अरुंधति चौधरी।

0: सचिन सिवाच और अंकुश पंघल ने सोने के तमगे जीते। जादूमणि सिंह, लवलीना बुरगोहेन और नरेंद्र बेरवाल ने अपने मुतालिका जुमरों में चांदी के तमगे हासिल किए। भारत ने पैरा एथलेटिक्स में तारीख साज कारनामा अंजाम दिया। मर्दों के शॉर्ट पुट F57 मुकाबले में सुमन राणा ने सोने का तमगा जीता, जबकि शुभम जोयल ने चांदी का तमगा हासिल किया। ताइपे ओपन बैडमिंटन में ख्वातीन के सिंगल्स के खिताबी मुकाबले में कल सुबह भारत की तन्वी शर्मा का मुकाबला वियतनाम की आलमी नंबर 21 खिलाड़ी थुई लिन से होगा। तन्वी सेमीफाइनल में चीनी ताइपी की खिलाड़ी हुआंग यू हुस्न को 21-17, 21-11 से शिकस्त देकर फाइनल में पहुंची हैं। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद।
1: शुक्रिया शमीम। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के उर्दू अखबारात ने आंध्र प्रदेश में वजीर आजम के हाथों मुख्तलिफ प्रोजेक्टों के इफ्तिताह की खबर को अपनी शह सुर्खी बनाया है। अखबार इनकलाब लिखता है, वजीर आजम मोदी ने आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ तरक्याती प्रोजेक्टों का इफ्तिताह किया। अखबार प्रताप की शह सुर्खी है, वजीर आजम आज नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान का आगाज करेंगे। पब्लिक इम्तिहान में गलत तौर तरीकों की रोकथाम से मुतालिक तरमीमी बिल को सदर जमहूरिया के जरिए मंजूरी दिए जाने की खबर को अखबारात ने नुमायां तौर पर शाया किया है। इसके अलावा अखबारात ने कमर्शल सिलेंडर की कीमत में कमी की खबर को भी अहमियत दी है। अखबार इंकलाब की एक और अहम सुर्खी है, मशरक वस्ता के हालात संगीन, अमरीका ने अपने शहरियों को फौरी इनखला के लिए तैयार रहने की हिदायत दी। दिल्ली, उत्तर प्रदेश और बिहार के लिए आज मूसलाधार बारिश की महकमे मौसमियात की वार्निंग की खबर भी बेशतर अखबारों में नुमायां है।
0: और अब खबरनामे की खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए मुल्क गिर नशा मुक्त युवा मुहिम का आगाज करेंगे। मरकजी वजीर जगत प्रकाश नड्डा ने नीट पीजी 2026 इम्तिहान की तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने उम्मीदवारों से जोर देकर कहा कि अफवाहों पर ध्यान न दें। तेलंगाना पुलिस ने बच्चा मजदूरी और ट्रैफिकिंग के खात्मे की गरज से शुरू की गई एक महीने तक जारी मुहिम के बाद 6,000 से ज्यादा बच्चों को बचा लिया है। गुजरात, उड़ीसा और केरलम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तश्वीशनाक है। महकमा मौसमियात ने आज गुजरात के 6 जिलों में तेज और इंतहाई तेज बारिश के सिलसिले में रेड अलर्ट जारी किया है। इसी के साथ खबरनामा खत्म हुआ।

आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 8:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफी की आवाज में। फिल्म का नाम है मेरी सूरत तेरी आंखें। गीतकार हैं शैलेंद्र, संगीतकार हैं ST बर्मन।

अभी आप सुन रहे थे लता मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शैलेंद्र की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई थी एस डी बर्मन ने। फिल्म का नाम था मेरी सूरत तेरी आँखें। आइए अब सुनते हैं लता मंगेशकर की आवाज़ में फिल्म बैराग का ये गीत। गीतकार हैं आनंद बख्शी, संगीतकार हैं कल्याण जी आनंद जी।

0: लता मंगेशकर की आवाज़ में अभी आप सुन रहे थे फिल्म बैराग का ये गीत। गीत को लिखा था आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं इस छोटे से अंतराल के बाद।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
2: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
3: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
2: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: आइए अब सुनते हैं।

लता मंगेशकर, किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का ये गीत। गीत को लिखा है मजरूह सुल्तानपुरी ने, संगीत बद किया है आरटी परमन ने।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में फिल्म रामपुर का लक्ष्मण का ये गीत। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था आरडी बर्मन ने। कार्यक्रम गीतांजलि आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए अब सुनते हैं किशोर कुमार और आशा भोंसले की आवाज़ों में फिल्म इश्क इश्क इश्क का ये गीत।

आशा भोसले लता मंगेशकर और किशोर कुमार के गाए फिल्म महबूबा के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम गीतांजलि अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। सुबह के 9:15 होने को हैं। अब आप सुनेंगे लखनऊ केंद्र से हमारा अगला प्रसारण।

0: सामयिक चर्चा में आज आप सुनेंगे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार हैं आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
1: देश भर में एक साथ चुनाव कराए जाने को लेकर के संविधान में संशोधन की प्रक्रिया शुरू हुई और वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव संसद के सामने रखा गया। इस पर विचार के लिए संयुक्त संसदीय समिति बनी जिसने लगभग 10 राज्यों में विभिन्न पक्षों से मिलकर के उनकी राय जानने की कोशिश की, कितना ये देश के लिए सही है, कितनी इसमें चुनौतियां हैं, इन सब विषयों पर विचार विमर्श किया और जल्द ही ये कमेटी अपनी रिपोर्ट संसद में रखेगी। इस कमेटी ने पिछले दिनों उत्तर प्रदेश का दौरा किया और लखनऊ में 3 दिनों तक लगातार विभिन्न राजनीतिक दलों, शिक्षाविदों, पद्म पुरस्कार विजेताओं, पुलिस के अधिकारियों, प्रशासन के अधिकारियों और तमाम पक्षों के साथ बातचीत की। किस तरीके से ये प्रक्रिया आगे संभव हो सकेगी और क्या वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियां इस महत्वाकांक्षी योजना के पक्ष में हैं, इस पर बातचीत करने के लिए जय नारायण स्नातकोत्तर महाविद्यालय के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र जी हमारे साथ हैं। सर, आकाशवाणी समाचार लखनऊ के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।
2: धन्यवाद।
1: किस प्रकार आप इसको देखते हैं कि क्या देश को वाकई में वन नेशन वन इलेक्शन यानी एक देश एक चुनाव जैसी किसी चीज की जरूरत भी है?
2: वास्तव में वन नेशन वन इलेक्शन जब संविधान लागू हुआ तो पहला इलेक्शन जो हुआ था 1952 में, उस समय वन नेशन वन इलेक्शन ही था क्योंकि राज्यों में भी चुनाव हुए और संघ के लिए भी चुनाव हुआ। बाद में कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि कुछ विधानसभाओं ने बहुमत खोया मुख्यमंत्रियों ने, और देश में भी संसद का भी समय पीछे आगे हुआ और विधानसभाओं का भी समय पीछे आगे हो गया। ये बात समझने की है कि उस समय देश की आबादी लगभग 37 से 38 करोड़ थी और आज देश की आबादी लगभग 140 करोड़ से ऊपर है। तो हमारी जो कार्यपालिका है वो अत्यधिक व्यस्त हो गई है, बहुत सारे नए मंत्रालयों का गठन हुआ है और वन नेशन वन इलेक्शन का लक्ष्य ये है कि कार्यपालिका को अपने कार्यों के निष्पादन के लिए पर्याप्त समय मिले। अभी क्या होता है कि कार्यपालिका पर जो लोग हमारे देश में आसीन होते हैं, तो जो हमारी एक तरह से कह लीजिए कि संविधान की व्यवस्था है, उसमें प्रधानमंत्री सबसे अधिक महत्वपूर्ण पद हो जाता है और प्रदेश स्तर पर मुख्यमंत्रियों का पद बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो वर्ष पर्यंत या 5 वर्ष के शासन काल में अन्य राज्यों में चुनाव चलते रहते हैं, तो इतने सारे राज्य हैं, 28-29 राज्यों में लगातार कहीं न कहीं चुनाव और चुनाव प्रचार के लिए कार्यपालिका को अपने व्यस्ततम क्षणों से समय निकाल करके प्रचार के लिए जाना पड़ता है और मुख्यमंत्रियों को भी अपने अपने दलों के लिए अन्य सभी राज्यों में आवागमन करना पड़ता है। इससे देश की

0: जो विकास की योजनाएं हैं, देश की भविष्य की योजनाओं के लिए जो चर्चा का समय है, और देश की योजनाओं को जितना गंभीर समय दिया जाना चाहिए वह संभव नहीं होता। तो कार्यकरण की दृष्टि से ये देखा जाता है कि जो कार्यपालिका है उसके पास पर्याप्त समय होना चाहिए नई योजनाओं पर विचार करने के लिए, राष्ट्रोपयोगी योजनाओं को लाने के लिए, और जो योजनाएं नहीं ठीक है उनको छोड़ने के लिए। इसके लिए गंभीर विचार विमर्श के लिए समय की आवश्यकता होती। तो अब जब लोकतंत्र का आकार इतना बड़ा हो चुका है तो उस स्थिति में देश के सामने कार्यपालिका का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य का निर्वहन बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और वैसे भी हम विश्व की चौथी अर्थव्यवस्था हैं, तो उस लिहाज से भी हमारा दुनिया के अन्य देशों से भी एक आर्थिक प्रतियोगिता जैसी स्थिति बनी रहती है। तो देश को संभालने के लिए कार्यपालिका को पर्याप्त समय मिले और एक विशेष समय खंड में ही संघ और राज्यों का चुनाव हो जाए तो इस प्रकार की समस्या से बचा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में चुनाव का खर्च भी बचता है और कार्यपालिकाओं को कार्य करने का समय भी मिलता है। इसलिए एक राष्ट्र एक चुनाव समय की मांग है और इसको होना चाहिए।
1: जी बिल्कुल, आपका ये मानना है कि एक साथ ही चुनाव होने चाहिए, लेकिन जैसा कि हमने इस संसदीय समिति ने इस बार पहली बार जो है वो मीडिया से भी एक पक्ष मानते हुए सुझाव लिए, तो जो इस संसदीय समिति के अध्यक्ष हैं सांसद पीपी चौधरी, तो उन्होंने कहा कि ये पहली बार हो रहा है कि भी मीडिया जो है वो चूंकि एक बड़ा रोल प्ले करती है तो हम उससे भी विचार लेते हैं। एक जो प्रमुख विचार उसमें सामने आया, बल्कि यूं कहें कि सबने इस बात को लेकर के रजामंदी दिखाई कि आचार संहिता लगने की वजह से विकास की गति बाधित होती है, लेकिन एक बहुत बड़ी चुनौती ये था कि आखिर इसे किस तरीके से देश में लागू किया जाएगा, क्योंकि अगर किसी राज्य में जल्दी सरकार गिर जाती है तो फिर एक जर्मन मॉडल की जिसमें चर्चा होती है कि जिसमें मौजूदा जो नेता होते हैं उनको हटाने से पहले नया नेता चुना जाता है सरकार गिरने के बाद, और जापानी मॉडल भी होता है, इस तरीके से कुछ मॉडलों की भी चर्चा हुई, ये एक बड़ी चुनौती निकल करके सामने आई। ये पूरी तरीके से सुझाव लेकर के भविष्य में कब लागू किया जाएगा ये अभी स्पष्ट नहीं है, लेकिन इस पर जनता की राय जानी जा रही। तो अगर सरकारें बीच में गिरती हैं तो आपकी नजर में ये किस तरीके से इस मॉडल में काम आ पाएगा और कैसे वन नेशन वन इलेक्शन के साथ सिंक किया जा सकेगा?
0: देखिए, भारत में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर रामनाथ कोविंद जी का
1: जी
0: एक दृष्टिकोण आया था, वो समिति के अध्यक्ष थे, तो उन्होंने ये संस्तुति दिया था कि जैसे मान लीजिए कि किसी विधानसभा में किसी विधायक का पद रिक्त हो जाता है तो जो उपचुनाव होता है वो बची हुई विधानसभा के लिए ही होता है,
1: जी
0: तो जो विधायक चुना जाएगा वो केवल शेष विधानसभा के कार्यकाल के लिए ही चुना जाता है। अगर यही सिद्धांत पूरी विधानसभा पर लागू किया जाए, जैसे अभी बहुत कम ऐसी विधानसभाएं हैं जो मध्यावधि चुनाव के लिए जाती हैं, क्योंकि राजनीतिक दलों में आपस में समझौता हो जाता है, बहुमत निर्मित हो जाता है, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आ जाता है, तो विधानसभाएं चलती रहती हैं, तो उनको नेशनल डेट पर पहुंचना होगा। तो उस स्थिति में भी अगर आप देखेंगे तो जो एक राष्ट्र एक चुनाव का लक्ष्य है वो पूरा हो जाता है, क्योंकि दो ही एक विधानसभाएं ऐसी हो सकती हैं जो कभी को मध्यावधि के लिए जावें। एक तो ये बात हो गई। दूसरी ये हो गई कि मान लीजिए कि संसद है और संसद में कोई सरकार अल्पमत में आ जाती है तो शेष बचे हुए अवधि के लिए ही चुनाव किया जा सकता है, उसके बाद जो नेशनल डेट होगी उस पर चुनावों में सबको जाना होगा। तो ऐसा करने से मेरा मानना है कि 90% से अधिक एक राष्ट्र एक चुनाव की जो कल्पना है वो साकार हो जाएगी और यह व्यवहार में लाने योग्य संस्तुति है।
1: जी
0: अगर हम इस पर भी काम कर लें तो मची हुई अवधि के लिए ही जो नेशनल डेट्स होगा, टाइम टेबल फिक्स होगा,
1: जी
0: उस टाइम फ्रेम पर पहुंचने के लिए सबको जाना है और बीच में अगर कोई ऐसी स्थिति होती है तो शेष समय अवधि के लिए ही चुनाव किया जाएगा।
1: बिल्कुल। और ये जो 129वां संशोधन है संविधान का, इसको लेकर के जो समिति के सामने विचार आए उनमें एक प्रमुख चुनौती या आपत्ति जिसे कहा जाए वो छोटे दलों को लेकर के है, और पूरे देश भर में एक समान राजनीतिक मुद्दों और भावनाओं को लेकर के है, कि जिसमें ये माना जा रहा है कि अगर बंगाल का कोई विषय है जो राज्य का विषय है वहां का प्रमुख मुद्दा है, और उत्तराखंड का कोई अलग मुद्दा है, गुजरात का अलग मुद्दा है, ये सभी प्रकार के मुद्दे एक किसी राष्ट्रीय मुद्दे के सामने फीके न पड़ जाएं, और दूसरी बात कि जो प्रमुख पार्टियां हैं जिनके पास धन बल है वो किसी तरीके से पूरी प्रक्रिया को हाईजैक न कर लें, इस खतरे को कितना जायज मानते हैं आप?
0: देखिए, वैसे तो अगर आप देखेंगे तो मान लीजिए कि जब हम विधानसभा का चुनाव करते हैं तो उसमें विधानसभा क्षेत्रों के मुद्दे होते हैं, प्रादेशिक मुद्दे होते हैं, और हमारी वही जनता लोकसभा के लिए भी चुनाव करती है। आजकल अलग अलग समय में करती है और वन नेशन वन इलेक्शन में एक समय में करेगी। तो मान लीजिए कि चाहे वो पंचायत के चुनाव हो, चाहे वो प्रदेश स्तर पर विधानसभाओं के चुनाव हो, और चाहे वो राष्ट्रीय संसद के लिए चुनाव हो, सबके मुद्दे अलग अलग होते हैं, और उन मुद्दों में जो हमारी जनता होती है वो निरशिर विवेक पूर्वक तीनों स्तरों पर आज भी मतदान करती है और कल भी मतदान करेगी। तो उस स्थिति में जो ये तर्क है कि छोटे दलों के अस्तित्व का प्रश्न है, तो विधानसभा के लिए जो चुनाव

0: हैं उसी समय विधानसभा के लिए चुनाव होंगे, तो आज भी हम देखते हैं कि प्रायः विधानसभा के जो मुद्दे हैं लोग विधानसभा के लक्ष्य को रख करके चुनाव करते हैं, संघ की बात होती है तो संसद को लक्ष्य करके चुनाव करते हैं, और अगर जो है पंचायती राज व्यवस्था है तो नगर निकाय हुए और ग्रामीण क्षेत्र हुए इनके लिए चुनाव होता है, तो लोकल क्षेत्रीय मुद्दों पर होता है। तो मैं समझता हूँ कि लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए और लोकतंत्र को ज्यादा प्रातिनिधिक बनाने के लिए एक बहुत जरूरी कदम है एक राष्ट्र एक चुनाव। इससे किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आएगी, इसलिए कि जो जनता है आज भी तीनों स्तरों पर अलग अलग वही जनता चुनाव करती है, केवल
1: जी
0: समय खंड एक हो जाएगा। तो समय खंड एक हो जाने से क्या होगा कि जनता को भी इसका लाभ मिलेगा, नीतियां बनेंगी, नीति निर्माताओं को समय मिलेगा, नीतियों के क्रियान्वयन में आसानी होगी, जो प्रॉमिजेस किए जाते हैं चुनाव के घोषणा पत्रों में उन प्रॉमिजेस पर भी डिस्कशन होगा कि पोलिटिकल पार्टीज ने क्या प्रॉमिस किया और क्या डिलीवर किया। और विशेष रूप से अब जबकि योजना आयोग की व्यवस्था खत्म होकर के नीति आयोग आ गई है, तो किसी भी सरकारी कार्यक्रम को लागू करने के लिए भी हर 5 वर्ष पर राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तर पर संसद को भी समय मिलेगा कि इस पर विचार करे, और विधानसभाओं को भी समय मिलेगा कि उन्होंने 5 वर्ष के कार्यकरण में क्या किया।
1: जी
0: तो ऐसी स्थिति में ये एक व्यापक सुधार होगा, और यह सुधार जो है देश के लोकतंत्र के हित में होगा, क्योंकि जब चुनावों की कॉस्ट बढ़ती है तो वो जो है जनता को ही बियर करना पड़ता है प्रकारांतर में,
1: जी
0: और जनता को भी ये अवसर मिलेगा कि जो चुनाव का समय है उस समय में कर लें, और तो चरणबद्ध तरीके से होगा, उसकी योजना होगी, और पूरा देश जो है नए परिवर्तन के लिए, नए जनादेश के लिए हर बार 5 वर्ष पे तैयार होगा।
1: बिल्कुल। और इस तरीके से जो विकसित भारत को लेकर के एक परिकल्पना
0: जी
1: रहती है
0: जी
1: उसमें बहुत
0: जी
1: बड़ा सहयोग रहेगा इस पूरी प्रक्रिया के
0: बिल्कुल
1: आसान होने से और लाखों करोड़ों के खर्च की बचत होने से। ब्रजेश जी,
0: जी
1: आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर आकाशवाणी समाचार लखनऊ के साथ विस्तार से बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद।
2: सामयिक चर्चा में अभी आप सुन रहे थे एक राष्ट्र एक चुनाव पर जय नारायण पीजी कॉलेज लखनऊ के राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर ब्रजेश मिश्र से खास बातचीत। वार्ताकार थे आकाशवाणी संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी।
3: आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र।
4: आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर। श्रोताओं, इस समय सुबह के 9:25 हो रहे हैं। प्रस्तुत है पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा। कार्यक्रम का पहला गीत सुनते हैं फिल्म पारस मणि से। गीत को गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने। गीतकार हैं फारूक कैसर, संगीतकार हैं लक्ष्मीकांत प्यारीलाल।

अभी आप सुन रहे थे आशा भोसले और महेंद्र कपूर की आवाज़ों में फिल्म दिल और मोहब्बत का ये गीत। गीत को लिखा था शिवान रिजवी ने, संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में। फिल्म का नाम है हमराही। गीतकार हैं हसरत जयपुरी, संगीतकार हैं शंकर जयकिशन।

मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म इशारा का ये गीत। गीत को लिखा था मजरू सुल्तानपुरी ने, संगीतबद्ध किया था कल्याण जी आनंद जी ने। श्रोताओं, पुरानी फिल्मों से फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत मंजूषा आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। कार्यक्रम के अंत में आइए अब सुनते हैं मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शेवान रिजवी की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है ओपी नैयर ने। फिल्म का नाम है एक मुसाफिर एक हसीना।

श्रोताओं, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में भी आप सुन रहे थे फिल्म एक मुसाफिर एक हसीना का ये गीत। गीत को लिखा था शिवान रिजवी ने, संगीतबद्ध किया था ओपी नैयर ने। इसी के साथ ही कार्यक्रम गीत मंजूषा अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। इस समय सुबह के 9:45 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम लोक संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं फूलचंद गोस्वामी और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का पहला लोकगीत।

कार्यक्रम लोक संगीत आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। आप सुन रहे हैं फूलचंद गोस्वामी और साथियों के गाए कुछ लोकगीत।

श्रोताओं, भी आप सुन रहे थे फूलचंद गोस्वामी और साथियों के गाए कुछ लोकगीत। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोक संगीत अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है मीडियम वेव 106.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 10 बज रहे हैं। आइए अब सुनते हैं सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता। कार्यक्रम में सबसे पहले आइए सुनते हैं उदित नारायण और सुजाता की आवाजों में फिल्म हलचल का ये गीत।

उदित नारायण और सुजाता की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म हलचल का ये गीत। गीत को लिखा था समीर ने, संगीतबद्ध किया था विद्यासागर ने। श्रोताओं, कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं इस छोटे से व्यावसायिक अंतराल के बाद।

लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है। घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।

सोनू निगम और अलका याग्निक की आवाजों में अभी आप सुन रहे थे समीर की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। फिल्म का नाम था चल मेरे भाई। श्रोताओं, कार्यक्रम सुरसरिता आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। आइए सुनते हैं कविता कृष्णमूर्ति और उदित नारायण एवं कुमार सानू की आवाजों में राहत इंदौरी की शब्द रचना को, जिसकी धुन बनाई है अनु मलिक ने। फिल्म का नाम है इश्क।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।

अलका याग्निक और अभिजीत की आवाज़ों में भी आप सुन रहे थे फिल्म टक्कर का ये गीत। गीत को लिखा था माया गोविंद ने, संगीतबद्ध किया था अनु मलिक ने। श्रोताओं, सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर सरिता आकाशवाणी के आगरा केंद्र से प्रसारित किया जा रहा है। कार्यक्रम के अंत में आइए सुनते हैं उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में फिल्म कुछ ना कहो का ये गीत।

उदित नारायण और कविता कृष्णमूर्ति की आवाज़ों में अभी आप सुन रहे थे फिल्म कुछ न कहो का ये गीत। गीत को लिखा था जावेद अख्तर ने, संगीतबद्ध किया था शंकर एहसान लॉय ने। इसी के साथ ही सदाबहार फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुरसरिता अब यहीं संपन्न होता है। आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है, मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। इस समय सुबह के 10:30 हो रहे हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत। कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं पंडित सीआर व्यास का राग गुजरी तोड़ी में ख्याल गायन और राग मिश्र कौशिया में ठुमरी गायन। सबसे पहले आइए सुनते हैं राग गुजरी तोड़ी में ख्याल गायन।

श्रोताओं, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे राग गुर्जरी तोड़ी में ख्याल गायन, कलाकार थे सी.आर. व्यास। आइए अब सुनते हैं शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में ठुमरी गायन सी.आर. व्यास से। आप प्रस्तुत कर रहे हैं राग मिश्र कौशिया।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्स पर। श्रोताओं, अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में मैं नीलम अलकानिया आप सभी का स्वागत करती हूं। साथियों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं, हमारा ये कार्यक्रम माननीय प्रधानमंत्री जी के मन की बात का विस्तार है और इस बार प्रधानमंत्री जी ने मन की बात में उल्लेख किया है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का, हम सभी के प्रिय, हम सभी के आदरणीय। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमें ये प्रेरणा दी कि हम अब्दुल कलाम जी के व्यक्तित्व को, उनके दर्शन को और देश के प्रति उनके योगदान को जाने, समझे और उसके महत्व को भी पहचाने, और साथ ही ये भी जाने कि किसी एक साधारण से परिवार में जन्मे किसी बच्चे की यात्रा रामेश्वरम से जब राष्ट्रपति भवन तक होती है तो बीच के क्या पड़ाव होते हैं और जीवन किस तरह से उनके सामने धीरे धीरे खुलता है। तो आइए सबसे पहले मैं अपने विशेषज्ञों का परिचय आपसे करवाती हूँ। आज स्टूडियो में हमने आमंत्रित किया है श्री अनुज सिन्हा जी को। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। आप एडवाइजर भी रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में।
1: नमस्कार, थैंक यू।
0: हमारे दूसरे विशेषज्ञ हैं डॉक्टर नकुल पराशर। अप्लाइड फिजिक्स में आपने PhD की है, आप ऑथर भी हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड रहे हैं आप और साथ ही विज्ञान प्रसार के निदेशक भी रहे हैं। नकुल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत स्टूडियो में।
2: धन्यवाद, नमस्कार।
0: डॉक्टर रश्मि हमारे साथ हैं, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं। कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी है, कलाम तुम लौट आओ पुस्तक आपने लिखी है, कलाम इंस्पायर्स आपकी रचना है। और एक बेहद खास बात ये है कि डॉक्टर रश्मि ने जब कलाम साहब की आत्मकथा लिखी तब उनका ही मार्गदर्शन रश्मि जी को प्राप्त हुआ। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
0: तो साथियों, इससे पहले कि मैं अपने सवालों की बौछार अपने विशेषज्ञों पर करूं और अपने विशेषज्ञों के माध्यम से हम कलाम साहब को और जाने, आइए मैं आपको सुनवाती हूं माननीय प्रधानमंत्री जी का वो उद्गार, मन की बात का वो हिस्सा जिसमें उन्होंने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम का उल्लेख किया है।
4: मेरे प्यारे देशवासियों, डॉक्टर कलाम के व्यक्तित्व में कई प्रेरक रूप थे, लेकिन उनके हृदय के सबसे करीब एक शिक्षक की भूमिका थी। वे बच्चों और युवाओं को बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करते थे। हमारे माता पिता हमारे पहले गुरु होते हैं, स्कूल के शिक्षक हमें अक्षर ज्ञान देते हैं। मैं देश के सभी शिक्षकों और गुरुजनों को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूँ।
0: तो ये थे माननीय प्रधानमंत्री जी के प्रेरक शब्द और उन्होंने एक और प्रेरक व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया, भारत रत्न डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के बारे में, बेहद सम्मान से जिनका नाम लिया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम अपने विशेषज्ञों से ये सवाल करते हैं। अनुज सिन्हा जी, मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाहूंगी कि हम जब APJ अब्दुल कलाम जी का नाम लेते हैं तो बहुत सम्मान मन में आता है। हम उन्हें अपने पूर्व राष्ट्रपति जी के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक वैज्ञानिक के रूप में याद रखें, हम उन्हें एक शिक्षक के रूप में याद रखें, या उनके व्यक्तित्व के ऐसे भी और कई पहलू हैं जो हम सबको जानने चाहिए।
1: बहुत सही बात है, डॉक्टर कलाम जो हैं वो हम सभी लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत रहे हैं
0: जी।
1: उनकी शुरुआती जो लाइफ थी बड़ी कठिन थी
0: जी,
1: और उसके बावजूद उनके पास जो वैल्यू सिस्टम्स आए उनके फैमिली के रिलेशन की वजह से, वो ऐसे थे कि आज भी मेरा ख्याल है उनका बहुत इम्पोर्टेंस है। और वो जो वैल्यू सिस्टम्स हैं उसकी वजह से वो पहले स्पेस प्रोग्राम में उन्होंने अपना सिक्का जमाया
0: जी,
1: उसके बाद डिफेंस प्रोग्राम में अपना हुनर दिखाया, और उसके बाद वो और कई चीज़ों में रहे, परंतु लार्जली जो उनका राष्ट्रपति पद पर जो रहे 5 वर्ष, उसमें जो उन्होंने कंट्रीब्यूट करा, उसके बाद भी वो विद्यार्थियों के साथ, टीचर्स के साथ जुड़े रहे

श्रोताओ, शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे पंडित सीआर व्यास से ठुमरी गायन। आप प्रस्तुत कर रहे थे राग मिश्र कौशिया। इसी के साथ ही शास्त्रीय संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है।

0: उनका कहना था कि मैं इन बच्चों से बहुत कुछ सीखता हूँ
1: जी।
0: उनको एक मेरा ख्याल है कि बड़ा अच्छा लगता था जब वो बच्चों से बात करते थे, और ये सब मिला जुला के जो उनकी पर्सनैलिटी थी वो एक मेरा ख्याल है कि बहुत ही इम्प्रेसिव पर्सनैलिटी थी
1: जी।
0: उनमें हल्का सा भी अहंकार नहीं था। वो चाहे राष्ट्रपति रहे हों या जब वो चीफ रहे हों, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर रहे हों या डिफेंस के साइंटिस्ट रहे, डायरेक्टर जनरल, वो उनमें बिल्कुल भी अहंकार नहीं था। जब बात करते थे वो समझने की कोशिश करते थे हम लोग क्या बोल रहे हैं या कोई और क्या बोल रहा है, और समझने की कोशिश करते थे, सीखते थे और उससे फिर आगे बढ़ते थे
1: जी।
0: तो ये एक उनकी बहुत अच्छी क्वालिटी थी
1: जी
2: जी।
1: तो ये हमें याद रखनी चाहिए जी। डॉक्टर नकुल, मैं आपसे जानना चाहूंगी, डॉक्टर कलाम का मानना था कि विज्ञान केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं होना चाहिए बल्कि समाज तक पहुंचना चाहिए, इस बारे में आप क्या कहेंगे?
2: नहीं, ये बहुत अच्छा सवाल इसलिए है क्योंकि जैसा भी सिन्हा साहब ने कहा कि कलाम साहब एक पीपल्स प्रेसिडेंट थे, लोगों से जुड़े हुए थे, और शुरुआती की दौर से अपने जीवन की शुरुआत से उन्होंने विज्ञान पढ़ा, विज्ञान के प्रति उनकी लालसा रही, और खासकर विज्ञान को आम जनमानस तक पहुंचाने की उन्होंने बहुत चेष्टा करी
1: जी।
2: और इसीलिए वो हर तरह से, ताकि विज्ञान ऐसा ना लगे कि वो लैब में कुछ अजीब सा कुछ चल रहा है जो लोगों तक ना पहुंच पाए, तो इसलिए उसको सबसे पहले उन्होंने उस बात को समझा, उस बात को खुद आत्मसात किया था, बचपन में देखा कि किस तरह से विज्ञान जो है बहुत जरूरी है हम सबके लिए, तो बच्चों के बीच में गए, बच्चों से मिलना शुरू किया। मुझे अच्छे से याद है कि 14 मई 2003 में जब वो राष्ट्रपति थे तो उनके पास स्कूलों के प्रिंसिपल और टीचर्स आए, तो उन्होंने उनके साथ बैठ के अपने वो सारे अनुभव साझा किए। तो आप जब आर्काइव्स में उनके देखते हैं तो ऐसे तमाम आपको उदाहरण मिलते हैं जहां वो विज्ञान को आम आदमी तक, आम आदमी के समझने लायक बनाने की पूरी उन्होंने पुरजोर कोशिश की और पुरजोर उसकी वकालत करी, और वो वकालत उन्होंने अपने जितने भी एक्शंस थे उनके जरिए लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा करी। तो एक कुछ छोटा सा एग्जांपल, जैसे मैंने बताया 14 मई 2003 का उनका ये जो स्पीच आर्काइव से मिलता है, उसमें उन्होंने कैसे बताया कि जब वो स्कूल में पढ़ते थे तो कैसे लोगों ने उनको प्रभावित किया और कैसे जीवन में उन्होंने बहुत सारी ऐसी जो कुरीतियां हैं, जो चीजें हैं उनके समझ में लगती थी, उनको उन्होंने विज्ञान के जरिए उसको दूर भगाने की चेष्टा की, लोगों के अंदर उसका प्रसार किया। तो उनका ये शुरू से खुद ये रहा कि पहले खुद करके देखूं और उसको अनुभव करूं और तब लोगों तक पहुंचाऊं। तो ये काम जो विज्ञान संचारक या प्रचारक होता है उसका ये एक बहुत बड़ा गुण है और इसको उन्होंने बखूबी करके दिखाया
1: जी। यहाँ मैं आपसे आपकी पसंद का एक गाना जानना चाहूंगी।
2: बिल्कुल जरूर जरूर। और चूंकि कलाम साहब शुरू से हमारे डिफेंस में, हमारे जितने फौजों के लिए काम करते थे, तो मुझे हमेशा से उनका ये जज्बा बहुत अच्छा लगता था। और लक्ष्य फिल्म का एक गाना है, कंधों से मिलते हैं कंधे, मेरे ख्याल से बहुत सामयिक रहेगा, बहुत प्रासंगिक रहेगा
1: जी। बिल्कुल, हम यही गाना अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज इस कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं सभी के प्रिय और सम्मानित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को। आप सर्वोच्च संवैधानिक पद पर तो आसीन रहे ही, भारत के आप राष्ट्रपति रहे, लेकिन साथ ही आप छोटे छोटे विद्यार्थियों के दिलों में भी बसे रहे, और यही सबसे बड़ी खास बात है जो उन्हें पीपल्स प्रेसिडेंट बनाती है। आज हम कलाम साहब के बारे में बात कर रहे हैं हमारे विशेषज्ञों से। हमारे साथ हैं अनुज सिन्हा जी, आप साइंस कम्युनिकेटर हैं और साथ ही आप पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के। हमारे साथ डॉक्टर नकुल पराशर हैं, आप भी पूर्व निदेशक हैं विज्ञान प्रसार के और साथ ही आप ऑथर भी हैं। और हमारे साथ डॉक्टर रश्मि हैं, आपने कलाम साहब की आत्मकथा लिखी है और भी अपनी रचनाएं आपने कलाम साहब को समर्पित की हैं, लेखिका हैं आप। तो रश्मि जी, मैं अब आपसे जानना चाहूंगी, जैसा कि हमने अपने श्रोताओं को बताया कि पुस्तकें तो कलाम साहब पर बहुत लोगों ने लिखी हैं और गर्व भी महसूस करते हैं वो कि उनकी जो एक रचना है वो कलाम साहब के नाम हुई, उनकी लेखनी ने ये सौभाग्य पाया। लेकिन आपके साथ खासियत ये है कि जब आपने अपनी पुस्तक लिखी तो स्वयं कलाम साहब का मार्गदर्शन आपको मिला। मैं चाहूंगी कि आप अपना ये अनुभव हमारे श्रोताओं के साथ जरूर साझा करें। कैसा लगा आपको जब पहली बार आप उनके पास गईं, उनसे मिलीं, और क्या फिर प्रक्रिया रही आगे बातचीत की?
1: मैं आपको बताना चाहूंगी कि जब मैं डॉक्टर कलाम साहब से, मैं दरअसल से 3 बार मिली।

0: तो जब मैंने ये विचार किया कि मैं इन पर पुस्तक लिखूं, तो मैं डॉक्टर कलाम साहब से मिली और मैंने उनसे कहा कि सर मैं आप पर एक पुस्तक लिखना चाहती हूं। तो उन्होंने मुझे बोला कि मेरे ऊपर तो बहुत किताबें हैं, बहुतों ने लिखा है, अब आप क्या लिखेंगी? तो मैंने कहा कि मैं आप पर उपन्यास लिखना चाहती हूँ, एक जीवनी परक उपन्यास। तो हंसते हुए बोले कि अब तो मुझे हीरो बनाओगी। तो मैंने कहा सर आप हीरो हैं, मैं आपको हीरो क्या बनाऊंगी, मैं तो बल्कि जब अपने युवाओं से बच्चों से बात करती हूँ और उनसे पूछती हूँ कि बेटा तुम्हारा फेवरेट हीरो कौन है, और जब वो मुझे किसी बॉलीवुड के स्टार का या हॉलीवुड के स्टार का नाम लेते हैं तो मेरे मन में बड़ी इच्छा होती है कि वो ये क्यों नहीं कहते कि डॉक्टर कलाम मेरे हीरो हैं, विवेकानंद मेरे हीरो हैं, भगत सिंह मेरे हीरो हैं। तो सर वो हंसने लगे, बिल्कुल बच्चों की तरह खिलखिला के हंसे। और आप यकीन मानिए मैं सोच के गई थी कि मैं देश के इतने बड़े भूतपूर्व राष्ट्रपति से मिल रही हूँ, भारत रत्न से मिल रही हूँ, मैं इतने बड़े प्रौद्योगिकी के और अपने वैज्ञानिक से मिल रही हूँ जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दिया। लेकिन जब मैं उनके सामने बैठी थी तो मैं अपने घर के किसी बुजुर्ग के सामने बैठी थी, ऐसा लग रहा था। इतने विनम्र, हंसता हुआ चेहरा। आज जब मैं डॉक्टर कलाम को याद करती हूँ तो मैं उन्हें किसी पद से याद नहीं कर पाती, कभी मेरे सामने उनका वो चेहरा नहीं आता, ना राष्ट्रपति वाला, ना बस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा, एक सौम्य सादगी से भरा चेहरा, एक ऐसे व्यक्ति जो कभी भी आपसे मुलाकात में अपनी उपलब्धियां नहीं बताएंगे, कभी भी अपने बारे में नहीं बताएंगे, वो हमेशा ये पूछेंगे कि देश में क्या होना चाहिए, आगे क्या होना चाहिए, देश कैसे आगे बढ़ेगा, युवाओं में कैसे देश के प्रति संस्कार पैदा होंगे। उनका 2020 विजन इसी को समर्पित था जिन्होंने अंतिम सांस तक जिस पर उन्होंने काम किया। तो मैं डॉक्टर कलाम को इस तरह से देखती हूँ, यहीं से बस इतनी प्रेरणा गहरी होती चली गई कि अब मुझे एक ऐसा उपन्यास देना है ताकि ये हमारी युवा पीढ़ी को रास्ता दिखाए, हमारे बच्चों को एक सपना दिखाए, और यहीं से यात्रा शुरू हो गई।
1: जी, तो जब आपकी पुस्तक लिखी जा चुकी थी उसके बाद का क्या अनुभव था, ये कलाम साहब के हाथों में पहुंची?
0: हाँ, ये मैं जरूर बताना चाहूंगी कि जब ये पुस्तक शुरू की थी तो कलाम साहब के आशीर्वाद से शुरू की थी
1: जी।
0: उन्होंने मुझे कुछ चीजें भी सुझाई थी, वो सब मैंने डाली, यहाँ तक कि उनके हाथों में लॉन्च भी करवाना चाहती थी। लेकिन जब किताब का अंतिम रूप आया तो वो दुनिया से दैहिक रूप से जा चुके थे। ये मेरे लिए बहुत दुख का समय था। तो अगर आप इस उपन्यास को उठाएंगे तो उसकी जो पहली पांडुलिपि थी उसमें प्रारंभ और अंत थोड़ा अलग था, बाद में मुझे उसका अंत अलग करना पड़ा क्योंकि तब वो जा चुके थे। जब मैं ये पुस्तक पूरी कर रही थी तो मैं पूरी प्रेरणा से पूरी कर रही थी, लेकिन जब डॉक्टर कलाम दैहिक रूप से चले गए तो मैं बहुत उदास थी, निराश थी। लेकिन मेरे मित्रों ने, मेरे परिवार ने, मेरे प्रकाशक ने, उन्होंने मुझे बहुत प्रेरित किया कि नहीं रश्मि, इस पुस्तक को पूरा करेंगे, ये उनकी श्रद्धांजलि होगी उनके प्रति आपकी। तो ये पुस्तक पूरी हुई, फिर डॉक्टर एसएम खान साहब ने इसको लॉन्च किया और इस तरह से ये फिर पुस्तक आई।
1: तो अपनी पसंद का कौन सा गाना इस समय कलाम साहब को याद करते हुए आप हमारे श्रोताओं को सुनवाएंगी?
0: मैं सुनाना चाहूंगी आशाएं आशाएं, कुछ करने की हो आस आस, क्योंकि ये डॉक्टर कलाम का तो पूरा जीवन इसी में ही है।
1: जी, तो बहुत ही प्यारा सा गाना आपने चुना है, हम अपने श्रोताओं को सुनवा रहे हैं यही।

0: गाने के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। आज का हमारा ये कार्यक्रम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, हमारे ऐसे भूतपूर्व राष्ट्रपति, ऐसे भारत रत्न जो हर दिल में बसते हैं, और उनके जीवन से जुड़े ऐसे बहुत सारे पहलू हैं, जब जब हम उनके बारे में जानते हैं एक नई प्रेरणा हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। हमारे साथ हमारे विशेषज्ञ हैं इस कार्यक्रम में, अनुज सिन्हा जी हैं, डॉक्टर नकुल पराशर हैं, डॉक्टर रश्मि हैं। मैं अनुज जी अब आपसे जानना चाहूंगी, हम मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की जब बात करते हैं, ऐसे में हम उस समय की भी जरूर बात करें जब उन्होंने एक वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था। आप उस दौर को कैसे याद करते हैं, क्या उस तरह चुनौतियां रही थी उस समय उनके सामने?
1: डॉक्टर कलाम का बचपन जो है वो बहुत कठिन था
0: जी,
1: लेकिन उनके जो विचार थे और जो उनके साथ जो लोग मिले, उन्होंने उनको एक तरह से सपोर्ट दिया, एक रोल मॉडल बन पाए
0: जी।
1: वो अधिकतर मतलब कहूँगा पेरेंट्स खुद ही मानते हैं बात को, कुछ टीचर्स जिनके नाम वो लिखते हैं बताते भी हैं
0: जी,
1: ये दोनों ने मिलकर उनको मतलब इस प्रकार से प्रेरित किया कि वो बीएससी करे, उसके बाद इंजीनियरिंग करे, और उनको मौका मिल गया कि वो स्पेस रिसर्च प्रोग्राम्स में जुड़ गए, और वहाँ पर उन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो तो सब जगह लिखा ही हुआ है
0: जी।
1: उनका जो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के साथ जुड़ाव था उसमें उनको फेलियर्स भी मिले एंड सक्सेस भी मिले। मेरा ख्याल है कि ये एक बड़ा इम्पोर्टेंट लेसन है जो कि रश्मि जी की पुस्तक में भी आ रहा है
0: जी,
1: कि फेलियर्स को किस तरह से सामना करना और उससे डिफीट नहीं होना है, है ना, उसको आगे बढ़ाना है। तो उससे फिर वो जब डिफेंस में आ गए तो कुछ उनके मन में आ रहा था कि मैं तो स्पेस में इतना अच्छा काम कर रहा हूँ
0: जी,
1: क्यों मुझे भेजा जा रहा है वहां पर। लेकिन जो उनको जब चुनौती उस बताई गई कि क्या है, और वो चाहते थे कि मिसाइल्स बनाई जाएं, और उनका जो एक्सपीरियंस है स्पेस रिसर्च में उससे मिसाइल्स को भी फायदा बेनिफिट होगा
0: जी,
1: तो फिर वो यहाँ आ गए। और उन्होंने सबसे पहले मैं कहूँगा वो काम करा जो पुराने जो वहाँ पे वैज्ञानिक लोग थे वो नहीं कर पा रहे थे, वो था नवाचार। उन्होंने इनोवेशन को बहुत सपोर्ट दिया
0: जी,
1: और उस प्रकार से उन्होंने फिर जो अग्नि, नाग, त्रिशूल, पृथ्वी, जो मिसाइल्स बनाई एक के बाद एक, उन्होंने उनकी टीमों ने
0: जी,
1: वो तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि इन्होंने उसमें इनोवेशन लाया। और एक उदाहरण है अगर आप सुनना चाहें तो
0: जी,
1: समस्या थी जिसमें वो जुड़ रहे थे, फंसे हुए थे, तो उन्होंने आईआईटी खड़गपुर से और ढेरों मतलब इंस्टीट्यूशन से वहाँ के लोगों को बुलाया, उनके सामने प्रॉब्लम पेश करी गई, उनको 7 दिन का समय दिया गया, और जो उन्होंने उसमें सोल्यूशन निकाले उसमें से बेस्ट सिलेक्ट करा गया, और फिर उसके साथ मिलकर उन्होंने अपना जब लॉन्च करे सैटेलाइट तो सक्सेसफुल हुए
0: जी।
1: इसी प्रकार से उनके मतलब जो रहता था कि जो सरकारी तरीके से अगर करते तो शायद उनको लग जाते उसमें महीनों लग जाते, यहाँ उन्होंने हफ्तों में वो करके दिखा दिया
0: जी।
1: फिर वो आगे एटॉमिक एनर्जी में उनको लाया गया, उस समय पोखरण की तैयारियां हो रही थी और उनके नेतृत्व में पोखरण 2 बनाया गया, और जिसकी वजह से फिर 1998 के बाद से हम लोग टेक्नोलॉजी डे भी सेलिब्रेट करते हैं
0: जी।
1: वो एक बहुत इम्पोर्टेंट स्टेप लिया गया, और उसके लिए वो अपने तरह से पूरे क्लियर थे कि देश को पावरफुल होना।

0: चाहिए और वो अगर पावरफुल है तो ही मतलब आगे बात बढ़ेगी, पीस रहेगा, और अगर पावरफुल नहीं है तो पीस रहना मुश्किल है
1: जी।
0: तो शांति के लिए उन्होंने मतलब ये करा था। और उसके बाद फिर वो समय देखे वो तो चाहते थे स्पिरिचुअलिटी
1: जी,
0: और बहुत समय उन्होंने खर्च करा अपना 1997 के बाद से, कई गुरुओं से मिले, ब्रह्म कुमारी के वहां पर जाके समय बिताए
1: जी,
0: और भी कुछ करा। उनको लगता था कि मतलब हमें कुछ सीखना चाहिए, कुछ हम लोगों को यहाँ पर हम लोग आए हैं तो कुछ हमने करना चाहिए
1: जी।
0: वो समय उनके मेरे ख्याल 3-4 साल जो है उन्होंने बहुत कुछ सीखा है। फिर वो राष्ट्रपति बन गए और वो तो माननीय हम लोग के वो पीपल्स प्रेसिडेंट रहे
1: जी।
0: क्या क्या नहीं करके दिखाया उन्होंने, जो उनका जुड़ाव रहा बच्चों के साथ और स्टूडेंट्स के साथ, वो देख के हम लोग को हमेशा ही मेरे ख्याल सीखना चाहिए कि किस प्रकार से जो स्टूडेंट्स हैं वो उनके लिए इंस्पिरेशन बनते थे। उनको लगता था कि यहाँ पे मुझे एनर्जी मिल रही है जो कि बुजुर्ग लोगों के साथ बात करके शायद नहीं मिलती
1: जी।
0: तो जैसे हम लोग एक राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस करते थे हर वर्ष, वो उसमें जुड़ते थे आके, और उनके पास अगर मतलब समय नहीं हुआ दूसरी बात है, लेकिन अदरवाइज उन्होंने मेरा ख्याल है कि 6-7 बार आए हैं वो, और उन्होंने मतलब बच्चों से बात करी है और प्रश्न पूछते थे
1: जी,
0: प्रश्न का जवाब देते थे, जो बच्चे प्रश्न पूछेंगे उसका जवाब देते थे। मेरा ख्याल है उनकी जो ये क्वालिटीज हैं ये फ्यूचर के लिए बहुत मुश्किल होगा किसी और में ढूंढे मिले।
1: तो आपने तो देखा है बच्चों से संवाद करते हुए उन्हें, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बच्चों का उत्साह उस समय कैसा होता था, किस तरह की प्रतिक्रिया बच्चे देते थे?
0: बच्चे जैसे बिल्कुल मग्न हो जाते थे
1: जी।
0: मेरे बगल में इधर एक लड़की बैठी हुई थी, पसीना टपक रहा है उसके, हम लोग मैसूर में थे और कलाम साहब जो है उसको बात पूछ रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक दिस विल हैपन, ये वो इतना मतलब सिर हिला के उसके लिए मतलब उस पूरे हॉल में सिर्फ 2 लोग थे, वो और डॉक्टर कलाम
1: जी,
0: बाकी 600-800 लोग और हैं वो उनके लिए मतलब नहीं था, क्योंकि इनसे बात करी थी उन्होंने, लड़की से बात कर पूछा था कुछ
1: जी।
0: तो इतना मुझे अच्छा लगा कि देखो ये कैसा कम्युनिकेशन है बिटवीन सीनियर साइंटिस्ट एंड ए यंग गर्ल 12 इयर्स 13 इयर्स
1: जी,
0: लेकिन कंप्लीट कम्युनिकेशन है, वो लड़की समझ रही है क्या बोला जा रहा है, वो समझ रहे हैं कि लड़की क्या जवाब दे रही है
1: जी।
0: और उसको मतलब बहुत एनकरेज करा और बैठा दिया। आई वुड लाइक टू नो कि वो लड़की कहाँ है, मोस्ट प्रोबब्ली वो कहीं जरूर साइंटिस्ट ही होगी
1: जी।
0: तो ये इस प्रकार का उनका जो पकड़ था वो इम्पॉसिबल टू रिट्रेस। एक और बताऊंगा मैं कि दिसंबर 2004 में वो सुनामी आ गई थी, बहुत लोग डिस्टर्ब थे, उनका समय था हम लोग के साथ 26 तारीख का, वो 26 तारीख को ये सुनामी आ गई थी तो प्रोग्राम कैंसिल हो गया, लेकिन वो कहते हैं कि 29 को आ जाएंगे, 29 को आ गए, डिस्पाइट द फैक्ट कि वो राष्ट्रपति हैं, उनके सामने बहुत सी चिंताएं हैं
1: जी,
0: बहुत से लोगों में यहाँ भी मतलब कोस्टल एरिया पे बहुत डिस्टर्बेंस हुआ है, आंध्र प्रदेश में तमिलनाडु में वो भी परेशान थे, लेकिन उनका आगे हम बच्चों से बात करेंगे
1: जी,
0: तो बहुत अच्छा लगता है इनके बारे में सोच के जान के
1: जी। तो बच्चों को वो प्राथमिकता देते थे, उनके विचारों को सुनते थे और फिर समाधान भी करते थे, और इसीलिए शायद बच्चे जो हैं वो भी जो कलाम साहब ने उन्हें सपने देखने सिखाए थे उन पर वो आगे बढ़े हैं, और बहुत सारे वैज्ञानिक ऐसे हैं जो श्रेय देते हैं कलाम साहब को ही कि आज उन्हीं की वजह से हम ऊंचाइयां छू पाए जीवन
2: जी।
1: में जी। तो यहाँ मैं अनुज जी आपकी पसंद का एक गाना जानना चाहूंगी अपने श्रोताओं के लिए।
0: गानों में बहुत इंटरेस्ट नहीं है मुझे, लेकिन हाँ एक गाना जो याद आ रहा है
1: जी,
0: छोड़ो कल की बातें, कल की बात पुरानी
1: जी,
0: नया जोर है ना, मिलके लिखेंगे कहानी
1: जी, बहुत ही प्यारा सा गाना।

0: गाने के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है पोस्ट बॉक्स नंबर 111 में। और जैसा कि ये गाना भी हमें कहता है, मिलकर लिखेंगे नई कहानी। तो कलाम साहब ने अपने जीवन से हमें ये प्रेरणा दी, उन्होंने नवाचार को प्राथमिकता दी और उन्होंने नए मस्तिष्क जो बच्चे थे उनके अंदर ऊर्जा भरी। यहाँ मैं डॉक्टर नकुल आपसे जानना चाहूंगी, कलाम साहब जब भी बच्चों से मिलते थे तो ड्रीम ड्रीम ड्रीम, बड़े सपने देखो, ये हमेशा कहते थे। आपको क्या लगता है इस एक पंक्ति का क्या जादू रहा होगा?
1: पंक्ति का ये जादू रहा कि उन्होंने खुद इसको, जैसे मैंने पहले कहा कि पहले किसी चीज को कहने से पहले वो खुद आत्मसात करते थे और फिर चाहते थे कि वो अपने अनुभव के आधार पर लोगों में उस बात को पहुंचा पाए। और उनका हमेशा ये रहा कि सपने आपके अंदर बड़े होने चाहिए कि आपको आपकी नींद गायब हो जानी चाहिए और जब तक आप वो सपना हकीकत में ना हासिल कर लें तब तक आप उस पर काम करते रहें। ये एक तो उनका ड्रीम का रहा। दूसरा, बहुत ऐसे कई अनुभव रहे। व्यक्तिगत तौर पे मुझे एक लाभ मिला, मेरे दिवंगत ससुर साहब के साथ उन्होंने काम किया डीआरडी में, वो भी साइंटिस्ट थे, वो भी एडवाइजर।

0: सर थे,
1: जी
0: तो कई बार उनसे पता चलता था कि देर रात तक काम करना और सुबह जल्दी उठना उनका नियम था। ये कई सालों से ये नियम था, और ये नियम जब उनसे पूछा गया तो कहाँ से मिला, तो वो एक ऐसे परिवार में थे जिसमें चार भाई बहन थे वो, और उनकी सबसे बड़ी बहन ने उनको सहयोग करके उनकी इंजीनियरिंग कंप्लीट कराई थी। तो उसके अंदर उनको ये एहसास था कि कैसे अगर किसी चीज को प्राप्त करना है, वो कहते हैं ना कि नो पेन्स एंड नो गेन्स, उसका वो सार्थक उदाहरण थे और वो करके दिखाया उन्होंने। और रही बात उनके बच्चों के साथ और सबके साथ, उनका ये मानना था, जैसे अभी हमने कहा कि वो पीपल्स प्रेसिडेंट थे, अभी सेना साहब ने बताया कि उन्होंने मिसाइल पे काम किया तो वो मिसाइल मैन हुए, और ऐसे न जाने कितने एडजेक्टिव्स उनके साथ जुड़ते चले गए। उनका स्वभाव, उनका काम, वो एक आदर्श स्थापित करते चले गए। जैसे डॉक्टर अश्मी ने बहुत अच्छा कहा अभी कि वो कोई भी चीज, कोई भी काम करने से पहले जो भी कुछ सोचते थे उसको पहले उसको प्रैक्टिकली कर। और साइंटिस्ट का एक मेरे ख्याल से गुण है कि वो कोई भी चीज अगर प्रपोज करता है, हाइपोथेसिस कुछ भी करता है, तो उससे पहले वो सोच के रखता है कि उसको प्रैक्टिकल कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो ये सारी तमाम चीजें अगर आप देखें, और साथ में उनकी जो एक और किताब है विंग्स ऑफ फायर, उसके अंदर बहुत कुछ स्पष्ट तौर पर ये आपको पढ़ने को मिलता है। और मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर अश्मी का उपन्यास और विंग्स ऑफ फायर हर एक बच्चे को और हर एक व्यक्ति को पढ़ना चाहिए जिसमें ये लालसा है, जिसमें वो समझता है कि चाहे वो वैज्ञानिक वो बैकग्राउंड से हो या ना हो, पर एक आम आदमी के अंदर एक आगे बढ़ने की ललक है, उसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, जिसे कहते हैं किसी भी चीज के लिए एक ट्रबल शूटिंग मैकेनिज्म या बुक होती है, उसी तरह से वो ये दो किताबें मेरे ख्याल से सबके लिए उतने अच्छे तरीके से, डॉक्टर अश्मी का उपन्यास सहजता से लिखा गया है, मेरे ख्याल से वो एक बहुत अच्छा वो रहेगा। इस पे अगर हम डॉक्टर रश्मि से भी और चर्चा करें तो बहुत अच्छा रहेगा।
1: जी बिल्कुल। मैं रश्मि जी अब आपसे जानना चाहूंगी, अगर हम सामाजिक पक्ष की बात करें डॉक्टर कलाम के, तो जिस सामाजिक पृष्ठभूमि से वो आते थे, जिस तरह की कठिनाइयां उन्होंने झेली हैं और उसके बाद जो उपलब्धियां उनकी रही हैं, मैं चाहूंगी कि आप इनके बारे में भी जरूर हमसे चर्चा करें और हमें ये बताएं कि आम तौर पर उस तरह की कठिनाइयों में बच्चे कैसा महसूस करते हैं और कैसे कलाम साहब एक उदाहरण बने सबके सामने।
2: जी बिल्कुल। मैं ये बताना चाहूंगी कि आजकल जब बच्चे सुविधाओं की बात करते हैं तब हमें डॉक्टर कलाम बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण की तरह सामने आते हैं। डॉक्टर कलाम के अगर बचपन को देखें आप, तो धनुषकोटी के, रामेश्वरम के धनुषकोटी के एक छोटी सी जगह से निकले वे बालक थे जो कि सपने देखते थे। छोटा सा उनका घर जहाँ वो रह रहे हैं अपने परिवार के साथ, अपने माता जी, पिताजी, उनके पिताजी मस्जिद के मेन, और उस परिवार से वो निकल कर आ रहे हैं। और हम जैसा कहते हैं कि उन्होंने बचपन में अखबार भी बांटे, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था और उनके जो कजन थे एजेंसी चलाते थे। डॉक्टर कलाम साहब ने उस बचपन में, जब आज हमारे बच्चे सुविधाएं मांगते हैं, उन्हें एसी रूम चाहिए, पढ़ने के लिए सारी सुविधाएं चाहिए, तब डॉक्टर कलाम सुबह 4 बजे उठ करके ट्यूशन पढ़ने जाते थे, लौटते वक्त अखबार घरों घरों में डालते थे, इसके बाद आकर फिर अपने स्कूल पढ़ने जाते थे। तो इस तरह का उनका जीवन था। तो अगर आप कोई बड़ा सपना देख रहे हैं, आप बड़े बनना चाहते हैं, तो आप उस बड़े व्यक्ति को ये ना देखें कि वो बड़ा बन गया, ये देखें वो बड़ा किस किस तरह से बना, किन किन जर्नियों से गुजरा, क्या क्या संघर्ष थे उसके जीवन में, तब वो बड़ा बना। तो डॉक्टर कलाम हमें यही बता रहे हैं, वो इतने बड़े पदों पर रहे, राष्ट्रपति के पद पर रहे वो सब, लेकिन उन्होंने कभी, मैं उनको देखकर ये नहीं कहती कि वो लोगों को प्रभावित करते हैं या उन्होंने मुझे प्रभावित किया, नहीं, उन्होंने मुझे प्रेरित किया। बहुत फर्क है इन दोनों शब्दों में कि आप प्रेरित हो रहे हैं या प्रभावित हो रहे हैं। तो इसलिए इतना बड़ा वैज्ञानिक, आप ये सोचिए कि वो अपने शांति के क्षणों में वीणा बजाता था। जिन्होंने देश को मिसाइल शक्ति दी वो कर्नाटक संगीत सुना करते थे। तो ये उनके जीवन के वो पक्ष हैं जो और हमें उनके लिए एकदम प्रेम से, आदर से भर देते हैं।
1: जी बिल्कुल। और इनमें विरोधाभास भी नजर आता है, लेकिन एक इस तरह का विरोधाभास जैसा कि आपने कहा कि वो हमें प्रेरित करता है। मिसाइल मैन के हाथों में जब हम वीणा देखेंगे तो कैसी अद्भुत छवि वो लगेगी।
2: जी, क्योंकि मिसाइलें जो है वो मनुष्य को पूरा मनुष्य नहीं बना रही हैं। जब उसके अंदर संवेदनाएं हैं, जब वो संगीत से जुड़ा है, कला से जुड़ा है, तब उनके अंदर संवेदनाएं जागती हैं। क्योंकि डॉक्टर कलाम का जो कार्य था ना, अगर आप ध्यान से देखें तो वो अध्यात्म के स्तर पर था। उनके लिए वो भक्ति थी, देश प्रेम उनकी प्रगाढ़ भक्ति थी। तो हम ऐसे उन्हें समझते हैं आज।
1: जी, और इसीलिए हम चाहते हैं कि बार बार हमारे युवा, हमारे विद्यार्थी कलाम साहब को पढ़ें, उनके बारे में

0: जाने, क्योंकि जो सपने उन विद्यार्थियों के मन में है उसकी राह इस जीवनी से हमें मिल सकती है, कलाम साहब को जानने से मिल सकती है। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, हम जब विकसित भारत की बात करते हैं और हम अभी कहते हैं कि 2047 तक भारत को विकसित भारत हमें बनाना है, ये लक्ष्य हमारे सामने है, ऐसे में एक लक्ष्य उन्होंने रखा था इंडिया 2020, हम इस बारे में जानना चाहेंगे।
1: डॉक्टर कलाम के बहुत से कंट्रीब्यूशंस हैं
0: जी,
1: और जिनको सबको लिस्ट भी नहीं करा जा सकता। अपना समय दिए और एक कमेटी में वो चेयरमैन थे, टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन फोरकास्टिंग एंड असेसमेंट काउंसिल में, और उसमें उन्होंने 5 एरिया जोड़े थे
0: जी,
1: जिसमें उन्होंने कहा था कि देश को काम करना चाहिए, जो आप कह रही हैं कि आगे कैसे बढ़े, विजन 2020 क्या होना चाहिए। एक तो उन्होंने कहा था कि कृषि और फूड प्रोसेसिंग इसमें जोड़ना चाहिए
0: जी,
1: और उसके उन्होंने मतलब कई सजेशन दिए थे उनकी कमेटी ने। दूसरा पावर जनरेशन, हम लोगों को जितनी हम लोगों को जरूरत है उतने उससे उतनी होनी चाहिए, इस समय कम है। फिर उन्होंने एजुकेशन पर बहुत जोर दिया था
0: जी,
1: किस तरह से एजुकेशन होनी चाहिए हेल्थ केयर के साथ जोड़ के, और उस पर भी उनका अपना जो बड़ा तजुर्बा था हैदराबाद में और उससे पहले भी हेल्थ के साथ में बहुत इन्वॉल्वमेंट रहा उनका। फिर उस समय जो आ रहा था ये इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
0: जी,
1: ये पिछले 20 वर्षों में हमने देखा ही है पूरा देश किस तरह से बदल गया। और फिर उन्होंने कहा था स्ट्रेटेजिक एरियाज हैं डिफेंस के और स्पेस के
0: जी,
1: इसमें हमें आगे बढ़ के रहना चाहिए। तो विजन 2020 जो है उसमें इन सब चीजों को जोड़कर उन्होंने बनाया था। साथ में ये मतलब एक उनकी जो की बैकग्राउंड उस तरह का रह चुका है, उन्होंने कहा कि प्रोवाइड अर्बन फैसिलिटीज इन रूरल एरियाज
0: जी,
1: इसका मतलब है पूरा PURA, वो कहते थे कि इस पे काम करो। तो उन्होंने IIT चेन्नई को, IIT दिल्ली को और कई संस्थाओं को जोड़ा था कि कैसे नहीं हम लोग कर सकते हैं कि लोग गांव में रहें और गांव में ही कंट्रीब्यूट करें रादर देन कि सबके सब माइग्रेट करके शहरों में आए
0: जी।
1: तो रूरल एरियाज में उनका कहना था कि अर्बन फैसिलिटीज होनी चाहिए, तो उसमें कई उन्होंने मतलब अपना समय लगाया, जो आपके जो बतानी थी कि रात रात भर वो सोचते थे समझते थे
0: जी,
1: बातचीत करते थे और उससे उभर के निकल के आता था कोई अगर रिजल्ट। ये जो विजन 2020 है मेरा ख्याल है कि अभी भी इसमें अगर देखा जाए तो जरूर बहुत से अच्छे एक्सपर्ट्स ने कंट्रीब्यूशन किया है और उस पर डॉक्टर कलाम का छाप है, उस पर उनके हर एक सेंटेंस पे उनकी
0: छाप है जी। डॉक्टर नकुल, आपसे जानना चाहूंगी, जब कलाम साहब ने वैज्ञानिक के रूप में अपना सफर शुरू किया था और आज जब हम कहते हैं कि हम रक्षा क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर हो रहे हैं और अधिक से अधिक क्षेत्र में हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप कैसे तुलना करेंगे दोनों समय की, आज हमारा साइंस एंड टेक्नोलॉजी फील्ड कैसा है?
2: देखिए, जैसे सिन्हा साहब ने अभी बहुत कुछ बताया कि उनका विजन 2020 का जो डॉक्यूमेंट था वो अपने आप में एक मानक था, एक स्टैंडर्ड था, जिससे बहुत कुछ बहुत जो उसके बाद का जो भी समय रहा उसमें जितने भी विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़े जितने भी मंत्रालय, करीब 9-10 ऐसे मंत्रालय जो डायरेक्ट और अनडायरेक्ट तरीके से काम करते हैं, उन सब ने उसको समझने की कोशिश करी, उसको लेके आगे चलने की कोशिश करी, वहां से बहुत कुछ लिया और उसको डेवलप किया
0: जी।
2: मेरा ये कहना है कि वैश्विक स्तर पर विज्ञान और प्रौद्योगिकी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है, और खासकर अब तो हम देखते हैं कि हर छोटी सी चीज के लिए भी हम AI का इस्तेमाल करते हैं। तो इन सब चीजों के बीच में भारत ने बहुत तेजी से पिछले 10-12 सालों के अंदर बहुत तेजी से काम किया है, और एक दौर रहा जहां हमने देखा कि इन सब चीजों के लिए, रिसर्च के लिए खासकर, जैसा कि कलाम साहब का खुद का कहना था, इसके लिए एक तवज्जो, एक इम्पोर्टेंस, एक इम्पीटस मिलना चाहिए, और इसके लिए जो रिसर्च के फंड्स हैं उनका उसमें इन्हेंसमेंट होनी चाहिए, उसमें बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि इस वर्ष देश का एक RDI जो 1,00,000 करोड़ का जो रिसर्च का जो फंड है वो जो भारत सरकार ने लाए हैं वो बहुत बड़ी चीज है। फिर रिसर्च के अंदर उनका ये बहुत आवश्यक था कि जितने भी हमारे रिसर्च पब्लिकेशंस हैं जो एक मानक होते हैं कि आप क्या रिसर्च करते हैं
0: जी।
2: तो हमारे बहुत सारे विद्यार्थी बेचारे इतने महंगे रिसर्च से वंचित रह जाते थे, तो सरकार ने वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया
0: जी।
2: इस तरह से आप देखिए, क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्वांटम मिशन है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक मिशन है जो सुचारू रूप से उस पर काम कर रहा है, और देश के जितने भी बड़े बड़े थिंक टैंक और बड़े बड़े लोग हैं सब उसमें जुड़े हुए हैं और तेजी से उसके अंदर काम कर रहे हैं। तो मुझे ये बताते हुए बहुत अच्छा लग रहा है कि देश का जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, देश में जितने भी ये डेवलपमेंट है वो वैश्विक स्तर पे जो कुछ डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ एक पेस बना के चल रहा है। और कुछ स्तर पे तो मैं भी ये कहूंगा कि चूंकि मैं प्राइवेट सेक्टर में ज्यादा समय रहा,

0: तो मेरा ये मानना है कि जो इंडियन प्राइवेट सेक्टर है खासकर, वो बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। और इसका एक जीता जागता उदाहरण है अभी जो हमने लॉन्च किया,
1: जी
0: जो प्राइवेट सेक्टर से जो हमारा सैटेलाइट लॉन्च हुआ, तो वो एक अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और मेरे ख्याल से अब धीरे धीरे हम सबको समझ में आ रहा है, विशेषकर डिफेंस के अंदर जो प्राइवेट प्रोडक्शन तेजी से हो रहा है और मेक
1: जी
0: इन इंडिया का जो कॉन्सेप्ट है, वो सब काबिले तारीफ और इस बात को प्रदर्शित करता है कि हमने समय के साथ अपने आप को उसके साथ जोड़ के रखा और हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। तो उम्मीद है कि कलाम साहब का वो सपना
1: जी
0: हम सब और खासकर विज्ञान का सपना हम पूरा कर पाएंगे। बस एक बात कहने में जरूर करना चाहूंगा कि इसके साथ विज्ञान को आम आदमी तक पहुंचाने का जो प्रयास है, उसको और तवज्जो देने की जरूरत है।
1: जी उसमें हम और बहुत कुछ
0: कर
1: सकते
0: सकते हैं।
1: हैं।
0: जी
1: जी पीपीपी मॉड्यूल जो है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप साइंस फील्ड
0: जी
1: है,
0: जी
1: तो ये
0: जी
1: बहुत अच्छा रिजल्ट दे
0: जी
1: रही
0: जी
1: है।
0: जी
1: जी यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, जैसा कि अभी डॉक्टर नकुल ने कहा कि हम जो साइंस है उसे आम लोगों तक पहुंचाएं, तो आपके विचार में क्या किया जा सकता है?
2: जो डॉक्टर कलाम ने जो हम लोग को राह दिखाई है,
1: जी
2: उसमें ही बहुत गुण हैं आगे बढ़ने के, क्योंकि पूरा जो उनका प्रोग्राम था
1: जी
2: और जो उसमें कई वैज्ञानिक जुड़े साथ में, तो उसमें जिस तरह से उन्होंने कहा कि सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी उन्होंने दी कृषि, एग्रीकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग। किसान के पास सही इनपुट्स मिलते हैं, उसको सही टाइम पे मिलते हैं, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है और अपने फिर परिवार का भी ध्यान रख सकता है, आगे बढ़ा सकता है। तो मेरा ख्याल है कि हर हर स्टेप पे हम लोग को डॉक्टर कलाम के जो आइडियाज थे और जो जो लिख के रखे हैं और जो सजेस्ट किए हैं, उसमें हम लोग को ढूंढना चाहिए, कई सोल्यूशन मिल जाएंगे हम लोगों को।
0: जी
1: जी
0: बिल्कुल।
1: तो कलाम साहब ने जब विभिन्न पद संभाले, जिम्मेदारियां संभाली, तब भी हमारा नेतृत्व किया, बहुत योगदान दिया उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में,
0: जी
1: और आज अगर हम उनका लिखा हुआ पढ़ेंगे तब भी हमें समाधान मिलेंगे।
0: बिल्कुल।
1: रश्मि जी मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक इस तरह का प्रश्न मेरे मन में आ रहा है कि अगर आप छोटी बच्ची होती और आज आप कलाम साहब से मिलती तो आप उनसे क्या सवाल करती अगर आपको मौका मिलता तो?
3: बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। मैं सच में अपने अंदर एक छोटी बच्ची महसूस कर रही हूँ। आज डॉक्टर कलाम मेरे सामने होते और मैं उनके सामने ये पूछती कि सर ये दुनिया जो आज इतना दौड़ रही है, भाग रही है, विनाश की तरफ जा रही है, इसे हम कैसे रोकें? और सच मानिए डॉक्टर कलाम का यही सपना था कि इस धरती को रहने योग्य बनाना है। वो इतने बड़े बड़े पदों में पहुंचे लेकिन अंततः अपने आप को एक शिक्षक मानते रहे
1: जी।
3: कि मैं एक शिक्षक हूँ, और ये असीम कृपा है उनकी ईश्वर पर कि जब वो दुनिया से दैहिक रूप से गए तो एक शिक्षक के रूप में ही गए। राष्ट्रपति के पद पर रहते हुए भी उनमें कभी विलासिता नहीं थी, बस एक शिक्षक का गुण था।
0: बिल्कुल।
3: अपने सामने बैठे लोगों को इतना ध्यान से समझाते थे, इतने प्यार से बताते थे, जैसा सर ने बताया कि वही इनका जो गुण है वो हम आज याद करते हैं, क्योंकि उनकी विनम्रता, उनका मिसाइल मैन होना वो बहुत बड़ी देश की उपलब्धि है, लेकिन करोड़ों आंखों में जो वो सपने देकर गए वो विरासत है हमारे लिए, जो हमेशा हमारे पास रहेगी। तो मैं उनसे यही प्रश्न करती कि अगर मैं इस दुनिया में आई हूँ तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मैं इस दुनिया को रहने लायक अपनी तरफ से एक योगदान दे सकूँ।
1: जी बहुत ही अच्छे से आपने जवाब दिया इसका, और शायद ये हम सबके मन में सवाल होना चाहिए कि हम अपनी ओर से क्या योगदान कर सकते हैं अपने देश को बेहतर बनाने के लिए। तो यहाँ इसी मोड़ पर आप बताएं, आप कौन सा गाना हमारे श्रोताओं को सुनवा रही हैं?
3: मुझे लगता है ए वतन वतन मेरे आबाद रहे तू।
1: वाह।

0: सिर्फ इस गाने के बोल ये नहीं है, बल्कि हम सबके दिलों में यही भावना है कि हमारा देश आबाद रहे, हमेशा आगे बढ़ता रहे और हमें इस तरह का नेतृत्व प्राप्त होता रहे अपने लक्ष्यों के लिए, जैसा डॉक्टर कलाम ने दिया था। मैं आपसे जानना चाहूंगी अनुज सिन्हा जी, अगर हमारे युवा साथी जो इस समय इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं वो वैज्ञानिक बनने का सपना देखते हैं, तो उनके सामने कौन से दरवाजे अभी खुले हैं, उन्हें किस तरह जीवन में आगे बढ़ना चाहिए?
1: जो वैज्ञानिक है या कोई भी स्पेशलाइजेशन में
0: जी,
1: आजकल बड़ा नैरो एरिया हो गया है हर एक वैज्ञानिक के लिए, हर एक स्पेशलिस्ट के लिए
0: जी।
1: और ये नकल मान जाएंगे हम लोग जो है वो ओपन माइंडेड इतने नहीं हो पाते हैं कि काम कर सके, या जो युवा पीढ़ी है उनको गाइड कर सके। हम लोग चाहते हैं वो भी उसी नैरो एरिया में ही स्पेशलाइज करें, तो ये एक चिंता की बात है। परंतु इट इज लार्जर क्वेश्चन। मेरा ख्याल है कि डॉक्टर कलाम के अगर उससे हम लोग चले तो इन्होंने जैसे अपना फर्स्ट स्टेज कहते हैं वो था हमारा जब हम इसरो के साथ थे, हमने जो है जब सैटेलाइट लॉन्च के लिए काम किया। सेकेंड स्टेज जैसे रॉकेट का होता है, सेकेंड स्टेज में मैं जो था DRDO के साथ था और उसमें जो मैंने कंट्रीब्यूट करा मिसाइल मैन के लिए बन गए
0: जी।
1: थर्ड स्टेज जो था वो जब राष्ट्रपति थे, और फोर्थ स्टेज कहते हैं कि जब राष्ट्रपति की गद्दी छोड़ दी उन्होंने, उसके बाद जिस तरह से उन्होंने कंट्रीब्यूट करा टीचर्स के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, तो उन्होंने मतलब अपनी जिंदगी कहाँ शुरू करी थी एज ए एरोनॉटिकल इंजीनियर, एज ए एरोस्पेस इंजीनियर
0: जी,
1: और किस तरह से वो अपने को भी उभारते रहे और कंट्रीब्यूट भी कर रहे हैं। तो ये एक अगर सोच और विचार के साथ आदमी आगे बढ़े तो मेरा ख्याल है कि जो भी उससे सामने समस्या आएगी उसका वो सही हल भी निकाल लेगा और कंट्रीब्यूट भी कर सकेगा
0: जी।
1: तो बहुत जरूरी है कि हम लोग जो है वो नैरो स्पेशलाइजेशन ना रखें अपने को, परंतु जो फ्यूचर की जनरेशन आ रही है उनको इस तरह से गाइड करें कि वो जो है असली में कंट्रीब्यूट कर सके। डॉक्टर कलाम का बहुत से छोटे छोटे वो भी थे राइटिंग में जो लिखते थे, एक तरह से फेल का क्या मीनिंग होता है, फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग
0: जी,
1: दैट वाज हाउ ही वुड पुट इट। कहते फेल नहीं हुए तुम, ये फर्स्ट अटेम्प्ट है। और कहते थे कि हमारा कैरियर देखो इसरो में भी वो SLV-3 इन्होंने जब लॉन्च करवाया फेल हो गई, ये बड़े दुखी हुए, सचिन धवन ने इनको एनकरेज करा, नेक्स्ट टाइम सक्सीड कर गए। कहते हैं जब तक सीख करेंगे नहीं तब तक सीखें कैसे। दूसरा उन्होंने कहा था जैसे कि जैसे अगर आप कहते हैं कि मैं साइकिल चला रहा हूँ या ये है कि साइकिल आपको चला रही है, तो एक पर्सपेक्टिव डिफरेंट देखने का
0: जी।
1: और ऐसी बहुत सी उनके जो छोटे छोटे ऑब्जर्वेशन हैं, कुछ तो मेरे ख्याल रश्मि जी की किताब में लिखे हैं
0: जी,
1: वो बड़े अच्छे हैं। और उनसे हम लोग जब बात करते हैं विद्यार्थियों से तो हम लोग उन्हीं के ये इस तरह के जो आइडियाज हैं उनको यूज भी करते हैं और लोगों से तालियां पिटवाते हैं
0: जी। जी, यानी वो कलाम साहब के दिए हुए हैं लेकिन हम आज तक उसका फायदा उठाते हैं। हाँ। जी, यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी डॉक्टर नकुल, जैसे हम बार बार ये जान रहे हैं कि कलाम साहब बच्चों से सीधा संवाद करते थे और बच्चे बहुत पसंद करते थे इस बात को और प्रेरित होते थे। आज माननीय प्रधानमंत्री जी भी परीक्षा पे चर्चा करते हैं, बच्चों से संवाद करते हैं। जब इस तरह के हमारे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व, इस तरह की शख्सियत जो होती है, बच्चों से जब सीधे बात करती है, आपको क्या लगता है कि उनके मानस पटल पर इसका क्या प्रभाव पड़ता होगा? भले ही वो वैज्ञानिक ना बनना चाहे, भले ही उन्होंने अभी अपने जीवन के लिए कोई ऐसा लक्ष्य नहीं चुना है, बच्चों ने बस पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन क्या उनके मन पर प्रभाव पड़ता है इन बातों का?
2: देखिए, देश काल परिस्थिति कुछ भी रही हो, कभी भी रही हो, कोई भी क्षेत्र में कोई भी बड़ा व्यक्ति जब अपने स्तर से उतर के बच्चों से बात करता है तो उसका प्रयास होता है कि बच्चों के अंदर एक तरह की, जैसे उन्होंने कहा, प्रेरणा नहीं प्रेरित कर सके उसको, तो प्रेरित करने का जो प्रयास होता है वो बहुत अपने आप में अनूठा प्रयास है। और जैसे आजकल हमारे प्रधानमंत्री जी करते हैं, जैसे कलाम साहब ने किया, और ऐसे तमाम बहुत सारे विजनरी लीडर्स रहे हैं जो उतर के इस लेवल पे करते हैं। गुज़िश्ता कई सालों से मैं सेंट्रल एशिया और अर्स्टवाइल रशिया में काफी मैंने काम किया तो मैंने वहां देखा कि जितने भी बड़े वहां के लीडर्स हैं उनका ये प्रयास रहता है कि स्कूलों में जाएं, बच्चों से मिलें, बच्चों के अंदर वहां पे शुरू करें, क्योंकि जो भी कुछ है वो घर से

शुरू होता है, और अगर आप उनको कैच देम यंग का जो उनका फॉर्मूला है अगर आप वो करेंगे तो हमेशा सक्सेसफुल रहेंगे। तो मेरे ख्याल से हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री जी का और कलाम साहब का जो अपने आप में एक अनूठा वो उदाहरण रहे हैं, उनका ये हमेशा से प्रयास रहा है। और मेरे ख्याल से स्कूलों के अंदर भी जब हम देखते हैं कि कोई बड़ा व्यक्ति उसके अंदर आता है, तो जैसे मैंने आपसे अभी शुक्र में जिक्र किया था कि एक कलाम साहब का एक एनेक्डोट है जिसके अंदर उन्होंने लिखा है कि जब वो वहाँ ट्रिची में पढ़ रहे थे तो उनको उनके कॉलेज में उनके एक टीचर थे जिनका नाम था कैलकुलस सोलोमन, तो वो कहते थे कि उनके एक टीचर थे तोताद्री अयंगर, तो जब वो आएंगे तो तुम देखोगे। तो उनके बारे में उन्होंने जिस तरह से लिखा है, कुछ लाइनें जो उनकी शुरू की हैं वो अपने आप में इस बात का बखान करती हैं, पूरा चित्रण करती हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या आता है। तो बच्चे बहुत एक सरल हृदय होते हैं और उनके मन पे वो आप उसको जैसा चाहें वैसा मोल्ड करते हैं, अगर शुरू में उनको अच्छा मोल्ड करते हैं तो अच्छा बन जाते हैं।

0: बात का बखान करती हैं, पूरा चित्रण करती हैं कि किस तरह का उनका व्यक्तित्व था, क्या आता है। तो बच्चे बहुत एक सरल हृदय होते हैं और उनके मन पे वो आप उसको जैसा चाहें वैसा मोल्ड करते हैं। अगर शुरू में उनको अच्छा मोल्ड करते हैं तो अच्छा बन जाते हैं, तो वही उनका प्रयास है। उनका उनका व्यक्तित्व जब आके स्टेज पे उन्होंने हमसे बात करी, उसका प्रभाव मेरे जीवन में आज तक है। तो ऐसे ही न जाने कितने ऐसे उदाहरण हैं हम सबके जीवन में रहे होंगे। जब हम अपने शुरुआत में जब हम बच्चे होते हैं तो सबसे पहले पूछा जाता तुम्हारे तुम क्या बनना चाहोगे, तो बच्चा छूटते बोलता मैं टीचर बनना चाहूंगा, क्योंकि टीचर उस वक्त एक रोल मॉडल होता है, समय के साथ वो रोल मॉडल बदलते रहते हैं। बहरहाल जैसे रश्मि जी ने कहा कि आज अगर बच्चों के अंदर रोल मॉडल के लिए अगर हम कलाम साहब के बारे में ज्यादा लोगों को बताएं, और ये आपका कार्यक्रम अगर इसके माध्यम से बहुत सारे बच्चे जो सुन रहे हैं उनमें भी अगर अति भर भी अगर ये एक बात हम पहुंचा पाए तो बहुत बड़ा प्रयास रहेगा। मेरे ख्याल से ये आपका प्रयास बहुत ही सराहनीय है।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद। और सच में यही प्रयास हमारा कि हमारे कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारियां हमारे श्रोताओं तक पहुंचे, और साथ ही मन की बात में प्रधानमंत्री जी जिन घटनाओं का उल्लेख करते हैं या विशेष तिथि अगर कभी बताते हैं उसके पीछे एक पूरा संदर्भ होता है, और हमारा प्रयास यही रहता है कि उसके बारे में हमारे श्रोता अधिक जाने, और खासकर हमारी जो यंग जनरेशन है, हमारे जो बच्चे हैं, वो जाने भी, क्योंकि उनके सामने की तो ये घटनाएं नहीं है, लेकिन साथ ही वो प्रेरित भी होते रहें और समसामयिक चुनौतियां जो आज उनके सामने हैं, जिसे हम ग्लोबल इश्यूज कहते हैं, वो उनका समाधान हमारे इन प्राचीन घटनाओं से, इन शख्सियत से, इन व्यक्तित्व से, इन संदर्भों से लेते रहें। मैं आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ पर कह रही हूँ, आप तीनों को बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमें समय दिया, और आपके बहाने हमने पीपल्स प्रेसिडेंट को, हमने अपने प्रिय कलाम साहब को और मिसाइल मैन को, देश के लिए इतना बड़ा योगदान करने वाली एक महान शख्सियत को और जाना, उनके बारे में कुछ अनछुए पहलू हमें पता चले। तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111, और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेषज्ञ हमारे साथ थे अनुज सिन्हा जी। आप साइंस कम्युनिकेटर हैं, पूर्व निदेशक हैं आप विज्ञान प्रसार के, साथ ही आप एडवाइजर भी रहे डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें समय देने के लिए। हमारे साथ इस कार्यक्रम में थे डॉक्टर नकुल पराशर। आप अप्लाइड फिजिक्स में आपने पीएचडी की, आप ऑथर हैं, विज्ञान आधारित कई पुस्तकें आपने लिखी हैं, साथ ही स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट हेड आप रहे, और आप भी विज्ञान प्रसार के निदेशक रहे हैं। डॉक्टर नकुल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए। और हमारी विशेषज्ञ डॉक्टर रश्मि, आप एक लेखिका हैं, शिक्षिका हैं, प्रेरक वक्ता भी हैं, कलाम साहब की आत्मकथा आपने लिखी, साथ ही कलाम तुम लौट आओ, कलाम इंस्पायर्स, ये पुस्तकें आपकी हैं, और आप कलाम साहब के मार्गदर्शन से ही अपनी पुस्तक आपने पूरी की है। तो डॉक्टर रश्मि आप हमारे स्टूडियो में आई, आपने समय दिया, आपने अपने अनुभव हमारे साथ साझा किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने मुझे मेरे अपने आदर्श डॉक्टर कलाम साहब पर बोलने का मौका दिया, आपके श्रोताओं को भी धन्यवाद।
1: जी तो आज के कार्यक्रम से हमने यही सीखा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का सपना केवल वैज्ञानिक भारत का नहीं था, बल्कि एक ऐसे भारत का था जहां हर बच्चा जिज्ञासु हो, हर युवा नवाचारी हो, और हर नागरिक राष्ट्र निर्माण में अपनी भूमिका निभाए। सपने वो नहीं जो हम सोते हुए देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। कलाम साहब जो कहते थे और जो हम सोशल मीडिया पर बार बार पढ़ते हैं, और जिसे हम अपने इंस्पायरिंग लाइंस बनाकर अपने घर की दीवारों पर चिपकाते हैं ताकि सुबह आँख खुलते ही हम इसे देखें और मोटिवेटेड हो, ये पंक्तियां हमें दी कलाम साहब ने। तो उन्हें आदर भाव से याद करते हुए मैं नीलम मलकानिया पोस्ट बॉक्स नंबर 111 से अब आप सभी से अनुमति लूंगी। इस कार्यक्रम के संयोजक रहे दिलीप झा, और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ता शाहनवाज खान और प्रमोद कुमार वत्स के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।

श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12 बज चुके हैं। आइए सुनते हैं कार्यक्रम लोक मंजरी। श्रोताओं, लोक मंजरी कार्यक्रम में आज हम आपको सुनवा रहे हैं नौटंकी गोवर्धन लीला। आलेख है डॉक्टर भारत सिंह चौहान का, प्रस्तुति है राजेश कुमार शर्मा और ZA जैदी की।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे प्रधानमंत्री के मन की बात कार्यक्रम पर आधारित कार्यक्रम पोस्ट बॉक्स नंबर 111 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर

0: महाराज जी लख पर लिए
1: बल गोवर्धन महाराज की जय।
0: लख पर लिए उठाई बचा ली लो ब्रज मंडल सारा और कोई हाथ

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे नौटंकी गोवर्धन लीला। आलेख था डॉक्टर भारत सिंह चौहान का, प्रस्तुति थी राजेश कुमार शर्मा और ZA ZD की। इसी के साथ ही कार्यक्रम लोकमंजरी यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 12:30

मिनट हो चुके हैं और अब समय है कार्यक्रम नए तराने का। आइए सुनते हैं केके की मधुर आवाज में फिल्म जन्नत का ये गीत। गीतकार हैं सैयद कादरी, संगीतकार हैं प्रीतम।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे जन्नत फिल्म का ये गीत केके की मधुर आवाज में। आइए अब सुनते हैं फिल्म हेट स्टोरी 3 का ये गीत अरमान मलिक की आवाज में। शब्द रचना है मनोज मुंतशिर की, संगीत रचना है बमन की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे हेट स्टोरी 3 फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं जिस्म 2 फिल्म का ये गीत सोनू कक्कर की आवाज़ में। गीतकार व संगीतकार हैं मिथुन।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म जिस्म 2 का ये गीत। आइए अब सुनते हैं जुबिन नौटियाल और पलक की मधुर आवाजों में फिल्म काबिल का ये गीत। गीत के बोल लिखे हैं नासिर फराज ने, धुन बनाई है राजेश रोशन ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे फिल्म काबिल का ये गीत। आइए अब सुनते हैं मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में फिल्म मर्डर 2 का ये गीत। गीतकार व संगीतकार हैं मिथुन।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे मोहम्मद इरफान, अरिजीत सिंह और साथियों की आवाज़ों में फिल्म मर्डर 2 का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं फिल्म पद्मावत का ये गीत नीति मोहन की आवाज़ में।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे नीति मोहन की आवाज में फिल्म पद्मावत का ये गीत, और इसी गीत के साथ कार्यक्रम नए तराने यही संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, दोपहर के 1 बजने को हैं और कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर

0: तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है जबकि अन्य 8 लापता हैं। प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक रूप से नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों में फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदियों के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम के चलते मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में न जाने की सलाह भी दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को और सरल बनाया जाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दुरईस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में ये बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएंगे और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। अमरीका में भारत के राजदूत विनय मोहन क्वात्रा ने कहा है कि अगर पाकिस्तान आपसी मुद्दों पर भारत का सहयोग चाहता है तो पहले उसे अपने आतंकी ढांचे को खत्म करना होगा। पाकिस्तान ने सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले के विरोध में इस्लामाबाद में हाल में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। एक लेख में श्री क्वात्रा ने सिंधु जल संधि को लेकर भारत के खिलाफ युद्ध की धमकी देने वाले पाकिस्तान के एक पूर्व विदेश मंत्री की आलोचना की। श्री क्वात्रा ने कहा कि भारत को दोषी ठहराने और धमकियां देने के बजाय पाकिस्तान को अपनी जल उत्पादकता बढ़ानी चाहिए। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार है लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashwani, the news read by Anuja Kumar. Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
0: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain, wo abhiyan व्यक्ति के लिए है, परिवार के लिए है, समाज के लिए भी है और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए है। आज जब देश ने विकसित भारत

0: में इसके खिलाफ खबरदार किया है। हमारी सकाफत इसकी रोकथाम के लिए इंतबाहात भी फराहम करती है और अगर नशे की नशोनुमा होती है तो उस पर काबू पाने के तरीके भी फराहम करती है। मुआशरे की हिमायत, योगा और मुराकबा की ताकत नशे के खिलाफ हमारे बातिन को मजबूत करती है। वजीर आजम ने कहा,
1: देश विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे। यही इस अभियान का उद्देश्य है। इसलिए हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें।
0: इस प्रोग्राम में 28,000 मकामात से 1 करोड़ से ज्यादा नौजवान हिस्सा ले रहे थे। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने ग्लासगो दौलत मुश्तरका खेलों में मर्दों की 5,000 मीटर दौड़ में कांसे का तमगा जीतने पर गुलवीर सिंह को मुबारकबाद दी है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में सदर जमहूरिया ने कहा कि यह कामयाबी कॉमनवेल्थ गेम्स के इस यूनिट में हिंदुस्तान का पहला तमगा है और इसकी पिछली कामयाबी के बाद उनके सफर में एक और काबिल फख्र बाप का इजाफा हुआ है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भी गुलवीर सिंह को मुबारकबाद दी। वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के गुलवीर सिंह को कांसे का तमगा जीतने पर मुबारकबाद दी। इससे कबल कुलवीर सिंह ने मर्दों की 10,000 मीटर दौड़ में चांदी का तमगा जीतकर तारीख रकम की थी। वो एक ही कॉमनवेल्थ गेम्स में एथलेटिक्स के 2 तमगे जीतने वाले पहले हिंदुस्तानी खिलाड़ी हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उत्तर प्रदेश ने अपने 17 इजला को छतों पर सोलर प्लांट्स की तनसीब के लिए मुल्क के टॉप 100 की फेहरिस्त में शामिल कराया है। इस फेहरिस्त में लखनऊ ने पहला मकाम हासिल किया है। एक रिपोर्ट।
2: यूपी मेटा डायरेक्टर रविंदर सिंह ने बताया कि इस सूची में राजधानी लखनऊ ने 1,24,167 रूफटॉप सोलर संयंत्रों की स्थापना के साथ देश का नंबर एक जनपद बनने का गौरव बरकरार रखा है। वहीं वाराणसी ने भी देश में 10वां स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा कानपुर नगर 14वें स्थान पर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश सरकार द्वारा जन जागरूकता अभियान, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया को सरल बनाने, समयबद्ध स्वीकृति, डिस्कॉम और संबंधित एजेंसियों के बेहतर समन्वय तथा सब्सिडी वितरण की प्रभावी व्यवस्था ने इस अभियान को नई गति दी है। समाचार कक्ष से सुशील चंद्र तिवारी।
0: रियासती मुकन्ना का मॉनसून इजलास कल से शुरू हो रहा है। इजलास के दौरान रियासती हुकूमत मंगल को जिमनी बजट पेश करेगी। आज दोपहर वजीर आला योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में एक ऑल पार्टी मीटिंग मुनक़िद होगी जिसमें सेशन के इनेकाद पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इस मीटिंग से पहले असेंबली स्पीकर सतीश महाना ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलाई है। मानसून इजलास 6 अगस्त तक जारी रहने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आजादी पसंद और कौमी परचम के खालिक पिंगली वेंकैया को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया। अपने पैगाम में उन्होंने लिखा कि अजीम आजादी के जंगजू पिंगली वेंकैया के यौम पैदाइश पर आजिजाना खराज अकीदत, जिसने तिरंगे को हिंदुस्तान के फख्र और शान की शक्ल दी। सावन के महीने के दौरान अकीदतमंद रियासत के तमाम शिव मंदिरों में दर्शन, पूजा और जलाभिषेक के लिए आते हैं। दरियसना सावन के पहले पीर को कल रियासत भर के बड़े शिव मंदिरों में कांवर यात्रियों की बड़ी तादाद के आने की तवक्को के पेश नजर वसी हिफाजती इंतजाम और ट्रैफिक के इंतजाम किए गए हैं। रियासत के कई अजला में आज से कल तक कई रास्तों पर गाड़ियों की नकलो हरकत पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी गई है। और उत्तर प्रदेश के महकमे सयाहत की पहल दी राइडिंग चैप्टर्स विजिट माय स्टेट के तहत आज सुबह दारुलहुकूमत लखनऊ के 1090 चौराहे से तारीखी कलिंजर किले तक मोटरसाइकिल का सफर शुरू किया गया। सयाहत और सकाफत के वजीर जयवीर सिंह ने बाइक सवारों की टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। और महकमे मौसमियात ने आज से शुरू होने वाले अगले 4 दिनों तक रियासत में मानसून की सरगर्मियों में इजाफे की पेशगोई की है। महकमे ने रियासत के कई हिस्सों में 5 अगस्त तक भारी बारिश की वार्निंग जारी की है। बेशतर इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। इस दौरान रियासत में कई नदियों की सतहआब में इजाफा हुआ है। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। अगला बुलेटिन दोपहर 2 बजे FM पर नश्र किया जाएगा।
3: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 1:15 हो चुके हैं और अब प्रस्तुत है हमारे नन्हे मुन्नों का पसंदीदा कार्यक्रम बाल मंडल।

नमस्कार मेरे नन्हे मुन्ने छोटे छोटे श्रोताओं, आकाशवाणी के इस नेल मंच पर आप सभी का दिल से स्वागत है। मैं आपकी अपनी दीदी लक्ष्मी शर्मा। बच्चों, कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे एक छोटी सी कविता के माध्यम से। रिश्ते तो बहुत मिलते हैं इस दुनिया में, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी होता है जो बिना किसी शर्त के दिल से निभाया जाता है, जिसमें ना कोई स्वार्थ होता है, जिसमें ना कोई स्वार्थ होता है ना कोई दिखावा, बस विश्वास, अपनापन और साथ होता है। उसे कहते हैं मित्रता। बच्चों, दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं है, बल्कि जीवन की सबसे खूबसूरत अनुभूति है। ईश्वर हमें परिवार देता है, लेकिन दोस्त चुनने का अधिकार हमें देता है। शायद इसीलिए दोस्ती सबसे अनमोल रिश्ता कहलाती है। कभी गौर किया है आपने, जब हम छोटे थे तब दोस्त बनाने के लिए ना जाति देखी, ना धर्म, ना अमीरी, ना गरीबी, बस एक दूसरे की तरफ प्यार से हाथ बढ़ाया, एक दूसरे के काम आए और हो गई दोस्ती। और बचपन की दोस्ती वो तो कितनी मासूम होती है, एक टॉफी आधी आधी बांट ली, एक पेंसिल से एक साथ काम कर लिया, एक दूसरे का होमवर्क कर दिया, स्कूल जाते समय एक दूसरे का इंतजार करना, अगर एक दोस्त स्कूल ना आए तो पूरा दिन अधूरा अधूरा सा लगना, यही तो है सच्ची मित्रता। चलिए आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक बार दो मित्र रेगिस्तान से गुजर रहे थे। चलते चलते दोनों की किसी बात पर बहस हो गई। गुस्से में एक मित्र ने दूसरे को थप्पड़ मार दिया। जिस मित्र को थप्पड़ लगा उसने कुछ नहीं कहा, बस रेत पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मुझे थप्पड़ मारा। फिर दोनों आगे बढ़ने लगे। कुछ दूर जाकर उन्हें एक नदी मिली। दोनों नदी में नहाने लगे। नहाते समय जिस मित्र को थप्पड़ पड़ा था, पहले उसका पैर फिसल गया और वह डूबने लगा। दूसरे मित्र ने बिना अपनी जान की परवाह किए उसे बचा लिया। इस बार उसने पास रखे एक पत्थर पर लिख दिया, आज मेरे सबसे अच्छे दोस्त ने मेरी जान बचाई। पहले मित्र ने जिज्ञासु होकर पूछा, जब मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा तब तुमने रेत पर लिखा, लेकिन जब मैंने तुम्हारी जान बचाई तब तुमने पत्थर पर लिख दिया, ऐसा क्यों? तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, जो बातें हमें दुख पहुंचाएं उन्हें रेत पर लिख देना चाहिए, ताकि समय की हवा उन्हें मिटा दे, और जो लोग हमारे लिए अच्छा करें उन्हें पत्थर पर लिख देना चाहिए, ताकि वे हमेशा दिल में अंकित रहें। है ना कितनी गहरी सीख इस छोटी सी कहानी में। दोस्ती का मतलब कभी भी यह नहीं कि मनमुटाव नहीं होगा, होगा, बल्कि दोस्ती का मतलब तो यह है कि मनमुटाव के बाद भी साथ नहीं छोड़ना। बच्चों, आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम सोशल मीडिया पर हजारों फ्रेंड्स बना लेते हैं, लेकिन सोचिए, क्या हर ऑनलाइन दोस्त सच्चा हो दोस्त होता है? नहीं। सच्चा दोस्त वह है जो आपके चेहरे की मुस्कान देखकर नहीं, बल्कि आपकी आंखों की नमी देखकर पूछे, सब ठीक है ना भाई। मैं अपनी महिला श्रोताओं से भी एक बात कहूंगी, मैंने एक महिला अपने जीवन में कई भूमिका निभाती है, छोटी बहन, बड़ी बहन, पत्नी, माँ, बेटी, लेकिन इन सभी जिम्मेदारियों के बीच यदि कोई सखी हो जिससे मन की बात कह सके, जो बिना जज किए सिर्फ सुन ले, जो हंसी भी बांटे और आंसू भी, तो जीवन का बोझ हल्का हो जाता है। कई बार एक सहेली दवा से भी बढ़कर काम करती है। बच्चों, हमारे इतिहास में भी भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज भी मिसाल मानी जाती है। राजा बनने के बाद भी श्री कृष्ण ने अपने निर्धन मित्र सुदामा का सम्मान किया, उन्हें प्रेम दिया, वहाँ ना धन बीच में आया, ना पद, ना दूरी, यही सच्ची मित्रता है, जहाँ व्यक्ति नहीं भावनाएं बड़ी होती हैं। तो मेरे नन्हे मुन्ने दोस्तों,

हमेशा अपने जीवन में अच्छे मित्र चुनिए। जो दोस्त आपको पढ़ाई के लिए प्रेरित करें, बड़ों का सम्मान करना सिखाएं, सच बोलना सिखाएं और कभी भी गलत रास्ते पर ना ले जाएं। याद रखिए बच्चों, जैसी रंगत वैसी संगत। इसीलिए मित्र ऐसे बनाइए जिन पर आपके माता पिता भी गर्व कर सकें। दोस्ती कोई सौदा नहीं जिसे नफा नुकसान से तौला जाए। दोस्ती कोई सौदा नहीं जिसे नफा नुकसान से तौला जाए। दोस्ती तो वो इबादत है जिसे दिल से निभाया जाए। तो बच्चों, आइए सुनते हैं अपनी अपनी दोस्ती और अपने अपने दोस्तों के लिए ये गीत।

0: बच्चों आओ अभी हम सब सुनते हैं एक कहानी चालाक बंदर, जो हमें सुना रही हैं प्रीति शर्मा जी।
1: बच्चों, किसी नदी के किनारे एक बहुत बड़ा पेड़ था। उस पर एक बंदर रहता था। उस पेड़ पर बड़े मीठे फल लगते थे। बंदर उन्हें भरपेट खाता और मौज उड़ाता। वे अकेले ही मजे में दिन गुजार रहा था। एक दिन एक मगर उस नदी में से पेड़ के नीचे आया। बंदर के पूछने पर मगर ने बताया कि वहां खाने की तलाश में आया है। इस पर बंदर ने पेड़ से तोड़कर बहुत से मीठे फल मगर को खाने के लिए दिए। इस तरह बंदर और मगर में दोस्ती हो गई। अब मगर हर रोज वहां आता और दोनों मिलकर खूब फल खाते। बंदर भी एक दोस्त पाकर बहुत खुश था। एक दिन बात बात में मगर ने बंदर को बताया कि उसकी एक पत्नी है जो नदी के पार अपने घर में रहती है। तब बंदर ने उस दिन बहुत से मीठे फल मगर को उसकी पत्नी के लिए साथ ले जाने के लिए दिए। इस तरह मगर रोज जी भरकर फल खाता और अपनी पत्नी के लिए भी लेकर जाता। मगर की पत्नी को फल खाना तो अच्छा लगता, पर पति का देर से घर लौटना पसंद नहीं था। एक दिन मगर की पत्नी ने मगर से कहा, अगर वह बंदर रोज रोज इतने मीठे फल खाता है तो उसका कलेजा कितना मीठा होगा। मैं तो उसका कलेजा खाऊंगी। मगर ने उसे बहुत समझाया पर वे नहीं मानी। मगरमच्छ दावत के बहाने बंदर को पीठ पर बैठाकर अपने घर ले जाने लगा। नदी के बीच में उसने बंदर को अपनी पत्नी की कलेजे वाली बात बता दी। इस पर बंदर ने कहा, वो तो अपना कलेजा पेड़ पर ही छोड़ आया है। वह उसे हिफाजत से पेड़ पर ही रखता है, इसलिए अब वापस जाकर कलेजा लाना पड़ेगा। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ के पास ले गया। बंदर छलांग मारकर पेड़ पर चढ़ गया। उसने हंसकर कहा, जाओ मूर्खराज, घर जाओ और अपनी पत्नी से कहना कि तुम दुनिया के सबसे बड़े मूर्ख हो। भला कोई भी अपना कलेजा निकालकर अलग रख सकता है क्या? हाँ तो बच्चों, बंदर की इस समझदारी से हमें पता चलता है कि मुसीबत के वक्त में हमें कभी भी धैर्य नहीं खोना चाहिए।
0: बच्चों अभी सुन रहे थे कहानी चालाक बंदर, सुना रही थी प्रीति शर्मा। कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे पर अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।

0: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: बच्चों, अभी हम बात करेंगे एक बहुत ही खास उपहार के बारे में जो हमें प्रकृति ने दिया है, जो अक्सर हमें बारिश के समय दिखाई देता है। ये सुंदर उपहार है इंद्रधनुष। बच्चों, आपने भी कभी बारिश के बाद आसमान में एक बड़ा सा रंग बिरंगा धनुष देखा होगा, उसे ही इंद्रधनुष कहते हैं। जब बारिश की छोटी छोटी बूंदों पर सूरज की रोशनी पड़ती है तो वह सात सुंदर रंगों में बट जाती है और हमें इंद्रधनुष के रूप में

दिखाई देती है। बच्चों, इंद्रधनुष में होते हैं सात रंग, कौन कौन से? तो आइए साथ मिलकर जोर से बोलते हैं, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, जामुनी और बैंगनी। ये सभी रंग मिलकर आसमान को बहुत सुंदर बना देते हैं। बच्चों, इंद्रधनुष हमें एक अच्छी सीख भी देता है। जैसे सात अलग अलग रंग मिलकर एक सुंदर इंद्रधनुष बनाते हैं, वैसे ही हम सभी को भी मिलजुल कर प्यार से और एक दूसरे की मदद करते हुए रहना चाहिए। हमारी अलग अलग खूबियाँ ही हमें खास बनाती हैं। तो बच्चों, अगली बार जब भी बारिश के बाद इंद्रधनुष दिखाई दे तो उसके सात रंगों को पहचानने की कोशिश जरूर करना। बच्चों, जैसे इंद्रधनुष में होते हैं सात रंग, वैसे ही हमारे तिरंगे में भी होते हैं तीन रंग, कौन कौन से? हम सब अच्छे से जानते हैं। पहले नंबर पे होता है नारंगी, दूसरे पे सफ़ेद और तीसरे पे हरा। तो आइए अपने तिरंगे के सम्मान में सुनते हैं ये बाल गीत अपने नन्हे मुन्ने दोस्तों से।

0: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: नन्हे मुन्ने श्रोताओं, बारिश का मौसम जहां गर्मी से राहत देता है, वहीं अपने साथ कई तरह की स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी लेकर आता है। इस मौसम में संक्रमण, सर्दी जुकाम, बुखार और पेट संबंधी समस्याओं का खतरा बढ़ जाता है, इसीलिए हमें अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखने की जरूरत होती है। इसके लिए हमेशा शुद्ध, सात्विक, ताज़ा और पौष्टिक भोजन करें। खुले में बिकने वाले और तेज मिर्च मसाले वाले तले भुने खाद्य पदार्थों से बचें। उबला हुआ या फिल्टर पानी पिएं। ठंडा पानी और ठंडे पेय पदार्थों से बचें। अगर बारिश में भीग गए तो जल्द से जल्द सूखे कपड़े पहन लें, ताकि सर्दी जुकाम से बचा जा सके। बारिश के मौसम में मच्छरों की संख्या तेजी से बढ़ती है, इसीलिए घर के आसपास कहीं भी पानी जमा ना होने दें। पानी की टंकी को ढककर रखें। कूलर का पानी समय समय पर बदल दें। मच्छरदानी और मच्छरों को भगाने वाले स्प्रे, अगरबत्तियां, ऑल आउट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा हरी सब्जियां, मौसमी फल, अंकुरित अनाज तथा विटामिन सी युक्त खाद्य पदार्थों का सेवन भी करें। नियमित योग करें, पर्याप्त नींद लें। ये सभी हमें स्वस्थ रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो बच्चों, इस बरसात में स्वच्छता, संतुलित आहार और स्वस्थ जीवन शैली को अपनाकर अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, क्योंकि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है।

वो कहते हैं ना कि पहला सुख निरोगी काया। लेकिन लेकिन रुकिए, बारिश है तो बारिश में मौज मस्ती भी होगी, तो आइए बारिश में करते हैं मौज मस्ती इस गीत को सुनते सुनते।

नन्हे मुन्ने दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे गीत चक धुम धुम। कैसा लगा आपको ये गीत? आइए अभी आपको सुनाते हैं एक छोटी सी शायरी। दोस्ती वो नहीं जो तस्वीरों में मुस्कुराए, दोस्ती वो नहीं जो तस्वीरों में मुस्कुराए, दोस्ती वो है जो आंसुओं में भी साथ निभाए। हाथ पकड़कर चलना ही दोस्ती नहीं होती, हाथ पकड़कर चलना ही दोस्ती नहीं होती, गिरने से पहले जो संभाल ले वही सच्ची दोस्ती कहलाए। तो आइए अभी सुनते हैं एक छोटी सी कविता। दोस्ती धूप में ठंडी छांव है, थके हुए मन का सुकून है, भीड़ में जो अपना लगे वो दोस्ती का जुनून है। ना दौलत मांगे ना नाम मांगे, बस थोड़ा सा विश्वास मांगे, जीवन की हर कठिन डगर पर सच्चा दोस्त बस साथ मांगे।

इसलिए श्रोताओं, इस फ्रेंडशिप डे पर केवल कलाई पर फ्रेंडशिप बैंड बांधना ही पर्याप्त नहीं है। अगर कोई पुराना दोस्त रूठा है तो उसे एक फ़ोन कीजिए। अगर किसी से बरसों से बात नहीं हुई तो एक संदेश भेजिए। अगर कोई अकेला है तो उसका हाल चाल पूछ लीजिए, क्योंकि रिश्ते वक्त नहीं मांगते, बस थोड़ी सी सच्चाई और थोड़ा सा अपनापन मांगते हैं। और अंत में, दोस्ती की खुशबू गुलाबों से नहीं आती, दोस्ती की खुशबू गुलाबों से नहीं आती, ये तो दिलों के एहसासों से महकती है। जिसके जीवन में एक सच्चा मित्र हो, समझिए उसकी दुनिया सबसे खूबसूरत होती है। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सभी को हैप्पी फ्रेंडशिप डे और फ्रेंडशिप डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने दोस्तों का सम्मान कीजिए, उनका साथ निभाइए और जहां भी रहें प्रेम, विश्वास और अपनापन बांटते रहिए। अंत में मैं आपसे अनुमति चाहूंगी, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक मेरे सभी नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे छोटे दोस्तों को हैप्पी फ्रेंडशिप डे और नमस्कार।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, प्रस्तुत है कार्यक्रम सुगम संगीत। इसमें आज हम आपको सुनवा रहे हैं तलत महमूद की आवाज में गजलें। तो आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

श्रोताओं, सुगम संगीत के कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे हैं तलत महमूद की आवाज में गजलें। आइए सुनते हैं उनकी ये गजल।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे तलत महमूद की आवाज में गजलें, और इसी के साथ ही सुगम संगीत का ये कार्यक्रम यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। दोपहर के 2 बजने को है, कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: व्यक्ति के लिए हैं, परिवार के लिए हैं, समाज के लिए भी हैं और सबसे बड़ी बात है ये राष्ट्र के लिए हैं। आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो।
1: He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम होंगे, 100 मजबूत स्टेप।
1: Mr. Modi said drug addiction diverts people from their goals and distances them from achieving their dreams. He said that addiction not only destroys families but also weakens the strength of a nation. Stressing the need to protect the youth from the menace of drugs, he said young people must understand the serious consequences of addiction. Mr. Modi reminded that the drugs ultimately ruin careers, disrupt family life and destroy the future of individuals.
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है, नशा एक पिता के सपनों को चूर चूर कर देता है और जब परिवार में समाज में ऐसा होता है और कहीं ना कहीं राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: The Prime Minister urged the families not to hide cases of substance abuse due to social stigma. He said they should seek timely help, communicate openly, consult experts and make use of medical support to help affected family members recover. He stressed that families must foster a culture of open dialogue to identify warning signs at an early stage and provide timely support to children.
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event. In Punjab, thousands of students from 7 educational institutions from the state participated in the Nasha Mukti Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan today, which was virtually launched and addressed by Prime Minister Narendra Modi. Most of the students from Punjab-based universities, many of whom were NSS volunteers also, were of the opinion that it is the collective responsibility of the society to promote such campaigns for drug-free country. Piyush Saini from Lovely Professional University, Phagwara, said that they have taken a pledge for Nasha Mukt Bharat.
2: आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित नशा मुक्त युवा अभियान का हिस्सा बना।
3: टुडे अंडर द नशा मुक्त युवा अभियान ऑर्गेनाइज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी, आई अलोंग विद माय फ्रेंड एंड फेलो स्टूडेंट्स हैव टेकन अ प्लेज टुवर्ड्स अ ड्रग फ्री इंडिया। नाउ आवर रिस्पांसिबिलिटी इज टू नॉट ओनली स्टे अवे फ्रॉम ड्रग्स आवरसेल्व्स बट ऑल्सो टू एनकरेज पीपल अराउंड अस एंड आवर रिलेटिव्स टू जॉइन दिस मिशन एंड मूव फॉरवर्ड टुवर्ड्स अ डेवलप्ड इंडिया।
2: और इस चारों को भी इस मुहिम में जोड़े और एक विकसित भारत की तरफ आगे बढ़े।
1: President Draupadi Murmu flagged off a run PBG Soldier-a-thon at a ceremony held at the forecourt of Rashtrapati Bhavan this morning. Governor of Mizoram General V.K. Singh, who is the patron of the initiative, was also present on the occasion. In a social media post, the president said that the Soldier-a-thon serves as a unique platform to strengthen the bond between the civilians and the armed forces, guided by the vision of Run for Soldiers, Run with Soldiers. This is Akashwani giving you the news. For quick news updates round the clock, follow us on X handle at AIR News Alert.

0: ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा। आने वाले 100 रविवार नशा मुक्त भारत की दिशा में 100 मजबूत कदम हो गया।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
0: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
1: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी की डर से मादक पदार्थों के सेवन को छिपाएं नहीं।
0: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाएं नहीं। जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें। हमें परिवार में बच्चों से खुलकर संवाद की संस्कृति भी बनानी चाहिए, ताकि ऐसे भंवर में फंसने से पहले ही आप उसका हाथ थाम सके।
1: श्री मोदी ने कहा कि परिवारों को शुरुआती चरण में ही चेतावनी के संकेतों की पहचान करके खुलकर बातचीत का माहौल बनाना चाहिए। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि अलग अलग रहने, असामान्य व्यवहार, बातचीत से बचने, देर रात तक बाहर रहने या बार बार पैसे मांगने जैसी आदतें मादक पदार्थों के सेवन के शुरुआती संकेत हो सकते हैं। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। कार्यक्रम में 28,000 जगहों से 1 करोड़ से ज्यादा युवाओं ने हिस्सा लिया। इनमें राज्यपाल, मुख्यमंत्री, माय भारत और राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक और स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, युवा क्लबों, गैर सरकारी संगठनों तथा आध्यात्मिक संगठनों के प्रतिभागी भी शामिल हैं। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों छात्रों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। उन्होंने नशा मुक्त भारत निर्माण के संकल्प को समाज की सामूहिक जिम्मेदारी बताया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा न करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकलने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में भागीदारी की। ये समाचार हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। केरलम में मूसलाधार बारिश से हुई तबाही के बीच मौसम विभाग ने राज्य के 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। प्रदेश में बारिश से जुड़ी घटनाओं में अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 8 अन्य लापता हैं। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: प्रभावित इलाकों में खोले गए 209 राहत शिविरों में 5,792 से अधिक लोगों को सुरक्षित पहुंचाया गया है। बारिश से जुड़ी घटनाओं में 27 मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए हैं और 196 मकानों को आंशिक नुकसान पहुंचा है। विभिन्न जिलों से फसलों के नुकसान की भी खबर है। पर्वतीय और नदी के तटवर्ती इलाकों में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। खराब मौसम

0: के कारण मछुआरों को आज केरलम, कर्नाटक और लक्षद्वीप के समुद्री क्षेत्रों में नहीं जाने की सलाह दी गई है। इस बीच जल भराव वाले इलाकों में सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। तिरुवनंतपुरम से अनिला बालकृष्णन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: उधर गुजरात में भी कच्छ, वाव, थराद, बनासकांठा, पाटन, मेहसाणा, मोरबी, सुरेंद्रनगर और साबरकांठा में भी तेज बारिश की संभावना है।
2: मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक आज गुजरात में बारिश की तेजी कम हुई है। इसके साथ ही राज्य में अभी 33 डैम हाई अलर्ट पर रखे गए हैं, जबकि गुजरात की लाइफलाइन सरदार सरोवर नर्मदा डैम में 76% से ज्यादा पानी जमा हो गया है। दूसरी ओर किसी भी स्थिति से निपटने के लिए गुजरात में 17 NDRF और 33 SDRF टीम को तैनात किया गया है। अब तक राज्य में 70,040 लोगों का स्थानांतरण किया गया है और 9,680 लोगों को बचाया गया है। प्रवेश अड़ियचा, आकाशवाणी समाचार, अहमदाबाद।
1: ओडिशा में बाढ़ की स्थिति सामान्य हो रही है। महानदी का जलस्तर घटने से महानदी बेसिन में फिलहाल किसी खतरे की आशंका नहीं है। हमारे संवाददाता ने बताया कि बड़ी संख्या में लोगों की आजीविका प्रभावित हुई है।
3: उड़ीसा में बाढ़ की स्थिति में सुधार हो रहा है, क्योंकि महानदी और दूसरी प्रमुख नदियों का जलस्तर घट रहा है। हालांकि उत्तरी उड़ीसा बुरी तरह प्रभावित हुआ है। राहत और बहाली के काम में तेजी लाने के लिए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी ने बाढ़ प्रभावित जिलों में काम की निगरानी के लिए 4 वरिष्ठ मंत्रियों को तैनात किया है। उड़ीसा सरकार ने पुनर्वास के उपाय तेज कर दिए हैं, जबकि केंद्र सरकार ने राहत और फसल के नुकसान के आकलन के लिए हर संभव मदद का भरोसा दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: मौसम विभाग ने आज कर्नाटक, केरलम, माहे, राजस्थान और पश्चिम बंगाल के हिमालय से सटे इलाकों में मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, कोंकण, गोवा और पूर्वोत्तर में भी कल तक तेज बारिश की संभावना है। अगले दो दिनों में जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तेलंगाना, विदर्भ तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में गरज के साथ बारिश और बिजली गिरने की आशंका है। दिल्ली में भी आज रात कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टालने का फैसला किया है। राष्ट्रपति ट्रंप के अनुसार ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध पर बातचीत को मौका देने के लिए यह फैसला लिया गया है। सोशल मीडिया पर जारी एक पोस्ट में श्री ट्रंप ने कहा कि अमरीका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है, लेकिन संभावित समझौते का रास्ता खुलने के कारण हमले को फिलहाल स्थगित किया गया है। उन्होंने दावा किया कि प्रस्तावित समझौते में होर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक की बात शामिल है। ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। भारत आने वाले चीनी नागरिकों के लिए अगले सप्ताह से वीजा प्रक्रिया को सरल बनाएगा। चीन में भारत के राजदूत विक्रम दोरेस्वामी ने चीन की राजधानी पेइचिंग में पहली ओपन हाउस वार्ता में यह बात कही। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास सांस्कृतिक आयोजन बढ़ाएगा, कामकाजी भारतीयों के लिए कानूनी सहायता उपलब्ध कराएगा और कौंसलर सेवाओं में सुधार के लिए ओपन हाउस वार्ता नियमित रूप से आयोजित करने की भी योजना है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ऐप न्यूज ऑन AIR और सोशल मीडिया हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। बैडमिंटन में तन्वी शर्मा ने ताइपे ओपन सुपर महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। ये तन्वी शर्मा का पहला BWF वर्ल्ड टूर है। फाइनल में तन्वी ने वियतनाम की छठी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी गुएन थुई लिन को हराया। 17 साल की तन्वी ताइवान की ताइजू यिंग को पीछे छोड़कर सबसे कम उम्र की ताइपे ओपन चैंपियन बनी है। वे 2008 में साइना नेहवाल के बाद ये खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी हैं। स्कॉटलैंड में ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों के अंतिम दिन आज जूडो में 3 भारतीय खिलाड़ी चुनौती पेश करेंगे। पुरुषों के 100 किलोग्राम वर्ग में अवतार सिंह, 100 से अधिक किलोग्राम वर्ग में यश घंगास और महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में इशरूप नारंग खेलेंगे। ट्रैक साइकिलिंग में पुरुषों की 1000 मीटर टाइम ट्रायल स्पर्धा में रोनाल्डो लेंतोजाम हिस्सा लेंगे और आज ही पैरा ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धाएं भी हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि मुक्केबाजी में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए भारत

0: सात स्वर्ण और तीन रजत के साथ शीर्ष पर रहा है। विशाल शर्मा की रिपोर्ट।
1: मुक्केबाजी के महिला वर्ग में जैस्मीन लेम्बोरिया, प्रीति पवार, प्रिया घंघास, साक्षी चौधरी और अरुंधति चौधरी ने स्वर्ण पदक हासिल किए। पुरुष वर्ग में सचिन सिवाच और अंकुश पंघाल ने स्वर्ण जीता। लवलीना बोरगोहेन ने महिला वर्ग के 75 किलोग्राम वर्ग में रजत पदक जीता। पुरुष वर्ग में जदुमणि सिंह और नरेंद्र बेरवाल उपविजेता रहे। भारत के जूडो खिलाड़ियों ने भी 4 पदक जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। हर्ष सिंह और अस्मिता डे भारत के पहले जूडो स्वर्ण पदक विजेता बने। यामिनी मौर्य ने रजत और उन्नति शर्मा ने कांस्य जीता। पैरा एथलीटों ने 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 7 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों में अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। सोमन राणा ने पुरुषों के F57 पैरा शॉटपुट में स्वर्ण, जबकि शुभम जोयल ने रजत पदक जीता। 5000 मीटर दौड़ में गुलवीर सिंह ने कांस्य जीतकर इतिहास रच दिया। राष्ट्रमंडल खेलों में ये उपलब्धि हासिल करने वाले वे पहले भारतीय हैं। गुलवीर सिंह ने 10000 मीटर में भी रजत पदक जीता। एक ही राष्ट्रमंडल खेल में 2 पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय बन गए हैं। पदक तालिका में भारत 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य के साथ फिलहाल कुल 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर है।
0: खेलों के समापन समारोह के दौरान आज देर रात अहमदाबाद को आधिकारिक तौर पर राष्ट्रमंडल खेल ध्वज और होस्ट बैटन सौंपा जाएगा। इस अवसर पर अहमदाबाद 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की जिम्मेदारी संभालेगा। अहमदाबाद में होने वाले 2030 राष्ट्रमंडल खेल इस बहुखेल प्रतियोगिता के शताब्दी वर्ष का प्रतीक होंगे। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉ मनसुख मांडविया आज नई दिल्ली में संडे ऑन साइकिल के 84वें संस्करण में शामिल हुए। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में आयोजित इस कार्यक्रम में छात्रों, फिटनेस प्रेमियों, साइकिल चालकों, परिवारों और एनसीसी के युवा कैडेट्स ने नशा मुक्त भारत अभियान के समर्थन में हिस्सा लिया। उपराष्ट्रपति श्री सीपी राधाकृष्णन ने आज पिंगली वेंकैया की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। सोशल मीडिया पर संदेश में श्री राधाकृष्णन ने कहा कि पिंगली वेंकैया महान स्वतंत्रता सेनानी, सच्चे गांधीवादी और भारत के राष्ट्रध्वज के शिल्पकार थे। और अंत में लीजिए सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करने के लिए युवाओं से शारीरिक रूप से चुस्त, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर रहने का आह्वान किया। नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान का शुभारंभ करते हुए श्री मोदी ने कहा कि युवाओं को नशे से दूर रहकर स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए। केरलम में तेज बारिश से जान माल का नुकसान, 8 लोगों की मौत, हजारों लोगों को राहत शिविरों में पहुंचाया गया। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों का आज आखिरी दिन, भारत 13 स्वर्ण सहित 39 पदकों के साथ चौथे स्थान पर। और इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओं, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 2:30 हो चुके हैं और अब हमारा अगला कार्यक्रम है रूपक। विषय है श्रावणी यात्रा आगरा के शिवालयों की। आलेख एवं प्रस्तुति है डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण की। तो साथियों, आइए सुनते हैं ये रूपक।

शिव अनादि हैं, अनंत हैं, भोलेनाथ हैं और सबसे बढ़कर आशुतोष अवहरदानी हैं। वे इस सृष्टि के कल्याण करता है। त्रिदेवों में वे कल्याण और विनाश के देव हैं। उनके तन पर मृगछाल को छोड़कर अन्य कोई वस्त्र नहीं। वे श्रृंगार के रूप में पूरे शरीर पर स्मशान की भस्म और गले में विषधर सर्प के अलावा कुछ नहीं धारण करते। उन्हें भक्तों के कष्ट सह्य नहीं। सच्चे भाव से की गई उनकी आराधना ही उन्हें प्रसन्न कर देती है। वे तो मात्र विल्व पत्र, पुष्प, धतूरा और भांग से ही खुश हो जाते हैं, और यदि कुछ न मिले तो मात्र गंगा जल से ही, और गंगा जल भी न हो तो कोई भी जल मात्र से वे प्रसन्न हो जाते हैं।

शिव इस संसार का कल्याण करते हैं, इस संसार की समस्त व्याधियों का, समस्त संकटों का अवशोषण कर लेते हैं, स्वयं में समाहित कर लेते हैं, तभी तो वे नीलकंठ हैं। सागर मंथन से निकले रत्नों और अमृत की तो सभी देवताओं और दानवों ने आपस में भागीदारी कर ली, परंतु उस अत्यंत कठोर धाकते ज्वलनशील हलाहल विष का क्या होगा, यह किसी ने नहीं सोचा। यदि वह विष सागर की अथाह गहराइयों से निकलकर इस पृथ्वी पर विसरित हो जाता, वायु जल और नभ में समाहित हो जाता, तब तो क्या मनुष्य, क्या राक्षस, क्या देवता, सभी अपने जीवन को संकट में पाते। और ऐसे कठोर तीक्ष्ण विष को ग्रहण करने के लिए शिव ही आगे आते हैं। ऐसे आशुतोष भगवान भोले।

0: शिव कैसे हैं, कैसा है उनका रूप। महाकवि गोस्वामी तुलसीदास ने इसका बड़ा ही सुंदर वर्णन किया है। भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर।
1: भस्म अंग मर्दन।

0: शिव शिव शिव शंकर हे हा शिव शिव शिव शंकर हा हा शिव शिव शिव शंकर सरना।
1: ऐसे भोलेनाथ शिव शंकर को श्रावण मास विशेष प्रिय है। भक्तगण श्रावण मास में शिवालयों की ओर भक्ति भाव से दौड़ पड़ते हैं। दूर दूर से गंगा जल लेकर भगवान शिव के विग्रह, शिवलिंग का बिल्व पत्र, पुष्प और नैवेद्य के साथ साथ गंगा जल या सामान्य जल से जलाभिषेक करते हैं। शायद भक्त की यही मनसा होती है कि संसार भर के कष्टों का विष अपने कंठ में धारण करने वाले भोलेनाथ को हो रही भयंकर पीड़ा और ताप से कुछ शांति मिलेगी इस जल से। और सचमुच भोलेनाथ इस लोटे भर जल से ही इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि वे भक्त की समस्त मनोकामनाएं पूर्ण कर देते हैं।

ब्रज भूमि के साथ भगवान शंकर का बड़ा ही आत्मिक संबंध रहा है। वे अपने आराध्य भगवान विष्णु के कृष्ण रूप की लीलाओं को देखने के लिए बार बार कैलाश से चलकर ब्रज भूमि दौड़े चले आते हैं। इसी क्रम में ब्रज भूमि में भले ही भगवान कृष्ण की लीलाओं के साक्षी अनेक मंदिर एवं पावन स्थल हों, परंतु भगवान शंकर के भी अनेक पावन मंदिर और सिद्ध स्थल पाए जाते हैं। आगरा भी ब्रज क्षेत्र का ही हिस्सा रहा है, अतः यहाँ भी अनेक प्राचीन और सिद्ध शिवालय स्थापित हैं। आगरा नगर के चार कोनों पर अत्यंत प्राचीन चार शिव मंदिर आज भी भक्तों की बहुत बड़ी संख्या को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। विशेष रूप से श्रावण मास में तो इन शिवालयों में भक्तों की भीड़ दौड़ी चली आती है। आगरा के उत्तर पूर्व में राजेश्वर महादेव, उत्तर पश्चिम

पश्चिम में विल्वेश्वर या बल्केश्वर महादेव, दक्षिण पूर्व में पृथ्वीनाथ महादेव और दक्षिण पश्चिम में कैलाश महादेव मंदिर में भक्तों का आगमन अनवरत चलता रहता है। इनके अतिरिक्त नगर के मध्य में मन कामेश्वर महादेव और रावली महादेव मंदिरों के प्रति श्रद्धालुओं की विशेष भक्ति है। इन मंदिरों में भी भक्तों का तांता कभी नहीं रुकता। श्रावण मास में तो इन शिवालयों में तिल रखने की भी जगह नहीं होती, विशेषकर सोमवार को। और इसी भावना को देखते हुए आगरा वासियों ने यह निश्चय किया कि चारों कोनों के इन चार शिवालयों पर श्रावण मास के चार सोमवारों को क्रम से मेले लगाए जाएंगे, ताकि भक्त पूरी श्रद्धा के साथ चारों शिव धामों के दर्शन कर सके और उनको अपनी श्रद्धा समर्पित कर सके। पहले सोमवार को राजेश्वर मंदिर, दूसरे सोमवार को बल्केश्वर मंदिर, तीसरे को कैलाश और चौथे सोमवार को पृथ्वीनाथ शिव मंदिर पर मेला लगता है, जिनमें श्रद्धालु श्रद्धा के साथ साथ मेले में खाने पीने और खरीदारी का भी आनंद लेते हैं। इतना ही नहीं, दूसरे सोमवार को भक्तगण इन चारों मंदिरों के दर्शन करते हुए संपूर्ण आगरा की परिक्रमा भी करते हैं।

0: हमने इन मंदिरों की ऐतिहासिकता और महात्म के विषय में मंदिर के मुख्य पुजारियों एवं प्रबंधकों से बात की और जानने का प्रयास किया कि आखिर भोलेनाथ के भक्तों को अपने आराध्य की कौन सी बात आकर्षित करती है कि वे इन मंदिरों की ओर दौड़े चले आते हैं। सबसे पहले हम राजपुर चुंगी से लगभग 1 किलोमीटर पूर्व में स्थित राजेश्वर मंदिर पहुँचे, जहाँ के मुख्य पुजारी पंडित रूपेश उपाध्याय ने बताया।
1: ये 950 साल पुराना मंदिर है, ऐतिहासिक मंदिर है। जो यहाँ आता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। इसको राया खेड़ा का राजा साहूकार नर्मदा नदी से राया खेड़ा ले जा रहे थे। रात को रुके और सुबह जब जगे तो ये बैलगाड़ी आगे बढ़ी नहीं। उनको सपना दिया कि मेरा स्थान यही है, मुझे यही सुबह पिंडी अपने आप स्थापित हो गई। कई बैलगाड़ियां लग गई इसको खींचने में, बैलगाड़ी को कई गाँवों के लोग इकट्ठे हो गए और बाबा बढ़े नहीं आगे। जब से रायेश्वर मंदिर यही है, कई पीढ़ियां दर पीढ़ियां बीत गई। बहुत समय का मंदिर है, आजकल का नहीं है, काफी टाइम 950 साल तो हमारे बड़े बूढ़े बताता है कब को होगा, कोई पता नहीं इसका। सावन का जो पहला सोमवार है, पहला वेला यहीं का लगता है। केवल भोलेनाथ के यहाँ मत्था टेकते रहे और जल चढ़ाते रहे। 21 दिन जो जल चढ़ा लेगा रहे इस मन से तो उसकी मनोकामना पूरी हो जाएगी। जो भी आता है खाली नहीं आता है।
0: तत्पश्चात हम बलकेश्वर महादेव मंदिर पहुँचे। यमुना के तट पर निर्मित यह मंदिर आगरा के वाटर वर्क्स चौराहे से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस मंदिर के महात्म पर वहाँ के पुजारी पंडित अर्चित पांडे ने प्रकाश डाला।
2: पहले तो मैं सभी से जय भोले की करना चाहूंगा जो भी लोग सुन रहे हैं इस प्रोग्राम को। मंदिर जो है लगभग 700 वर्ष पुराना है और यहाँ पहले बिलपत्र का जंगल हुआ करता था, उसको बिल्व पत्र भी कहा जाता है। तो इसीलिए मंदिर का नाम बिल्वकेश्वर पड़ा था, मगर वो चेंज होते होते बिल्वकेश्वर की जगह बलकेश्वर हो गया। मंदिर की मान्यता ये है कि जो भी भक्त मंदिर 40 दिन लगातार आता है तो जो उसकी मनोकामना होती है वो पूर्ण हो जाती है। और सावन में इस चीज का विशेष महत्व रहता है, लोग 40 दिन के नियम लेते हैं और मनोकामना लोगों की पूरी भी होती है। यहाँ सालों से भक्त आ रहे हैं जो सुबह 5 बजे आके सेवा करते हैं और अपने सब दिनचर्या में मंदिर को इस तरह से सबने व्यवस्थित किया हुआ है कि उन्हें बिना सेवा के आनंद नहीं आता, उनको कुछ खालीपन सा रहता है। तो मान्य

0: मान्यता है बहुत पुरानी वर्षों की, राजा भोज के समय इस मंदिर का निर्माण किया गया था। जैसे सावन में ज्यादातर चार सोमवार पड़ते हैं और आगरा के चारों कोनों पे महादेव जी के मंदिर स्थित हैं, तो हर सोमवार पूर्वजों के हिसाब से इसको बांटा गया कि हर पहले सोमवार पे राजेश्वर का मेला होगा, दूसरे पे बल्केश्वर का होगा, तीसरे पे कैलाश मंदिर का होगा, चौथे पृथ्वीनाथ का होगा। तो इसी श्रृंखला में दूसरे सोमवार पे श्रावण में मंदिर में मेला लगता है और भक्त जो है वो पूरे आगरे की परिक्रमा लगाते हैं। उसका शुरू करने का परिक्रमा का विधान यह है कि जो व्यक्ति के घर के पास मंदिर होता है वो वहीं से उस परिक्रमा को शुरू करता है, और जैसे घर के पास कोई मंदिर है उसके बाद कैलाश मंदिर पड़ता है तो कैलाश मंदिर होते हुए बल्केश्वर, राजेश्वर, पृथ्वीनाथ होते हुए अपने घर की ओर जो मंदिर है वहीं जाके उस परिक्रमा को समाप्त करता है। तो वो भक्तों की अपार भीड़ रहती है और विश्वास भोलेनाथ में इतना है कि बुजुर्ग को भी हम देखते हैं परिक्रमा लगाते हुए, और जो बच्चे लगाना चाहते हैं शुरू में 5 साल 7 साल 8 साल वो जितनी लगा पाते हैं अपने बड़ों के साथ उतनी परिक्रमा लगा।
1: आगरा के दक्षिण पश्चिमी सीमा पर सिकंदरा से करीब 5 किलोमीटर की दूरी पर यमुना नदी के एकदम किनारे पर स्थापित कैलाश मंदिर की महिमा अपरंपार है। यह भारत के कुछ विरले शिव मंदिरों में से है जहां एक ही जलहरी में 2 शिवलिंग विराजमान है। कहते हैं कि भगवान परशुराम के पिता महर्षि जमदग्नि और माता रेणुका जी को कैलाश जाकर भगवान शंकर के नित दर्शन से राहत देने के लिए स्वयं भोलेनाथ ने 2 लिंग रूप में यहां स्थापित होने की कृपा की थी। तब से यह मंदिर श्रद्धालुओं की श्रद्धा का केंद्र बना हुआ है। एक कथा प्रचलित है कि अंग्रेजी राज में एक अंग्रेज जिलाधीश की पत्नी घोड़े पर सवार होकर एक शुकर का पीछा करते हुए रास्ता भटक गई थी। यह क्षेत्र घने जंगलों से भरा पड़ा था। ऐसे में जिलाधीश ने भगवान शंकर से इसी मंदिर में आराधना की, तब रात्रि में उनकी पत्नी वापस आ गई। तब से उस घटना की स्मृति में हर वर्ष श्रावण मास के तीसरे सोमवार को आगरा शहर में सभी सरकारी कार्यालयों में छुट्टी घोषित रहती है। कैलाश मंदिर के महात्म पर प्रकाश डाला वहां के पुजारी पंडित कपिल गिरि ने।
2: इस मंदिर का महत्व जो बहुत पौराणिक है, युगों से है। भगवान परशुराम और उनके पिता यमदग्नि ऋषि द्वारा स्थापित मंदिर है। मतलब उनके युग में वो नित्य दिन यहाँ से, यहाँ रेणुका आश्रम है थोड़ा दूरी, कहा जाता है कि वहां से पूजा करने शिव पर्वत जाया करते थे, कैलाश पर्वत। तो उनके पूजा से, उनकी भाव से, उनकी भक्ति से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको बोला कि आप इतना दूर से आते हो, आप मांगो, आपको क्या मांगना है, मतलब मैं आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने बोला आप या तो हमारे साथ चलिए, तो हम उधर ही बिठा के अच्छे से आपको हमेशा अपने पास रख के आपकी सेवा अर्चना पूजा करेंगे। तो वो बोले चलो जो पॉसिबल है, वो बोले कि मैं ये कर सकता हूँ। तो उन्होंने बोला कि जो हो सकता है वो ये है कि यहाँ से आप कोई भी 2 शिवलिंग ले लीजिए, कंकड़ ले लीजिए, उसमें मैं विराजमान हूँ, कणकण में विराजमान हूँ, तो आप उसको मेरी शिवलिंग के जैसे अपने स्थान पे ले जाकर स्थापित कीजिए, वहां पूजा कीजिए। तो वहां से उन्होंने उनको ये आशीर्वाद देके और 2 अपने शिवलिंग के प्रतिरूप देके और उनको वहां से मतलब विदा करा। उसके बाद जब वो आ गए यहाँ पे, इस स्थान पे आ गए वहां से आने के बाद, तो सायंकाल को उनको पूजा का समय हुआ। तो उन्होंने सोचा कि भगवान ने वहां से निकलने से पूर्व उनको एक चेतावनी भी दी थी कि जहाँ आप स्थापित हो जाएंगे, जहाँ भी आप रख देंगे मुझे, मेरी ये जो प्रतिमाएं हैं, मतलब मेरी जो लिंग स्वरूप प्रतिमा है उसको। तो उन्होंने शाम को यहाँ पूजा अर्चना की, सेवा की यमुना जी के किनारे बैठ के। तो जब पूजा अर्चना हुई उसके बाद जब वो जाने लगे लेके शिवलिंग, तो शिवलिंग नहीं गए और तो भगवान शिव की आकाशवाणी हुई। उन्होंने बोला कि मैं अचलेश्वर हूँ, जहाँ भी आप मेरे को रख दोगे मैं वहाँ स्थापित हो जाऊंगा।
1: कैलाश मंदिर से हम पहुँचे आगरा के दक्षिण पूर्व कोने पर स्थित पृथ्वीनाथ शिव मंदिर में। अद्भुत छटा है इस मंदिर की। धरातल से करीब 10 फीट नीचे इस मंदिर में स्थापित शिवलिंग में अपने संपूर्ण परिवार के साथ भोलेनाथ विद्यमान है। श्रावण के चौथे सोमवार को यहाँ लगे मेले में भक्तों का तांता रुकने का नाम ही नहीं लेता है। मंदिर की ऐतिहासिकता और महात्म पर प्रकाश डालते हुए मुख्य पुजारी पंडित अजय राजौरिया ने बताया,
3: पृथ्वीनाथ महादेव द्वापर युग से शिवलिंग के रूप में यहाँ विराजमान है। मान्यता ऐसी मानी जाती है कि द्वापर युग में जब भगवान कृष्ण अवतार लेकर

0: लीलाएं रचा रहे थे, तो उस समय जब लीला कृष्ण रचाया करते थे तो शंकर वहां दर्शन करने के लिए आया करते थे। तो उसी क्रम में भगवान कृष्ण ने वाराणसी से रजाई और शंकर हमारे उनको देखने के लिए आए। तो आगरा का जो नाम, पुराना जो नाम है, ऐतिहासिक नाम है, वो अग्रवन है, जो कि 84 कोस की परिक्रमा में आता था, लेकिन वो जमुना किनारे जमुना पल्ली पार की वजह से वो क्षेत्र अलग कर दिया गया बाद में, और वो क्षेत्र उधर अलग कर दिया गया ब्रज का। तो रास रचान जब देखा करते, देखने आए भगवान शंकर, तो जिस जगह हमारे पृथ्वीनाथ महादेव विराजमान है वहां उन्होंने वास किया घंटे दो घंटे तीन घंटे, जितनी देर उनको विश्राम करना था उतनी देर वो रुके, और रुकने के बाद एक स्वयंभू रूप में बाबा का विराजमान करके, क्योंकि बाबा ने विराजमान किए हैं वो, इसलिए पृथ्वी पर विराजमान किए, इसलिए उनका नाम पृथ्वीनाथ रखकर, और वो यहाँ से वृंदावन के लिए चले गए। ये उनकी पुरानी मान्यता है, बाकी पीछे फिर मानता है कुछ और बदलती चली गई, जैसे पृथ्वीराज चौहान वाली डालने लगे लोग, बाद में सरकारी आंकड़ों के माध्यम से ये मान्यता बनाई गई कि पृथ्वीराज चौहान जब संयुक्ता गारण करके लौट के आ रहे थे, चूंकि ये एक ही रोड हुआ करता था उस समय, चाहे दिल्ली जाना है चाहे जयपुर जाना है, ये हाईवे वगैरह के निर्माण बाद में हुए, तो पहले एक ही रोड हुआ करता था, बैलगाड़ी से आवागमन हुआ करता था, तो ये स्टे पॉइंट हुआ करता था पृथ्वीनाथ। हमारे बुजुर्गों की खेती बाड़ी हुआ करती थी, यहाँ एक छोटा मंदिर विराजमान था, छोटे महादेव बैठे हुए वहाँ पे, एक छोटे बालाजी है, तो ये दोनों यहाँ विराजमान थे, कुआ था और एक दो कमरे बने हुए थे पीछे धर्मशाला के रूप में, तो यहाँ लोग रुकते थे, अपने खाना पीना बनाया खाया पिया, सुबह नित्यक्रिया से निवृत्त हुए अपने आगे के सफर पे चल दिया करते थे। तो वही उसी क्रम में पृथ्वीराज चौहान जब संयुक्ता का हरण करके ला रहे थे, वो रात को रुके यहाँ, तो जिस जगह बाबा विराजमान है उस जगह एक आग का विशाल वृक्ष बताया जाता है, बोले आग का विशाल वृक्ष था, उस वृक्ष पर घोड़ा बांध दिया, घोड़े ने जब गंदगी की घोड़ा खुल गया, फिर दोबारा गंदगी की फिर खुला, अब दो बार खुला घोड़ा तो बांधने वाले ने तिवारा में तो बहुत ताकत लगाएगा, बहुत प्रयास करेगा, दो गांठ ज्यादा लगेंगी, उस प्रयास से उसने फिर बांधा उसको, लेकिन वो घोड़ा फिर खुला, जब फिर तीसरी बार खुला घोड़ा, तो वो सन्मन में संशय उत्पन्न हुई, उन्होंने राजा तक खबर पहुंचाई, बोले महाराज बार बार घोड़ा बांधते हैं, बार बार खुद लाता है, बोले देखो कहीं ऐसा तो नहीं है लोग बाग यहाँ आवागमन करते हैं, वो कोई भूत पिशाच का साया हो या जो भी है, खोदो इसे, उसकी खुदाई कराई गई और बाबा वहाँ प्रकट। दूसरी मान्यता ये,
1: हम पहुंचे नगर के महात्मा गांधी रोड पर स्थित रावली महादेव मंदिर। आगरा मथुरा रेलवे लाइन के ठीक किनारे स्थित इस मंदिर में एक 3 फुट ऊंचे चबूतरे पर शिवलिंग स्थापित है। इस मंदिर के विषय में बताते हुए वहां के मुख्य पुजारी पंडित शेखर शर्मा जी ने बताया,
2: ये राजा मान लेके आए थे इसको काबुल से अटक नदी, तो ये अपनी बहन जूदाबाई को दिखाने ले जा रहे थे, तो यहाँ जंगल था तो उनको सपना हुआ था कि जहाँ तुम मुझे छोड़ दोगे आप, मैं वहीं रह जाऊंगा, तो यहाँ सूर्य ग्रहण पड़ना पड़ा, सूर्य ग्रहण निकलने लगा, तो उन्होंने कहा भाई अब भाई साहब आप इनको आती हो गई रात को परेशान कर रहे हो, शिवलिंग को उतार दो, उन्होंने शिवलिंग उतार दी, जब उतार दिया तो ये भूल गए वो कि इसको उठाना है ना, उन्होंने तो उन्होंने उठाया, फिर वो तन तन के जंजीर से टूट जाती थी मूर्ति, राजा को ध्यान आया और नहीं यार बाबा सपना हुआ था कि मुझे तू यहाँ रख देगा मैं वहीं रह जाऊंगा, तो फिर यहाँ राजा भोलेनाथ बाबा ने अपना रावली महादेव मंदिर बहन जोधाबाई को बुला करके यहाँ स्थापित किया, और फिर पर अंग्रेज लोग भी यहाँ आए, आकर के अपनी ट्रेन निकालने के चक्कर में हम पढ़ते थे इसको, राज शिवलिंग को रोज तोड़ते थे, और फिर सुबह वो आते थे वो उतने की उतनी दे पाते, तो आगे पूरे विश्व के अंदर ऐसा मोड़ नहीं है जो इंग्लैंड का बना हुआ एस, ये रावली महादेव बाबा मन के धनी मन का मेश्वर है, यो मांगो मिलता है, देवों के देव है, इतने दूर से अपना आकर के काबुल से यहाँ रावली महादेव पर विराजमान हुए।
1: अपनी यात्रा के अंतिम पड़ाव पर हम आगरा नगर के केंद्र में स्थित मन कामेश्वर मंदिर पहुँचते हैं। यह मंदिर कभी यमुना के ठीक तट पर स्थित था, परंतु कालांतर में यमुना के मार्ग परिवर्तन के कारण अब यह यमुना से लगभग आधा किलोमीटर दूर हो गया है। इस मंदिर में शिव के जागृत रूप की अनुभूति होती है। गर्भगृह में लगभग 15 फीट की गहराई पर भोलेनाथ का चांदी से मंडित शिवलिंग स्थापित है, जिसकी दिन के 8 पहर की सेवाएं नियमित रूप से होती हैं। इसके अलावा धरातल के सम ऊंचाई पर एक अन्य शिवलिंग भी स्थापित है, जिसे रामेश्वर लिंग के रूप में भक्तगण जलाभिषेक करते हैं। यह मंदिर शिव स्तुति एवं मंत्रोच्चार से सदैव गुंजायमान रहता है। इस मंदिर की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला विद्वान पुजारी पंडित योगेश पुरी जी ने।
3: चूंकि महात्मा की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर स्वयं भगवान शिव ने यहाँ पर विश्राम किया था, और भगवान शिव ने ही यहाँ श्री मनकामेश्वर नाथ शिवलिंग की स्थापना स्वयं भगवान शंकर के ही द्वारा प्रतिष्ठापित है। तो उसी के तत्वावधान में और उसी के अंतर्गत में सबसे प्रमुख बात है कि इसको हम लोग ये कह सकते हैं कि ज्योतिर्लिंग तो नहीं है, क्योंकि द्वादश ज्योतिर्लिंग अपने 12 जो ज्योतिर्लिंग है पूरे

0: देश में, पूरे भारतवर्ष में, वो ज्योतिर्लिंग तो नहीं है लेकिन ये किसी ज्योतिर्लिंग से कम भी नहीं है। और सबसे प्रमुख बात है कि यहाँ पर चूंकि भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, स्वयं भगवान शंकर देवादिदेव महादेव की भी मनोकामना, जिस समय भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था द्वापर युग में, तो उस समय भगवान शंकर कैलाश से चल करके आए थे और उन्होंने यहीं इसी जगह पर जहां आज बाबा मनका विश्वनाथ जी विराजमान है वहीं पर उन्होंने विश्राम किया था और वहां से विश्राम करके पुनः ब्रज में गए। और जब ब्रज में पहुंचे तो वहां पर उन्होंने माँ यशोदा के बड़े अनुनय विनय करने के पश्चात उन्होंने दर्शन किया। दर्शन करने के पश्चात जब लौट के आए तो उन्होंने उसी जगह पर जहां पर पहले विश्राम किया था पुनः विश्राम करके एक शिवलिंग उन्होंने स्थापित प्रतिष्ठापित किया।
1: श्रावण मास में शिव मंदिरों एवं शिवालयों में भक्त जनों की श्रद्धा चरम पर होती है। देश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर तो भक्तगण लाखों की संख्या में पहुंचते ही हैं, परंतु अन्य शिवालयों के प्रति भी भक्ति का सैलाब थमता नहीं है। भक्त जन यही मानते हैं।

चरम पर होती है। देश के द्वादश ज्योतिर्लिंगों पर तो भक्तगण लाखों की संख्या में पहुंचते ही हैं, परंतु अन्य शिवालयों के प्रति भी भक्ति का सैलाब थमता नहीं है। भक्त जन यही मानते हैं कि शिव भोले हैं, उनसे जो भी कामना करो उसकी तत्काल पूर्ति हो जाती है। शिव क्षमाशील हैं, उनके समक्ष समर्पण के साथ मांगी गई क्षमा याचना को वे सहर्ष स्वीकार करते हैं और हमारे समस्त अवगुणों और पापों को क्षमा कर देते हैं। भक्तों की यही सहजता शिव की सरलता का कृपा पात्र बनाता है। आइए हम भी सच्ची श्रद्धा और समर्पण भाव से भगवान शिव की शरण में अपने को समर्पित करें और अपना यह जीवन सफल करें। हर हर महादेव।

श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे रूपक। विषय था श्रावणी यात्रा आगरा के शिवालयों की। आलेख एवं प्रस्तुति थी डॉक्टर ब्रजेंद्र नारायण की। इसी के साथ ही ये रूपक यहीं संपन्न होता है।

ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में 3 बज चुके हैं और अब प्रस्तुत है लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन। आइए सुनते हैं राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत उदित नारायण की आवाज में। गीत के बोल लिखे हैं समीर ने, धुन बनाई है नदीम श्रवण ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे राजा हिंदुस्तानी फिल्म का ये गीत। अगला गीत सुनते हैं लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाजों में फिल्म दिल तो पागल है से। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना है उत्तम सिंह की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर उदित नारायण की आवाजों में फिल्म दिल तो पागल है का ये गीत। आइए अब सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में सड़क फिल्म से ये गीत। शब्द रचना है समीर की, संगीत रचना है नदीम श्रवण की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे सड़क फिल्म का ये गीत। आइए अब सुनते हैं साधना सरगम की आवाज में फिल्म विश्वात्मा का ये गीत। आनंद बख्शी के लिखे इस गीत की धुन बनाई है बीजू शाह ने।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे साधना सरगम की आवाज में फिल्म विश्वात्मा का ये गीत। कार्यक्रम के अंत में सुनते हैं लता मंगेशकर कुमार सानू की आवाजों में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत। शब्द रचना है आनंद बख्शी की, संगीत रचना है जतिन ललित की।

साथियों, अभी आप सुन रहे थे लता मंगेशकर, कुमार सानू की आवाजों में फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे का ये गीत। गीत के बोल लिखे थे आनंद बख्शी ने, संगीतबद्ध किया था जतिन ललित ने। इसी गीत के साथ लोकप्रिय फिल्म संगीत का कार्यक्रम गीत गुंजन यहीं संपन्न होता है। ये आकाशवाणी का आगरा केंद्र है। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलो हर्ट्ज पर। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में 3:30 हो चुके हैं। अब हमारी आज की दोपहर कालीन सभा यहीं संपन्न होती है। सायंकालीन सभा में शाम 5 बजे आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। नमस्कार।

नमस्कार साथियों, आप सभी श्रोताओं की सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर

नमस्कार साथियों, आप सभी श्रोताओं की सेवा में हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के न्यूज ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर। इस समय संध्या के 5 बजने को हैं। हमारी सांध्यकालीन सभा में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। सबसे पहले जानते हैं देश और दुनिया के हालात इस समाचार बुलेटिन के माध्यम से।

0: पर आकाशवाणी समाचार के साथ मैं शक्ति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना आवश्यक है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्तों का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले ना छुपाएं। उन्होंने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना आवश्यक है। पंजाब के 7 शिक्षा संस्थानों के हजारों विद्यार्थियों ने आज नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान में भाग लिया। मोहाली स्थित चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में छात्रों को नशा ना करने और दूसरों को भी नशे की लत से बाहर निकालने में सहयोग देने की शपथ दिलाई गई। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के अंतर्गत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.censet.gov.in पर जाकर अपने परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज करा सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित जनगणना कर्मी 17 अगस्त से 15 सितंबर तक गृह सूचीकरण अभियान और आवास जनगणना का संचालन करेंगे। इस दौरान पोर्टल पर भी दी गई जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत के जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। वस्त्र राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस दौरान देश से 100 से अधिक जीआई पंजीकृत हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादकों का प्रदर्शन किया जाएगा। देश के कोयला उत्पादन में जुलाई 2025 के मुकाबले जुलाई 2026 में 7.51% की बढ़ोतरी हुई है। कोयला मंत्रालय ने बताया कि इस वर्ष जुलाई में देश में कुल कोयला उत्पादन 69.75 मिलियन टन रहा। जुलाई 2026 में कोयले की आपूर्ति जुलाई 2025 के मुकाबले 17.34% अधिक थी। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य हमला फिलहाल टाल दिया है। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान और पश्चिम एशिया के कुछ देशों के अनुरोध के बाद यह निर्णय लिया गया है। सोशल मीडिया पर श्री ट्रंप ने बताया कि संभावित समझौते में हॉर्मुज जलडमरू मध्य को तत्काल पूरी तरह खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक शामिल है। हालांकि ईरान ने अब तक ट्रंप के इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने चेतावनी दी है कि कांगो गणराज्य में इबोला का प्रकोप

0: खतरनाक रूप से बढ़ रहा है और ये देश के इतिहास में सबसे बड़ा इबोला प्रकोप बन गया है। संगठन के अनुसार 30 जुलाई तक इबोला के 3,605 पुष्ट मामले और 1,000 पुरुषों की 1,000 मीटर टाइम ट्रायल के फाइनल में हिस्सा लेंगे। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी आगरा की सांध्यकालीन सभा में। 5:05 हो रहे हैं, कार्यक्रम विवरण। जी हां साथियों, अब से थोड़ी देर में यानी 5:10 पर आप सुनते हैं भक्तिपरक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सुर संध्या। उसके ठीक बाद 5:30 पर हमारे युवा साथी सुनेंगे कार्यक्रम विभवाणी। इस कार्यक्रम में आज की चर्चा का विषय होगा बिम्स्टेक, खेल दुनिया में खेल और सद्भाव विषय पर चर्चा होगी। हम आपको एक वार्ता सुनवाएंगे, आत्मनिर्भरता और विज्ञान का समन्वय थे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय विषय पर, वार्ताकार होंगे ऋषभ शर्मा। इसके अलावा चलते चलते में आज का टॉपिक रहेगा जल संचय जन भागीदारी और होगा फिल्म संगीत। 6 बजे कार्यक्रम होता है ग्राम्य लोक। इस कार्यक्रम में लोकगीतों के अलावा आज की चर्चा का विषय होगा पीएम सूर्य घर योजना। अमर सिंह की वार्ता का विषय रहेगा वर्षा जल का संचयन। आपको मंडी भाव और मौसम की जानकारी भी दी जाएगी। संध्या 6:30 पर हमारे श्रमिक साथी सुनते हैं कार्यक्रम मजदूर मंडल। इस कार्यक्रम में बनवारीलाल कुशवाहा की वार्ता प्रसारित होगी, विषय होगा जानलेवा है तंबाकू सेवन। चर्चा होगी मित्रता एक अनमोल रिश्ता। इसके अलावा फिल्म संगीत से आपका मनोरंजन किया जाएगा। 7:10 में विविधा कार्यक्रम में आज हम आपको डॉक्टर सौरभ जैन की वार्ता सुनवाएंगे, विषय दिग्गज रसायनज्ञ उद्यमी और महान शिक्षाविद डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम आप सुनते हैं संध्या 7:31 पर। गाने नए पुराने रात 8 बजे, चित्रपट संगीत 8:30 पर प्रसारित होगा। रात 9:30 पर रूपकों का अखिल भारतीय कार्यक्रम दिल्ली केंद्र से प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में आज का विषय है स्वाधीनता की प्रतिध्वनियां, आजाद हिंद फौज के अमर गीत आपको सुनवाए जाएंगे। प्रस्तुति होगी नवोदिता मिश्रा की। रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से ही आप सुनेंगे अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा का अनुप्रसारण। ये थे हमारे सभा के शेष कार्यक्रम। अब एक नजर कल के प्रमुख कार्यक्रमों पर। भक्ति संगीत का दैनिक कार्यक्रम वंदना आप सुनते हैं 6:05 पर। चिंतन में 6:25 पर कल सुनिएगा संत कबीर के विचार। श्री रामचरितमानस गान 6:35 प्रसारित होता है। 6:45 पर हमारे किसान भाई सुनते हैं कार्यक्रम खेती की बातें। इस कार्यक्रम में कल का विषय होगा पशुपालन में ध्यान देने योग्य बातें, बताएंगे डॉक्टर आर के कौशिक। समाचारों के बाद यानी अंग्रेजी समाचारों के बाद 7:10 पर सुबह कार्यक्रम होता है स्वास्थ्य चर्चा। इस कार्यक्रम में कल की वार्ता का विषय होगा जोड़ों का दर्द, कारण लक्षण और बचाव, आपको जानकारी देंगे डॉक्टर एस सी साहू। आसपास 7:31 पर फिल्म संगीत का सदाबहार कार्यक्रम गीतांजलि। 8:45 पर गीत मंजूषा। 9:25 पर और सुर सरिता सुबह 10 बजे आप सुनते हैं। इस बीच सुबह 9:45 पर लोक संगीत में कल हम आपको रामगोपाल शर्मा, मधुर और साथियों के गाए कुछ ब्रज लोक गीत सुनवाएंगे। शास्त्रीय संगीत के कार्यक्रम में सुबह 10:30 पर सुनिएगा पंडित भीमसेन जोशी का राग रामकली में ख्याल गायन, आज के कलाकार। जी हाँ, यह कार्यक्रम होता है सुबह 11 बजे। इस कार्यक्रम में कल कलाकार होंगे मशहूर संगीतकार जयदेव। कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुबह 11:30 पर प्रसारित होगा। इस कार्यक्रम में कल का विषय होगा माँ का दूध शिशु के लिए अमृत समान, और एक और विषय होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एनसीईआरटी द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम उमंग सुनिएगा दिन में 12 बजे।

नए तराने 12:30 पर। हमारी बहनें सुनेंगे कार्यक्रम घर संसार दिन में 1:15 पर। इस कार्यक्रम में चर्चा का विषय होगा सावन को आने दो। मेरी माटी मेरा देश में कल होंगे मैथिली शरण गुप्त। फैशन ब्यूटी में आरामदायक ट्राउजर के बारे में बताया जाएगा। एक भेंटवार्ता आपको सुनवाएंगे, स्तनपान के प्रति जागरूकता, डॉक्टर अनविता जैन से दीपाली दुबे की बातचीत प्रसारित होगी। सुगम संगीत में दोपहर 1:45 पर सरदार जसवंत सिंह के गाए कुछ गजलें प्रसारित की जाएंगी। उपशास्त्रीय संगीत में दोपहर 2:30 पर उस्ताद गुलाम मुस्तफा खां का राग ठुमरी मिश्र तिलक कामोद में गायन प्रसारित होगा और पंडित अजय पोहनकर का भी गायन मिश्र पहाड़ी में प्रसारित होगा। विविधा में संध्या 7:10 पर अंकिता तिवारी की वार्ता का विषय होगा हिंदी कविता का शाश्वत सूर्योदय मैथिली शरण गुप्त।

रात 10 बजे दिल्ली केंद्र से संसद में आज के प्रश्नकाल की कार्यवाही की रिकॉर्डिंग प्रसारित होगी और विधानमंडल समीक्षा कल रात 8:20 पर आप लखनऊ केंद्र से सुन सकेंगे। शास्त्रीय संगीत में कल रात 10:30 पर हम आपको सुनवाएंगे उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का राग मालकौंस में ख्याल गायन। यह था कार्यक्रम विवरण। आप हैं आकाशवाणी आगरा के साथ मीडियम वेव 196.1 मीटर पर। अब प्रस्तुत है भक्ति परक फिल्म संगीत का कार्यक्रम सूर संध्या।

जगदीश के चरणों में जब हम सर झुकाते हैं, अपना सब कुछ समर्पित कर देते हैं, तो हमारे सारे कष्ट खुद ब खुद मिट जाते हैं। और अब कान्हा की बांसुरी में खो जाते हैं पूर्ण भक्ति के साथ।

0: सुरसंध्या कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। अभी जो भक्ति रचना आपने सुनी उसमें स्वर दिया था लता मंगेशकर ने, इसमें राय बच्चन को हमने लिया था फिल्म सिलसिला से, इसका संगीत था शिवहरी का। उसके ठीक पहले आपने बेटी बेटे फिल्म की भक्ति रचना मोहम्मद रफी के स्वर में सुनी। शैलेंद्र की इस रचना को संगीतबद्ध किया था शंकर जयकिशन ने। और सबसे पहले हमने आपको अब्दुल्ला फिल्म की भक्ति रचना लता मंगेशकर के स्वर में सुनवाई थी। आनंद बख्शी के लिखी रचना को संगीतबद्ध किया था आरटी बर्मन ने।
1: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
0: और अब कार्यक्रम के अंत में नमन करते हैं माता रानी को।

उषा खन्ना के संगीत निर्देशन में रविंद्र जैन और साथियों की गाई फिल्म प्यार की मंजिल की इस भक्ति रचना के साथ ही सुर संध्या कार्यक्रम को अब यहीं संपन्न करते हैं। हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं, 5:30 हो रहे हैं। समय है युवा साथियों के कार्यक्रम युवा वाणी का।

0: नमस्कार दोस्तों, हम सब की लाइफ में कभी ना कभी ऐसा ज़रूर होता है कि हम सिर्फ अपने आसपास की चीज़ों तक सीमित नहीं रहना चाहते। हम जानना चाहते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, नए आइडियाज़ क्या हैं और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे आने वाले कल को शेप कर सकती हैं। तो बस इसी क्यूरोसिटी को नई सोच के साथ आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम युवानी में। मैं हूं आपकी होस्ट अपेक्षा शाक्या और आज हम साथ मिलकर बात करेंगे कुछ ऐसे टॉपिक्स पर जो शायद हेडलाइन से आगे बढ़कर हमारी ज़िंदगी, हमारी अपॉर्चुनिटीज और हमारी सोच से जुड़े हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफ़र और जानते हैं कि कैसे अलग अलग देश साथ आकर सिर्फ पार्टनरशिप्स नहीं बनाते बल्कि ग्रोथ और अपॉर्चुनिटीज के नए रास्ते भी खोलते हैं। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है, पैसा, टेक्नोलॉजी या मिलिट्री, शायद आपका जवाब होगा तीनों। लेकिन इन तीनों से बड़ी एक और चीज़ है, कोलैबोरेशन। क्योंकि आज के टाइम में कोई भी देश अकेले आगे नहीं बढ़ सकता, चाहे क्लाइमेट चेंज हो, डिजास्टर मैनेजमेंट हो, साइबर सिक्योरिटी हो या ग्लोबल ट्रेड। हर बड़ी चुनौती हमें यही सिखाती है कि आने वाला टाइम उन देशों का है जो साथ मिलकर काम करना जानते हैं। और इसी सोच का एक उदाहरण है बिम्स्टेक, यानी द वे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। दोस्तों, इसका मोटिव सिर्फ बातचीत करना नहीं बल्कि साथ मिलकर एक इनिशिएटिव क्रिएट करना है। इस कोलैबोरेशन में हर देश अपनी स्ट्रेंथ के हिसाब से कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसमें 7 देश शामिल हैं। ट्रेड, इन्वेस्टमेंट और डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं बांग्लादेश, भूटान एनवायरनमेंट और क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दों पर काम कर रहे हैं, श्रीलंका साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन पर काम कर रहा है, वहीं थाईलैंड कनेक्टिविटी पर, म्यांमार एग्रीकल्चर और फूड सिक्योरिटी पर, नेपाल टूरिज्म, कल्चर और लोगों के बीच कनेक्शन मजबूत करने पर, और भारत सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, एनर्जी और डिजास्टर मैनेजमेंट जैसे इम्पोर्टेंट एरियाज में लीड करता है। अब सवाल ये आता है कि बिम्स्टेक हमारे लिए कैसे यूजफुल है। दोस्तों, जवाब बिल्कुल सिंपल है। जब देश आपस में सही तरीके से जुड़ते हैं तो सिर्फ बॉर्डर्स नहीं जुड़ते बल्कि अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती हैं। बिकॉज बेटर कनेक्टिविटी बेटर ट्रेड, एंड बेटर ट्रेड का मतलब है न्यू बिजनेस, और न्यू बिजनेस का मतलब है नए स्टार्टअप्स, न्यू आइडियाज और यूथ के लिए नए करियर अपॉर्चुनिटीज। ये भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और नेबरहुड फर्स्ट अप्रोच को मजबूत करता है। साथ ही ये भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन और साउथ ईस्ट एशिया से जोड़ने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, बिम्स्टेक के सामने कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे डिफरेंट कंट्रीज की इकोनॉमिक कैपेसिटी, लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और क्लाइमेट चेंज जैसी प्रॉब्लम्स भी इग्नोर नहीं की जा सकती। सिर्फ मीटिंग और अग्रीमेंट काफ़ी नहीं होंगे। असली सक्सेस तब होगी जब ये प्लान्स ग्राउंड पर दिखाई दें और एक्चुअली लोगों की लाइफ में डिफरेंस या चेंज आए। यही शायद हमें भी सीखना चाहिए। सिर्फ ड्रीम्स देखना काफ़ी नहीं है, उन्हें पूरा करने के लिए स्किल्स, इनोवेशन और कंसिस्टेंटली सीखने की सोच ज़रूरी है। क्योंकि जो देश साइंस, रिसर्च और अपने युवाओं की क्षमता पर भरोसा करता है वही आने वाले समय में आगे बढ़ते हैं। और जब बात साइंस, आत्मनिर्भरता और भारत के वैज्ञानिक योगदान की होती है तो एक नाम हमारे सामने आता है, डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। आज उनकी जयंती के अवसर पर हम बात करेंगे कि कैसे उन्होंने विज्ञान को सिर्फ प्रयोगशाला तक सीमित नहीं रखा बल्कि उसे देश निर्माण और आत्मनिर्भरता से जोड़ा। इसी विचार को आगे बढ़ाते हुए अब समय है हमारे अगले सेगमेंट वार्ता का। दोस्तों, आज हमारे साथ हैं युवा वक्ता ऋषभ शर्मा, जो विषय आत्मनिर्भरता और विज्ञान का समन्वय डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय पर अपने विचार साझा करेंगे।
1: नमस्कार श्रोताओं, आज हम जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर पाते हैं, विज्ञान के क्षेत्र में नई खोज कर पाते हैं और आज इन सभी से हमारा जीवन सुविधाजनक हो पाया है, तो यह समझना जरूरी है कि सिर्फ एक या दो सदी पहले यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी। ये वो दौर था जब भारत पराधीन था, संसाधन सीमित थे, लेकिन कुछ आत्माएं ऐसी थीं जिनके सपनों की ऊंचाई किसी आज़ाद देश से कम न थी। उन दिनों ना तो आयातित आधुनिक मशीनें थीं, न जटिल प्रयोगशालाएं और ना ही ऐसी दवाएं जो आज हम आसानी से पा लेते हैं। संचार बहुत सीमित था, शोध करना बेहद कठिन था और विदेशी कंपनियों पर हमारी पूरी निर्भरता थी। बीमारियों का पता लगाना, उनके इलाज के लिए दवाएं बनाना और उन्हें जनता तक पहुंचाना लगभग असंभव जैसा था। वहीं विकास के ये सीमित साधन और संसाधन होने के बावजूद हमारे कुछ रिसर्चर और वैज्ञानिकों ने देश की स्थिति को बदलने का प्रण लिया। ये जज्बा हमें सिखाता है कि यही सोच और मेहनत से हम जीवन की हर कठिनाई को पार करके आगे बढ़ सकते हैं। हम आज आत्मनिर्भर भारत के नारे को गर्व से दोहराते हैं, तो कहीं ना कहीं हम उन चेहरों को भूल जाते हैं जिन्होंने दशकों पहले यह सपना देखा, जिया और उसे साकार भी किया। ऐसी ही एक प्रेरक आत्मा थे डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। विज्ञान के क्षेत्र में मेड इन इंडिया का नारा सबसे पहले उन्होंने ही दिया। उनका जीवन केवल विज्ञान में खोजों तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने देशभक्ति, समाज सेवा और युवा पीढ़ी को प्रेरित करने की एक अनूठी मिसाल पेश की। आइए जानते हैं इस महान व्यक्तित्व के प्रेरणादायी जीवन काल के बारे में। डॉक्टर रॉय का जन्म 2 अगस्त 1861 को बंगाल के खुलना जिले में हुआ, जो अब बांग्लादेश में स्थित है। बचपन से ही पढ़ाई में उनकी विशेष रुचि हुआ करती थी। वे कोलकाता के प्रेसिडेंसी कॉलेज से स्नातक होने के बाद उच्च शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए और एडिनबर्ग विश्वविद्यालय से रसायन शास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनके सबसे प्रसिद्ध शोध में मर्क्यूरस नाइट्राइट की खोज थी, जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दिलाई। इसके अलावा उन्होंने अमोनियम नाइट्राइट के शुद्ध रूप का संश्लेषण कर दिखाया, जिससे रसायन विज्ञान के क्षेत्र में उनका नाम अमर हो गया। डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त करने के बाद डॉक्टर रॉय वापस भारत लौटे और कोलकाता विश्वविद्यालय में अध्यापन का कार्य करने लगे। क्योंकि देश प्रेम की भावना उनके रग रग में समाहित थी, जिससे प्रेरित होकर उन्होंने देश की वैज्ञानिक चेतना को जगाने का बीड़ा उठाया। उनकी सोच केवल प्रयोगशाला तक सीमित नहीं थी, वे मानते थे कि भारत को आगे बढ़ना है तो विदेशी माल के मोह से निकलकर स्वदेशी उद्योग और ज्ञान पर भरोसा करना होगा। उन दिनों भारत अंग्रेजों का उपनिवेश था और देश के पास अपनी वैज्ञानिक औद्योगिक क्षमता विकसित करने के संसाधन बेहद कम थे। वह दौर था जब साबुन से लेकर दवा तक सब कुछ बाहर से आता था। डॉक्टर रॉय ने यह चुनौती स्वीकार की और बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल

0: की स्थापना की। यह भारत की पहली रासायनिक और औषधि कंपनी थी, एक ऐसा कदम जिसने देश को विदेशी निर्भरता से बाहर निकलने की प्रेरणा दी। इसके माध्यम से रॉय ने यह दिखा दिया कि भारतीय वैज्ञानिक भी अपने उत्पादन, अपनी दवाइयाँ और अपनी कंपनियाँ खुद खड़ी कर सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। उनकी कंपनी में नेप्थलीन, फिनाइल, टॉनिक और अन्य रासायनिक उत्पाद बनाए जाते थे। इनमें से अनेक उत्पाद आज भी लोकप्रिय हैं। डॉक्टर रॉय का जीवन अत्यंत सादा और विचारशील था। वो केवल एक वैज्ञानिक ही नहीं, बल्कि एक समाज सुधारक भी थे। अपनी कमाई का बड़ा हिस्सा वो समाज कल्याण, शिक्षा और विज्ञान शोध के लिए दान कर देते थे। उनका मानना था कि विज्ञान का पहला दायित्व समाज की समस्याओं का समाधान करना है। उन्होंने सस्ती दवाओं का उत्पादन आरंभ किया ताकि गरीबों को सुलभ चिकित्सा मिल सके। उनका मानना था कि भारत की राजनीतिक स्वतंत्रता आर्थिक और औद्योगिक आत्मनिर्भरता से ही प्राप्त हो सकती है। उनके नेतृत्व और मार्गदर्शन में अनेक युवा वैज्ञानिक तैयार हुए, जिसमें आचार्य प्रफुल्ल नाग, सतीश चंद्र साहा और मेघनाथ साहा जैसी विभूतियां भी शामिल थीं। उनका जीवन एक जीवंत उदाहरण था कि कैसे शिक्षा, विज्ञान और सामाजिक दृष्टिकोण मिलकर एक संपूर्ण राष्ट्र निर्माण कर सकते हैं। उनका जीवन इस बात का प्रमाण है कि अगर विज्ञान को सामाजिक और आर्थिक जरूरतों से जोड़ा जाए, तो देश की आत्मनिर्भरता का सपना हकीकत बन सकता है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय का यह संदेश आज भी प्रासंगिक है। वो कहा करते थे कि हमारे वैज्ञानिक शोध का लाभ आम जनता तक पहुंचना चाहिए, तभी हमारा ज्ञान सच्चा और उपयोगी है। आज हम विज्ञान और तकनीक के जिस स्तर पर हैं, वहां तक पहुंचने की नींव रखने वालों में डॉक्टर रॉय का स्थान अग्रणी है। उनके सतत प्रयासों ने भारतीय युवाओं को विज्ञान, अनुसंधान और उद्यमिता के मार्ग पर चलने को प्रेरित किया। प्रफुल्ल चंद्र रॉय को बंगाली पुनर्जागरण के वैज्ञानिक स्तंभ और नवयुग के विचारों के वाहक के रूप में भी पहचाना जाता है। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री नामक एक प्रसिद्ध पुस्तक भी लिखी, जिसमें प्राचीन भारत में रसायन विज्ञान के विकास को दर्शाया गया है। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय की प्रेरणादायक जीवन यात्रा 16 जून 1944 को पूर्ण हो गई, परंतु उनके विचार और उपलब्धियां आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। डॉक्टर रॉय की आत्मकथा लाइफ एंड एक्सपीरियंसेस ऑफ अ बंगाली केमिस्ट पर प्रसिद्ध जर्नल नेचर ने लेख दिया, जिसमें लिखा गया कि शायद ही किसी और वैज्ञानिक का जीवन इतना प्रेरणादायी और उदाहरण योग्य रहा हो। इन संघर्षों के बावजूद आज हम उनके योगदान को लगभग भुला चुके हैं। उनकी आंखों के सपने और कर्मठता हर उस उन्नति में शामिल है जिस पर आज का भारत गर्व करता है। हम नई नई योजनाएं बनाते हैं, आत्मनिर्भरता का जय घोष करते हैं, पर उन जड़ों को भूल जाते हैं जिनसे आज का स्वदेशी भारत खड़ा हुआ। तो आइए आज हम सब उनको नमन करते हैं, उनके महान जीवन से आगे बढ़ने और आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा लेते हैं।
1: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे ऋषभ शर्मा को, जिन्होंने बताया कि कैसे साइंस हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। वहीं दूसरी तरफ फ्रेंडशिप हमें हर कदम पर साथ चलने का हौसला देती है। आज फ्रेंडशिप डे के इस खास मौके पर हमारे सुनने वालों की डिमांड पर चलिए आपको सुनवाते हैं फ्रेंडशिप डे स्पेशल ये गीत।

वेलकम और वेलकम बैक दोस्तों, आप सुन रहे हैं यूपानी, जहां अभी हमने बात की फिमस्टेक के बारे में। अब वक्त है हमारे अगले सेगमेंट खेल दुनिया का, जहां स्पोर्ट्स का स्कोर नहीं, गेम के पीछे की असली स्ट्रैटेजी डिकोड होती है। और आज हम बात करने जा रहे हैं FIH हॉकी वर्ल्ड कप 2026 की। दोस्तों, पहले ये समझते हैं कि आखिर FIH है क्या। देखिए, जैसे क्रिकेट में ICC होता है या फुटबॉल में FIFA, वैसे ही हॉकी की दुनिया का सबसे बड़ा वर्ल्ड कप FIH है, यानी इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। ये वो ग्लोबल बॉडी है जो दुनिया भर में हॉकी के रूल्स बनाती है, पिचेस स्टैंडर्डाइज करती है और सबसे बड़े इंटरनेशनल टूर्नामेंट करवाती है। ये टूर्नामेंट कोई आम चैम्पियनशिप नहीं है, ये वो एरेना है जहां दुनिया का टॉप 16 पावर हाउस टीम्स आपस में कम्पीट करती हैं। हमारी इंडियन हॉकी टीम पूरी तैयारी के साथ इस वर्ल्ड कप में स्टेप इन कर रही है, एक नए लुक, एक नई वाइब और एक नए एनर्जेटिक शेड में तैयार है। और इंडियन हॉकी टीम का ये नया वाइब्रेंट सैफरन शेड काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। पर दोस्तों, क्या ये एक स्टाइल अपडेट है? एब्सोल्युटली नॉट। इंटरनेशनल हॉकी में अब स्टैंडर्डाइज्ड ब्लू टर्फ यूज़ होता है। पुरानी ब्लू जर्सी पहनकर जब हमारे प्लेयर्स फास्ट पेस्ड गेम में पास देते हैं तो पिच और जर्सी का कलर ब्लेंड हो जाता था, जिससे विजन क्लैरिटी पर असर पड़ता था। हाई

0: स्पीड मैचेस में मिली सेकेंड्स का रिएक्शन टाइम मैटर करता है। इसलिए प्लेयर्स और कोचिंग स्टाफ के टेक्निकल फीडबैक के बाद इस नए हाई कॉन्ट्रास्ट सेफ्रन शेड को चूज किया गया है ताकि पिच पर विजिबिलिटी 100% रहे। ये नया कलर तिरंगे के सेफ्रन से इंस्पायर्ड है जो करेज, सेक्रीफाइस और स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करता है। तो दोस्तों देर मत कीजिए, 14 से 30 अगस्त तक अपने कैलेंडर्स मार्क कर लो और एक लाउड चीयर के लिए तैयार हो जाओ बिकॉज इट्स टाइम टू गियर अप एंड सपोर्ट आर चैंपियंस। दोस्तों ये था हमारा खेल दुनिया सेगमेंट, अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
0: दोस्तों अब वक्त है संडे स्पेशल में हमारे मूवी मैगजीन सेगमेंट का, जहां आज हम बात करेंगे सिनेमा के उन मैजिशियंस की जो कैमरे के पीछे रहकर हमारे सपनों को स्क्रीन पर सच करते हैं। दोस्तों सिनेमा सिर्फ ऑन स्क्रीन एक्टर्स का नहीं बल्कि इन हजारों अनसंग क्राफ्ट पीपल के पैशन का नाम है और इस बिहाइंड द कैमरा मैजिक का सबसे हसीन एग्जाम्पल है डायरेक्टर अनुराग बासु की मास्टरपीस फिल्म बर्फी। सोचो एक ऐसी मूवी जिसमें मेन लीड एक्टर रणवीर कपूर का एक भी डायलॉग नहीं है, प्रियंका चोपड़ा का कैरेक्टर ऑटिस्टिक है और इलियाना डिक्रूज साइलेंट इमोशंस से बात करती हैं, लेकिन बिना किसी हैवी डायलॉग्स के भी ये फिल्म आपके दिल में उतर जाती है। आखिर कैसे? दोस्तों ये कमाल था बिहाइंड द सीन्स उनके क्रू का, सिनेमेटोग्राफी, साउंड डिज़ाइन और अनुराग बासु का विजन इस मूवी को खास बनाता है। कैमरा मूवमेंट जो फिल्म का नरेटर था रवि वर्मन ने दार्जिलिंग की ठंड और कोलकाता की पुरानी गलियों को जादुई कैनवस पर उतार दिया। और साउंड डिज़ाइन की बात करें तो प्रीतम का बैकग्राउंड स्कोर हर साउंड बर्फी की दुनिया को जिंदा करता है और अनुराग बासु इंडियन सिनेमा के उन गिने चुने डायरेक्टर्स में से एक हैं जिनका फिल्म मेकिंग स्टाइल और विजन बाकी सब से बिल्कुल अलग है। अगर हम उनकी फिल्मों जैसे बर्फी, जग्गा जासूस, लाइफ इन अ मेट्रो और अपकमिंग मेट्रो इन दिनों को देखें तो उनके सिनेमेटिक विजन के 5 मेन पिलर्स निकल कर आते हैं। विजुअल स्टोरी टेलिंग ओवर हैवी डायलॉग्स। बर्फी में मेल लीड डायलॉग नहीं बोल सकता लेकिन उसकी आंखें और बॉडी लैंग्वेज सब बयां कर देती हैं। अनुराग बासु की किसी भी मूवी से अगर म्यूजिक निकाल दें तो फिल्म आधी रह जाएगी। उनका विजन होता है कि म्यूजिक सिर्फ गाना ना हो बल्कि कहानी का नरेटर बने। अनुराग बासु के सेट डिज़ाइन ने सिनेमेटोग्राफी का विजन हमेशा फेरीटेल वर्ल्ड जैसा लगता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अनुराग बासु सेट पर बहुत रिजिड या स्ट्रिक्ट बाउंड स्क्रिप्ट लेकर नहीं आते। होप, इनोसेंस एंड ह्यूमन फ्लॉस। अनुराग बासु के कैरेक्टर्स कभी परफेक्ट हीरो नहीं होते, उनके कैरेक्टर्स में कोई ना कोई कमी यानी इम्परफेक्शन या इनोसेंस ज़रूर होती है। वो कहते हैं कि सिनेमा को दिमाग से नहीं दिल और आँखों से देखो, तभी तो उनकी फिल्मों में डायलॉग्स कम होते हैं। तो आज हमारे सुनने वालों की डिमांड पर आज के इस मैजिकल सिनेमेटिक मूड को डेडिकेटेड हम ये गाना आपको सुनवाते हैं प्रीतम के म्यूज़िक डायरेक्शन में।

बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। फिर मिलेंगे न्यू अपडेट्स के साथ आपके कार्यक्रम युवानी में हर शाम 5:30 बजे एक नए होस्ट के साथ। आज आप सुन रहे थे अपेक्षा शाक्या को। नमस्ते।

0: किसान भाइयों बहनों, खेत खलियानों से लेकर गांव की चौपालों तक, जहां भी हमारे रेडियो की आवाज़ पहुंच रही है, वहां बैठे हमारे जो भी साथी हैं या जो साथी हमें सुन रहे हैं, उन सभी को हमारी यानी आपके साथी देवेंद्र की राम राम। तो स्वागत है आप सभी का ग्राम्यलोक कार्यक्रम में। साथियों, आज हम बात करेंगे उस विषय की जिससे हमारा आज के साथ साथ कल भी बेहतर होगा, क्योंकि पता है प्रकृति के खजाने में ऐसी अनमोल संपदा छिपी हुई है जिसका अगर सही से उपयोग किया जाए तो न केवल वर्तमान बल्कि आने वाली पीढ़ियों का भविष्य भी संवर सकता है। और सूर्य की किरणें भी एक ऐसी ही अनमोल धरोहर हैं जो सदियों से बिना किसी लालच के हमारी धरती माँ को प्रकाशवान कर रही हैं, या कहें कि ऊर्जा प्रदान कर रही हैं। आज के बदलते समय में यही धूप न केवल उजाला कर रही हैं बल्कि आत्मनिर्भरता, ऊर्जा सुरक्षा और आर्थिक बचत का जरिया भी बन रही हैं। घर की छतों पर पड़ने वाली धूप जब खर्च घटाए, पर्यावरण बचाए और विकास की नई राह दिखाए, तो फिर क्यों ना इसका उपयोग किया जाए। इसी उद्देश्य को, या कहें कि इसी बात को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना शुरू की है। और इस योजना से जुड़े विभिन्न पहलुओं को जानने के लिए हमने मुलाकात की एक सब डिवीजन ऑफिसर आकाश गुप्ता जी से।
1: साथियों, देखिए, हमारी सरकार द्वारा एक बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना चलाई जा रही है, सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो ये योजना क्या है, इससे हम आम लोगों को क्या लाभ है, इसका लाभ कौन कौन से लोग ले सकते हैं, ऐसे तमाम तरह के विचार हमारे मन में आते हैं। तो इन तमाम तरह के सवालों को जानने के लिए आज हम मौजूद है एक उपखंड में, वहाँ हमारी मुलाकात हुई है वहाँ के सब डिवीजन ऑफिसर आकाश गुप्ता जी से। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि सबसे पहले आपसे यही कि पीएम जो सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना है, इससे आम लोगों को क्या लाभ है और क्या जरूरत पड़ी, क्या महसूस हुआ इस योजना को चलाने के पीछे?
2: एक्चुअली जैसे हमारी जो ग्रिड सिस्टम होती है, तो लगातार लोड और डिमांड वो लगातार बढ़ता जा रहा है। इससे हो क्या रहेगा, जैसे पहले हमें बिजली जनरेट करनी पड़ती है, उसके बाद जो बिजली जनरेट होती है फिर हम ट्रांसमिट करते हैं और फिर लोगों के हाउस होल्ड तक उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं
1: जी।
2: तो जो जनरेटिंग कैपेसिटी है वो हमारी कॉन्स्टेंट है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन लगातार बढ़ता जा रहा है,
1: मांग बढ़ रही है और जो उत्पादन है वो स्तर है।
2: उत्पादन का एक स्तर है, उत्पादन को बढ़ाने की बहुत सारी क्राइटेरिया होती है, बहुत सारी रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है, बहुत सारी
1: उत्पादन को कम करते
2: हैं। तो ये कॉन्स्टेंट है, इसकी प्रगति थोड़ी स्लो है, लेकिन डिमांड बहुत जल्दी बढ़ रहा है। क्योंकि आप गांव में भी अगर विजिट करेंगे आज के डेट में, तो आप देखेंगे हर गांव में लोगों के घरों में इंडक्शन, एसी, कूलर, इसकी उपलब्धता होती चली जा रही है। तो इसके वजह से जो सरकार की ये योजना है कि जितने भी हाउस होल्ड है हमारे, जो रेसिडेंट हाउस होल्ड होते हैं जिनके घरों पर लगातार बिजली की यूज होती है, जैसे आप अगर ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप ही चले जाएंगे, लेकिन आपके घर के बच्चे, आपकी
1: फैमिली
2: लगातार घर पे बनी रहेगी, तो उनको दिन में भी एसी की जरूरत है, रात में भी एसी की जरूरत है, तो दिन में भी कंजम्पशन है, रात में भी कंजम्पशन है। तो सरकार की यही योजना है कि जितने भी हमारे हाउस होल्ड कनेक्शन है उनके घरों के ऊपर एक सोलर रूफ टॉप
1: लगा दिया,
2: स्टैब्लिश कर दिया जाए और वो अपना जनरेशन खुद बनाए और उससे जो भी निर्गत हो रही है आप अपने घर पे हाउस होल्ड पर उसको यूज करें। और अगर कोई ऐसा समय जिसमें आप घर के बाहर चले जाते हैं तो उसको ग्रिड से भी कनेक्ट कर रखें, ताकि उसकी अगर आप नहीं घर पे हैं लेकिन सोलर आपका बना रहा है तो वो बेकार ना जाए, आपकी इन्वेस्टमेंट बेकार ना जाए, वो आप ग्रिड को वापस करके आप उससे बेनिफिट भी कमा।
1: अच्छा सर, इसके लिए मतलब शुरुआत उसकी कैसे की जाए, जैसे हमारा कोई किसान भाई आम लोग सोलर पैनल लगवाना चाहता है तो वो कैसे लगवाए, आवेदन की क्या प्रक्रिया है?
2: देखिये, इसके

0: आवेदन के लिए पीएम सूर्य घर योजना का ही एक वेबसाइट, आप इसमें जाके आवेदन कर सकते हैं।
1: ठीक है,
0: आवेदन करने के लिए नॉमिनल जो प्रक्रिया है वो यही है कि आपको सबसे पहले अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। स्टेट के बाद आपको डिस्कॉम सेलेक्ट करना पड़ेगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद कोई भी सीएससी सेंटर जाके आप अप्लाई कर सकते हैं।
1: जनसेवा केंद्र,
0: जनसेवा।
1: अच्छा, आपके विभाग द्वारा इसकी कुछ पहल की जा रही है, मतलब यहाँ पे भी आपके यहाँ पे कोई सुविधा है इस टाइप की?
0: नहीं, हमारे विभाग की तरफ से नहीं चलती, क्योंकि ये सीएससी सेंटर की तरफ से, जनसेवा केंद्र की तरफ से ही
1: आवेदन।
0: इसमें ऐसा है, आप जैसे ही डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट करने के साथ ही वहां पर आपको ऑप्शन आ जाता है कि कितने वेंडर यहाँ पर अवेलेबल, तो आप किसी भी वेंडर को चूज कर सकते हैं। फिर अंदर जाएंगे, अंदर में बहुत सारे नॉमिनल कुछ पेपर्स होते हैं, वो मांगे जाते हैं, जैसे आधार कार्ड हो गए, बैंक डिटेल हो गया, चेक हो गया। वो इसलिए मांगे जाते हैं क्योंकि पूरी फिजिबिलिटी कंप्लीट होने के बाद जो सरकार आपको सब्सिडी प्रोवाइड करेगी वो आपके बैंक पर वेरीफाई होकर आ सके।
1: जैसे जो आपने वेंडर बताए वो अधिकृत होते हैं?
0: ये यूपी मेरा जो हमारा यहाँ पर विभाग चलता है उसके थ्रू ये लोग अनलिस्टेड होते हैं।
1: अच्छा,
0: और वो अनलिस्टेड जो वेंडर्स होते हैं आपको पूरी की पूरी डिटेल दे देगा और सबकी रेटिंग भी रहती है। मतलब किसी को भी चूज कर सकते हैं उसके अंतर्गत जाके।
1: धांधली की कोई गुंजाइश नहीं है?
0: कोई धांधली नहीं होती।
1: अच्छा,
0: और बिल्कुल हर स्तर पे इसको मॉनिटरिंग की जाती है, किसी भी स्तर पे कोई भी धांधली नहीं कर सकता।
1: अच्छा, वो सब्सिडी का क्या रहता है? जैसे मान लीजिए हमने आवेदन कर दिया तो उसके बाद क्या रहता है, प्रोसेस क्या रहता है, सब्सिडी का क्या माध्यम होता है, कैसे आती है, कितने दिनों में आती है?
0: जैसे ही आपकी, जैसे पहले आपने आवेदन करना होता है, आवेदन अपने कर लिया, फिर वेंडर उसको लगाना चालू कर देता है आपके घर पे। ठीक है, जैसे लगाने का कार्य पूरा हो गया, सोलर
1: लगाने में कितना समय लगता है?
0: बहुत ज्यादा समय नहीं लगता, बहुत ज्यादा 7-8 दिन
1: लगाने। सब्सिडी का क्या रहता
0: है? सब्सिडी उसके बाद जैसे ही उनका काम खत्म होता है उसके बाद हमारे यहाँ से फिजिबिलिटी अपलोड होती है,
1: मतलब आपका विभाग
0: फिजिबिलिटी अप्लाई करके उसका मीटरिंग प्रोसेस में चला जाता है। फिर वो जैसे ही हमारा नेट मीटर का एक प्रोसेस होता है, ठीक है, आम जनमानस के घर पर हमारा नॉर्मल मीटर लगा है जो, ठीक है, नॉर्मल मीटर यूनिडायरेक्शनल होता है, और जो हमारा सोलर मीटर होता है वो बाई डायरेक्शनल मीटर होता है। बाई डायरेक्शनल इसलिए कि जो हमसे आप एनर्जी लेंगे और जो आप हमें एनर्जी वापस
1: करेंगे,
0: इन दोनों का आवागमन उसमें संबंधित होना चाहिए, इसलिए वो बाई डायरेक्शनल बना दिए जाते हैं। तो नेट मीटर लगाए जाते हैं इसके लिए। तो वो नेट मीटर का जो प्रोसेस होता है वो करने के बाद जो फिजिबिलिटी तैयार हो गई वो अपलोड किए जाते हैं, उसके बाद वो प्रोसेस वहां से सीधा यूटीएडा की तरफ से हुआ।
1: तो नहीं, तो टाइम कितना, मिनिमम कितना समय मतलब लगता है सब्सिडी आने में?
0: ज्यादा समय नहीं लगता, फिजिबिलिटी अपलोड होने के साथ ही 10 से 12 दिन में आ जाता
1: है। मतलब एक महीने का एक तरह से मान के चलिए पूरी प्रक्रिया एक महीने के अंदर आपकी
0: क्लियर हो जाएगी?
1: अच्छा सर, तो लगवाने का जो बिजली का बिल हम लोग जमा करते हैं उसमें कितनी कटौती, कितना लाभ होता है लोगों को, कुछ अनुमानित?
0: देखिए, अगर पर किलोवाट के हिसाब से देखो तो जैसे इंडिया का जो ज्योग्राफी है और इसमें जितने सूरज का प्रकाश है हमारे यहाँ पर, तापी वो 4 से 5 यूनिट पर किलोवाट के हिसाब से एक दिन में बना देते हैं।
1: और खपत फिर आप अपने अनुसार कितना चला रहे हैं, कितना लोग डाल रहे हैं?
0: मतलब मेरे पास कई उपभोक्ता आते हैं और उनको अंडरस्टैंडिंग में इस चीज की बहुत दिक्कत रहती है कि ऐसा होता है कि जैसे सोलर पैनल बनाया तो सोलर पैनल बनाने के बाद वहां एक इन्वर्टर होता है, ठीक है, क्योंकि उनकी जो मेकिंग होती है वो डीसी में होती है, ठीक है, लेकिन हमारे जो घर चल रहा है वो अल्टरनेटिंग करंट से चल रहा है, डीसी करंट से, ठीक है, तो वहाँ एक इन्वर्टर होता है। इन्वर्टर क्या करता है, उसको डीसी जो सोर्सेस होता है उसको एसी में कन्वर्ट कर देता है, फिर कन्वर्ट करके वो, तो उसमें क्या होता है, उस कन्वर्जन में आपको ये दिखाता रहता है कि आपने एक दिन में कितनी एनर्जी बनाई। लेकिन हमारा जो मीटर है, हमारा मीटर क्या होता है, हमारा मीटर उसके बाद लगा होता है, वे वही एनर्जी कंज्यूमशन दिखाता है जो आप ग्रिड को वापस करते हैं।
1: अच्छा,
0: मतलब जैसे सोलर बनाता है इसका सिस्टम इस तरह से सेटअप होता है, जैसे आपका जितना इन्वर्टर होता है कन्वर्ट, वो कन्वर्जन के बाद आप जितनी भी एनर्जी घर में पहले खपत कर रहे हैं सबसे पहले वो वहां खपत करें।
1: अच्छा,
0: अगर उसमें कुछ बचा तो वो हमारे मीटर में रजिस्टर
1: हो।
0: अगर मान लीजिए आपके घर में खपत 5 किलोवाट का है, आपने बनाया उस समय 2 किलोवाट, तो आप 2 किलोवाट तो इससे ले लेंगे, लेकिन 3 किलोवाट हमारे मीटर में ले,
1: ठीक है,
0: तो हमारे मीटर में इंपोर्ट रीडिंग उस समय शो करेगी।
1: ठीक है,
0: अब मान लीजिए कोई एक ऐसा समय जिसमें आप घर पे है नहीं और आपके घर की खपत है सिर्फ और सिर्फ 0.5 किलोवाट, ठीक है, और उस समय आप बना रहे हैं 2 किलोवाट, फिर क्या करेगा, हमारे ग्रिड से आपको कुछ नहीं चाहिए होगा, इंपोर्ट आपकी जीरो हो जाएगी। फिर आप एक्सपोर्ट के टाइम पर ये क्या करेगा, यहाँ से 0.5 किलोवाट घर में दे देगा और 1.5 किलोवाट हमारे ग्रिड को वापस करेगा, फिर वो एक्सपोर्ट में हमारे मीटर पर प्रदर्शित। फिर महीने के एंड में क्या होता है, हमारा इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों का
1: कैलकुलेशन
0: होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट रीडिंग निकालकर टोटल नेट रीडिंग हम निकाल लेते हैं, और उसके आधार पर अगर आपके ऊपर बिल आता है तो बिल देते हैं, और अगर आपकी

0: रेटिंग ज्यादा हो गई इम्पोर्ट से, कई केसेस में होती एक्सपोर्ट रेटिंग ज्यादा हो गई तो फिर हम उसका एक पूरा हिसाब बनाकर हम एक्सपोर्ट रेटिंग आपका जमा कर देते हैं। फिर वो साल के एनुअली इसका हिसाब होता है, अभी जितना भी होता है आपको एज ए 3 रुपया 30 पैसा या 3 रुपया 47 पैसा हिसाब से जो भी इसका एक होता है एग्जैक्ट अमाउंट उस रुपये से आपको वापस कर देते।
1: अच्छा सर, जैसे मान लीजिए वैसे तो हमारे देश में सूर्य हमेशा बहता है, लेकिन फिर भी सर्दियों के मौसम में बारिश के समय बादल जब होते हैं तो उसमें कोई दिक्कत होती है क्या इसमें?
0: देखिए ये सोलर एनर्जी, इसका नाम ही है सोलर, अगर सोलर नहीं रहेगा तो थोड़ी सी एनर्जी उसमें कम बनाता है।
1: अच्छा सर, इतने किलोवाट तक हम सोलर पैनल लगवा सकते, इतने किलोवाट तक इतनी सब्सिडी दी जा रही है, कहने का मतलब ये हुआ?
0: अच्छा जैसे ये सब्सिडी हमारे विभाग की तरफ से नहीं दी
1: है,
0: लेकिन स्टिल मैं आपको थोड़ी जानकारी इसके दे देता हूँ। इसमें यह है कि 1 किलोवाट का जो सोलर आप लगाएंगे उसमें 30,000 तक की सब्सिडी अलाउड है, 2 किलोवाट तक की लगाते हैं तो 60,000 तक की है, 3 किलोवाट के बाद 78,000 तक है।
1: अच्छा,
0: और उसके बाद वो डिग्रेड हो जाता है सब्सिडी। ये ऐसा ना कि जैसे छोटे जो हाउस होल्ड है
1: उनके लिए उनकी सहूलियत
0: ज्यादा है।
1: जी जी जी। अच्छा किसानों के लिए क्या कोई योजना है आपके विभाग द्वारा?
0: सूर्य घर योजना हाउस होल्ड तक जोड़े, पीएम कुसुम योजना।
1: सर 2 किलोवाट से हम लोग ट्यूबवेल छोटे वाले नलकूप के चला सकते हैं, वो तो चल ही जाएंगे उससे, बहुत से लोगों के यहाँ किसानों के यहाँ लगे हुए हैं।
0: नहीं वो ऑफग्रिड जाना पड़ेगा।
1: अच्छा अच्छा, उसके लिए कोई वो नहीं है? नहीं मैंने देखे हैं सोलर पैनल प्लेटें लगी हुई है, बाकायदा खेतों पर लगवा ली है,
0: वो हाउस होल्ड वो अपने ऑफग्रिड लगा सकते हैं।
1: अच्छा,
0: कोई दिक्कत नहीं है। जैसे इसमें भी दो तरह के प्रावधान होते हैं ना, एक ऑनग्रिड होता है, ऑन ग्रिड जब लगाएंगे तभी हमारे विभाग की तरफ से आप आए तभी तक सब्सिडी आपको दी जाएगी। अगर आप ऑफ ग्रिड आते हैं तो ऑफ ग्रिड में मतलब आप डायरेक्टली वेंडर से बात करके अपने डायरेक्टली घर में सेटअप करा दिया।
1: अच्छा सर, हमारे गांव में हमेशा बिजली दी जाती है, शहरों की बात करें चले हमेशा बिजली बनी गई थोड़ी बहुत देर दी जाती है, तो गाँव में लगवाने में क्या कोई परेशानी है इनको, या बैटरी लगवानी पड़ेगी? सूर्य घर बिजली योजना में शायद बैटरी का प्रावधान नहीं है, मुझे नहीं लगता है,
0: हाइब्रिड मॉडल में है।
1: अच्छा, तो उसमें सब्सिडी इतनी है कि कुछ कंबल
0: का नीचे रहता है?
1: अच्छा अच्छा, वो उसका भी आवेदन वहीं से ऑनलाइन करना पड़ता है। अच्छा, कोई किसी बंदे के पास पैसे ना हो, मतलब मान लीजिए कोई ब्याज दे या बैंक से ऋण लेके लगवाना चाहे तो क्या ये सही प्रावधान?
0: हाँ, ईएमआई का है, इसलिए तो वेंडर सेलेक्ट किए जा रहे हैं।
1: अच्छा,
0: वेंडर के थ्रू सब हो जाएगा।
1: अच्छा अच्छा,
0: जो भी ईएमआई लेना है या कुछ भी करना है वो वेंडर के थ्रू।
1: अच्छा सर, आपका विभाग इसमें क्या काम कर रहा है?
0: हमारा विभाग इसमें दो काम करता है, एक तो फिजिबिलिटी प्रोवाइड कराता है, ये फिजिबल है कि नहीं लगाने,
1: हाँ ये लगाना पात्र है,
0: और लगने के बाद वर्क कम्प्लीट, उसका वर्क कम्प्लीट हो गया, और लास्ट में उसमें जो नेट मीटरिंग का प्रोसेस है जो कि इसका सबसे अहम रोल हुई है, नेट मीटरिंग वो प्रोवाइड करता है।
1: अच्छा अच्छा सर, किसी को कोई समस्या आ जाए तो कोई ऐसा हेल्पलाइन नंबर भी होता है?
0: जैसे इसके लिए आप हमारे खंड अधिकारी जो होते हैं या फिर उपखंड में आप हमारे पास, यहीं से आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है, जो नॉर्मल कॉल है उसे।
1: अच्छा सर, आपका विभाग जागरूकता के लिए क्या कर रहा है? क्या लगता है ग्रामीण क्षेत्र या शहरों की बात की जाए तो लोग अभी तक कितना अवेयरनेस, कितना जागरूक हुए हैं?
0: जैसे लोग आजकल जितने भी लोग हैं जिन्होंने पहले सेटअप किया था, पहले तो लोगों को सेटअप ही समझ में नहीं आया।
1: जी हाँ,
0: कोई भी चीज जब जमीन पे नई नई लगती है तो लोगों को समझने में टाइम लगता है,
1: भ्रांतियां मिलती हैं थोड़ी देर,
0: हाँ तो थोड़ा देर समझने में टाइम लगता है, तो वैसे ही धीरे धीरे लोगों में जागरूकता आ रही है और लोग इसको समझ रहे हैं। जैसे सरकार का एक था कि 1 करोड़ हाउस होल्ड इससे कनेक्ट हो,
1: जी जी
0: ठीक है, तो उसके और धीरे धीरे अग्रसर हो रही, क्योंकि डीएम साहब के यहाँ से भी लगातार मीटिंग होती है, सीडीओ साहब के यहाँ से भी लगातार मीटिंग होती है, तो जागरूकता लगातार वेंडरों तक भी पहुंचाई जाती है, आम जनमानस तक भी पहुंचाई जाती है, थ्रू टेम्पलेट हो या फिर थ्रू न्यूज आर्टिकल हो या रेडियो के माध्यम से हो, किसी के माध्यम से भी हो, लगातार लोगों में अवेयरनेस फैला रही है और लोग इससे अवेयर भी हो रहे हैं।
1: चलिए सर, अंत में आप हमारे जो श्रोता है वो आपको सुन रहे हैं, उन्हें आपका संदेश देंगे?
0: उन्हें यही मैं बोलना चाहूंगा कि ये एक ऐसा योजना है सरकार का जिसके थ्रू लोग अगर जुड़ते हैं तो आपको हो सकता है स्टार्टिंग में आपको लगे कि यार इतना बेनिफिशियल नहीं है, लेकिन एट द एंड क्योंकि जिस हिसाब से आज के डेट में पैसे की वैल्यू बढ़ रही है उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि 2 महीने 3 महीने 4 महीने 5 महीने यूज करने के बाद आपको ये समझ में आएगा आपने बहुत ही अच्छा फायदे का काम किया है इसको लगा, क्योंकि आप दो काम कर रहे हैं, एक तो आप जो आपकी स्टेट है उसके ग्रिड पे भी आप भार कम कर रहे हैं, मतलब अल्टीमेटली आप सरकार को इससे फायदा पहुंचा रहे हैं, और दूसरा आप अपनी जो आपकी मंथली इनकम है जिसका एक अच्छा खासा भाग बिजली बिजली विभाग को जाता है बिजली के रूप में,
1: जी जी
0: ठीक है, रिवेन्यू के रूप में,
1: जी जी
0: आप क्योंकि वो देना पड़ेगा क्योंकि आप यूज कर रहे हो, अदरवाइज सरकार भी कैसे बिजली देना है, तो वो जो दे रहे हैं उसकी भी भार में कम होगी, तो हमारी जो सरकार है उसको भी जनरेशन कम करना पड़ेगा, तो सरकार को भी अल्टीमेटली पैसे कम लागत करने पड़ेंगे तो कम

0: सर हमारी प्रकृति को भी तो फायदा हो रहा है,
1: हमारी प्रकृति को भी फायदा हो रहा है, क्योंकि जितने फॉसिल फ्यूल नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस होते हैं जैसे कोयला हो गया, कुछ भी हो गया, उसको हम जितने मात्रा में जलाते हैं उतने लेवल में पॉल्यूशन
0: गैस वैसे
1: बढ़ रहा है।
0: बिल्कुल सर,
1: वो भी वही तो कह रहा है, जनरेशन कैपेसिटी हमें कम कम हो जाएगी, हमें कोई दिक्कत नहीं होगी, हमारे पर्यावरण में सेफ रहेगा और हाउस होल्ड और लोगों के मनी वाइज भी लोग
0: हम भी आर्थिक रूप से मजबूत रहेंगे, हमारा देश भी विकास के रास्ते पर अग्रसर रहेगा। बिल्कुल सर, बहुत अच्छी सर जानकारी दी आपने, देश की नीति समझ दिया हमारे श्रोताओं को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: थैंक यू।
2: साथियों, प्रधानमंत्री सूर्य मुफ्त बिजली योजना के विभिन्न पहलुओं पर बड़ी ही सरलता और सहजता से उपयोगी जानकारी हमारे साथ साझा की SDO आकाश गुप्ता जी ने, तो पूरा विश्वास है कि अधिक से अधिक हमारे साथी इस योजना का लाभ उठाकर स्वच्छ ऊर्जा और आर्थिक बचत की दिशा में एक सार्थक कदम बढ़ाएंगे।
3: एक प्रकार से PM जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाए। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही अवैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
2: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
1: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
3: साथियों, एक बात तो है, जीवन की सबसे कीमती इस चीज़ों का महत्व हमें तब समझ में आता है जब उसकी कमी महसूस होने लगती है। ऐसी ही प्रकृति की एक अनमोल धरोहर है जल, जिसके बिना जीवन की कल्पना करना असंभव है। बदलते समय में घटते जल स्रोत और हमारी बढ़ती आवश्यकता हमें ये सोचने पर मजबूर कर रही है कि यदि आज पानी की हर एक बूंद को नहीं सहेजा गया तो आने वाले कल में अनेकों चुनौतियां हमारे सामने खड़ी हो सकती हैं, और ऐसे में जल संचयन ही एक उपाय है। तो कैसे करना है हमें वर्षा जल का संचयन, इस विषय में जानते हैं अमर सिंह गुर्जर से।
4: परमपिता परमेश्वर द्वारा सृष्टि के सृजन के साथ साथ ही इस जगत में जल और जीव दोनों के अटूट रिश्ते हैं। हमारे पौराणिक ग्रंथों आदि में इन दोनों के पारस्परिक संबंधों के नाना तरह से वर्णन मिलते हैं, और जल के बिना जीव मात्र एक कोरी कल्पना है, अर्थात जल ही जीवन है। और हमारे पूर्वजों एवं महान कवियों ने लिखा भी है कि रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। जब हम इतिहास के झरोखों से झांक कर देखें तो पाते हैं कि संसार में जितनी भी सभ्यताएं पनपी थीं, बड़ी बड़ी नदियों के किनारे ही उनके अवुद्ध स्थल रहे हैं। नील नदी, दजला फरात, सिंध एवं गंगा नदी की सभ्यताएं इसके उदाहरण हैं। अतः हम कह सकते हैं कि पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है, इससे ही हमारा संसारी जीवन पुष्पित एवं पल्लवित होता है, और इसका अभाव ही सर्वनाश का सूचक है। इन्हीं तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए हमारे राजा महाराजाओं ने पानी की महती आवश्यकता को समझकर जल संरक्षण के लिए समुचित कदम उठाए तथा बांधों, तालाबों, कुओं, बावड़ियों आदि के द्वारा अपनी रियासतकालीन जनता की जलापूर्ति के लिए विशेष प्रबंध किए। लेकिन समय के बदलाव के साथ साथ प्रकृति ने भी करवट लेना शुरू कर दिया। कहीं अतिवृष्टि तो कहीं अनावृष्टि, कहीं सूखा तो कहीं बाढ़ जैसी भयावह स्थिति पैदा होती जा रही है। जमीन का जलस्तर दिनों दिन नीचे खिसकता जा रहा है। यह बड़ा ही शोचनीय बिंदु है। जिस देश की 80% जनता का भाग मानसून पर निर्भर करता हो, उसके लिए वर्षा की अनिश्चितता एक चिंताजनक स्थिति पैदा कर देती है। आज हमारे देश में कई जगह अकाल की विभीषिका देखने को मिलती है। यदि समय रहते हम लोगों ने समस्याओं के समाधान करने के लिए समुचित कदम नहीं उठाए तो हमारी मानवता को इसके बहुत गंभीर परिणाम भोगने होंगे। केंद्रीय जल संसाधन मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 1950 में प्रति व्यक्ति पानी की औसत उपलब्धता 5000 क्यूबिक मीटर

0: थी जो इस समय 1869 क्यूबिक मीटर है। दूसरे शब्दों में कहें तो इस समय आजादी के समय उपलब्ध पानी का 40% से भी कम पानी उपलब्ध है। अगर जल संरक्षण की यही हालत रही और जनसंख्या वृद्धि की दर यही रही तो वर्ष 2025 में प्रति व्यक्ति 1000 क्यूबिक मीटर से कुछ ज्यादा ही पानी उपलब्ध होगा, जो एक खतरनाक स्थिति है। जल संसाधन मंत्रालय का भी मानना है कि देश के 8 नदी बेसिन क्षेत्रों में जल संकट की स्थिति बन चुकी है। साथ ही संयुक्त राष्ट्र संघ के वैज्ञानिकों के एक दल ने अपनी पर्यावरण संबंधी द ग्लोबल एनवायरमेंटल आउटलुक नामक एक रिपोर्ट के अनुसार विश्व की आधी से अधिक आबादी पानी की कमी से प्रभावित होगी तथा एशियाई व प्रशांत क्षेत्र के देशों में 65% लोग पेयजल की भारी कमी का सामना करेंगे। यह डरावना परिदृश्य हमारी ही पृथ्वी पर 30 साल बाद होगा। हमारे देश में भी आबादी बढ़ने के साथ साथ पानी की ज्यादा जरूरत महसूस की जाने लगी। ट्यूबवेल खोदे जाने लगे, इसका दोहन इतना ज्यादा होने लगा कि कुएं तथा बावड़ियां सूखते चले गए। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट के एक अध्ययन के अनुसार नलकूपों के अधाधुंध खनन से भी जल संकट बढ़ा है। इस खनन के चलते ही गुजरात के मेहसाणा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिलों में तो भूजल एकदम खत्म हो गया है। पंजाब और मध्य प्रदेश में भी जल स्तर तेजी से गिरा है, यह भी एक चेतावनी है। और इन सब में ज्यादा प्रभाव हमारे देश के मरु प्रदेश अथवा राजस्थान में देखने को मिलता है। इन सभी समस्याओं का मुख्य कारण हमारे पारंपरिक जल स्रोतों की उपेक्षा पूर्ण दृष्टि से देखना है। राजस्थान में सतही जल का 52% उपयोग हो रहा है। भूजल के लगातार दोहन के कारण 1994 में 12 क्षेत्र डार्क जोन में थे, जो बढ़कर 86 हो गए हैं। प्रदेश में अनेक सतही जल स्रोत सूखकर खेल के मैदान बन गए हैं। भूजल वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले 5-10 वर्षों में जयपुर एवं प्रदेश भर में सन 2025 के बाद भूजल भंडार खत्म हो जाएंगे। राज्य के 32 जिलों में से 26 जिलों में भूजल नीचे जा चुका है। हमारे देश में 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर उपलब्ध पानी है, इसमें हमें 53 मिलियन हेक्टेयर मीटर पानी खेतों एवं पीने के लिए मिलता है, बाकी भाप बनकर उड़ जाता है या नदियों के द्वारा वापस समुद्र में चला जाता है। हमारी 60% भूमि वर्षा के जल पर सिंचाई के लिए निर्भर है। इस वर्षा का आधा भाग व्यर्थ चला जाता है, अतः वर्षा जल का संचयन अब हमारी एक महती आवश्यकता है। इसके लिए हमें हमारी नदियों का जो जल समुद्र में जाता है उसे काम में लेना होगा। उदाहरण स्वरूप पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश की नदियों को जोड़कर उनका पानी राज्य को सुलभ कराया जाए तो मरुधरा पर मंगल हो सकते हैं। इन नदियों का पानी इस समय जो बाढ़ जैसी तबाही पैदा कर रहा है वह नहीं कर पाएगा। हमारी जो नदियां पाकिस्तान को निकलती हैं उन पर बांध बनाए जाएं, जिससे एक एक बूंद पानी का उपयोग हो सके। साथ ही हमारी आर्थिक समृद्धि भी होगी। वर्षा के पानी को रोकने के लिए कैचमेंट एरिया में पानी रोककर तालाब बनाए जा सकते हैं। भूमिगत बंधारा, स्टॉप डैम, बोरी बंधारा, खेत तालाब जैसी परिस्थितिजन्य विकल्पों के जरिए पानी रोका जा सकता है। बाढ़ के पानी को भी विशाल झीलों, तालाबों, नालों और नदियों में संग्रहित करने की योजनाएं बनाई जा सकती हैं। हमें पुराने कुओं, बावड़ियों, तालाबों की ओर भी ध्यान देना होगा तथा इसकी सफाई एवं पुनर्निर्माण करने होंगे, जिससे कि पुराने एवं पारंपरिक जल संग्रहण के तरीकों को ईजाद किया जा सके। हमें खेतों में मेड़बंदी करके बरसात के जल को रोकना होगा तथा सुविधानुसार एनीकट बनाए जा सकते हैं। वर्षा काल में 700 मिलीमीटर औसत वर्षा भी हो और उसका 70% पानी भी घर की 1000 वर्ग फीट छत से इकट्ठा किया जाए तो करीब 50,000 लीटर पानी कुएं में डालकर पुनर्भरण किया जा सकता है।
1: वर्षा जल संचयन, अभी इस विषय में बहुत ही उपयोगी जानकारी दे रहे थे अमर सिंह गुज्जर। उम्मीद है जो भी बातें उन्होंने बताई हैं उन पर न केवल हम आप अमल करेंगे बल्कि दूसरे भाइयों को भी जागरूक करने का काम करेंगे।
2: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
1: आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मौसम का हाल। तो मौसम विभाग के अनुसार हमारे शहर आगरा में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे।

वाहनों की आवाजाही के साथ साथ हल्की बारिश की भी संभावना व्यक्त की जा रही है। और इस बीच तापमान में भी 28 से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस तक बने रहने का अनुमान है। तो इस मौसम में स्वच्छता का पूरा पूरा ध्यान रखें, न केवल अपना बल्कि अपने पशुधन का भी। पर फिलहाल तो आइए हमारे साथ आनंद लीजिए इस प्यारे से लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम ग्रामीण लोक। हम आकाशवाणी आगरा से बोल रहे हैं। 6:30 होने को है। समय है शमी श्रोताओं का कार्यक्रम मजदूर मंडल का।

0: कार्यक्रम मजदूर मंडल के सभी श्रोताओं को, सभी मित्रों को कल्पना सरकार का नमस्कार।
1: ये दोस्ती।

0: श्रोताओं, आज भी अंजू जी बस चौंकाने आ गई हैं। आज भी सरप्राइज दिया है इन्होंने, पर आने का कारण जरा पूछ लेते हैं। अंजू जी, आने का राज बता
1: अरे
0: दीजिए।
1: कल्पना जी, आप दिमाग की लगता है कसरत नहीं कर रही हैं, कुछ भूल रही हैं आप।
0: हाँ, एक्सरसाइज तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन भूल क्या गई अंजू जी, ये भी बता दीजिए।
1: भाई आज मित्रता दिवस है, आपको याद नहीं कि अगस्त के पहले रविवार को मनाया जाता है ये।
0: हाँ, तभी आप हमारे श्रोताओं के साथ इस मित्रता दिवस को सेलिब्रेट करने आई हैं।
1: बिल्कुल, श्रोता तो हमारे पक्के वाले मित्र हैं। और
0: और मैं भी हूं आपकी पक्की वाली सहेली।
1: बिल्कुल, वैसे आज के टाइम में अच्छे मित्रों का मिलना ईश्वर का आशीर्वाद माना जाता
0: ये
1: है।
0: तो मानना पड़ेगा, क्योंकि आजकल के जो मित्र है ना, सामने से कुछ पीछे से कुछ,
1: इसीलिए तो सोच समझ कर मित्रता करनी चाहिए।
0: जिससे हम अपने दिल की बात बिना डरे कह सके कि ये किसी को बताएगा नहीं या फिर बताएगी नहीं।
1: और जो हमारी कमियों को छुपाए नहीं, और हमें जो है सुधारने की कोशिश करे।
0: सुधारने के लिए प्रेरणा दे, है ना अंजू जी, और गलत रास्ते में जाने से भी रोके। यदि जाए तो वही उसे उसको रोके, आगे बढ़ने ना दे उस राह
1: और
0: में,
1: परेशानियों के वक्त हमारे साथ खड़ा रहे।
0: जो हमारी खुशियों में तरक्कियों में मुस्कुराए, खुश हो, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे,
1: और जो हमारे विश्वास को कभी ना तोड़े।
0: और हमारे राज को राज रहने दे।
1: कितनी बातें कल्पना जी ऐसी होती हैं जो हम केवल अपने मित्रों को ही बता सकते हैं।
0: ये तभी होता है जब हमारे मित्र में ईमानदारी हो,
1: वो हमारा सम्मान करें।
0: भरपूर प्यार हो।
1: और तभी तो आपने हमारे श्रोताओं के लिए, दोस्ती के लिए
0: इतना
1: क्या
0: प्यारा सा रिश्ता बनाया है हमारी और आपकी दोस्ती, है ना, तो हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
1: हैप्पी फ्रेंडशिप डे।
0: पर अंजू जी, कुछ मित्र ऐसे हैं, अभी तो आप हमारे साथ हैं, लेकिन कुछ मित्र ऐसे हैं जो हमारे बीच ना होते हुए भी, दूर रहते हुए भी, आज भी हमारे दिल के करीब है। हमारे श्रोताओं के लिए देखिए, दीपाली दुबे का नाम ले लेते हैं। उनकी रूहानी मकवली आवाज, श्रोताओं को आज भी उसकी कमी महसूस होती होगी ना, वो भी उनके पक्की मित्र रही हैं।
1: श्रोता उनको बहुत याद करते होंगे, उन्हें
0: हाँ
1: मिस करते होंगे।
0: बिल्कुल। और अभी फिलहाल हमारे जो सर जी
1: हाँ, हमारे
0: हैं,
1: जो ब्रजेंद्र सर हैं,
0: हाँ,
1: वो तो हमारे लिए क्या बन गए, एक बड़े भाई की तरह,
0: श्रोताओं के लिए
1: एक
0: भी,
1: मित्र की तरह। और हमारे श्रोताओं को भी उन्होंने कितना सिखाया, कितना समझाया, कितना
0: प्रोग्राम
1: सब परिचर्चा में
0: कितने अच्छे
1: कार्यक्रम
0: बनाए
1: के
0: उन्होंने।
1: जरिए।
0: हाँ, उनकी आवाज ना कानों में मधुर रस घोलती है। तो इस दिन को आप आई गई हैं तो सेलिब्रेट करें।
1: दोस्ती में कोई शर्त नहीं होती,
0: सच्ची दोस्ती में, मोहब्बत में कोई हद नहीं होती,
1: दोस्ती दिल का रिश्ता है।
0: जो कभी छूटे से भी नहीं छूट सकता है।

0: तो कल्पना जी, हाँ, हमारी बातें तो हो रही थी मित्रता पर।
1: जीना मरना साथ है ना, यही तो
0: हंसना रोना साथ है।
1: सच में ये जो मित्र होते हैं ना, जीवन में एक सकारात्मकता लेके आते हैं ना। अब वैसे एक बात बताऊं अंजू जी,
0: हाँ बताइए।
1: केवल दोस्ती ना इंसानों के साथ नहीं, बल्कि हमें पर्यावरण से, इस धरा के प्रति भी निभानी चाहिए। क्यों?
0: और देश के प्रति भी।
1: बिल्कुल, आभार व्यक्त करना चाहिए उन लोगों के प्रति जो देश के लिए मर मिटे हैं
0: और देश की प्रगति के लिए उन्होंने कार्य किए हैं और अपना जीवन तक समर्पित कर दिया है।
1: क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों से ही हम प्रेरणा लेते हैं, हमें हम प्रेरित होते हैं कि हमें कुछ करना है देश के लिए।

0: ताकि देश की आन बान शान को हम आगे बढ़ा सके हैं।
1: तो कल्पना जी, एक प्रश्न दिमाग में आ रहा है मेरे, क्यों ना देश की शान को बढ़ाने वाले एक महान व्यक्तित्व के बारे में हम प्रश्न पूछें।
0: वैसे आपके दिमाग में आता ही रहता है वैसे ये प्रश्न, मुझे लगता है आज के प्रश्न के अंतर्गत आप पूछना चाह रही हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: पूछ डालिए आप।
1: तो श्रोताओं, आपको बताना है भारतीय रसायन विज्ञान का जनक किन्हें कहा जाता है।
0: हाँ, किन्हें कहा जाता है अंजू जी?
1: तो आप भी सोचिए और हमारे श्रोताओं को भी सोचने दीजिए,
0: फिर दिमाग का कसरत करवा रही हैं।
1: बिल्कुल
0: श्रोताओं, हम तो कर रहे हैं एक्सरसाइज, लेकिन इस बीच क्या करें अंजू जी?
1: इस बीच क्या करें, हम जानकारी देने वाले हैं ना अपने श्रोताओं को, तंबाकू का सेवन सेहत के लिए जानलेवा है।
0: ओह, जिसकी जानकारी बनवारी लाल कुशवाहा जी दे रहे हैं।
1: हाँ हाँ बिल्कुल, तो श्रोताओं को सुनवाते हैं,
0: आइए सुनते हैं।
2: तंबाकू का किसी भी रूप में सेवन कैंसर रूपी मौत को दावत देता है। युवा वर्ग इस ओर सर्वाधिक आकर्षित हो रहा है। किशोरावस्था में कदम रखते ही बच्चे इस लत को अपना रहे हैं, इससे इनके स्वास्थ्य को गंभीर खतरा है होती है। तंबाकू सेवन के कारण महिलाओं में फेफड़े का कैंसर, दिल का दौरा, सांस की बीमारी, प्रजनन संबंधी विकार, निमोनिया, महावारी जैसे जुड़ी समस्याएं ज्यादा होती हैं। तंबाकू से बने उत्पादों का सेवन न सिर्फ वयस्कों में देखा जाता है, बल्कि युवा पीढ़ी भी अब तेजी से इसकी चपेट में आ रही है। सिगरेट, हुक्का पीने एवं खैनी, मैनपुरी तंबाकू, केसरिया तंबाकू, चिलम के अलावा पान के साथ खाई जाने वाली तंबाकू का चलन शहरों में ही नहीं बल्कि गाँव में भी तेजी से बढ़ रहा है। क्या आपको पता है कि इन तंबाकू से बने ये सभी उत्पाद फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर और अन्य कई जानलेवा बीमारी का कारण बनते हैं? चिकित्सकों का कहना है कि तंबाकू व धूम्रपान से 100% कैंसर की आशंका रहती है। आज के युवाओं का लेटेस्ट और फेवरेट क्रेज है ब्रांडेड सिगरेट की डिब्बी अपनी जेब में रखना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, हुक्का पीना, पान के साथ तंबाकू खाना आदि। दोस्तों के साथ खड़े हों, सिगरेट पीकर नाक या मुंह से छल्ला निकालना इनका प्रिय शौक है। इस बारे में कितनों को मालूम है या जानने की कोशिश कितने लोग करते हैं कि सिगरेट के धुएं का कुप्रभाव न केवल सिगरेट पीने वालों पर बल्कि आसपास खड़े दूसरे व्यक्तियों पर भी पड़ता है। वे यह जानते हैं कि सिगरेट पीने से फेफड़ों का कैंसर होता है, लेकिन सिगरेट छोड़ते बहुत कम लोग हैं। यही सिगरेट फेफड़ों के कैंसर के लिए जिम्मेदार है। यही नहीं, सिगरेट की डिब्बी पर भी लिखा होता है कि सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। मजदूर भाइयों, हर साल धूम्रपान से लाखों जिंदगियां बर्बाद हो रही हैं। दुनिया भर में तंबाकू का इस्तेमाल अकाल मृत्यु और बीमारी का प्रमुख कारण है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक 1 अरब लोग धूम्रपान और तंबाकू के सेवन करते हैं, जिनमें से 0.5% लोगों की सामान्य उम्र से पहले मृत्यु होने की संभावना बढ़ जाती है। दुनिया में धुआं रहित तंबाकू के सेवन से होने वाली मौत की संख्या तेजी से बढ़ी है। पिछले 7 साल में मौत का आंकड़ा 3 गुना बढ़ा है। रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में धुआं रहित तंबाकू के प्रयोग से होने वाली बीमारियों के 70% रोगी भारत में हैं। यह आदत आपके और दूसरे दोनों के लिए खतरनाक है। तंबाकू लेने के दौरान हाथ मुंह को छूता है, यह भी संक्रमण का जरिया है और यह संक्रमण हाथ के जरिए मुंह तक पहुँच सकता है या हाथों में मौजूद तंबाकू में जाकर मुंह तक पहुँच सकता है। तंबाकू चबाने के दौरान मुंह में अतिरिक्त लार बनती है, ऐसे में जब इंसान थूकता है तो संक्रमण दूसरों तक पहुंच सकता है। इतना ही नहीं, इससे मुंह, जीभ, होंठ और जबड़ों का कैंसर भी हो सकता है। सिगरेट, सिगार, बीड़ी, तंबाकू, वाटर पाइप और हुक्का पीने वालों को संक्रमण का खतरा ज्यादा है। सिगरेट पीने के दौरान हाथ और होंठ का इस्तेमाल होता है और संक्रमण का खतरा रहता है। एक ही हुक्का को कई लोग इस्तेमाल करते हैं, जो संक्रमण सीधे तौर पर एक से दूसरे इंसान में पहुंच जाता है। बच्चे अगर हुक्का बार जा रहे हैं और इसकी जानकारी है तो उन्हें रोकना चाहिए, क्योंकि दोस्तों के साथ शुरू हुई उनकी ये मौज मस्ती उन्हें भविष्य में बड़ी परेशानी में डाल सकती है। सिगरेट पीना और दूसरे तंबाकू उत्पादों को चबाना सेहत के लिए नुकसानदायक होता है। बच्चे हों या बुजुर्ग या फिर महिलाएं, वे जब तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं तो उसके हानिकारक तत्व खून के माध्यम से शरीर के महत्वपूर्ण अंगों में पहुंचकर उसके

0: काम करने की क्षमता को खराब करते हैं। लंबे समय तक तंबाकू और सिगरेट में मिलने वाले हानिकारक तत्व जब शरीर के भीतर अंगों को प्रभावित करते हैं तो कई तरह के जानलेवा घातक रोगों के होने का खतरा बढ़ जाता है। तंबाकू और सिगरेट का जब कोई इस्तेमाल करता है तो दिल की धड़कन बढ़ जाती है। सिगरेट या अन्य तंबाकू उत्पादों में करीब 4000 तरह के केमिकल होते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड और टार जैसे जहरीले पदार्थ शरीर के भीतर अंगों को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे ही कोई व्यक्ति तंबाकू उत्पाद का प्रयोग करता है उसमें मिले केमिकल हृदय तक पहुंचता है जो खून में मिलकर दिमाग और फिर शरीर के दूसरे अंगों में फैलता है। इसके बाद व्यक्ति कुछ पल तो आराम महसूस करता है लेकिन जहर अपना काम कर चुका होता है जिसके परिणाम लंबे समय बाद हार्ट अटैक आर्टरी ब्लॉकेज के तौर पर सामने दिखते हैं। तंबाकू का सेवन करने से सिरदर्द और चक्कर की समस्या पैदा होती है और हृदय गति और रक्तचाप बढ़ जाता है। यहाँ तक कि दिल के दौरे का भी खतरा बढ़ जाता है। यही नहीं तंबाकू और धूम्रपान मुंह की नाजुक मांसपेशियों को नुकसान पहुंचाता है। इससे खाने में स्वाद नहीं लगता है। अधिक धूम्रपान से सांस लेने में कठिनाई होती है, फेफड़े खराब हो जाते हैं, अस्थमा रोग हो सकता है। धूम्रपान सूखा पीले रंग की त्वचा और झुर्रियों का कारण बनता है। तंबाकू उत्पादों के इस्तेमाल से ब्लैडर का कैंसर, गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर, गुर्दे का कैंसर, गले का कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, ग्रसनी का कैंसर तथा आमाशय का कैंसर के होने वाले कारकों में शामिल है। सिगरेट और तंबाकू की तलब को छोड़ने के लिए व्यक्ति के भीतर मजबूत इच्छा शक्ति का होना बहुत जरूरी है। तंबाकू और सिगरेट के इस्तेमाल से मुक्ति के लिए 90% दृढ़ इच्छा शक्ति जबकि 10% दबाव और काउंसलिंग की जरूरत होती है। व्यक्ति जब मन में ठान ले कि उसे तंबाकू या सिगरेट पीना छोड़ना है तो उसे अपने परिवार और दोस्तों के सामने कबूल करना होगा कि वे इस लत को छोड़ रहा है। अगर वे कभी सिगरेट या दूसरे तंबाकू उत्पादों का इस्तेमाल करते पाया गया तो उसे ऐसा करने से रोकेंगे और उसे उसकी बात याद दिलाएंगे। WHO के मुताबिक इसे छोड़ने के 20 मिनट के अंदर बढ़ी हुई हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर सामान्य होने लगता है। 12 मिनट बाद शरीर के रक्त में मौजूद कार्बन मोनोऑक्साइड का स्तर घटने लगता है। 2 से 12 हफ्तों के अंदर फेफड़ों के काम करने की हालात में सुधार होता है। 1 से 9 माह के अंदर खांसी और सांस लेने में होने वाली तकलीफ कम हो जाती है। जब आप धूम्रपान तंबाकू छोड़ते हैं तो आपको ऐसा लग सकता है कि आपके जीवन में कुछ आनंद खो दिया है, लेकिन ऐसा होना जरूरी नहीं है। जब आप धूम्रपान तंबाकू खाना बंद कर देते हैं तो उसके स्वाद और गंध की इंद्रियां फिर से सक्रिय होने लगती हैं। साथ ही दुनिया के साथ सीधे संपर्क में होने का आपका एहसास भी होता है बिना किसी धुएं के पर्दे के पीछे छिपने के। एक धूम्रपान न करने वाले के रूप में आप बहुत सी जगहों पर जा सकते हैं और बहुत से अनुभवों का आनंद ले सकते हैं जो धूम्रपान करने वाले के रूप में आपके लिए वर्जित थे। अब आप बिना किसी परेशानी के कहीं भी जा सकते हैं और धूम्रपान करने के लिए बाहर जाने की इच्छा नहीं रख सकते। जब आप विमान ट्रेन या बस में धूम्रपान न कर पाने की परेशानी के बिना लंबी यात्रा कर सकते हैं तो इसको आप छोड़ भी सकते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि गांव में शिक्षा का विकास किया जाए, खेल कूद के साधनों को जुटाया जाए और घरों में छोटे छोटे व्यवसाय लगाए जाएं तथा फालतू समय बच्चों को उनमें लगाए जाए ताकि इन गंदी आदतों से बच्चे बच सकें।
1: जानलेवा है तंबाकू का सेवन, इस विषय पर जानकारी दे रहे थे बनवारी लाल कुशवाहा।
2: अंजू जी, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो श्रोता हैं तंबाकू का जो सेवन करते हैं वो जरूर छोड़ देंगे क्योंकि उन्हें भी अपने जीवन से प्यार है, है ना? तो अभी छोटा सा अंतराल ले लें।
1: हाँ हाँ बिल्कुल।
3: लाइफ फास्ट मोड पे चल रही है, घर बैठे बैंकिंग सुविधा के लिए स्विच टू SBI प्रीमियर बैंकिंग, जहां आपको मिलता है एक डेडिकेटेड वर्चुअल रिलेशनशिप एसोसिएट जो समझे आपकी हर जरूरत, दे स्मार्ट एडवाइजर्स और करे हर काम इन लाइटनिंग स्पीड, यानी सिर्फ सीमलेस बैंकिंग एंड मेनी अदर एक्साइटिंग बेनिफिट्स। आज ही विजिट करें अपनी नियरेस्ट SBI ब्रांच और प्रीमियर बैंकिंग एक्टिवेट करें। टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई।
4: यात्रा के दौरान थोड़ी सी लापरवाही भारी पड़ सकती है। किसी अनजान व्यक्ति से दिए हुए खाने पीने का सामान स्वीकार ना करें और ना ही

0: वैध वेंडरों से कोई वस्तु खरीदें।
1: चाहे ट्रेन का सफर हो या स्टेशन पर इंतजार, अपनी सुरक्षा का रखें पूरा ध्यान। किसी अनजान व्यक्ति या अवैध वेंडर से खाने पीने की कोई भी चीज न लें। भरोसा करें तो केवल रेलवे के अधिकृत वेंडरों और अधिकृत स्टॉल पर।
0: उत्तर मध्य रेलवे द्वारा जनहित में जारी।
2: एक प्रकार से पीएम जय अब गरीबों की जय बन गई है।

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: हाँ, लेकिन कल्पना जी, मैं देख रही हूँ आप श्रोताओं से बात करते करते अपने मोबाइल के साथ ये क्या कर रही हैं?
2: देखो ना, फुफ कर तो रही हूँ, देखियो थोड़ा सा भी चार्ज नहीं है इसमें। चार्ज कर रही हूँ तो बातें कर रही हूँ तो गर्म होने लगा है, और सुना है कि मोबाइल बस्ट भी हो जाते हैं।
1: हाँ, लेकिन अब सोडियम आयरन बैटरी का भी तो उपयोग होने लगा है।
2: हाँ, सुना है ये नई खोजें, जो खोज हुई है पर्यावरण के लिए अनुकूल है
1: और ये बजट फ्रेंडली भी है, यानी कम लागत में बनती है।
2: फिर अत्यधिक ठंडे मौसम में भी ये लिथियम बैटरी की तुलना में ना बेहतर क्षमता बनाए रखती है,
1: और फिर आग लगने का जोखिम बहुत कम होता है और ये अधिक सुरक्षित मानी जाती है।
2: फिर भी इस बैटरी में ना अंजू जी सुधार हो रहे हैं, शोध हो रहा है। और
1: अरे कल्पना जी, बातें करते करते कहाँ खो जाती हैं आप?
2: आपने कहा था ना दिमागी कसरत नहीं कर रही थी अब लेकिन करने लगी हूँ। आपने जो प्रश्न पूछा था ना, उसके बारे में सोच रही थी कि उसका उत्तर क्या होगा।
1: आपका और श्रोताओं का इंतजार हम समाप्त करते हैं।
2: इसका उत्तर है आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय।
1: सही है, मानना पड़ेगा। अब हुआ ना आपके दिमाग का व्यायाम,
2: आपके रहते रहते हो ही जाएगा क्योंकि आप करवाती जो रहती हैं।
1: भाई अभी उम्र भी क्या हुई है आपकी?
2: हाँ, नहीं तो क्या।
1: पता है ये जो हम बात कर रहे थे, सल्फेट और नाइट्रेट के जादूगर थे
2: ये महान व्यक्तित्व है ना, महान रसायन वैज्ञानिक। इनके बारे में जब अंजू जी मैंने पढ़ा तो जाना उन्हें जीवन में केवल दो चीजों से ही प्रेम था, एक तो रसायन से और दूसरा अपने वतन से।
1: हाँ, तो और वो ये पता है कल्पना जी, लैब में एक्सपेरिमेंट करते थे और फिर या फिर वो छात्रों को इकट्ठा करके भारत की आजादी का पाठ पढ़ाते थे।
2: दो काम इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट थे, और आजादी के दौरान एक बात बोलते थे अंजू जी,
1: क्या
2: कि साइंस कैन वेट बट स्वराज कैनॉट।
1: उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, आपको पता है, हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जिसमें हिंदू धर्म शास्त्रों में मिलने वाली औषधियों पर शोध किया था।
2: और इस महान व्यक्तित्व ने भारत में पहला रसायन उद्योग की स्थापना भी की। पहली दवा कंपनी जो थी भारत की, इसकी नींव इन्होंने ही रखी, उसका नाम था बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल कंपनी।
1: हाँ, जो स्वदेशी लोगों के लिए एक मजबूत कदम बना।
2: हाँ, इससे पहले तो हम विदेशी जो अंग्रेज थे उस पर निर्भर थे ना, उनकी दवाओं पर निर्भर थे, तो इस निर्णय से ना से हमारा देश एक आजादी की तरफ तो कदम बढ़ाया, आत्मनिर्भर बना दवा के क्षेत्र में। फिर एक निर्णय अंजू जी ने और लिया था कि जीवन भर शादी ना करने का। और
1: धन्य है कल्पना जी ऐसे महान लोग जिन्होंने देश के हित में अपने व्यक्तित्व, व्यक्तिगत जो सुख थे उनको, उनके बारे में बिल्कुल नहीं सोचा।
2: हाँ, और उन्होंने अपना पूरा पैसा रसायन विज्ञान में लगा दिया, उनकी शोध में लगा दिया, देश कल्याण में लगा दिया।
1: फिलहाल कल्पना जी, हमारे श्रोताओं की सेहत के बारे में क्या विचार है भाई?
2: ये जिम्मेदारी भी निभानी है,
1: बताइए सेहत के।
2: देखिए अंजू जी, बरसात के मौसम है ना, आप थोड़ी गीली गीली सी भी हो रही हैं, तो पहले तो स्वयं को सूखा रखिए।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
2: ताकि फंगल इन्फेक्शन ना हो सके, सूखे कपड़े पहने।
1: और

0: कहीं भी पानी जमने ना दें ताकि मच्छर ना पनपे।
1: और आपने पालक पनीर खिलाया था ना, तो इन दिनों पत्तेदार सब्जियों से बचें, हरी पत्तेदार जो सब्जियां होती है ना उसमें कीड़े हो सकते हैं, हम बीमार हो सकते हैं।
0: और हाँ कल्पना जी, एक दिन मैंने देखा था आपको
1: क्या
0: पानी की टिक्की खाते हुए।
1: ओहो
0: हाँ, अब बाहर का मत खाइए इस समय में।
1: और श्रोताओं आप भी मत खाइए, बस अंजू जी की कड़ी नजर है रहती है मेरे ऊपर। अच्छी मित्र का धर्म यही है ना,
0: हमारी दोस्ती पक्की जो है, इसलिए हम एक दूसरे का ध्यान रखते हैं। कल्पना जी,
1: इसमें गीत हो जाए प्यारा सा,
0: बिल्कुल हो जाए।

0: तो श्योर तो हम ये दोस्ती नहीं तोड़ेंगे, आपके साथ बनाए रखेंगे, अंजू जी के साथ भी। क्यों अंजू जी? और
1: हम अपने श्रोताओं के साथ भी। और आकाशवाणी परिवार के साथ दोस्ती बिल्कुल पक्की वाली बनाए रखेंगे। और इसी के साथ कार्यक्रम मजदूर मंडल को यही संपन्न करने की अंजू बाला
0: और कल्पना सरकार को अनुमति दीजिए।
1: नमस्कार।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम मजदूर मंडल। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। अपने सुनने वालों को एक बार फिर से बताना चाहेंगे, 7:10 पर विविध कार्यक्रम में आज हम आपको डॉक्टर सौरभ जैन की वार्ता सुनवाएंगे। विषय होगा दिग्गज रसायनज्ञ, उद्यमी और महान शिक्षाविद डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और अब

0: सात बज रहे हैं। दिल्ली केंद्र से समाचार प्रसारित होंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की वर्चुअल माध्यम से शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
2: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से

0: दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहे और उससे दूर रहे। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
1: श्री मोदी ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 सप्ताह का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
0: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
1: जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने के लिए प्रोत्साहित करना है। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई है। असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। नागरिक 16 अगस्त तक आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर जाकर परिवार की जानकारी ऑनलाइन दर्ज कर सकते हैं। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, छात्र मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। इन समझौतों में से एक के अंतर्गत चयनित उच्च शिक्षण संस्थानों में विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य पर एक प्रौद्योगिकी आधारित पायलट परियोजना शुरू की जाएगी। यह परियोजना आंध्र प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद और ऑस्ट्रेलिया के रीबाउंड संस्था के सहयोग से लागू की जाएगी। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर में प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। केरल में बारिश में कमी आने से कई जिलों में लोगों को राहत मिली है। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के 10 जिलों में कल भी येलो अलर्ट लागू रहेगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज सुबह राष्ट्रपति भवन में आयोजित समारोह में प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड सोल्जर थॉन दिल्ली 2026 को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने कहा कि सैनिकों के लिए दौड़ो, सैनिकों के साथ दौड़ो की परिकल्पना से प्रेरित सोल्जर थॉन नागरिकों और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करने का एक अनूठा मंच है। और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूब नारंग महिलाओं की 78 किलोग्राम भार वर्ग के कांस्य पदक मुकाबले में पहुंच गई है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय तन्वी खुराना। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking at the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle.
0: Aaj hum sabhi jis abhiyan ke sakshi ban rahe hain,

जनक आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म 2 अगस्त 1861 को ब्रिटिश भारत के काटीपारा में हुआ था, जो भारत की आजादी के बाद अब वर्तमान बांग्लादेश का हिस्सा है। इनके पिता हरिश्चंद्र राय पुश्तैनी जमींदार थे। प्रफुल्ल चंद्र राय की माताजी का नाम भुवन मोहिनी देवी था। कहा जाता है कि उनके पिता हरिश्चंद्र राय पाश्चात्य शिक्षा के प्रति उदार भाव रखते थे। वे भारत के उत्थान के लिए शिक्षा के महत्व से भली भांति परिचित थे। यही कारण था कि उन्होंने अपने गांव में शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु एक स्कूल भी खोला था। प्रफुल्ल चंद्र राय का परिवार पढ़ा लिखा और अमीर था। घर में किसी भी प्रकार की कमी नहीं थी। उनके पिता शिक्षा प्रेमी थे, इसी कारण उनके घर में एक अच्छा खासा बड़ा पुस्तकालय था। प्रफुल्ल चंद्र राय को पुस्तकों से बड़ा प्रेम था, खासकर वैज्ञानिकों की जीवनी पढ़ना उन्हें पसंद था। फुर्सत के क्षणों में वे वैज्ञानिकों की जीवनी को पढ़ते रहते थे। कहा जाता है कि विश्व के महान वैज्ञानिक न्यूटन, गैलीलियो, बेंजामिन फ्रैंकलिन के जीवन से वे बहुत प्रभावित थे। इन वैज्ञानिकों की जीवनी ने उन्हें इतना प्रभावित किया कि उन्होंने बचपन में ही वैज्ञानिक बनना सोच लिया था। प्रफुल्ल चंद्र राय की आरंभिक शिक्षा गाँव की ही पाठशाला में हुई। कहा जाता है कि जब वे पहली बार गांव से शहर पढ़ने के लिए आए, तब उनके ग्रामीण चाल ढाल को देखकर क्लास के कुछ लड़कों ने उनका मजाक उड़ाया, लेकिन राय साहब उन लड़कों की बातों पर ध्यान दिए बिना ही अपनी पढ़ाई में लगे रहे। आपने प्रारंभिक शिक्षा की प्राप्ति के बाद आगे की पढ़ाई कलकत्ता से की। आपने कलकत्ता से FA की परीक्षा पास की और उच्च शिक्षा के लिए आप लंदन चले गए। लंदन के एडिनबरा विश्वविद्यालय में आपका दाखिला हुआ। लंदन में आप प्रसिद्ध रसायन वैज्ञानिक अलेक्जेंडर क्रम ब्राउन से बहुत प्रभावित हुए। इस प्रकार रसायन विज्ञान से इनका प्रेम और बढ़ गया। इस दौरान डॉक्टर राय की मित्रता लंदन में अध्ययन कर रहे सुप्रसिद्ध वैज्ञानिक जगदीश चंद बसु से हुई। 1887 में ताम्र और मैग्नीशियम समूह के कॉन्जुगेटेड सल्फेटों के बारे में किए गए उनके कार्यों को मान्यता देते हुए लंदन के एडिनबरा विश्वविद्यालय ने इन्हें डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया। लंदन से वापसी के बाद इनकी नियुक्ति 1916 में कलकत्ता के प्रेसिडेंसी कॉलेज में हुई। ये रात दिन अध्यापन के साथ साथ अपने प्रयोगों में जी जान से जुटे रहते थे। आपका अधिकांश समय अपने अनुसंधान और छात्रों के बीच गुजरता था। आपने जीवन भर शादी नहीं की और अपना समस्त जीवन विज्ञान को समर्पित कर दिया। डॉक्टर राय भारत में स्वदेशी उद्योग धंधों के संस्थापक माने जाते हैं। उनका देश के कई कल कारखानों की स्थापना और संचालन में योगदान माना जाता है। आपने देश के युवा रसायन विज्ञानियों को प्रोत्साहित करने के लिए अनेक अनुसंधान केंद्रों की नींव रखी। आपने अपने शोध को एक पुस्तक के रूप में लिपिबद्ध किया, जो हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री के नाम से प्रसिद्ध हुई। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का बहुत बड़ा योगदान बंगाल केमिकल और फार्मास्यूटिकल वर्क्स की शुरुआत कराने में भी था। आप जैसे ही भारत लौटे, आप देश के औद्योगिकरण के विकास में लग गए। डॉक्टर राय भारत में स्वदेशी उद्योग धंधों के संस्थापक माने जाते हैं। देश के कई कल कारखानों की स्थापना और संचालन में आपका योगदान है। इनमें से सौदेपुर की गंधक से तेजाब बनाने की फैक्ट्री, बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, चीनी मिट्टी की वस्तुओं के निर्माण हेतु कलकत्ता पॉटरी वर्क्स, बंगाल एनेमिल वर्क्स तथा जहाज रानी से संबंधित बंगीय स्टीम नेविगेशन कंपनी आदि के नाम प्रमुख हैं। कहते हैं कि सन 1896 का समय आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण रहा। इसी दौरान आपने मर्क्यूरस नाइट्रेट की खोज की थी। आपने इस अस्थायी पदार्थ का प्रयोगशाला में निर्माण कर विश्व भर के वैज्ञानिकों को विस्मित कर दिया। मर्क्यूरस नाइट्रेट के अलावा अमोनियम नाइट्रेट के यौगिकों व नाइट्रोजल अम्ल और लवण के बारे में आपके शोध काफी प्रशंसनीय रहे। आपने मर्क्यूरस नाइट्रेट को प्रयोगशाला में तैयार कर अनेकों नए यौगिकों का निर्माण किया। इस खोज के फलस्वरूप आपने रसायन की कई जटिल गुत्थियों को सुलझाया। आपकी इस असाधारण खोज से विश्व पटल पर आपको पहचान मिली और डॉक्टर राय की गिनती विश्व पटल पर श्रेष्ठ रसायन विज्ञान के वैज्ञानिकों में होने लगी। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय रसायन विज्ञान के प्रति इनका समर्पण और योगदान के लिए इनको समय समय पर कई सम्मान
और पुरस्कारों से सम्मानित किया।

0: किया गया। 1912 में इन्हें कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रतिनिधि बनाकर ब्रिटिश विश्वविद्यालयों के सम्मेलन में भाग लेने के लिए चुना गया। देश के प्रसिद्ध कलकत्ता और बनारस विश्वविद्यालयों ने उन्हें प्रसिद्ध सम्मान से सम्मानित किया। सन 1920 में आपका चयन भारतीय विज्ञान कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में हुआ। ब्रिटिश सरकार ने आपके उल्लेखनीय योगदान को देखते हुए इंग्लैंड के सर्वोच्च सम्मान नाइट की उपाधि प्रदान की। सन 1934 में लंदन की रसायन सोसाइटी ने आपको अपना सम्मानित सदस्य नामित किया। रसायन विज्ञान के वैज्ञानिक डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय हमेशा से ही भारत की आजादी के समर्थक रहे। गोपाल कृष्ण गोखले और महात्मा गांधी उनके परम मित्रों में से थे। आपने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया तथा विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर जीवन भर खादी के वस्त्र धारण किए। बंगाल के अकाल के समय आपने बढ़ चढ़कर भाग लिया। डॉक्टर राय का सन 1944 में कलकत्ता में निधन हो गया। कहते हैं उनके पास पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन हमेशा ही एक सन्यासी की तरह आपने अपना जीवन व्यतीत किया। उन्होंने सन्यासी की तरह बहुत ही कम वस्त्र धारण किए। अपने ऊपर आवश्यकता से अधिक पैसा न खर्च कर हमेशा गरीबों की मदद की। आचार्य राय भारत में वैज्ञानिक तथा औद्योगिक पुनर्जागरण के स्तंभ थे। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में आजादी की लड़ाई के साथ साथ देश में ज्ञान विज्ञान की भी एक नई लहर उठी थी। इस दौरान अनेक मूर्खन वैज्ञानिकों ने जन्म लिया था। इनमें से जगदीश चंद्र बसु, श्रीनिवास रामानुजन, चंद्रशेखर वेंकट रमन और आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय का नाम प्रमुख था।
1: दिग्गज रसायनज्ञ, उद्यमी और महान शिक्षाविद आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय। इस विषय पर अभी आप डॉक्टर सौरभ जैन की वार्ता सुन रहे थे। कार्यक्रम था विविधा। हम आकाशवाणी के आगरा केंद्र से बोल रहे हैं। हमारा अगला प्रसारण लखनऊ केंद्र से थोड़ी ही देर में।

0: मेरा एक जिद्दी पड़ोसी है, पूरी कॉलोनी ने सोलर पैनल लगवा लिए हैं, पर वो मानने को तैयार ही नहीं था कि सच में बिल जीरो आ सकता है। मैंने कहा, बेटा नाम ही है पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। फिर एक एक करके सबका बिजली बिल जीरो आने लगा, तब बोला अब लगवा ही लेता हूँ। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
1: हर घर सूर्य घर।
2: हमारा डेजर्ट आ गया पर हमारी चैंपियन नहीं आई अब तक।
3: बिल भरने के पहले तो आएगी ना।
4: सुगर क्या हो रहा है?
3: बिल हो रहा है।
2: चल अपना कार्ड दे, पिन दे।
5: आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी को ना दे। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने ही कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। हाँ, ये खाने की चैंपियनशिप थी क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ, कहा युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से की जनहित के मुद्दे सदन में रखने की अपील। भारत की अध्यक्षता में कल से लखनऊ में शुरू होगी ब्रिक्स देशों के एनएसओ की दो दिवसीय बैठक, सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने समेत कई विषयों पर होगी।

0: बजट चर्चा। और कल सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम, कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया डायवर्जन। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं श्वेता उपाध्याय और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का औपचारिक शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: प्रधानमंत्री ने आग्रह किया कि सामाजिक बदनामी के डर से मादक पदार्थों के सेवन के मामले छिपाए नहीं।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें।
0: इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल लखनऊ स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से वर्चुअल माध्यम से शामिल हुई। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि प्रत्येक युवा समाज में सकारात्मक परिवर्तन का वाहक बन सकता है और जन जागरूकता के माध्यम से नशा मुक्त भारत के संकल्प को जन आंदोलन का स्वरूप दिया जा सकता है। राजधानी लखनऊ के गुलजार उपवन में राजयोग प्रशिक्षण केंद्र ब्रह्म कुमारीज द्वारा आयोजित कार्यक्रम में प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने भाग लिया। इस दौरान श्री सिंह ने कहा, यह अभियान जनभागीदारी के माध्यम से युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा देने का प्रयास है।
2: सरकार कानून बना सकती, संसाधन उपलब्ध करा सकती, लेकिन चरित्र निर्माण केवल कानून से नहीं होता, संस्कारों से होता है। और जब संस्कारों की बात आती है तो ब्रह्म कुमारी जी का योगदान संस्था का अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ब्रह्म कुमारी ने दशकों से बिना किसी भेदभाव के समाज में शांति, आत्म जागृति, नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक चेतना का दीप जलाया है।
0: देशभर के लगभग 10,000 से अधिक स्थानों पर एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें माय भारत स्वयंसेवक, एनएसएस के वॉलेंटियर्स, युवा क्लब, शिक्षण संस्थाएं, गैर सरकारी संगठन और 125 से अधिक आध्यात्मिक संगठन शामिल हुए। राज्य विधानमंडल का मानसून सत्र कल से शुरू हो रहा है। सत्र के दौरान मंगलवार को प्रदेश सरकार अनुपूरक बजट पेश करेगी। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की अध्यक्षता में आज विधान भवन में आयोजित सर्वदलीय बैठक को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सत्ता पक्ष व विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों से जनहित से जुड़े हर मुद्दे को सदन में रखने, स्वस्थ चर्चा कर विकास को और गति प्रदान करने में सरकार का सहयोग करने की अपील की। विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भी सदन के सुचारू संचालन के लिए सभी सदस्यों का सहयोग मांगा। संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि राज्य सरकार सबके सहयोग से सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है।
3: हम तो सभी लोगों से हमने सहयोग मांगा है। जो बिजनेस होता है जिस हिसाब से, उसी हिसाब से सत्र आहूत किया जाता है। बिजनेस थोड़ा बिजनेस है, चार दिन का सत्र है। कल विधानसभा में तो निधन का निर्देश होगा और उसके बाद तीन दिन पूरी तरीके से जो परंपरागत तरीके से कार्रवाई है वो संपादित।
0: बैठक में निषाद पार्टी, सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी, कांग्रेस, जनसत्ता दल, लोकतांत्रिक पार्टी, अपना दल एस, राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं ने भाग लिया। ब्रिक्स देशों के एनएसओ प्रमुखों की बैठक कल और 4 अगस्त को लखनऊ में आयोजित होगी। इसमें ब्राजील, रूस, चीन, ईरान और संयुक्त अरब अमीरात सहित 11 ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। एक रिपोर्ट।
4: ब्रिक्स देशों के राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयों एनएसओ के प्रमुखों की बैठक कल और 4 अगस्त को भारत की अध्यक्षता में लखनऊ में आयोजित होगी। इस बैठक में ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिणी अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया,

0: इंडोनेशिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात जैसे ब्रिक्स सदस्य देशों के प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। इस वर्ष भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता का विषय सुदृढ़शीलता, नवाचार, सहयोग और स्थिरता के लिए निर्माण है। वहीं सांख्यिकी ट्रैक का विषय परिवर्तन के प्रेरक के रूप में गुणवत्तापूर्ण सांख्यिकी रखा गया है। इसका उद्देश्य बेहतर गुणवत्ता वाले आंकड़ों, नवाचार, प्रभावी डेटा प्रसार और जन केंद्रित सांख्यिकीय व्यवस्था को बढ़ावा देना है ताकि साक्ष्य आधारित, समावेशी और टिकाऊ विकास को मजबूती मिल सके। बैठक में सांख्यिकी उत्पादों को मजबूत करने, राष्ट्रीय सांख्यिकी प्रणालियों में सुधार, डेटा की पहुंच बढ़ाने और आर्थिक व क्षेत्रीय सांख्यिकी को सुदृढ़ बनाने पर चर्चा होगी। इसके साथ ही 3 अगस्त को प्रशासनिक डेटा की क्षमता और 4 अगस्त को विकसित होते डेटा पारिस्थितिकी तंत्र में AI की तैयारी विषय पर 2 विशेष सह कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ।
1: ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल newsonair लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। राज्य के पर्यटन और संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह ने आज लखनऊ के 1090 चौराहे से द राइडिंग चैप्टर्स विजिट माई स्टेट के पहले संस्करण का शुभारंभ कर 65 बाइक राइडर्स के दल को बांदा जिले के कालिंजर किले के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस पहल का उद्देश्य एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ प्रदेश के कम चर्चित विरासत, प्राकृतिक स्थलों और धरोहरों को नए पर्यटन अनुभव के रूप में देश दुनिया के पर्यटकों के सामने पेश करना है। इस अवसर पर श्री सिंह ने कहा कि उत्तर प्रदेश पर्यटन नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं, जिन्हें नई ऊर्जा देने के उद्देश्य से बाइक राइडर्स के दल को रोमांचक यात्रा के लिए रवाना किया गया है। कल सावन का पहला सोमवार है। कांवड़ यात्रा और शिव मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। काशी विश्वनाथ धाम में सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम किए गए हैं। उससे जुड़े मार्गों पर 289 CCTV कैमरों के साथ 44 अतिरिक्त कैमरे लगाए गए हैं। वहीं हापुड़, अमरोहा, बिजनौर और सहारनपुर में भी कांवड़ यात्रा को देखते हुए पुलिस प्रशासन लगातार मॉनिटरिंग कर रहा है। हापुड़ से हमारे प्रतिनिधि की एक रिपोर्ट।
2: सावन के पहले सोमवार को हापुड़ जनपद के सभी मंदिरों में भगवान आशुतोष की पूजा अर्चना और जल अभिषेक होगा। सुरक्षा के मद्देनजर हापुड़ में CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिरों में प्रबंध समिति द्वारा व्यवस्था बनाने के लिए स्वयं सेवक भी तैनात किए गए हैं। वहीं कांवड़ियों की सुविधा और सुरक्षा को लेकर के जनपद में कांवड़ मार्ग निर्धारित कर रूट डाइवर्ट कर दिया गया है और जो 31 अगस्त तक लागू रहेगा। रविन्द्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, हापुड़।
1: उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिकर्ता परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन पंजीकरण और आवेदन प्रक्रिया कल से शुरू हो रही है। यह परीक्षा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में समूह गा के पदों पर भर्ती के लिए अनिवार्य पात्रता परीक्षा है। आयोग के अनुसार अभ्यर्थी 1 सितंबर 2026 तक आवेदन पत्र भरकर शुल्क जमा कर सकेंगे। शुल्क समायोजन और आवेदन में संशोधन की अंतिम तिथि 8 सितंबर 2026 निर्धारित की गई है। आवेदन से पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। ग्लासगो 2026 कॉमनवेल्थ गेम्स में भारतीय एथलीट गुलवीर सिंह ने पुरुषों की 5000 मीटर दौड़ में कांस्य पदक जीतकर नया इतिहास रच दिया है। उन्होंने इससे पहले 10000 मीटर में रजत पदक हासिल किया था। दोनों दूरी की दौड़ों में पदक जीतने वाले वे पहले भारतीय एथलीट बन गए हैं। गुलवीर सिंह उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले के अतरौली के रहने वाले हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस उपलब्धि पर धावक गुलवीर सिंह को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में राष्ट्रपति ने कहा कि यह उपलब्धि राष्ट्रमंडल खेल की इस स्पर्धा में भारत का पहला पदक है और उनकी पिछली सफलता के बाद उनके सफर में यह एक और गर्व का अध्याय जोड़ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुलवीर सिंह को कांस्य पदक जीतने पर बधाई दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नशा मुक्त युवा फॉर विकसित भारत संकल्प अभियान का किया शुभारंभ। कहा, युवाओं का शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना जरूरी। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का मानसून सत्र कल से होगा शुरू। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सर्वदलीय बैठक में विपक्ष से की जनहित के मुद्दे सदन में रखने की अपील। भारत की अध्यक्षता में कल से लखनऊ में शुरू होगी ब्रिक्स देशों के NSO की 2 दिवसीय बैठक।

0: सांख्यिकी, उत्पादों को मजबूत करने समेत कई विषयों पर होगी चर्चा। और कल सावन के पहले सोमवार पर प्रदेश भर में सुरक्षा और सुविधा को लेकर व्यापक इंतजाम, कांवड़ यात्रा मार्गों पर लागू किया गया डायवर्जन। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा।
1: तुझे कॉलेज का टाइम याद है?
2: अरे कॉलेज की यादें छोड़िए, कितनी बातें भूल गया हूँ। सबका बैंक अकाउंट भी याद नहीं है।
1: बैंक अकाउंट पुराना हो तो पता चल सकता है।
2: कहाँ से पता चलेगा?
1: उद्गम से, RBI के उद्गम पोर्टल पे रजिस्टर करके लॉगिन करें और अपने डिटेल्स डालकर 10 साल या उससे पुराने निष्क्रिय खातों को सर्च करें। बैंक से संपर्क करके खाता सक्रिय बनाओ।
3: आज ही सर्च करूंगा।
1: तो आज की चाय तेरी तरफ से।
4: RBI कहता है,
5: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
6: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RBI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
7: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RBI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।

सभी सुनने वालों का एक बार फिर से स्वागत करते हैं आकाशवाणी आगरा की संध्याकालीन सभा में। 7:31 हो चुके हैं। इस वक्त हम आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। सबसे पहले नमन करते हैं देश की माटी को, देश के उन सभी जाबाजों को, देशभक्तों को, शूरवीरों को, आंदोलनकारियों को, महान शहीदों को, जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, आज हम आजाद कहला रहे हैं। नमन करते हैं देश के उस एक एक नागरिक को जिन्होंने देश के आंदोलन में साथ दिया और हमें आजादी दिलाई। और हाँ, नमन करते हैं उन सभी नौजवानों को जिस वक्त देश की सीमाओं में मुस्तैद हैं और भारत माता की रक्षा कर रहे हैं। जी हाँ साथियों, आज हम सुरक्षित हैं, आज हम आजादी का जश्न मना रहे हैं। उन शहीदों की बदौलत, उन देश के सच्चे सपूतों की बदौलत, इसलिए शत शत नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं उन सभी को। मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं ऐसे देशभक्तों की जिन्होंने देश के विकास के लिए अपना सब कुछ त्याग दिया। जी हाँ, आज हम नमन कर रहे हैं आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रॉय साहब को, जिनको नाइट्राइट्स का मास्टर कहा जाता है, दिग्गज रसायनज्ञ कहा जाता है, एक महान देशभक्त और देश के सच्चे सपूत के नाम से जाना जाता है। आज 2 अगस्त हैं, उनका जन्मदिन है। जी हां, 2 अगस्त 1861 में खुलना बंगाल प्रेसिडेंसी, उस समय बंगाल में बोला जाता था, यानी कोलकाता में उनका जन्म हुआ था। और उन्होंने कठिन संघर्ष के बावजूद देश के लिए बहुत कुछ किया। जी हाँ, उन्हें रसायन के अलावा इतिहास से भी बड़ा प्रेम हुआ करता था। उन्होंने 10 से 12 साल तक गहरा अध्ययन किया और हिंदू रसायन का इतिहास नामक एक महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखा, जिससे उनकी बड़ी प्रसिद्धि हुई। और इस पुस्तक द्वारा प्राचीन भारत के अज्ञात विशिष्ट रसायन विज्ञान का बोध देश और विदेश के वैज्ञानिकों को हुआ, जिन्होंने डॉक्टर रॉय की बहुत प्रशंसा की। यूरोप की कई भाषाओं में इस पुस्तक के अनुवाद प्रकाशित हुए और इसी पुस्तक के उपलक्ष्य में डरहम विश्वविद्यालय ने आपको DSC की सम्मानित उपाधि प्रदान की। आचार्य प्रफुल्ल

रामचंद्र रॉय भारत में केवल रसायन शास्त्री ही नहीं आधुनिक विज्ञान के भी प्रस्तोता थे। वे भारतवासियों के लिए सदैव वंदनीय रहे।

साथियों, आचार्य रॉय एक ऐसे समर्पित कर्मयोगी थे जिनके मन में सिर्फ और सिर्फ देशभक्ति की भावना हुआ करती थी। कहा जाता है कि कभी विवाह का विचार भी उनके मन में नहीं आया। उन्होंने प्रेसिडेंसी कॉलेज के एक नाममात्र के फर्नीचर वाले कमरे में पूरा जीवन काट दिया। मतलब जब वो पढ़ाई करते थे, काम करते हुए उन्हें तत्कालीन महान फ्रांसीसी रसायनज्ञ बर्थेलो की पुस्तक तकरीब एल्केमी पढ़ने को भी मिली। तुरंत उन्होंने बर्थेलो को पत्र लिखा और भारत में भी अति प्राचीन काल से रसायन की जो परंपरा रही है उसके बारे में जानकारी दी। साथियों, डॉक्टर रॉय जन्मजात देशभक्त थे। उनकी आत्मकथा में इसके प्रमाण जगह जगह देखने को मिलते हैं। एडिनबरा में आधुनिक रसायन शास्त्र की शिक्षा ग्रहण करते समय वे बराबर इस बात की चिंता करते थे कि विज्ञान के क्षेत्र में भारत योगदान क्यों नहीं कर रहा है। जी हां, 1885 में उन्होंने एक निबंध प्रतियोगिता में भाग लिया जिसका विषय था भारत गदर के पहले और गदर के बाद। उन्होंने अपने लेख में अंग्रेजी राज की कटु आलोचना की। प्रतियोगिता के पश्चात उन्होंने ये लेख भारत के मित्र समझे जाने वाले ब्रिटिश सांसद जॉन ब्राइट को भेज दिया और ब्राइट ने इस लेख की बहुत प्रशंसा की। बाद में आचार्य ने एक लघु पुस्तिका के रूप में इसे प्रकाशित करवाया। प्रेसिडेंसी कॉलेज में विद्यार्थियों को रसायन की कक्षा में व्याख्यान देते समय भी आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय ये कहना नहीं भूलते थे कि साइंस कैन वेट बट स्वराज कैन नॉट, यानी विज्ञान प्रतीक्षा कर सकता है परंतु स्वराज नहीं। ये उनकी देशभक्ति की भावना का प्रतीक था। साथियों, 1892 में उन्होंने इस देश की प्रथम रासायनिक उद्योग कंपनी बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स वर्क्स की स्थापना की, जो आज भी बंगाल केमिकल्स के नाम से कार्यरत है। डॉक्टर रॉय ने बहुत कुछ रसायन के क्षेत्र में किया। उन्हें भारतीय समाज से भी बहुत प्रेम था। 1922 के बंगाल के भीषण अकाल में आचार्य रॉय अपने सभी कार्यों को छोड़कर पीड़ितों की सहायता के लिए निकल पड़े थे। व्यक्तिगत प्रयासों से उन्होंने 3 लाख रुपए की सहायता राशि एकत्रित की और उनके आह्वान पर बंगाली जो लोग थे, जो देशभक्त थे, उनसे वस्त्र और आभूषण और धन इकट्ठा कर जो जरूरतमंद लोग थे उनको दिया। इस तरह से हम कह सकते हैं कि आचार्य रॉय ने तन मन धन से देश की सेवा की। हम शत शत नमन करते हैं। कृतज्ञ राष्ट्र उनको शत शत प्रणाम करता है।

जी हाँ, हमें गर्व होता है कि हमारे देश में ऐसे ऐसे महापुरुष जन्म लिए हैं, ऐसे ऐसे देशभक्त पैदा हुए हैं जिन्होंने देश की खातिर एक मिसाल बनाई और पूरी दुनिया उसको देखती रहती है। देशभक्ति का जज्बा हमारे देश के एक एक नागरिक में होता है और था और है। जी हाँ साथियों, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम में आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के आगरा केंद्र से। और कहते हैं कि जो एक व्यक्ति होता है, एक व्यक्ति का एक परिवार होता है और परिवार से फिर एक समाज बनता है, समाज से फिर शहर बनता है, शहर से फिर देश बनता है, देश से दुनिया बनती है। और एक व्यक्ति अकेला नहीं होता है,

उसके साथ कई सारे रिश्तेदार होते हैं, कई सारे रिश्ते समाज में होते हैं। इन्हीं रिश्तों में एक सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है दोस्ती का, जी हाँ, मित्रता का। आज हम मित्रता दिवस मना रहे हैं। कहने में तो बहुत आसान होता है कि दोस्त है वो हमारा दोस्त है, लेकिन जब हम इस रिश्ते की गहराई में जाते हैं, जब इस रिश्ते को महसूस करने की कोशिश करते हैं, तो पता चलता है कि इसकी गहराई अनंत है, इसकी कोई इति नहीं है। दोस्ती, ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इसकी महक, इसकी खुशबू, इसकी महत्ता, इसकी गहराई महसूस करने की चीज होती है। एक ऐसा रिश्ता जो सारे रिश्तों में सबसे ऊपर अपनी जगह बनाता है, क्योंकि कोई भी ऐसा रिश्ता नहीं होता जिसमें हम सारी बातें खुलेआम कर सकते हैं, अपने दिल की एक एक बात को शेयर कर सकते हैं, बता सकते हैं। लेकिन दोस्ती ही एक ऐसा रिश्ता होता है जहां सब कुछ खुला होता है। एक तरह से कह सकते हैं कि दो तन और एक मन होता है, कोई बात छिपी नहीं रहती। और हाँ, एक और बात, सच्ची दोस्ती तो वही होती है कि हम एक दूसरे की कमियों को भी बताएं, पहचानें और उनमें सुधार करें। टोका टोके नहीं है तो शायद दोस्ती में कुछ कसर है। इसलिए सच्चे दोस्त वही होते हैं जो सही को सही, गलत को गलत कहते हैं। और जब एक दोस्त गलती करता है तो दूसरा दोस्त उस गलती को सुधारता है, प्यार से, डांट के, गुस्सा होकर, किसी भी तरह से, क्योंकि मकसद होता है दोस्ती को निभाना और आगे बढ़ना। बात जब देशभक्ति की होती है तो हमारे जो क्रांतिकारी थे वो भी आपस में सच्चे दोस्त हुआ करते थे, और उसी रिश्ते की मजबूती ने देश की आजादी में अपना अभूतपूर्व अमूल्य सहयोग किया। उसी दोस्त की बदौलत वो एक हुए और एक एक चिंगारी शोला बनकर आगे बढ़ी और हम आजाद हुए। जी हां, दोस्ती विचारों के होनी चाहिए। दोस्ती में कोई ऊंच नीच नहीं होता, दोस्ती बराबरी की होती है। इसलिए कहते हैं कि सबसे बड़ा रिश्ता होता है दोस्ती का। कई बार हमारे घर के लोग भी अपने दोस्त हो सकते हैं। कोशिश करनी चाहिए कि हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन भी हमारे दोस्ती की तरह से रहें। आज की पीढ़ी बहुत खुले दिमाग की है, आज बहुत औपचारिकताएं नहीं होती हैं, बहुत परहेज या बहुत पर्दा भी नहीं होता है। आज हम कोशिश करते हैं कि अपनी बात अपने सभी परिवार वालों से बताएं, शेयर करें, ताकि आवश्यकता होने पर एक दूसरे की मदद कर सकें। खैर, दोस्ती जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए हमें दोस्ती करनी ही चाहिए, दोस्ती निभानी भी चाहिए। सूरज की पहली किरण सी ताजी और बारिश की पहली बूंद सी सुहानी होती है। जिंदगी तो गुजर ही जाती है जनाब, पर दोस्तों के साथ हर लम्हा एक खूबसूरत कहानी होती है।

बात फ्रेंडशिप डे की हो रही है, दोस्ती के दिन की हो रही है। एक ऐसा दिन जो किसी एक रिश्ते का नहीं बल्कि जिंदगी को जीने के उस अंदाज का जश्न मनाता है जिसे हम दोस्ती कहते हैं। कहते हैं ना कि रिश्ते खून के होते हैं, लेकिन दोस्ती वो रिश्ता होता है जिसे खुदा हमारे लिए चुनता नहीं है बल्कि हम खुद उस रिश्ते को चुनते हैं। यानी खुदा हमें खुद

चुनने का हक देता है। जी हां, बस दोस्ती में बातें होती हैं चाय की टपरी वाली हंसी की, या कभी कभी उन सिरफिरे यारों की जो हर हाल में साथ निभाते हैं। बचपन में दोस्ती हमें बहुत कुछ सिखाती है। कुछ पुरानी यादें, कुछ बीते हुए पल, यारों की वो हंसी व सुहाना कल। उस वक्त ना पैसे की हसरत ना कामयाबी की होड़ होती थी। बात बचपन की दोस्ती की हो रही है। जो बचपन की दोस्ती थी सबसे बेजोड़ थी। जी हां साथियों, अब याद करिए कि आपके कौन कौन सी बेस्ट फ्रेंड्स हैं और आपने कब उनको लास्ट फोन किया था, कब आपकी रोज बातें हुआ करती थी। वैसे हम आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत व्यस्त हो गए हैं, हम मैच्योर भी हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमें वो बातें याद आती हैं जब हम कॉलेज के गेट के बाहर, स्कूल के गेट के बाहर आपस में मौज मस्ती किया करते थे, हंसी मजाक किया करते थे, है ना। देखो, लेकिन आज हमारे दोस्त इधर उधर हो गए हैं, कामकाज की वजह से कोई कहीं पर, कोई कहीं पर। लेकिन जब हम फ्रेंडशिप डे की बात करते हैं तो ये एक ऐसा दिन होता है जब हम पुराने पन्नों को पलटें और याद करें कि वो बहुत पुराना दोस्त था, 20 साल पुराना, 30 साल पुराना या फिर 5 साल पुराना। तो याद करें और उनको एक छोटा सा मैसेज करें जिसमें इस रिश्ते की खूबसूरती का एहसास उसे हो। उस मैसेज में खुशबू होनी चाहिए आपकी दोस्ती की। बेशक आप उनसे आज उस फ्रीक्वेंसी से बात नहीं कर पाते हैं, लेकिन हाँ, आज का दिन ये तो है कि एक बार उसको मैसेज जरूर करना चाहिए जो आपके पुराने दोस्त हुआ करते थे, है ना साथियों। कहते हैं ना कि सच्चा दोस्त वही है जो आपके अतीत को समझता है, आपके भविष्य पर विश्वास रखता है और आप जैसे हैं आपको वैसा ही स्वीकार करता है। जी हां, इसी को दोस्ती कहते हैं। दोस्ती पुराने दौर की हो या फिर आज की हो, बस कुछ अंदाज बदला है, शायद थोड़ा सा। पहले तो हम खत लिखा करते थे, उसके बाद फिर हम ग्रीटिंग्स दिया करते थे और आज हम व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं। लेकिन दोस्तों, जज्बात तो आज भी वही हैं। वैसे दोस्त वो इंसान है जिसके सामने आपको परफेक्ट बनने की जरूरत कभी नहीं होती, जिसके सामने आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देते हैं। वो आपको जज नहीं करता, आपके साथ ठहाके मारकर हंसता है, है ना। तो चलिए, बात दोस्ती की हो रही है तो फिर दो चार लाइनें और बोल सकते हैं कि दोस्ती वो चराग है जो अंधेरों में भी रोशनी कर दे, दोस्ती वो मरहम है जो हर जख्म को हल्का कर दे। जी हां साथियों, एक बार फिर से आप सभी श्रोताओं को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयां, और हम फिर से कहेंगे कि एक बार आप अपने पुराने दोस्तों को जरूर याद कीजिए, एक छोटा सा मैसेज भेजिए जिसमें प्यार की महक उनको वहीं पर महसूस हो सके।

सुन रहे थे कार्यक्रम मेरी माटी मेरा देश। हमने नमन किया देश के महान रसायनज्ञ आचार्य प्रफुल्ल रॉय साहब को, हमने आज़ादी के दीवानों को नमन किया, और दोस्ती के रिश्ते की वजह से हम आज़ाद हुए। हमने चर्चा की दोस्ती की। इसके साथ ही मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। और आज चूंकि मित्रता दिवस है, तो आज हम आपके लिए कुछ मित्रता वाले गीत ही कोशिश कर रहे हैं आपको सुनवाएं। तो सुनते हैं ये गीत।

आप हैं आकाशवाणी आगरा के साथ मीडियम वेव 106.1 मीटर यानी 1530 किलोहर्ट्ज़ पर और प्रसार भारती के न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल एप्लीकेशन पर।

देखें। जी हाँ साथियों, मुदा फाजली साहब ने क्या खूब कहा है, दुश्मनी जम कर करो लेकिन ये गुंजाइश रहे, जब कभी हम दोस्त बन जाए तो शर्मिंदा ना हो। दोस्ती में कोई शर्म नहीं होती, कोई शर्त नहीं होती, कोई ईगो नहीं होता। अगर आज किसी दोस्त से कोई अनबन है भी तो आज का दिन उस गांठ को खोलने का है। उठाइए फोन, मिटाइए दूरियां, क्योंकि दोस्त बार बार नहीं मिलते।

आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने, बात हो रही है दोस्ती की। जी हाँ साथियों, ना वक्त की पाबंदी नाम रखा तकाजा, दोस्ती का रिश्ता हर रिश्ते से पाके जा है। जी हाँ साथियों, महसूस करते हैं इस खूबसूरत नगमे में दोस्ती की महत्ता को, दोस्ती के महत्व को, दोस्ती के एहसास को।

दोस्तों, आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने, और जितने भी गीत आप सुन रहे हैं उनमें दोस्ती का बखान है, दोस्ती की खुशबू का एहसास आप कर रहे हैं, इस रिश्ते की जो खूबसूरती है उसको भी आप महसूस कर रहे हैं।

आकाशवाणी आगरा से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम गाने नए पुराने, बात हो रही है दोस्ती की। जी हाँ, कुछ पन्नों पे नहीं, ये पूरी किताब है दोस्ती। तपती धूप में

ठंडी छांव का ख्वाब है दोस्ती। लोग कहते हैं उम्र के साथ रिश्ते बदल जाया करते हैं, जो कभी ना बदले वो नायाब एहसास है दोस्ती।

न गाड़ी न बंगला न कोई शान चाहिए, जब भी मुश्किल में हो बस दोस्त का साथ चाहिए। जी हाँ साथियों, मित्रता दिवस के उपलक्ष्य में यानी फ्रेंडशिप डे के मौके पर हमने कुछ गीत आपको सुनवाए जिनमें दोस्ती का जिक्र हुआ, दोस्ती के रिश्ते को आपने महसूस किया, उसकी खुशबू का एहसास किया। आपको बता दें फिल्में थी राजा को रानी से प्यार हो गया, गायक कलाकार अभिजीत, उसके बाद शेषनाग, गायक कलाकार मोहम्मद अजीज, प्रतीक्षा, गोविंदा कुमार सानू और साथियों की आवाज़ में। युवराज फिल्म थी, इसमें श्रेया घोषाल और एआर रहमान थे। उसके बाद आपने दोस्ताना फिल्म का गीत सुना जिसमें गायक कलाकार थे किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी। दोस्ती फिल्म में आपने मोहम्मद रफ़ी को फिर सुना और अभी आपने जोड़ी नंबर वन फिल्म में कुमार सानू और सोनू निगम को सुना। इसके साथ ही गाने नए पुराने कार्यक्रम को यहीं संपन्न करते हैं। आप हैं आकाशवाणी आगरा के साथ।

एक बार फिर से आप सभी को मित्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आपकी दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए हमसे भी और अपने दोस्तों से भी यूं ही बनी रहेगी। नमस्कार।

और अब आपको ले चलते हैं कुछ बारिश की फुहारों की तरफ। सावन का महीना और तपिश को कम करने के लिए जो बूंदें पड़ती हैं, जो बारिश की फुहारें पड़ती हैं, उसका एहसास हमारे गीतों में सदियों से चला रहा है। हमारे गीतकार लिखते हैं, हमारे संगीतकार उसकी धुनें बनाते हैं और हम उसको महसूस करते हैं, उसकी खूबसूरती का एहसास करते हैं। आइए सुनते हैं।

अपनी महबूबा को रोकने का क्या अंदाज था, बखूबी पेश किया मुकेश साहब ने। फिल्म का नाम था सबक। एक और गीत, बारिश की फुहारों लिए।

0: करे शोर।
1: पवन करे शोर।
0: अरे बाबा शोर नहीं, शोर शोर शोर।

0: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं सरफिरोजी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। ओडिशा में महानदी का जलस्तर घटने से बाढ़ की स्थिति में सुधार के

0: केरलम में बारिश की तीव्रता में कमी से लोगों को राहत। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत के लिए नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। उन्होंने वर्चुअल माध्यम से कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
1: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
0: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे।
1: आज लिया गया ये संकल्प आने वाले 100 सप्ताह तक लगातार ऐसे ही आगे बढ़ेगा। हर रविवार कला, संस्कृति, स्पोर्ट्स, मेडिटेशन, अध्यात्म और सेवा से जुड़ी गतिविधियां होगी। नशा मुक्ति का संदेश नए लोगों तक पहुंचेगा।
0: श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है।
1: नशा केवल शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाता, नशा एक माँ की मुस्कान छीन लेता है। और जब परिवार में, समाज में ऐसा होता है, राष्ट्र की शक्ति भी कमजोर पड़ जाती है। और इसलिए दुश्मन देश भी षड्यंत्र करके हमारे देश के युवाओं को इस नशे की लत में खींचने के लिए कोई कोशिश बाकी नहीं रखते हैं। और इसलिए हमें हर एक युवा को नशे के चुंगल में फंसने से बचाना है।
0: कार्यक्रम में 1 करोड़ से अधिक युवाओं ने हिस्सा लिया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आज श्रीनगर में नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान के केंद्र शासित प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उपराज्यपाल ने कहा कि इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने और राष्ट्र निर्माण में सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना है।
2: आम की सामूहिक जिम्मेदारी है कि वो भारत की युवा शक्ति को नशे से दूर रखकर उन्हें स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करें, उन्हें राष्ट्र निर्माण में सक्रिय भागीदारी के लिए तैयार करें। जम्मू कश्मीर और भारत के हर एक प्रोजेक्ट का आपको सह निर्माता बनना होगा। ये लक्ष्य असंभव नहीं है। भारत का भविष्य ये आपके हाथों में, आपकी सोच, आपका अनुशासन, आपका संकल्प ही विकसित भारत की नींव रखेगा।
0: वहीं युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि नशा मुक्त भारत का सपना केवल सक्रिय जन भागीदारी और युवाओं के नेतृत्व से ही साकार हो सकता है।
3: हम युवा विकसित भारत में अपनी भूमिका रखेंगे और इसलिए ही आज के दिन में ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 करोड़ से अधिक युवाओं को नशा मुक्ति का शपथ भी करवा रहे हैं और देश के युवा आगे आके नशा मुक्ति के सामने माई भारत के द्वारा अभियान का प्रारंभ कर रहे हैं।
0: भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। SBI रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति MPC की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का ये अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षों से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: संध्या में आपका फिर स्वागत है।
1: में हिरासत
0: दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारिसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है। एक रिपोर्ट।
2: कैदियों की अप्राकृतिक मृत्यु की स्थिति में इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिनमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप अधिसूचित की गई यह योजना निर्धारित परिस्थितियों में प्रभावित परिवारों को समय पर राहत प्रदान करेगी और जेल प्रशासन की जवाबदेही को भी मजबूत करेगी। उन्होंने कहा कि योजना से जेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही, मानवीय गरिमा और कानून के शासन को और अधिक बल मिलेगा। अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि शिक्षण संस्थानों को उद्योग के लिए तैयार, रोजगार उन्मुखी कौशल से लैस कार्यबल तैयार करने पर ध्यान देना चाहिए। उन्होंने आज नागपुर के रामदेव बाबा विश्वविद्यालय में एआई दक्षता केंद्र का उद्घाटन करने के बाद ये बात कही।
3: दुनिया अब छठी औद्योगिक क्रांति के बारे में बात करने लगी है। जिस गति से तकनीक बदल रही है, जिस गति से हमारा व्यवसाय करने का तरीका बदल रहा है, मुझे लगता है कि यह सही समय है कि हमारे शैक्षणिक संस्थान अपनी पूरी शिक्षण पद्धति, शिक्षा प्रदान करने के अपने पूरे तरीके को अपनाएं और उसमें बदलाव लाएं।
0: असम में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत स्वगणना की प्रक्रिया आज से शुरू हो गई है। एक रिपोर्ट।
4: स्वगणना की सुविधा 17 अगस्त से शुरू होने वाले मकान सूचीकरण और मकान गणना से पहले 16 अगस्त तक उपलब्ध रहेगी। नागरिक पोर्टल पर पंजीकरण कर सकते हैं, परिवार तथा व्यक्तिगत विवरण दर्ज करा सकते हैं और 15 दिन की अवधि के दौरान डिजिटल रूप से जानकारी प्रस्तुत कर सकते हैं। स्वगणना अवधि समाप्त होने के बाद प्रशिक्षित गणनाकार 17 अगस्त से 15 सितंबर तक मकान सूचीकरण और मकान गणना करेंगे, जिसके दौरान प्रस्तुत जानकारी का सत्यापन और पुष्टि की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से करिश्मा राय।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश की 3 विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव के लिए मतगणना की पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बिहार के बांकीपुर, गुजरात के मंजलपुर और मध्य प्रदेश के दतिया विधानसभा क्षेत्र में मतदान 30 जुलाई को हुआ था। मतगणना सवेरे 8 बजे शुरू होगी। निर्वाचन आयोग ने तीनों राज्यों में सुचारू मतगणना सुनिश्चित करने के लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की है। वस्त्र मंत्रालय बुधवार को नई दिल्ली में जीआई एंड बियॉन्ड 2.0 शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। इसका उद्देश्य भारत की जीआई टैग प्राप्त हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों का प्रदर्शन करना है। सम्मेलन में लगभग 10 देशों के खरीदार, निर्यातक और देश भर की बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन ओपेक प्लस ने इस वर्ष सितंबर से प्रतिदिन 188,000 बैरल तेल उत्पादन बढ़ाने पर सहमति व्यक्त की है। वैश्विक तेल बाजार की स्थितियों की समीक्षा के लिए आज हुई वर्चुअल बैठक में यह निर्णय लिया गया। आंध्र प्रदेश और ऑस्ट्रेलिया की सरकारों ने आज अमरावती में 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। इनका उद्देश्य स्वच्छ ऊर्जा, उन्नत विनिर्माण, समावेशी शिक्षा, विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य और कौशल विकास के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अभी भी चुनौतीपूर्ण हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
5: उड़ीसा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन बालेश्वर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अभी भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कुआं और ट्यूबवेल के दूषित होने से पीने का पानी की कमी बनी हुई है। फसलों को हुई भारी नुकसान से किसान बर्बाद हो गया है। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि वे मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपे। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ज्यादातर जिलों के लिए।

0: येलो अलर्ट जारी किया है और अगले 3 दिनों में भारी बारिश, आंधी और तेज हवाओं का अनुमान जताया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। मौसम विभाग ने कल अरुणाचल प्रदेश, बिहार, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज बारिश के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। जम्मू कश्मीर, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, मध्य महाराष्ट्र और पूर्वोत्तर राज्यों में भी कल मूसलाधार वर्षा की संभावना है। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास समुद्र में आज 271 यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को लेकर जा रही एक नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 41 लोग अभी भी लापता हैं। खोज और बचाव एजेंसी ने बताया कि नौका में सवार लोगों में से 225 को बचा लिया गया है। लापता यात्रियों की तलाश के लिए खोज तथा बचाव अभियान जारी है। ईरान के कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद मजीद इब्न अल रेजा ने कहा है कि ईरान अपने विरोधियों की हर धमकी को गंभीरता से लेता है और इन धमकियों को अपनी सैन्य तैयारी तथा रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के अवसर के रूप में देखता है। उनकी ये टिप्पणी अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बाद आई है, जिसमें उन्होंने कहा था कि कूटनीतिक प्रयासों को आगे बढ़ाने के लिए अमरीका ने ईरान पर प्रस्तावित सैन्य कार्रवाई को फिलहाल टाल दिया है। ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेलों में जूडो खिलाड़ी इशरूप नारंग महिलाओं के 78 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक से चूक गई। भारत 39 पदकों के साथ तालिका में चौथे स्थान पर है, जिसमें 13 स्वर्ण, 17 रजत और 9 कांस्य पदक शामिल हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी।
2: ग्लासगो के प्रसिद्ध हाइड्रो एरिना में आज भव्य समापन समारोह के साथ 11 दिनों तक चले राष्ट्रमंडल खेलों का समापन हो जाएगा। इस दौरान 2030 में अहमदाबाद में होने वाले 24वें राष्ट्रमंडल खेलों के लिए आधिकारिक हस्तांतरण की घोषणा भी की जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं BEMZ, केमी वांस और सैंडी थॉम के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। स्पोर्ट्स डेस्क से विशेष शुक्ला।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 सप्ताह के राष्ट्रव्यापी नशा विरोधी अभियान का शुभारंभ किया। कहा, नशा मुक्त युवा विकसित भारत के लिए महत्वपूर्ण। SBI रिसर्च ने चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में भारत की GDP वृद्धि दर का अनुमान बढ़ाकर 7% किया। दिल्ली सरकार ने जेल में अस्वाभाविक रूप से मरने वाले कैदियों के परिवारों के लिए 7.5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की। इंडोनेशिया में मदुरा द्वीप के पास नौका में आग लगने से 5 लोगों की मौत और 41 लापता। और राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: Good evening. This is Akashvani. I am Subhadra Ramachandran with the news at 9. The headlines. Prime Minister Narendra Modi launches 100-week nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi river recedes. Rainfall intensity decreases in Keralam, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal

0: today. Country search and rescue agencies said of those on board, 225 have been rescued so far. A search and rescue operation is underway as teams work to locate the missing passengers. The 2026 Commonwealth Games will come to a close with a spectacular closing ceremony at the iconic Hydro Arena in Glasgow tonight. The ceremony will begin at 1:30 a.m. Indian Standard Time and will celebrate 11 days of sporting excellence, friendship and cultural diversity. On the occasion, Ahmedabad will receive the Commonwealth Games flag and the host baton in a ceremonial handover during the closing ceremony, marking India as a host for the centenary 2030 edition. India's impressive campaign at the Games, highlighted by a record-breaking performance in boxing, historic success in judo, milestone achievement in parasports, and multiple medals in athletics, propelled the country to fourth place in the overall medal standings with 13 gold, 17 silver, and 9 bronze medals. More from our sports desk.
1: The closing ceremony at Glasgow's famous Hydro Arena that holds up to 13,000 fans will bring 11 days of athletic competition to a finale. The event, which is primarily a celebration of athlete performances, also acts as a thank you to the numerous volunteers and presents the host for the last time with performances by cultural organizations and community groups. The official transfer to the 24th Commonwealth Games in Ahmedabad in 2030 will also take place during the event. The ceremony will be headlined by Scottish rock band Simple Minds. Moreover, BEMS, Kami Barnes and Sandy Tom will also perform, while Australian singer Delta Goodrum will be making her third appearance at a Commonwealth Games ceremony. From India, Rashmika Mandana and Shankar Mahadevan will headline India's cultural showcase in Glasgow. Doordarshan will broadcast the ceremony live for the fans. Chirag Jha from Sports Desk.
0: And now, before we end the bulletin, the headlines once again. Prime Minister Narendra Modi launches 100 Freak nationwide anti-drug campaign, asserts drugs-free youth crucial for developed India. SBI research raises India's GDP growth estimate to 7% in first quarter of current fiscal. Delhi government announces 7.5 lakh rupees compensation for families of prisoners dying unnaturally in jail. Flood situation in Odisha improves as Mahanadi River recedes. Rainfall intensity decreases in Kerala, bringing relief to people. In Indonesia, 5 persons killed and 41 missing after ferry catches fire off Madura Island. Curtains to come down on Commonwealth Games 2026 tonight. Ahmedabad to receive baton at closing ceremony, marking India's formal transition as host of the centenary 2030 edition. That's all in the news at 9. Good night.
2: आदाब, ये आकाशवाणी है, जमीर रजवी से खबरें सुनिए। सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मुल्कगीर मुहिम का आगाज किया। वज़ीर-ए-आज़म ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। एसबीआई की तहकीक में रवा माली साल की पहली सहमाही के दौरान भारत की जीडीपी की शरह तरक्की के मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरला में बारिश की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जलजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक और 41 लापता हो गए। और 2026 के दौलत मुश्तरका मुकाबलों की इख्तामी तकरीब आज रात मुनाकिद होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। अब खबरें तफसील से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज कहा है कि चूंकि भारत एक विकसित भारत बनने की जानिब गामजन है, लिहाजा मुल्क के नौजवानों को जिस्मानी तौर पर चुस्त दुरुस्त, दिमागी तौर पर मजबूत और पुरएतमाद होना चाहिए। नई दिल्ली में आज विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा मुहिम का वर्चुअल वसीले से आगाज करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि नौजवानों को हमेशा नशीले मादों से दूर रहना चाहिए और सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनानी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इससे नशीले मादों की रोकथाम से मुतल

0: 100 हफ्ते की मुल्कगीर जन भागीदारी मुहिम का आगाज हो रहा है।
1: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
0: जनाब मोदी ने कहा कि नशे की लत की वजह से लोग अपने मकासद से भटक जाते हैं और अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर पाते। वजीर आजम ने कहा कि नशे की लत न सिर्फ कुंभों को तबाह कर देती है बल्कि मुल्क की ताकत को भी कम करती है। वजीर आजम ने कुंभों से जोर देकर कहा कि वो बदनामी के सबब नशीले मादों के गलत इस्तेमाल के केसेस को छुपा कर न रखें।
1: हमें हमेशा इस बात का ध्यान रखना है, घर का कोई बच्चा अगर नशे का शिकार बन गया है तो इसे सामाजिक प्रतिष्ठा की आड़ में छिपाए नहीं, जिसकी जरूरत हो उसका सहयोग मांगे, मन खोल करके उससे बात करें, जो एक्सपर्ट हैं उनका सहयोग लें, मेडिकल हेल्प से अपने बच्चे को नशे से मुक्त कराने का प्रयास करें।
0: मुल्क भर के 28,000 मकामात के 1 करोड़ से ज्यादा नौजवानों ने इस तकरीब में शिरकत की, जिनमें माय भारत और नेशनल सर्विस स्कीम के रजाकारों, स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों, यूथ क्लब्स, गैर सरकारी तंजीमों और रूहानियत से मुतालिक तंजीमों से वाबस्ता शख्सियतें शामिल हैं। उम्मीद है कि भारतीय मईशत में रवां माली बरस की पहली सहमाही में तकरीबन 7% का इजाफा होगा, जो पहले के अंदाजे से ज्यादा है। ये अंदाजा मजबूत तरीन इकतसादी इंदियों, बेहतर सनअती सरगर्मियों और बरामदात में बहाली से होता है। SBI की एक रिसर्च के मुताबिक माली पॉलिसी कमेटी की रिपोर्ट से पहले कल जारी की गई रिपोर्ट में कहा गया है कि शरह तरक्की से मुतालिक इस तखमीने से भारतीय रिजर्व बैंक के इससे पहले के तखमीनों में बेहतरी जाहिर होती है, जो जुग्राफियाई व सियासी गैर यकीनी की वजह से कम सतह पर थे। दिल्ली हुकूमत ने कौमी राजधानी खित्ते की जेलों में बंद कैदियों की गैर तबई मौत की सूरत में उन कैदियों के कानूनी वारिसों को मुआवजा अदा करने की स्कीम को नोटिफाई कर दिया है। इस बारे में दिल्ली हुकूमत के दाखिली उमूर के महकमे ने आज नोटिफिकेशन जारी किया है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
2: इस स्कीम के तहत खसूसी हालात में 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा अदा किया जा सकता है। जेल अफसरान या अमले की जानिब से फराइज की अदायगी में कोताही, तिब्बी या नीम तिब्बी अमले की लापरवाही और कैदी की खुदकुशी के मामलों के लिए 5 लाख रुपए का मुआवजा तय किया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ये स्कीम उन्हीं मामलों पर नाफिज होगी जहां दिल्ली की किसी भी जेल में नोटिफिकेशन के इजरा की तारीख के बाद किसी कैदी की गैर फितरी मौत होगी। दिल्ली की वजीर आला रेखा गुप्ता ने कहा कि इंसानी हकूक के कौमी कमीशन के रहनुमा खतूत के मुताबिक नोटिफाई की गई इस स्कीम के न सिर्फ मखसूस हालात में मुतासर कुंभों को बरवक्त राहत पहुंचाएगी बल्कि इंतजामिया की जवाबदही में इजाफा होगा। दिल्ली से अमन यादव की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: बिहार, गुजरात और मध्य प्रदेश में 3 असेंबली हलकों के जिमनी चुनाव में डाले गए वोटों की गिनती कल किए जाने के लिए सभी तैयारियां मुकम्मल हैं। बिहार में बांकीपुर हलके, गुजरात में मुंजालपुर और मध्य प्रदेश में दतिया में पिछले महीने की 30 तारीख को वोट डाले गए थे। वोटों की गिनती सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। इंतखाबी कमीशन ने तीनों रियासतों में खुश असलूबी से गिनती कराए जाने के लिए बड़े पैमाने पर हिफाजती इंतजाम किए हैं। आसाम में मर्दमशुमारी 2027 के तहत खुद ही जाती मालूमात का इंदराज करने का अमल सेल्फ एन्यूमरेशन आज शुरू हो गया। शहरी अब इसके लिए बने पोर्टल se.census.gov.in पर कुंभों और जाती मालूमात ऑनलाइन तरीके से दर्ज कर सकते हैं। खुद ही जाती मालूमात का इंदराज करने के अमल सेल्फ एन्यूमरेशन का मकसद लोगों को उनके घरों से ही मालूमात फराहम करने का मौका देना और मर्दमशुमारी को ज्यादा शमूलियाती, आसान और शहरियों पर मरकूज बनाना है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
3: खुद ही जाती मालूमात का इंदराज करने का अमल सेल्फ इन्यूमरेशन 16 अगस्त तक जारी रहेगा, जिसके बाद 17 अगस्त से घरों की गिनती का अमल शुरू होगा जो 15 सितंबर तक जारी रहेगा। मर्दमशुमारी के दूसरे मरहले के तहत इंदराज की गई मालूमात की तस्दीक और तौसीक की जाएगी। गुवाहाटी से राकेश डोले की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं तौहीद हक्कानी।
0: मध्य प्रदेश के उज्जैन में पवित्र सावन महीने के पहले पीर के मौके पर कल भगवान महाकालेश्वर की श्रवण यात्रा निकाली जाएगी। चंद्राव माउलेश्वर के रूप में भगवान महाकाल की रिवायती पालकी निकाली जाएगी, जिससे अकीदतमंदों को उनके दर्शन का मौका मिलेगा। मंदिर इंतजामिया ने अकीदतमंदों के लिए

0: वसी तर इंतजामात किए हैं। अकीदतमंदों की सलामती और सहूलत को यकीनी बनाने के लिए मेडिकल्टी में और 24 घंटे एम्बुलेंस खिदमात तैनात की गई हैं। भारत में कोयले की पैदावार की शरह तरक्की पिछले साल जुलाई के मुकाबले इस साल 7.51% रही। कोयले की वजारत ने बताया कि मुल्क में इस साल जुलाई के दौरान कोयले की मजमुई पैदावार आर्जी आदादोशुमार के मुताबिक 6,57,50,000 टन तक पहुँच गई। वजारत ने यह भी बताया कि पिछले महीने जो कोयला भेजा गया है उससे जुलाई में 17.34% की साल ब साल शरह तरक्की का अंदाजा होता है। यूनाइटेड कश्मीर पीपल्स नेशनल पार्टी UKPNP ने अक्वामे मुत्तहदा और बैन अक्वामी बिरादरी से जोर देकर कहा है कि वो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के जेर कब्जा इलाके में इंसानी हकूक की अबतर होती हुई सूरत हाल के बारे में फौरी इकदाम करें। UKPNP के चेयरमैन सरदार शौकत अली कश्मीरी की क्यादत में एक वफद ने न्यूयॉर्क में अक्वामे मुत्तहदा के सदर दफ्तर में कई मीटिंग्स का इनेकाद किया। वफद ने पाकिस्तान से कहा है कि वो अपने यहाँ बैन अक्वामी इंसानी हकूक की जिम्मेदारियां पूरी करे और शहरियों के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल बंद करे। वफद ने उन लोगों की रिहाई का भी मुतालबा किया जिन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में रखा गया है। वफद ने मकबूजा इलाके में इंटरनेट और टेली मवासिलात खिदमात की बहाली, कर्फ्यू हटाने और बैन अक्वामी मीडिया नीज इंसानी हकूक से मुतालिक तंजीमों पर से पाबंदी हटाकर सूरत हाल का जायजा लेने के लिए उन्हें रसाई फराहम करने के लिए भी कहा है। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। ओडिशा में सैलाब का पानी बतदरीज घट रहा है, तहम शदीद मुतासर जिलों की सूरत हाल को अब भी चैलेंजों का सामना है। पीने के पानी की किल्लत, फसलों के शदीद नुकसान और मकानात की तबाही ने सैलाब से मुतासर कुंभों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं। इस दौरान भारतीय महकमे मौसमियात ने ओडिशा के बेशतर हिस्सों में 5 अगस्त तक शदीद बारिश की पेशगोई की है। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से।
1: ओडिशा में सैलाब का पानी बतदरीज कम हो रहा है, ताहम सबसे ज्यादा मुतासरा बालासोर, भद्रक और जाजपुर जिलों के लोगों को अब भी शदीद मुश्किलात का सामना है। पीने के पानी की किल्लत हो गई है, ट्यूबवेल आलूदा हो गए हैं और पानी में डूबे गांव में सांप और मगरमच्छ दाखिल हो गए हैं, जिससे मुकामी बाशिंदों में शदीद खौफ और हरास फैल गया है। फसलों को हुए शदीद नुकसान से किसान दिल बर्दाश्ता हैं और मकानात को हुए नुकसान की वजह से कुंभे अब भी खाना पकाने से कासिर हैं। रियासती हुकूमत ने राहत कार्रवाइयों को तेज कर दिया है और नुकसान भरपाई की जल्द अदायगी के लिए जिला कलेक्टरों से फौरी तौर पर पंचनामे दाखिल करने को कहा है। इंतजामिया का कहना है कि अगले सैलाब का फौरी तौर पर कोई खदशा नहीं है, ताहम भारतीय महकमे मौसमियात ने ज्यादातर जिलों में अगले 3 दिन के दौरान तेज हवाओं के साथ शदीद बारिश से मुतालिक येलो अलर्ट जारी किया है। भुवनेश्वर से प्रकाश दास की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं फैसल हबीब।
0: इधर केरला में शदीद बारिश के एक दिन बाद बारिश की शिद्दत में कमी आने के सबब कई जिलों के लोगों को राहत मिली है। भारतीय महकमे मौसमियात ने केरला के 12 जिलों के लिए आज ऑरेंज अलर्ट जबकि 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया था। भारतीय महकमे मौसमियात ने कल के लिए अरुणाचल प्रदेश, बिहार, मगरबी बंगाल के जैली हिमालयी खत्ते और सिक्किम में शदीद से बहुत शदीद बारिश के पेश नजर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। गोवा के वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत ने कहा है कि गोवा की रियासती हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी के विकसित भारत संकल्प अभियान के तहत नशा मुक्त युवा के लिए पूरी रियासत में अगले 100 हफ्ते के दौरान बहुत से प्रोग्रामों का इनेकाद करेगी। सनखली में आज रविंद्र भवन में एक प्रोग्राम से खिताब करते हुए डॉक्टर सावंत ने कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के नजरिए को हकीकत में बदलने के लिए मनुष्यात से पाक नौजवान जरूरी हैं। जनाब सावंत ने नौजवानों से नशीले मादों से दूर रहने, सेहतमंद तर्ज जिंदगी अपनाने और मुल्क की तामीर में सरगर्मी से ताउन करने की अपील की। इंडोनेशिया में आज मदुरा जजीरे के करीब समंदर में एक छोटे जहाज में आग लगने से 5 अफराद हलाक हो गए और 41 अफराद अब तक लापता हैं। इस जहाज में 271 मुसाफिर और अमले के लोग सवार थे। तलाश और बचाव के महकमे ने बताया कि इन मुसाफिरों में से अब तक 225 को बचाया जा चुका है। लापता लोगों की तलाश के लिए बचाव कार्रवाई अब भी जारी है। अमेरिका में वाशिंगटन के गवर्नर बॉब फर्ग्यूसन ने रियासत गीर इमरजेंसी का ऐलान कर दिया है। उन्होंने तेज हवाओं की वजह से तेजी से फैलने वाली जंगल की आग की वजह से आग जलाने पर पाबंदी आयद कर दी है। जंगल की आग की वजह से 3,000 एकड़ का रकबा जलकर खाक हो गया है और हजारों लोगों को इनखला पर मजबूर होना पड़ा। साल 2026 के दौलत मुश्तरक खेल मुकाबले आज रात ग्लासगो में मशहूर हाइड्रो एरिना में शानदार इख्तितामी तकरीब के साथ मुकम्मल हो जाएंगे। ये तकरीब भारतीय वक्त के मुताबिक रात 1:30 बजे शुरू होगी, जिसमें 11 दिन तक जारी खेल कूद की महारत, दोस्ती और सकाफती तनवो का जश्न मनाया जाएगा। इस मौके पर अहमदाबाद को दौलत मुश्तरक खेलों का परचम और मेजबान की छड़ी होस्ट बैटन सौंपी जाएगी। जो साल 2030 के खेल मुकाबलों की

0: भारत की मेजबानी की अलामत होगी। पेश है एक रिपोर्ट।
1: ग्लासगो में मुनाकिद होने वाली इस तकरीब में 13,000 से ज्यादा खेल शायकीन शिरकत करेंगे। ये तकरीब एथलीट्स की कारकर्दगी का एक जश्न है और बहुत से रजाकारों को शुक्रिया कहने का एक मौका। इस तकरीब के दौरान 2030 में अहमदाबाद में कराए जाने वाले 24वें दौलत मुश्तरका खेलों की मुंतकली की रस्म भी अंजाम दी जाएगी, जिसमें स्कॉटलैंड का रॉक बैंड सिंपल माइंड्स BEMZ, कैमी बार्नस और सैंडी थॉम अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ऑस्ट्रेलिया के गुलूकार डेल्टा गुडरेम दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों की किसी तकरीब में तीसरी बार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। भारत से रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन अपनी गुलूकारी से लोगों को मसहूर करेंगे। दूरदर्शन से इस तकरीब को रवाना नशर किया जाएगा। चिराग झा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं असलम बेग।
0: इन खेल मुकाबलों में भारत की कारकर्दगी शानदार रही। मुक्केबाजी में रिकॉर्ड तोड़ कामयाबी मिली, जूडो में भी तारीखी कामयाबी रही और माजूर अफराद के खेलकूद मुकाबलों में भी संगमील की हैसियत रखने वाली हसूलियाबियां हुई। एथलेटिक्स में बहुत से तमगे जीते गए, जिसकी वजह से मजमू तौर पर तमगों की तादाद के एतबार से भारत चौथे नंबर पर रहा। भारत ने सोने के 13, चांदी के 17 और कांसे के 9 तमगे जीते हैं। तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह श्रीलंका में भारत के 2 टेस्ट मुकाबलों के दौरे में शामिल नहीं हो सकेंगे। वो अपने घुटने की चोट से असबर नहीं हो पाए हैं। श्रीलंका की ये सीरीज गाले में इस महीने की 15 तारीख से शुरू हो रही है। बुमराह के घुटने की चोट काफी शदीद है, जिसका अंदाजा शुरू में नहीं हो पाया था। बेंगलुरु के महारत के मरकज में खेलकूद से मुतालिक साइंस की टीम के मुताबिक उन्हें अगले मैचों के पेश नजर फिलहाल इस मैच में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। और आखिर में खास खास खबरें एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने नशीले मादों की रोकथाम की 100 हफ्ते की मूलगीर मुहिम का आगाज किया। वजीर आजम ने जोर देकर कहा कि तरक्की याफ्ता भारत के लिए नशीले मादों से पाक नौजवान जरूरी हैं। SBI की तहकीक में रवां माली बरस की पहली सहमाही के दौरान भारत की GDP की शरह तरक्की से मुतालिक अंदाजे में इजाफा करके इसे 7% कर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने जेल में गैर फितरी तरीके से मौत हो जाने पर कैदियों के कुंभों के लिए 7.5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। ओडिशा में सैलाब की सूरत हाल में बेहतरी आई है, क्योंकि महानदी दरिया के पानी की सतह में कमी आ गई है। केरलम में बारिश की शिद्दत कम हुई है, जिसकी वजह से लोगों को राहत मिली है। इंडोनेशिया के मदुरा जजीरे से कुछ दूर एक छोटे जहाज में आग लग जाने के हादसे में 5 अफराद हलाक हो गए और 41 लापता हो गए हैं। और 2026 के दौलत मुश्तरका खेल मुकाबलों की इख्तितामी तकरीब आज रात मुनक्किद होगी, जिसमें 2030 के इस सदी के खेल मुकाबलों के मेजबान के तौर पर भारत को बाकायदा मेजबानी की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी से खबरों का यह बुलेटिन खत्म हुआ।
2: ये आकाशवाणी है। रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में प्रस्तुत है आजाद हिंद फौज के गीतों की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और राष्ट्रीय महत्ता पर केंद्रित रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर। शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। आइए सुनते हैं रूपक आजाद हिंद और समर के स्वर।
3: साल 1942, दूसरे विश्व युद्ध की आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुकी थी। भारत अब भी गुलाम था, लेकिन अपने वतन से हजारों मील दूर जर्मनी के हैम्बर्ग शहर के अटलांटिक होटल में इतिहास एक नई करवट लेने वाला था। यही नेताजी सुभाष चंद्र बोस के आजाद भारत के ख्वाब को पहली बार एक धुन मिली।

0: 11 सितंबर 1942, पहली बार जनगण मन के बुलंद स्वर यूरोप के ब्रास बैंड और स्ट्रिंग्स के साथ गूंजे। ये सिर्फ एक संगीत प्रस्तुति नहीं थी, ये उस मुल्क की आवाज थी जिसका जन्म अभी होना बाकी था। जलावतन भारतीयों के बीच यूरोप की धरती पर आजादी पहली बार सुरों में ढल रही थी। ये निर्वासन में जन्मी आजादी की एक ऐसी सिम्फनी थी जिसने आगे चलकर करोड़ों भारतीयों के दिलों में स्वतंत्रता की लौ और तेज कर दी।
1: There was an orchestration done of the tune of Jana Gana Mana by the Hamburg Radio Orchestra.
0: Dr. Sugato Bose, अध्यक्ष नेताजी रिसर्च ब्यूरो।
1: It was played as India's national anthem for the first time at the inauguration of the Deutsche Indische Gesellschaft, which is the German Indian Society, on the 11th of September 1942. And it was a beautiful orchestration. It was beautifully played. And Netaji himself clearly interacted with the musicians and the conductor. We have a beautiful photograph in the Netaji Museum at Netaji Bhavan in Kolkata, which shows Netaji addressing the gathering in Hamburg, and behind him, we see the orchestra and the musicians with their musical instruments.
0: इसके कुछ ही महीनों बाद इतिहास ने एक और असाधारण अध्याय लिखा। जर्मनी से दक्षिण पूर्व एशिया तक करीब 90 दिनों की एक बेहद खुफिया और जोखिम भरी पनडुब्बी यात्रा और फिर 1943 की शुरुआत में नेताजी का सिंगापुर पहुंचना। यहीं उन्होंने राज बिहारी बोस से आजाद हिंद फौज की कमान संभाली।

0: उस समय सिंगापुर में आजाद हिंद फौज के ऑर्केस्ट्रा का नेतृत्व कर रहे थे कैप्टन राम सिंह ठाकुर।
1: 3 जुलाई 1943 को जब नेताजी सिंगापुर पधारे, उस समय पूर्वी एशिया में इतनी खुशी हुई कि तमाम पूर्वी एशिया के रहने वाले 35 लाख हिंदुस्तानियों ने और आजाद हिंद फौज के जवान और तरानों ने गीत गा के उनका स्वागत किया। वो गीत क्या था,

0: इस गीत को मुमताज हुसैन साहब ने लिखा और इसका स्वर मैंने दिया।
1: नेताजी जानते थे जंग सिर्फ मोर्चे पर नहीं लड़ी जाती, वो लोगों के दिलों और जहन में भी लड़ी जाती है, और वहां तक पहुंचने का सबसे असरदार रास्ता था संगीत। वो हौसला था और संघर्ष का एक सशक्त हथियार भी। 21 अक्टूबर 1943, आजाद हिंद की आरजी हुकूमत के ऐलान से ठीक पहले नेताजी ने आबिद हसन से कहा कि जनगण मन का एक हिंदुस्तानी रूप तैयार किया जाए। वो अपने सैनिकों से हिंदुस्तानी में बात करते थे, साथ ही तमिल में उसका समानांतर अनुवाद भी सुनाया जाता था। आबिद हसन ने मुमताज हुसैन से गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के जनगण मन के 5 में से 3 पदों का हिंदुस्तानी रूप लिखवाया और कैप्टन राम सिंह ने उसकी धुन को सवारा, और इस तरह जन्म हुआ आरजी हुकूमत आजाद हिंद के कौमी तराने का।

0: प्रख्यात कवि और प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी बताते हैं कि ये गीत किस तरह विविधता में एकता के उस भाव को स्वर देता है जिसकी बुनियाद पर नेताजी अपना भारत गढ़ना चाहते थे।
1: जो एक एकता की भावना है, आपसी मेलजोल है, वो बहुत मूल्यवान है।

0: हम देखते हैं ना आजाद हिंद फौज के जो तीन नायकों पर जो मुकदमा चला, तो उसमें एक कर्नल सहगल, एक कर्नल ढिल्लन और एक जनरल शाहनवाज, तो एक हिंदू, एक सिख, एक मुसलमान, तो ये भी एक अनूठी चीज है। तो उसमें जो एक पंक्तियां आती हैं वो भी मैं सुनाना चाहूंगा कि सबके दिल में प्रीत बसाए तेरी मीठी वाणी, और हर सूबे के रहने वाले हर मजहब के प्राणी, सब भेद और फर्क मिटा के सब गोद में तेरी आके गूंथे प्रेम की माला।
1: इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं इतिहासकार और हार्वर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर डॉक्टर सुगतो बोस।
2: नेताजी जब आजाद हिंद फौज का सुप्रीम कमांडर बने, उन्होंने बताया कि जो सब प्रोफेशनल सोल्जर थे आजाद हिंद फौज के, वो ज्यादा आए थे पंजाब से, लेकिन बहुत सिविलियन रिक्रूट आए थे तमिलनाडु से। सबको तो एक करके आजादी का जंग लड़ना है, इसीलिए उन्होंने बताया कि जो आईएनए ऑर्केस्ट्रा था वहाँ बहुत अच्छा एक लिरिसिस्ट था मुमताज हुसैन, और कैप्टन राम सिंह आईएनए ऑर्केस्ट्रा का कंडक्टर बना, वो एक साथ बहुत गाने बनाया। सबसे जो इंस्पायरिंग गीत था वो है कदम कदम बढ़ाया जा खुशी के गीत गाया जा, वो जिंदगी है कौम की तो कौम पे लुटाया जा। तो एक साथ सब ये गाते गाते वो इंडो बर्मा फ्रंटियर पार होके नॉर्थ ईस्ट इंडिया में आया, इम्फाल और कोहिमा में आजादी का जंग लड़ा।
1: सिंगापुर में नेताजी ने आजाद हिंद की अस्थायी सरकार या प्रोविजनल सरकार की स्थापना की घोषणा की और ब्रिटिश साम्राज्य के विरुद्ध युद्ध का उद्घोष किया। इसी ऐतिहासिक अवसर पर आजाद हिंद फौज का मार्चिंग गीत बना कदम कदम बढ़ाए जा।

0: आजाद हिंद फौज के हजारों सैनिकों के बलिदान का ये संगीतमय स्मारक ब्रिटिश शासन द्वारा राजद्रोही घोषित कर प्रतिबंधित कर दिया गया था। लगभग 8 दशकों के बाद आज भी इसकी लोकप्रियता का रहस्य क्या है?
1: सिंपल लिरिक्स टैपिंग इनटू कोर इमोशंस ऑफ करेज, यूनिटी एंड कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड फुट टैपिंग बीट्स।
0: गौरा धवन लाल देश के वरिष्ठ कमेंटेटरों में से हैं।
1: मुझे मिलिट्री सेरेमनीज और सेलिब्रेशंस की लाइव कमेंट्री करते हुए 4 दशक से अधिक हो गए हैं, पर आज भी कमेंट्री के समय जब ये गाने प्ले होती हैं, ये धुने प्ले होती हैं, तो उनके बजते हुए कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं होता। बस मुख बंद होते हैं, अपने हाथ और पांव उसी बीट के साथ टैप करते हैं और हम उनको एंजॉय करते हैं। जो सेंटिमेंट्स ये धुने और गाने कन्वे करते हैं, शब्द उनके सामने बिल्कुल फीके पड़ जाते हैं।
0: आज कदम कदम बढ़ाए जा भारतीय सेना का रेजिमेंटल मार्चिंग सॉन्ग है।
2: 1996 में जनरल शंकर राय चौधरी ने इस बात को उठाया। ये सुभाष चंद्र बोस के जमाने में हुआ था, 1942 में। क्यों ना हम अभी इस वक्त इंडियन आर्मी के लिए इसको शुरू करें।
0: मेजर नजीर हुसैन, भारतीय सैन्य संगीत की दुनिया का एक प्रतिष्ठित नाम।
2: उस वक्त जब 1942 के अंदर ये बनाया गया था, ये सिंपल एंड कॉमन म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया। इसको शंकर राय चौधरी ने ही जब सवाल उठाया 1996 में जब हुआ, तो इसको अरेंजमेंट जो एक्चुअल अरेंजमेंट है मिलिट्री म्यूजिक का, चाहे वो वेस्टर्न हो चाहे वो इंडियन कंपोजर, इसको 3 टुकड़ों में बनाया जाता है। एक तो इंट्रोडक्शन, देन मेलोडी, देन ब्रास 2T, जस्ट दैट वाज द फोर्स, जवान के कदमों के लिए फोर्स लाना, फिर अगेन मेलोडी, देन ट्रियो। तो इसको मिलिट्री बैंड के हिसाब से अरेंजमेंट किया गया, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए डायरेक्टर ऑफ म्यूजिक कैप्टन HB बराल, हिम महादेव बराल को दिया गया और उसने इसको मिलिट्री बैंड के लिए अरेंजमेंट किया। मिलिट्री बैंड अरेंजमेंट, नॉट कंपोज।
0: सेना मुख्यालय में सैन्य संगीत सलाहकार रहे।

0: चुके विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित मेजर नजीर हुसैन।
1: दिस इज फर्स्ट इज अ इंट्रोडक्शन। Pom pom pom pom pom pom pom pom pom pom kadam kadam barai. This is melody. पहले जो था introduction था, no melody. Kadam kadam barai ja, khushi ke geet gaaye ja, la la la la la la la la la la la la la la la la. This is melody. Now is a brass beauty. La la la la la. La la la pa pam pam pam pam pam pa pam pa pam tam param param tam pam pam pam da da. This is the brass duty. This is the josh jawan ke hriday mein lane ke liye, dimag mein lane ke. Then again is a melody. La ra la ra ra ra ra ra खुशी के गीत गाए जा, ये जिंदगी है कौम की, कौम पे लुटाए जा।
0: अब इस गीत के शब्दों और उसकी भावना पर रोशनी डाल रहे हैं कवि और वरिष्ठ प्रसारक लक्ष्मी शंकर वाजपेयी।
2: ये गीत लिखा कैप्टन राम सिंह जी ने और धुन भी उन्होंने ही बनाई है। हालांकि इसी मुखड़े का एक गीत बंशीधर शुक्ल जी का भी है। बंशीधर शुक्ल जी का जो गीत है उसके अंतरे बिल्कुल अलग हैं, उसकी भाषा बिल्कुल अलग है, क्राफ्ट के हिसाब से, शिल्प के हिसाब से वो बेहतर गीत है। लेकिन ये जो कदम कदम बढ़ाया जा कैप्टन राम सिंह जी ने जो लिखा है, जहां तक एक मार्चिंग सॉन्ग की जो जरूरत होती है, जो जोश जो जज्बा चाहिए वो उसमें आपको मिलेगा। पहली ही पंक्ति में कदम कदम बढ़ाए जा, खुशी के गीत गाए जा। अब जंगलों के बीच से गुजर रहे हैं, बीहड़ जंगलों से, और तमाम सारी मुसीबतें हैं, उलझने हैं, और जा कहां रहे हैं, जंग करने के लिए। मारे भी जा सकते हैं, घायल भी हो सकते हैं, जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो सकते हैं, लेकिन खुशी से जाना है, एक जज्बे के साथ जाना है, साहस के साथ जाना है, और दुश्मन को जो है किसी तरह उसको खत्म करना है। फिर एक जज्बा है कि दिल्ली जाएंगे और लाल किले पर तिरंगा फहराएंगे, गुलामी को हटा देंगे, मिटा देंगे। तो एक एक पंक्ति में जो साहस है, जो हिम्मत है, जो जोश है, वो बिल्कुल अलग तरह का है, और जो एक मार्चिंग सॉन्ग के लिए जरूरी है वो सब कुछ इस गीत में है।

0: मतवाले बन आजादी के, हम दरिया जंगल घूमेंगे।
1: जितने भी ये गीत हैं शिल्प के हिसाब से, क्राफ्ट के हिसाब से, बेशक उनमें कच्चापन है लेकिन जज्बात का सच्चापन है। बहुत जोश भरते हैं ये कविताएं, देश प्रेम से ओतप्रोत है एक एक पंक्ति है, और बहुत मूल्यवान है उन फौजियों के लिए जो लड़ रहे थे एक जोश के साथ, एक जज्बे के साथ, कम साधनों के साथ। जैसे एक गीत में आता है कि हम गोली खाकर झूमेंगे। अब ये गोली वही है जो जान ले सकती है, लेकिन ये ऐसे बता रहे हैं गोली खाकर झूमेंगे, हम मौत को बढ़कर चूमेंगे। अब ये जो जज्बा है ये एक फौजी में और जो जन करने जा रहा है, वो इस तरह की पंक्तियां आती हैं जो जोश भरती हैं, किसी में भी जोश भरती हैं।
2: युद्ध समाप्त हुआ लेकिन आजाद हिंद फौज की कहानी नहीं। जब लाल किले में आजाद हिंद फौज के मुकदमे शुरू हुए तो उसके गीतों पर भी पाबंदी लगा दी गई। डॉक्टर सुगतो बोस।
3: The trial began on the 5th of November and ended on the 31st of December of 1945. And there was a huge popular upsurge across the whole country in support of Netaji's soldiers. And even if the British tried to, you know, ban INA songs, that was not very effective because in the public gatherings that were held, INA songs began to be performed. And then once Claude Auchinleck was forced to release the three INA officers, there was a slogan in those days,

0: लाल किले से आए आवाज सैगल धिलन शानवाज एट दैट स्टेज यू नो एवरीवेयर एज पार्ट ऑफ द सेलिब्रेशन एंड फॉर एग्जाम्पल ऑन नेताजीज बर्थडे ऑन द 23rd ऑफ जनवरी ऑफ 1946 दीज INA songs were being performed everywhere.
1: कैप्टन राम सिंह की कंडक्टिंग बेटॉन ने हजारों दिलों की धड़कनों को एक ही लय में बांध दिया था। हिमाचल प्रदेश में जन्मे इस गोरखा सैनिक ने अपनी संगीत प्रतिभा से आजाद हिंद फौज के सांगीतिक संसार में नई जान फूंक दी।
2: ये वायलिन मुझको नेताजी ने अपने करकमलों से मुझे भेंट की और भेंट करते समय कहा था कि राम सिंह ये वायलिन भारतवर्ष में भी बजेगा।

0: हंसते हंसते जीना हो नेताजी।
1: मुमताज हुसैन के अलावा आजाद हिंद फौज के गीतों में कई ऐसे गीतकारों का जिक्र मिलता है जिन्हें आज बहुत कम लोग जानते हैं। इनमें सूबेदार बलदेव सिंह, फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रकाश सिंह, सेकंड लेफ्टिनेंट मुश्ताक और यहाँ तक कि गुरबख्श सिंह ढिल्लों भी शामिल थे। आइए कैप्टन राम सिंह की जुबानी सुनते हैं उनके कुछ साथियों और उनके गीतों के बारे में।
2: ये गीत सेकंड लेफ्टिनेंट कल्याणचंद हस्सर जी का लिखा हुआ है, इसकी धुन मैंने बनाई थी।
3: वो दिल ही नहीं जिसमें न हो चाह वतन की, वो दिल ही नहीं जिस

हमारे आजाद हिंद फौज के जवान जब दिन भर बहुत परिश्रम करते थे, शाम को जब भोजन करने अपने मैस में जाते थे तो खाना उना खाने के बाद फिर सारी कंपनियां इकट्ठे होकर कहते थे चलो भाई जरा मनोरंजन हो जाए, तो वो कहते थे कवाली गाया जाए।

0: नाम लिया। जय हिंद भैयो, कहो जय हिंद।
1: नेहरू ब्रिगेड के कमांडर कर्नल ढिल्लन साहब ने नेताजी का फरमान कहकर एक गीत लिखा है, वो है नेताजी का फरमान, उठो सोए भारत के नसीबों को जगा दो।

रानी झांसी रेजिमेंट के लिए भी एक विशेष गीत तैयार किया गया था। ये रेजिमेंट नेताजी के बेहद निकट थी, क्योंकि नेताजी के लिए रानी झांसी रेजिमेंट सिर्फ महिलाओं की एक सैन्य टुकड़ी नहीं थी, वो उनके उस भारत का ख्वाब थी जहां औरत और मर्द कंधे से कंधा मिलाकर आजादी की लड़ाई लड़े, जहां इज्जत, बराबरी और जिम्मेदारी तीनों में कोई फर्क न हो। और इसी सोच को इस गीत ने आवाज दी।

0: इन गीतों का संग्रह आज भी नेताजी रिसर्च ब्यूरो में सुरक्षित है और netaji.org पर निशुल्क उपलब्ध है। जनगण मन की धुन के संगीतकार को लेकर लोगों के मन में कुछ सवाल भी उठते रहे हैं। प्रोफेसर सुगतो बोस हमें 1918 में दिनेंद्रनाथ ठाकुर द्वारा तैयार की गई संगीत रचना की याद दिलाते हैं। वो ये भी समझाते हैं कि शुभ सुख चैन और जनगण मन की धुनों में कहां बारीक अंतर है।
1: द ट्यून ऑफ शुभ सुख चैन की इज स्लाइटली डिफरेंट, देयर आर न्यूएंसेस व्हिच आर डिफरेंट फ्रॉम द ट्यून ऑफ दिनेंद्रनाथ टैगोर्स जनगण मन। देयर आर मोर कोमल नोट्स दैट हैव बीन एडेड। The second verse of the Jana Gana Mana song is very beautiful. It's not part of our national anthem, only the first verse is. But the second verse says, Ahara tabo avhana pracharita shunitabo udara bani Hindu Bodha Shikha Jaina Para Shikha Musalmana Krishitani पूरब पश्चिम आशे तब सिंहासन पाशे प्रेम हार है गाथा। एंड मुमताज हुसैन विद द सपोर्ट ऑफ नेताजी एंड आबिद हसन रेंडर्ड इट इन दीज वर्ड्स। सबके

0: the Jayo Hey becomes Jayo Ho. That's the nuance, that's the slight variation that was made in the Azad Hind score of the Hindustani version of our national anthem.
1: आकाशवाणी आर्काइव्स में उपलब्ध जानकारी के अनुसार 11 सितंबर 1942 को हैम्बर्ग में प्रस्तुत जनगण मन का वाद्य रूप पहली बार दुनिया के सामने आजाद भारत के राष्ट्रगान के रूप में पेश किया गया। इसकी प्रस्तुति रेडियो हैम्बर्ग चेंबर ऑर्केस्ट्रा ने की थी और उसके बैंड लीडर थे एगिल क्रुटके। हैम्बर्ग स्टेट आर्काइव्स में इस प्रस्तुति का उल्लेख कुछ इस तरह मिलता है। जन गण मन, टेक्स्ट रविंद्रनाथ ठाकुर, कोडिफिकेशन ऑफ म्यूजिक अंबिक मजुमदार। लेकिन अंबिक मजुमदार कौन थे? इस सवाल का जवाब हमें जर्मनी में फ्री इंडिया लीजन के एक महत्वपूर्ण सदस्य बीएल मुखर्जी की इस दुर्लभ आर्काइवल रिकॉर्डिंग में मिलता है।
2: एक शाम नेताजी ने हम सबको अपने निवास पर रात्रि भोज के लिए आमंत्रित किया। वहाँ उन्होंने मुझसे गाने का आग्रह किया क्योंकि मैं बर्लिन रेडियो पर नियमित रूप से गाया करता था। हमारे कार्यक्रम का नाम था नमस्ते हिंद। हमारे साथ एक और सज्जन थे, हालांकि वो पूरी तरह हमारे संगठन से जुड़े नहीं थे, लेकिन वे पूर्वी प्रशिया के कॉनिसबर्ग विश्वविद्यालय से संगीत के विद्वान थे। उनका नाम था अंबिक मजुमदार। वास्तव में जनगण मन की वर्तमान संगीत लिपि तैयार करने का कार्य उन्होंने ही किया था। मेरे गायन और अंबिक मजुमदार के पियानो वादन को सुनने के बाद नेताजी ने निर्णय लिया कि यही हमारी राष्ट्रीय धुन होगी।
1: बर्मा के घने जंगलों में

इतिहास न केवल कदम ताल करते हुए आगे बढ़ रहा था, वो गुनगुना भी रहा था उन सैनिकों के कंठों में जिन्होंने अपनी युवावस्था एक स्वप्न के लिए समर्पित कर दी। इम्फाल की मिट्टी और सिंगापुर की तपती धरती पर जन्मी वो धुने आज भी इतिहास की सांसों में जीवित हैं।

0: साम्राज्य की तोपें अब कब की खामोश हो चुकी हैं। कूच करते कदमों की आहटें इतिहास में विलीन हो चुकी हैं। जो कुछ बचा है, कारावास और निर्वासन, मुकदमों और यातनाओं, विस्मृति और विघटन के पार, वो है एक प्लेलिस्ट, प्रतिरोध का साउंडट्रैक। जब आज तिरंगा हवा में लहराए तो ध्यान से सुनिए, शायद आपको मातृभूमि के नाम खून से लिखे हुए उस पुराने चिरंतन वचन की गूंज सुनाई दे।
1: Friends, I do not know how many of us who are going to participate in the coming battles will survive to see India free. But whether we survive or not, whether we individually live to see India free or not, we are confident that India shall be free.

0: रूपकों के अखिल भारतीय कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे रूपक, आजाद हिंद और समर के स्वर, शोध और आलेख वसुधा बैनर्जी, वाचन स्वर नवोदिता मिश्रा, स्वरांश सहयोग आनंद श्रीवास्तव, प्रस्तुति सहयोग सरबजीत सिंह और प्रांजल, प्रस्तुतकर्ता नवोदिता मिश्रा। इस कार्यक्रम में जर्मनी के हैम्बर्ग में प्रस्तुत जन गण मन के वाद्य संस्करण को छोड़कर आजाद हिंद फौज INA के सभी गीत नेताजी रिसर्च ब्यूरो कोलकाता के सौजन्य से प्राप्त हुए। केंद्रीय हिंदी रूपक एकांश द्वारा तैयार यह कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
1: नमस्कार, अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा के आज के इस आयोजन में हम सुप्रसिद्ध गायक श्री सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन प्रस्तुत करने जा रहे हैं।
2: नमस्कार, इन टुडेज एडिशन ऑफ अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा वी आर प्लीज टू प्रेजेंट अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय द रेनाउंड वोकलिस्ट श्री सुधाकर देवले।
1: एक संगीतमय परिवार में जन्मे देवले जी ने अपनी गायन की प्रारंभिक शिक्षा अपनी माता स्वर्गीय श्रीमती लता देवले जी से प्राप्त की। आगे चलकर उन्होंने ग्वालियर घराने के श्री रघुनाथ वाघ जी से विशेष रूप से टप्पा गायन सीखा और पद्मश्री पंडित जितेंद्र अभिषेकी जी से गुरु शिष्य परंपरा के तहत ख्याल, ठुमरी, नाट्य संगीत और भजनों की गहन शिक्षा ग्रहण की।
2: Born into a musical family, Shri Devle received his initial training in vocal music from his mother, the late Shrimati Lata Devle. Later, he specialized in tappa singing under the guidance of Shri Raghunath Vagh of the Gwalior Gharana. Furthermore, under the traditional Guru Shishya Parampara, he received intensive training in khayal, dhumri, natya sangeet and bhajans from the Padma Shri recipient पंडित जितेंद्र अभिषेकी।
1: तानसेन, कालिदास, सवाई गंधर्व जैसे प्रतिष्ठित राष्ट्रीय समारोह के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन और खाड़ी देशों में अपनी कला का उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले देवले जी आकाशवाणी और दूरदर्शन के ए ग्रेड कलाकार हैं। साथ ही आप संगीत शिरोमणि और विक्रमादित्य जैसे कई प्रतिष्ठित सम्मानों से अलंकृत है।
2: एन ए ग्रेड आर्टिस्ट ऑफ आकाशवाणी एंड दूरदर्शन श्री देवले हैज डिलीवर्ड outstanding performances at prestigious national festivals

प्यारे देगर लागी। द कंपोजिशन इज सेट टू थ्री ताल विद द लिरिक्स चलो हटो जी छैल काहे रोके गैल। अकंपनिंग हिम ऑन द हारमोनियम इज प्रमोद बोरगांवकर एंड ऑन द तबला इज उल्हास राजहंस।

0: रागपुरिया में अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का शास्त्रीय गायन। देवले जी प्रस्तुत करने जा रहे हैं राग बसंती केदार। इस रचना की बोल है बर्निन जाए सखी, जो झपताल में निबद्ध है। द्रुत रचना की बोल है बेरी बसंत अब आयोरी, जो त्रिताल में है।
1: दैट वॉज अ क्लासिकल वोकल परफॉर्मेंस बाय श्री सुधाकर देवले इन रागपुरिया। श्री देवले विल नाउ प्रेजेंट राग बसंती केदार सेट टू झपताल विद द लिरिक्स बर्निन जाय सखी, सेट टू त्रिताल विद द लिरिक्स बेरी बसंत अब आयोरी।

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गायन राग बसंती केदार। सुधाकर देवले जी कार्यक्रम का समापन राग हंस धनी में तराना से कर रहे हैं। त्रिताल में निबद्ध रचना की बोल है दारा दीम तदारी दानी दीम।
1: You are just listening to the vocal performance of Shri Sudhakar Devle ji in Raag Basanti Kedar. Shri Sudhakar Devle is concluding his program with Tarana in Raag Hans Dhwani, set to Trital with the lyrics Dara Dim Tadare Dani Dim.

0: अभी आपने सुना सुधाकर देवले जी का गाया राग हंस ध्वनि में तराना। आपके साथ तबले पर संगत कर रहे थे उल्लास राजहंस और हारमोनियम पर प्रमोद बोरगांवकर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी इंदौर की प्रस्तुति थी। इसके साथ ही आज की अखिल भारतीय रविवासरी संगीत सभा संपन्न होती है।
1: यू आर जस्ट लिसनिंग टू अ तराना इन राग हंस ध्वनि रेंडर्ड बाय श्री सुधाकर देवले। अकंपनिंग हिम वर प्रमोद बोरगांवकर ऑन द हारमोनियम एंड उल्लास राजहंस ऑन द तबला। दिस प्रोग्राम वॉज अ प्रेजेंटेशन ऑफ आकाशवाणी इंदौर। विद दिस टुडेज अखिल भारतीय रविवासरीय संगीत सभा कम्स टू एन एंड।
2: मीडियम वेव 401.61 मीटर अर्थात 747 किलोहर्ट्ज़ पर हम आकाशवाणी के लखनऊ केंद्र से बोल रहे हैं।

0: ये आकाशवाणी दिल्ली का इंद्रप्रस्थ चैनल है और अब प्रस्तुत है समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष मिश्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकसित भारत नशा मुक्त युवा संकल्प अभियान की नई दिल्ली में शुरुआत की। वर्चुअल माध्यम से उन्होंने कहा कि विकसित भारत के लिए युवाओं का शारीरिक रूप से स्वस्थ, मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वास से भरपूर होना जरूरी है।
3: देश का युवा आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर ही रहे, यही इस अभियान का उद्देश्य है। हम सबको ये संकल्प लेना है, हमारे युवा नशे और ड्रग्स के खतरों को समझे, हर तरह से जागरूक रहें और उससे दूर रहें। और इस संकल्प में अब राष्ट्रीय नशा मुक्त युवा अभियान की बड़ी भूमिका है।
2: प्रधानमंत्री ने कहा कि नशा मुक्ति के लिए 100 हफ्ते का जन भागीदारी अभियान शुरू किया जाएगा और देश भर में हर रविवार को साप्ताहिक कार्यक्रम होंगे। श्री मोदी ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत लोगों को लक्ष्य से भटकाती है और सपने पूरे नहीं करने देती, इससे देश की ताकत भी कमजोर होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि युवाओं को नशे की लत के गंभीर परिणामों को समझना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि नशीले पदार्थों की लत से मुक्ति के लिए समय पर विशेषज्ञों की मदद और इलाज लेना चाहिए। उन्होंने स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालय के शिक्षकों से भी अपील की कि वे मादक पदार्थों के सेवन के खतरों पर नियमित रूप से विद्यार्थियों के साथ चर्चा करें। भारत की अर्थव्यवस्था में मजबूत आर्थिक संकेतकों, औद्योगिक गतिविधियों में सुधार और निर्यात में तेजी के चलते चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में लगभग 7% की वृद्धि होने की संभावना है। एसबीआई रिसर्च की पूर्व मौद्रिक नीति समिति एमपीसी की कल जारी रिपोर्ट के अनुसार वृद्धि का यह अनुमान भारतीय रिजर्व बैंक के पहले के अनुमानों से बेहतर है। रिपोर्ट में जून में घरेलू यात्री वाहनों की बिक्री में वार्षिक आधार पर 24% से अधिक, बिजली की मांग में 11%, निर्यात में 15%, औद्योगिक ऋण में 19% और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में 7% से अधिक की वृद्धि हुई। इसमें बताया गया है कि जुलाई में हुई अतिरिक्त वर्षा से देशव्यापी वर्षा की कमी लगभग 13% तक कम हो गई है, जबकि जलाशयों का जलस्तर सामान्य हो गया है और खरीफ की बुआई पिछले वर्ष से केवल 4.7% कम है। यह स्थिति बेहतर फसल की संभावनाओं का संकेत देती है।

दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की जेलों में हिरासत के दौरान अस्वाभाविक मृत्यु का शिकार हुए कैदियों के परिजनों या कानूनी वारसों को मुआवजा देने के लिए एक योजना अधिसूचित की है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने इस संदर्भ में अधिसूचना जारी की है। इस योजना के तहत परिस्थितियों के अनुसार अधिकतम 7.5 लाख रुपए तक का मुआवजा दिया जाएगा। जेल अधिकारियों या कर्मचारियों की ड्यूटी में लापरवाही, डॉक्टरों या पैरामेडिकल कर्मचारियों की लापरवाही तथा कैदी द्वारा आत्महत्या के मामलों में 5 लाख रुपए मुआवजा निर्धारित किया गया है। अधिसूचना के अनुसार यह योजना केवल उन मामलों पर लागू होगी जिसमें अधिसूचना जारी होने की तारीख या उसके बाद दिल्ली की किसी भी जेल में किसी कैदी की अप्राकृतिक मृत्यु हुई हो। ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं।

0: ओडिशा में बाढ़ का पानी धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन सबसे अधिक प्रभावित जिलों में हालात अब भी चुनौतीपूर्ण बने हुए हैं। पानी की कमी, फसलों को व्यापक नुकसान और घरों के नष्ट होने से बाढ़ प्रभावित परिवारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बालासोर, भद्रक और जाजपुर जैसे सबसे ज्यादा प्रभावित जिलों के लोग अब भी भारी मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। राज्य सरकार ने राहत कार्यों में तेजी ला दी है और जिला कलेक्टरों से कहा है कि मुआवजा दिलाने के लिए जल्द से जल्द नुकसान का आकलन करके रिपोर्ट सौंपें। केरलम में बारिश की तीव्रता कम हो गई है, जिससे कई जिलों में लोगों को राहत मिली। मौसम विभाग ने आज 12 जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट और 2 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के सभी 14 जिलों में कल के लिए येलो अलर्ट है। राष्ट्रमंडल खेलों का समापन आज रात 1:30 बजे से ग्लासगो के प्रतिष्ठित हाइड्रो एरिना में एक भव्य समारोह के साथ होगा। समापन समारोह के दौरान अहमदाबाद को 2030 के राष्ट्रमंडल खेलों का ध्वज और मेजबानी की मशाल सौंपी जाएगी। इस कार्यक्रम में स्कॉटिश रॉक बैंड सिंपल माइंड्स मुख्य प्रस्तुति देगा। वहीं बीएमजेड, कैमी बांस और सैंडी थाम के साथ ऑस्ट्रेलिया की गायिका डेल्टा गुडरेम भी कार्यक्रम का आकर्षण रहेंगी। भारत में रश्मिका मंदाना और शंकर महादेवन प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण दूरदर्शन पर किया जाएगा। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी, द न्यूज रेड बाय रेशमा तिवारी। Prime Minister Narendra Modi today said that as India moves towards becoming a Viksit Bharat, the nation's youth must be physically fit, mentally strong and full of self-confidence. Speaking on the launch of Nasha Mukt Yuva for Viksit Bharat Sankalp Abhiyan virtually in New Delhi today, Mr. Modi said young people should always stay away from drugs and embrace a healthy lifestyle. He added that the launch will mark the beginning of a 100-week nationwide Jan Bhagidari campaign against substance abuse.
2: विकसित भारत संकल्प अभियान के लिए नशा मुक्त युवा, इस मूवमेंट का नाम ही इसके संकल्प को स्पष्ट करता है, क्योंकि आज जब देश ने विकसित भारत का लक्ष्य तय किया है तो इसके लिए आवश्यक है देश का युवा तन से स्वस्थ हो, मन से स्वस्थ हो, आत्मविश्वास से भरपूर हो और ड्रग्स जैसी घातक आदत से हमेशा हमेशा दूर हो। यही इस अभियान का उद्देश्य है।
1: More than 1 crore youth from 28,000 locations across the country participated in the event, including My Bharat and National Service Schemes volunteers, as well as participants from schools, colleges, universities, youth clubs, NGOs and spiritual organizations. India's economy is likely to grow around 7% in the first quarter of current fiscal, higher than earlier expectations, supported by stronger economic indicators, improved industrial activity and a recovery in exports. According to an SBI Research Pre-Monetary Policy Committee report released yesterday, the growth estimate marks an improvement from the Reserve Bank of India's earlier projections, which were lowered because of geopolitical uncertainties. The Delhi government has notified a scheme to provide compensation to the next of kin or legal heirs of prisoners who die an unnatural death while in custody within the prisons of the National Capital Region. Under this scheme, compensation of up to 7.5 lakh rupees will be awarded depending on the specific circumstances. Compensation of 5 lakh rupees has been fixed for cases involving negligence in the discharge of duties by prison officials or staff, negligence by medical or paramedical personnel, and cases of prisoner suicide. All arrangements are in place for the counting of votes for the by-elections to 3 assembly constituencies in Bihar, Gujarat, and Madhya Pradesh tomorrow. Polling for the Bankipur constituency in Bihar, Manjalpur in Gujarat, and Datia in Madhya Pradesh were held on the 30th of last month. Counting of votes will begin at 8 a.m. tomorrow. The self-enumeration facility for Census 2027 has commenced in Assam from today. Citizens can now submit their household and individual details online through the dedicated portal se.census.gov.in. The self-enumeration facility will remain available until August 16, ahead of the house listing operation and housing census scheduled

मीडियम वेव 196.1 मीटर अर्थात 1530 किलोहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये आगरा केंद्र है। साथियों, इस समय रात्रि के 11:10 हो चुके हैं। हमारी आज की अंतिम सभा अब यहीं संपन्न होती है। प्रातःकालीन सभा में सुबह 5:50 पर आपकी सेवा में इसी मीटर पर फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। जय हिंद।